फिर जब ये फरिश्ता दे लूत के हां पहुंचे तो उसने कहा, आप लोग अजनबी मालूम होते हैं। उन्होंने जवाब दिया, नहीं बल्कि हम वही चीज लेकर आए हैं जिसके आने में ये लोग शक कर रहे थे। हम तुमसे सच कहते हैं कि हम हक के साथ तुम्हारे पास आए हैं, लिहाजा अब तुम कुछ रात रहे अपने घर वालों को लेकर निकल जाओ और खुद उनके पीछे पीछे चलो, तुम में से कोई पलट कर न देखे, बस सीधे चले जाओ जिधर जाने का तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है। और उसे हमने अपना ये फैसला पहुंचा दिया कि सुबह होते होते इन लोगों की जड़ काट दी जाएगी। इतने में शहर के लोग खुशी के मारे बेताब होकर लूत के घर चढ़ाए। लूत ने कहा, भाइयों ये मेरे मेहमान हैं, मेरी फजीहत न करो, अल्लाह से डरो, मुझे रुसवा न करो। वो बोले, क्या हम बारहा तुम्हें मना नहीं कर चुके हैं कि दुनिया भर के ठेकेदार न बनो। लूत ने आजिज होकर कहा, अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो ये मेरी बेटियां मौजूद हैं, तेरी जान की कसम ए नबी।

उस वक्त उन पर एक नशा सा चढ़ा हुआ था जिसमें वो आपे से बाहर हुए जाते थे। आखिरकार पौ फटते ही उनको एक जबरदस्त धमाके ने आ लिया और हमने उस बस्ती को तल पट करके रख दिया और उन पर पकी हुई मट्टी के पत्थरों की बारिश बरसा दी। इस वाकये में बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो साहिब फिरासत हैं। और वो इलाका जहां ये वाकया पेश आया था गुजरगाह आम पर वाकये है। इसमें सामान इबरत है उन लोगों के लिए जो साहिब ईमान हैं। और एका वाले जालिम थे तो देख लो हमने भी उनसे इंतकाम लिया और इन दोनों कौमों के उजड़े हुए इलाके खुले रास्ते पर वाकई है।

वही है जिसने आसमान से तुम्हारे लिए पानी बरसाया जिससे तुम खुद भी सैराब होते हो और तुम्हारे जानवरों के लिए भी चारा पैदा होता है। वो इस पानी के जरिए से खेतियां उगाता है और जैतून और खजूर और अंगूर और तरह तरह के दूसरे फल पैदा करता है। इसमें एक बड़ी निशानी है उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। उसने तुम्हारी भलाई के लिए रात और दिन को और सूरज और चांद को मुसख्खर कर रखा है और सब तारे भी उसी के हुक्म से मुसख्खर हैं। इसमें बहुत निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अक्ल से काम लेते हैं। और ये जो बहुत सी रंग बरंग की चीजें उसने तुम्हारे लिए जमीन में पैदा कर रखी हैं, इनमें भी जरूर निशानी है उन लोगों के लिए जो सबक हासिल करने वाले हैं। वही है जिसने तुम्हारे लिए समंदर को मुसख्खर कर रखा है ताकि तुम उससे तरोताजा गोश्त लेकर खाओ और उससे जीनत की वो चीजें निकालो जिन्हें तुम पहना करते हो। तुम देखते हो कि कश्ती समंदर का सीना चीरती हुई चलती है। ये सब कुछ इसलिए है कि तुम अपने रब का फजल तलाश करो और उसके शुक्रगुजार बनो। उसने जमीन में पहाड़ों की मेखें गाड़ दी ताकि जमीन तुमको लेकर ढलक न जाए। उसने दरिया जारी किए और कुदरती रास्ते बनाए ताकि तुम हिदायत पाओ। उसने जमीन में रास्ता बताने वाली अलामतें रख दी और तारों से भी लोग हिदायत पाते हैं। फिर क्या वो जो पैदा करता है और वो जो कुछ भी पैदा नहीं करते दोनों यकसा हैं? क्या तुम होश में नहीं आते? अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। हकीकत यह है कि वो बड़ा ही दरगुजर करने वाला और रहीम है, हालांकि वो तुम्हारे खुले से भी वाकिफ है और छुपे से भी।

اللهم من كان من والدينا في هذه الساعة معذبا في قبره فنسألك

चलने की तौफीक दे। लिसनर्स, इसी के साथ आज के लिए इजाजत दीजिए। मैं हूँ आपकी आरजे महावश और आप सुन रहे थे स्टोरीज फ्रॉम प्रॉफिट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक एक और नबी की जिंदगी और उनके जिंदगी से जुड़े अहम वाकियात के साथ दोबारा हाजिर होंगी इसी शो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने दिल को ईमान से मजबूत रखिए और अपनी जिंदगी में अल्लाह ताला की याद को हमेशा जगा दीजिए। मेरी जानिब से अल्लाह हाफिज़।

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. मैं हूं नाज़िया एफएम 107 से एंड वेलकम टू द शो कॉल्ड आर्ट कॉर्नर. दोस्तों, इस शो के जरिए हम कतर के आर्टिस्ट की लाइफ, उनके अचीवमेंट्स, उनके चैलेंजेस और उनके कंट्रीब्यूशंस को हाईलाइट करते हैं. दोस्तों, आज का किस्सा शुरू होता है हमारे और आपके इस बेहद खूबसूरत मुल्क कतर से. जी, कतर में एक ऐसी आर्टिस्ट है जो न सिर्फ कैनवस पर रंग भरती है बल्कि उस रंग के जरिए एक गहरी कहानी, एक गहरी बात कह जाने का हुनर रखती है. इस कतरी आर्टिस्ट ने एक बार कहा था, जब मैं पेंट करती हूँ मैं सिर्फ रंग नहीं भरती, मैं अपने ख्यालात, अपने जज्बात और अपने लोगों की कहानियों को बयां करती हूँ. मेरे हर स्ट्रोक में एक नया पहलू होता है जो मेरे और मेरी कम्युनिटी के बीच फासले को कम करता है. जी, ऐसे खूबसूरत ख्यालात की मालकिन है आज के हमारी कतरी आर्टिस्ट, हु इज आल्सो अ क्यूरेटर, सारा फुरियोमी. सारा ने अपनी पेंटिंग्स के जरिए इस्लाम और तहजीब की अहमियत को उजागर किया है. सारा अपने काम के जरिए जेंडर आइडेंटिटी और मुस्लिम खवातीन के राइट्स को अपने आर्ट वर्क के जरिए लोगों तक पहुंचाने का काम भी कर रही हैं। आपका मानना है कि हर तस्वीर एक सफर जैसी है. जी हाँ, आप सिर्फ एक आर्टिस्ट ही नहीं हैं, बल्कि एक मेंटोर भी हैं। वो नई नस्ल के आर्टिस्ट को बखूबी इंस्पायर करना जानती हैं। यंग आर्टिस्ट को रंगों और तस्वीरों के जरिए अपने थॉट्स को बेहतर अंदाज में पेश करने की राह हमवार करती हैं। सारा कई वर्कशॉप्स कंडक्ट करवाती हैं, दैट टू ऑन रेगुलर बेसिस. कतरी आर्टिस्ट और यंग आर्टिस्ट इन वर्कशॉप्स का हिस्सा बनते हैं. वेल, आपका कहना है कि मैं यूथ को सिर्फ प्लेटफॉर्म ही प्रोवाइड नहीं करती हूँ, बल्कि उनके दर्द, उनकी खुशी, वो कैसे कैनवस पर उतार सकते हैं, ये हुनर भी उन्हें सिखाती हूँ. सारा एक ऐसी इंसाइटफुल आर्टिस्ट है जो कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट के लिए लगातार काम कर रही हैं। आपने एक इंटरव्यू में कहा था, जब मैं देखती हूँ कि मेरी ट्रेनिंग का असर किसी और के काम पर होता है तो मुझे लगता है कि मैंने अपने मकसद को हासिल कर लिया. ये वर्कशॉप्स इसी रिवायत और तहजीब को आगे बढ़ाने का जरिया भी है. वाह, कतर देखा जाए तो एक ऐसा मुल्क है जहाँ आर्ट सिर्फ एक शौक ही नहीं है बल्कि ये एक जिंदा तहसीब की निशानी भी है, जहाँ फनकार अपने आर्ट वर्क के जरिए समाजी मसाइल को सामने लाते हैं, वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इन आर्टिस्ट को भरपूर सपोर्ट करते हैं. कतर में बेशुमार ऐसे म्यूजियम्स और आर्ट गैलरीज हैं जो इन आर्टिस्ट को भरपूर मौका देते हैं कि वो अपने आर्ट वर्क को दुनिया तक पहुँचाएं. दोस्तों, आई एम श्योर आप किसी न किसी आर्ट एग्जीबिशन में गए होंगे, आपने किसी आर्टिस्ट के वर्क को एडमायर किया होगा. क्या कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि आप किसी भी पिक्चर को, पेंटिंग को देख रहे थे और आपको लगा कि ये शायद हमसे कुछ कहना चाहती है? जी, मेरे साथ तो सच पूछिए कई बार ऐसा हुआ. मैं कह सकती हूँ विजिटर्स इन एग्जीबिशंस के जरिए बहुत कुछ सीखते हैं, अलग अलग कल्चर्स को जानने का उन्हें मौका मिलता है और साथ ही चैलेंजेस को कैसे हैंडल करना है उस हवाले से भी नए पर्सपेक्टिव उन्हें नजर आते हैं. आर्टिस्ट की तस्वीर सिर्फ आंखों को ही नहीं भाती बल्कि दिल को, रूह को छू जाती है. सारा ने बतौर आर्टिस्ट अपने आर्ट फॉर्म के जरिए कहानियों को ऐसे कहा है कि नए डायलॉग्स को वो सोसाइटी में इंट्रोड्यूस कर सकी. सारा का मानना रहा है कि आर्ट हमेशा से ही एक ऐसे ब्रिज की तरह काम करता है जो सोसाइटी और सोसाइटी के सोशल इश्यूज को एड्रेस करने में एक अहम रोल अदा करता है. सारा महज आर्टिस्ट नहीं है बल्कि आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं. इन्होंने बहुत सारे मसले मसाइल पर अपने आर्ट के जरिए रोशनी डाली है और उन्हें सुलझाने का भी काम किया है. पहले मैं कह सकती हूँ आपने अपने आर्ट वर्क के जरिए नौजवानों में एक नया जोश भरा है. सारा का खुद का मानना है कि उन्हें आर्ट का शौक बचपन से तो था लेकिन उन्हें ये शौक उनकी ग्रैंड मदर की वजह से और ज्यादा पैदा हुआ. बचपन में आपकी ग्रैंड मदर इन्हें इस्लामिक स्टोरीज सुनाती थी और इन स्टोरीज के नरेशन की वजह से ही इन्होंने आर्ट को अपनाया. पर देखा जाए तो इनकी फैमिली में रिच इस्लामिक वैल्यूज और टीचिंग्स ने भी उन्हें यूं मुतासिर किया कि मानो इन्होंने इन्हें तस्वीरों के जरिए लोगों तक पहुंचाने की बात ठान ली. फिर वो कहते हैं ना, जब ठान ली तो दिल की मान ली. फिर क्या था, बस दिल की सुनते हुए इन्होंने आर्ट को पैशन और प्रोफेशन दोनों ही रूप में एक्सेप्ट किया. और तब से लेकर अब तक ये सिलसिला सारा का बदस्तूर जारी है। मैं कह सकती हूँ देन देयर इज नो लुकिंग बैक। वेल, सारा एक ऐसी आर्टिस्ट है जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि ये एक नया नजरिया है, एक नई सोच है और एक नई कहानी का नाम भी है। एक ऐसी कहानी जो हर बार कुछ सिखा जाए, जो हर बार कुछ समझा जाए और हर बार हमें सोचने पर मजबूर करे। इसी बात और इसी सोच के साथ मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए। अगले एपिसोड में एक नए आर्टिस्ट और उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ अनकहे किस्से लेकर हम फिर वापस हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: इस दुनिया में हमें मुख्तलिफ रिश्ते और ताल्लुकात जोड़ते हैं, मुख्तलिफ लोगों के साथ मेल जोल रखते हैं, जिनमें से कई अफराद को हम दोस्त भी बना लेते हैं। ये सोहबतें हमारी जिंदगी का एक नुमाया रंग बन जाती हैं। कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने कई अस्हाब के वाकियात बयान किए हैं ताकि हम इबरत हासिल करें और राह रास्त पर आ जाएं।
2: सुनिए प्रोग्राम कससुल कुरान आरजे तलहा और आरजे सरवर के साथ हर जुम्मा दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर।
3: स्ट्रेस या टेंशन फील कर रहे हैं, चाहते हैं लाइफ में बैलेंस और ग्रोथ, तो सुनिए यू मैटर, आपके लिए प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रेटजीज ताकि आप खुश, हेल्दी और फुलफिल्ड लाइफ जी सके, क्योंकि आप मैटर करते हैं।
2: सुनिए हर संडे टू थर्सडे सुबह 10 से 11 बजे यू मैटर, यू मैटर आरजे सफा और आरजे महविश के साथ, जहां वो शेयर करेंगी प्रैक्टिकल टिप्स, इमोशनल इंटेलिजेंस टेक्निक्स और पर्सनल ग्रोथ हैक्स, जो आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्पफुल हो सकता है। ट्यून इन टू FM 107, दिल से देसी।
4: कतर्स मोस्ट हर्ड रेडियो स्टेशन FM 107, FM 107, दिल से देसी।
5: समीन, मुआशरे में कई ऐसे अफराद नजर आते हैं जो बज़ाहिर मुफलिस है, कुछ रखता ही नहीं, लेकिन फिर भी गुरूर और तकब्बुर में लोगों से ऊंची बात करता है। तो सूरत हाल के लिए ये कहावत काफी मशहूर है, अलजेब खाली वल खशम आली, यानी जेब खाली है मगर नाक आसमान पर है। मकसद ये है कि असल बड़ाई दौलत या गुरूर में नहीं बल्कि अखलाक और इंकसारी में है। कहते ना हमारे यहाँ, जेब खाली है बातें बड़ी बड़ी। इसी तरह कहते हैं, खाली बर्तन ज्यादा आवाज करता है, यानी जो अंदर से खाली हो वही सबसे ज्यादा शोर मचाता है। तो याद रखिए, असल इज्जत दौलत या गुरूर से नहीं बल्कि इंसान के अखलाक, किरदार और सच्चाई से मिलती है।
4: मैक्सिमम म्यूजिक, मैक्सिमम फन
0: ऑन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामिन किराम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे में।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल। सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107, दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लिसनर्स, कुछ सेहतमंद गजाएं ऐसी हैं जिनके इस्तेमाल में एहतियात हमें जरूर करनी है। सेहतमंद गजा का तसव्वुर यह है कि उसका ज्यादा इस्तेमाल करने से हमारी सेहत के जो फवायद हासिल किए जा सकते हैं वो तो हैं ही, क्योंकि उनमें विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं और प्रोटीन से भरपूर होती हैं। लेकिन कुछ ऐसी सेहत बख्श गजाएं हैं जिनके इस्तेमाल में एहतियात करनी चाहिए, जैसे कि हम बात करेंगे प्रॉन्स की, यानी झींगे। बज़ाहिर ये चिकनाई के तनासुब में कम होते हैं। 3 औंस पके हुए जो बड़े प्रॉन्स हैं उनमें 179 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। इनमें प्रोटीन और जो नेचुरल फाइबर है वो भी मौजूद है, जो दिल की सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, मगर रोज़ाना प्रॉन्स या झींगों का इस्तेमाल मुनासिब नहीं है।

0: हफ्ते में एक बार आप कर सकते हैं। चाय जो आपको हमें सभी को बहुत पसंद है, मगर एक हालिया तहकीक हुई उसके मुताबिक चाय पीने से जहनी और जिस्मानी दबावों में आराम के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल में कमी वाकई होती है, मगर जो लोग ज्यादा चाय पीते हैं उनकी नींद डिस्टर्ब होने लगती है। दिन में चाय के 2 कप पिए जा सकते हैं और ये कि आप दोपहर के बाद चाय का कम से कम इस्तेमाल कीजिए। दालें जो कि प्रोटीन से भरपूर होती हैं और रेड मीट के मुकाबले में प्रोटीन हासिल करने का बेहतरीन जरिया भी हैं, लेकिन ज्यादा मिकदार में इनके इस्तेमाल से गैस बनने, सीने में जलन की शिकायत लाहक हो जाती हैं। और जूसेस जो कि सबको बहुत पसंद होते हैं, खासतौर पर गर्मी के मौसम में तो जूसेस का इस्तेमाल ज्यादा हो जाता है और हमें लगता भी ऐसे ही है कि ये तवानाई का खजाना है और बाजार में भी दस्तयाब है और इस यानी कार्बोहाइड्रेट्स की पूरी जो लॉट है वो हमें मिल जाती है। अगर ये जूसेस जिस्म की जो अफजाइश है उसमें काम ना आ सके तो ये फिर जिस्म में एब्जॉर्ब होकर उसे मोटापे की तरफ माइल कर देते हैं। तो फिर ऐसा कीजिए कि रोजाना 2 कप से ज्यादा जूस आप ना इस्तेमाल करें। नट्स जो कि बहुत अहम हैं और मुख्तलिफ जो नट्स हैं गजाइयों से भरपूर एक कुदरती गजा भी हैं, इनमें ओमेगा 3 पाया जाता है जो कि बहुत ही हेल्दी फैट्स हैं, लेकिन इन नट्स की जो इजाफी मकदार है यानी ज़्यादा मकदार अगर हम लेंगे तो उससे हमारे वजन में इजाफा हो जाएगा और इस तरह से मोटापे की तरफ हम चले जाएंगे। और इसी तरह से लेनी कितनी है, बिल्कुल एक हैंडफुल या गोल्फ बॉल जितनी जो सर्विंग है वो आप रोज़ाना लीजिए, वरना फिर जिम जाने के लिए तैयार हो जाइए। खुश रहिए, एहतियात से खाइए। हेल्थ फॉर ऑल
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल, FM 107, दिल से देसी।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
3: इश्क

में आ गया होगा या आप समझ गए होंगे कि दरअसल इस इदारे की बुनियादी जिम्मेदारी क्या क्या है। तो आगे हम बढ़ेंगे और हमारे मेहमान से हमारा अगला सवाल रहेगा कि जो दुखुल इकामत के हवाले से, यानी जो ये कानून है जिसकी बार बात बार बार आ रही है, तो ये कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के लिए जो डिटेंशन सेंटर की बात आई है, तो वो डिटेंशन

रिकॉर्ड ब्रेकिंग एंथम से दिल को छू लेने वाले गाने। जानिए किस गाने ने मारी है एंट्री।

0: सुनिए टॉप 10 विद ए फॉर अमिता हर फ्राइडे शाम 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी। FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: कहते हैं जिंदगी एक रेस है, लेकिन क्या आप इस रेस में भागने के लिए तैयार हैं?
2: आपका करियर सिर्फ एक जॉब नहीं, आपके फ्यूचर की डायरेक्शन है। तो फिर सवाल ये है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं?
1: नए करियर्स, फ्यूचर स्किल्स, चेंजिंग जॉब मार्केट और वो अपॉर्चुनिटीज जो आपके मुस्तकबिल को नई राह दे सकती हैं। सुनिए प्रोग्राम फ्यूचर करियर, फ्यूचर करियर आरजे महविश खान के साथ हर मंडे शाम 7:15 से ओनली ऑन FM 107। अपने करियर का अगला कदम सोच समझ कर उठाइए।
3: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM 107 कतर। दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटेजी, हेल्थ फॉर ऑल। सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107, दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, हेल्थ फॉर ऑल में खुश आमदीद। डायबिटीज या जो शुगर है, एक ऐसी हालत है जो हमारे पाओं के लिए नुकसानदेह हो सकती है और इससे बचना भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए फिर अपने पाओं पर खसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। तो उसमें करना यह है, अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको अपने जो पैर हैं उनको रोज़ चेक करना है कि खुदा नखास्ता कोई इंजरी तो नहीं, कोई चोट तो नहीं होने लगी। और इसी तरह से अपने जो पाँव हैं उन्हें हर रोज़ बहुत ही केयरफुली उन्हें धोना भी है। उसके बाद आपने मॉइस्चराइज करना है अपने पाँव को, इसी तरह जो एंकल्स हैं उन्हें और लेग्स को डेली। मगर उसमें ख़ास ख्याल ये रखना है कि आपने क्रीम लगानी है, मगर जो टोज हैं उनके दरमियान में आपने क्रीम नहीं लगानी, ये एक ख़ास बात है। इसी तरह से अगर आप अपने जो नेल्स हैं उन्हें भी कट कीजिए, मगर ये कि उन्हें स्ट्रेट कट कीजिए। कोशिश कीजिए कि बिल्कुल जो एजेस हैं वो जो इंजर ना हों। इसी तरह जो अपने पाँव हैं उन्हें थोड़ा गर्म रखिए और ड्राई रखिए। और जब आप सर्दी हो तो फिर आपने सॉक्स जो लें, मगर जो कुछ लूज सॉक्स हों वो आप इस्तेमाल कीजिए। और बहुत अहम बात वो ये कि जो जूते हैं वो आरामदेह पहनिए। कभी भी खुले पैरों वाली जूते या फिर उंगलियों के दरमियान जो सैंडल्स होते हैं वो आप इस्तेमाल ना कीजिए। इसके अलावा कभी भी नंगे पाँव ना चलिए, यहाँ तक कि घर के अंदर भी। और स्मोकिंग मत कीजिए, और क्योंकि जो स्मोकिंग है वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को कम कर देती है। और इसके अलावा आपका जो डॉक्टर है उसे आप ज़रूर दिखाइए। और कभी भी बाथरूम की सर्जरी ना कीजिए। इसका मतलब ये है कि आप बाज़ूकात अंगूठे में या कोई भी ऐसी चीज़ है, अगर आप देखते हैं कि कोई मुश्किल आ रही है तो आप उसकी खुद से ही उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। क्योंकि डायबिटीज़ के शिकार अफराद को ख़तरे के जो अवामिल हैं जिसके हमने ज़िक्र किया, उनकी तरफ जाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अपना जो ब्लड शुगर है उसे कंट्रोल रखिए। तो बहुत सारे मसाइल, ख़ास तौर पर जैसे आज हमने पाँव की बात की, उससे हम बच सकेंगे। हेल्थ फॉर ऑल,
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटेजी, हेल्थ फॉर ऑल, FM 107, दिल से देसी।
3: Number one hits music station. Anytime, anywhere.
0: Yes, anytime, anywhere.
3: Kabhi bhi aur kahi bhi aap sun sakte hain FM 107.
4: FM 107.
3: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम टू अनदर टेक अपडेट। देखिए भाई, टेक की दुनिया ऐसी है कि मुझे भी इसके साथ साइड में दौड़ना पड़ रहा है, लेकिन इसका अपना मजा है क्योंकि मैं आपको जो प्रोडक्टिविटी के टूल्स या फिर कोई काम की चीज या कोई ऐसी टाइम पास करने की कोई चीज बताता हूं तो मुझे खुद को भी बहुत फायदा होता है और अच्छा लगता है। सो आज भी टेक अपडेट में तीन बहुत जरूरी वेबसाइट्स और उसके बाद जरा खबरों की तरफ बढ़ेंगे। सो नंबर वन ऑन द लिस्ट, सबसे पहले आपको टाइप करना है आप वेबसाइट जहां आप टाइप करते हैं एड्रेस बार में studio.polotno.com। मैं आपको स्पेल आउट करके देता हूं, स्टूडियो studio.polotno.com। इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आपके सामने एक वेबसाइट जो खुलेगी वो बिल्कुल कैनवा की तरह काम करती है। बेसिकली आप सब कुछ जो मर्जी आप जाएं आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं, राइट फ्रॉम योर पोस्टर्स टू लोगोस टू प्रेजेंटेशन, कोई पोस्टर कुछ भी जो भी आप कैनवा पे करते हैं वो आप यहाँ पे बहुत ही आराम से कर सकते हैं। इट्स अ वेरी वेरी वैल्यूएबल वेबसाइट। और क्या कि इसका नाम ऐसा है ना तो आसानी से मिलती भी नहीं है, जिनको मिल गई है उन्हें पता है और जिन्हें नहीं मिली है फैला दो इसको मार्केट में, लेकिन आपके बहुत काम आएगी फॉर लुकिंग फॉर समथिंग फ्री एंड जो कि सिमिलर हो कैनवा की तरह। ओके, मूविंग ऑन टू अनदर वन। अगली है जी, इसका नाम है start.me। बहुत ही सिंपल नाम है इसका, पर इस वेबसाइट को जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने कई सारे टूल्स आ जाएंगे और ये सारे के सारे टूल्स जो हैं कैटेगराइज्ड हैं, मतलब आपको जो चाहिए उसके हिसाब से आपको टूल्स मिल जाएंगे। मान लीजिए आपको यूजर नेम जनरेटर चाहिए, आपको रैंडम फेस जनरेटर चाहिए, आपको इमेज जनरेटर चाहिए, कुछ भी चाहिए, यहाँ पे हजारों टूल्स आपके सामने होंगे एंड कैटेगरी वाइज जस्ट हैव टू चूज योर कैटेगरी एंड देन उसके हिसाब से आप सर्च कर सकते हैं एंड यू विल गेट एवरीथिंग। मैं बता रहा हूँ ये इतनी काम की वेबसाइट है कि एक बार ही आपने देख ली छुट्टी भाई सारी चीजों की, कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं अगली वेबसाइट की तरफ। इसका नाम है थर्ड वेबसाइट का verses.com, verses.com, verses.com। जब आप इसे खोलेंगे तो जैसा नाम है verses.com, इसमें आप दुनिया में ऑलमोस्ट हर दो चीजों को प्रोडक्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं। दो दोस्तों कंपेयर मत कीजिएगा, लेकिन आप चीजों को कंपेयर कर सकते हैं बहुत ही आराम से। आप प्रोडक्ट्स को कैसे भी कंपेयर कर सकते हैं, कंट्री वाइज, प्राइस

0: वाइज, क्वालिटी वाइज, एनीथिंग एंड एवरीथिंग गोज, इट इज अ ब्यूटीफुल वेबसाइट. अगर आप कुछ लेने का सोच रहे हैं कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना है आने वाले कुछ दिनों में, महीनों में, सालों में, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट टू डू इट. एंड इट्स एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली ईजी. आप फोन से लेकर एक माइक्रोवेव तक यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं. एंड आई एब्सोल्युटली लव इट. आई नो कि हर किसी की पूरी तरह से काम की वेबसाइट शायद ना हो ये, लेकिन जिनके काम की है वो जानते हैं कि ये कितने काम आ सकती है. सो प्लीज यहाँ पर जरूर जरूर जाएं. ऑलराइट, नाउ टेक की खबर की तरफ बढ़ते हैं. सो देखिए, अपडेट मैं गेमर्स को देना चाहता हूँ. दरअसल क्या है, दो बहुत ही बड़े गेम्स जो हैं वो लॉन्च हो चुके हैं, ओनिमुशा और डॉन वॉकर. अभी भी आप सोच रहे हैं कि ये जो इतने पहले रिलीज हुए हैं इनको खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, तो मैं एक बात कहूँगा, ओनिमुशा इज परफेक्ट. कैपकॉम ने फिर से करके दिखा दिया है और उसमें कोई भी डाउट नहीं है. हालांकि डॉन वॉकर आपके टेस्ट का शायद हो सकता है, शायद ना हो, पर डॉन वॉकर इज अ गेम जहाँ पर आपको थोड़ा सा पहले के इसके गेम्स खेले होने चाहिए. मतलब डॉन वॉकर को बनाने वाले जो हैं उन्होंने विच वाले गेम्स बहुत बनाए हैं, विच हंट और काफ़ी सारे गेम्स हैं. अगर आपने वो खेले हुए हैं तो ठीक है, हो सकता है कि आपको ज़्यादा समझ में ना आए, बट इफ़ यू आर इनटू कंप्लीट कॉम्बैट तो आपको ओनिमुशा लेना चाहिए. दैट्स इज माय फीडबैक. बाकी आपके ऊपर है, मैं भी एक गेमर हूँ आपकी तरह, एंड फॉर मी ओनिमुशा विंस द कॉम्पिटिशन क्लियरली. हालांकि इस महीने सबसे ज्यादा बेहतरीन गेम्स ड्रॉप होने वाले हैं, इंक्लूडिंग वुल्वरीन. तो जब वो होगा ड्रॉप तो भी उसका छोटा सा रिव्यू जल्दी वाला आपको मिल जाएगा. मैं दुहा वाला कभी एफ 107 पे जाना, आप रहे नहीं बेस्ट जगह पर आप. दिस वॉज टेक अपडेट, स्टे ट्यून्ड.
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448-88-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: Wake Up हर हफ्ते संडे टू थर्सडे सुबह 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी
1: Qatar's most heard radio station FM 107 दिल से देसी

0: उनके साथ धोखा हो जाता है, लेकिन उनके साथ जो धोखा होता है वो आपके स्टोर को, वो आपके बिजनेस को, वो आपके काम को हैम्पर करता है, वो आपके फिनांस को हैम्पर करता है। और इसीलिए स्कैमर्स ने एक नया तरीका निकाला है स्कैम करने का, विच इज कॉरपोरेट आइडेंटिटी थेफ्ट। ये स्कैम काम कैसे करता है, जरा इस पर नजर डालते हैं। कॉरपोरेट आइडेंटिटी थेफ्ट तब होता है जब क्रिमिनल्स किसी चलती फिरती रेप्यूटेड कंपनी का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, एड्रेस और क्रेडिट हिस्ट्री चुरा लेते हैं ताकि वो मार्केट में बड़ा फ्रॉड कर सके। स्कैमर्स इंटरनेट पर या गवर्नमेंट पोर्टल्स पर जाकर किसी रियल कंपनी की सारी डिटेल्स निकालते हैं, और ऑब्वियसली बात ये बड़ी लाजमी है कि आप सारी डिटेल्स इंटरनेट पर डालना चाहते भी हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपके कोई प्रोडक्ट को खरीदना चाहता हो तो उसे कैसे पता चल जाएगा अगर वो सर्च इंजन पे सर्च कर रहा है तो आप इंटरनेट पे ये सारी डिटेल्स डालते हैं। और यहां से बहुत आसान हो जाता है मैक्सिमम डिटेल लेना आपके कंपनी की किसी भी फ्रॉडस्टर्स के द्वारा। स्कैमर्स इंटरनेट पर या गवर्नमेंट पोर्टल्स से आसानी से ये सारी डिटेल्स निकाल लेते हैं। इन डिटेल्स का इस्तेमाल करके वो किसी दूसरे बैंक में उस कंपनी के नाम पर एक फेक बिजनेस अकाउंट या फेक क्रेडिट कार्ड खोल देते हैं, क्योंकि असली कंपनी का मार्केट में अच्छा नाम है और उनका क्रेडिट स्कोर बढ़िया होता है, बैंक्स और सप्लायर्स उन पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं। इसके बाद ये स्कैमर्स बड़े सप्लायर्स के पास जाते हैं और असली कंपनी का नाम यूज करके हजारों लाखों डॉलर्स या कतरी रियाल या रुपीस का स्कैम कर देते हैं या क्रेडिट में सामान ले लेते हैं और ऑर्डर कर देते हैं। वो बिलिंग एड्रेस तो असली कंपनी का डालते हैं लेकिन शिपिंग एड्रेस जहां सामान डिलीवर होना है वो किसी खुफिया वेयर हाउस का दे देते हैं, जिससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। सप्लायर्स को लगता है कि उन्होंने एक ट्रस्टवर्दी ब्रांड को सामान बेचा है। जब सामान डिलीवर हो जाता है स्कैमर्स उसे ब्लैक मार्केट में बेचकर गायब हो जाता है। हफ्तों बाद जब सप्लायर्स का पेमेंट का टाइम आता है तो वो असली कंपनी से कॉन्टेक्ट करेगा ऑब्वियसली, तब दोनों पार्टी हैरान हो जाती है। तब पता चलता है, क्योंकि ये स्कैम ऐसा स्कैम है थोड़ी लेट पता चलता है, इसलिए तब तक स्कैम आपके साथ हो चुका होता है, असली कंपनी का नाम खराब होता है और इससे उन पर लीगल केस भी चलता है फिर। लेकिन इस तरह के स्कैम से बचने का एक तरीका है, एक नहीं कई तरीके हैं, उन तरीके पर जरा बात कर लेते हैं। सबसे पहला तरीका है रेगुलर क्रेडिट मॉनिटरिंग। अपनी कंपनी की क्रेडिट प्रोफाइल को हर महीने चेक करें, रिपोर्ट्स को मॉनिटर करते रहें ताकि अगर कोई आपके नाम पर नया लोन या क्रेडिट कार्ड अप्लाई भी करे तो आपको फौरन पता चल जाए। कई बार हम इतने ज्यादा काम में बिजी हो जाते हैं कि इन डिटेल्स पर फोकस ही नहीं करते। सिबिल स्कोर को चेक करना, रिपोर्ट्स को मॉनिटर करना, अपने बैंक अकाउंट में जाकर पता करना, अब तो आपके पास डिजिटल दुनिया है। जब स्कैमर्स इस डिजिटल दुनिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जरूरी है कॉरपोरेट भी इस डिजिटल दुनिया का इस्तेमाल करें और रेगुलर इंटरवल पर चेक भी करते रहे। किसी भी तरह के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड अगर किसी ने अप्लाई किया है तो आपको पता चलता रहेगा। उसके अलावा अलर्ट और ऑनलाइन ऑडिटिंग भी, गूगल अलर्ट और ऑनलाइन ऑडिटिंग हमेशा ऑन रखें। अपनी कंपनी के नाम पे गूगल अलर्ट सेट करें। अगर इंटरनेट पर आपके बिजनेस नेम से जुड़ी कोई भी नई एक्टिविटी या नया एड्रेस रजिस्टर्ड होता है तो आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वेंडर और सप्लायर का वेरिफिकेशन। अगर आप एक सप्लायर हैं तो किसी भी नए कॉरपोरेट ऑर्डर को एक्सेप्ट करने से पहले उनके रजिस्टर्ड ऑफिस के ऑफलाइन लैंडलाइन नंबर पर कॉल करें। सिर्फ ईमेल पर आए ऑर्डर पर आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल न करें। उसके अलावा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सीक्रेसी। अपने कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स, जीएसटी है, टैक्स है, दुनिया के अलग अलग टैक्स होते हैं, बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, बोर्ड रेजोल्यूशन को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ओपनली शेयर ना करें। उसके अलावा एक आखिरी तरीका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सीक्रेसी। जो चौथा तरीका है वो अपने कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स है, जो डिटेल्स है टैक्स की, बोर्ड रेजोल्यूशन को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ओपनली शेयर ना करें। इन्हें सिर्फ वेरीफाइड पोर्टल्स और वेरीफाइड पार्टनर्स के साथ ही शेयर करें, क्योंकि जैसे जैसे आपका फुटप्रिंट, आपकी कंपनी का फुटप्रिंट बढ़ता है इंटरनेट में, आपकी कंपनी बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो जाती है टारगेट करने के लिए और आपकी कंपनी से या आपकी कंपनी के साथ उनके एम्प्लॉयज के साथ स्कैम हो सकता है। तो दोस्तों, ये था कॉरपोरेट थेफ्ट का एक नए जमाने का नया स्कैम। फिलहाल मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी कल एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में बात करते हुए। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट, कतर्स मोस्ट हर्ड रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स हाइलाइट्स में आप सभी का इस्तकबाल है। आप सुन रहे हैं FM 107 और आज के इस स्पोर्ट्स सेगमेंट स्पोर्ट्स हाइलाइट में एक ग्रेटेस्ट एथलीट्स ऑफ ऑल टाइम उनके बारे में मैं बात करूंगा। उनका नाम 1980s में काफ़ी लोगों ने उनको फॉलो किया, सुना है, देखा है एंड ट्रैक एंड फील्ड का वो सुनहरा सितारा जिन्होंने 80 और 90 की दिहाई में स्टेडियम को जश्न का मैदान बना देता था, कार्ल लुईस। मैं आपको बताता हूं कि व्हाई कार्ल लुईस वाज सच अ मार्वेलस एथलीट। ही वाज अ लेजेंड, ही वाज अ पायनियर इन अमेरिकन एथलेटिक्स में। दुनिया के एथलेटिक्स के बारे में बात करूं, ओलंपिक रेसेस की, वर्ल्ड चैंपियनशिप के बारे में बात करूं, तो कार्ल लुईस वाज जेन्युइनली वाज अ

चेयरमैन लेजेंड। लेकिन दोस्तों कार्ल लुईस की कहानी सिर्फ उन मेडल्स तक महदूद नहीं जो उन्होंने ओलंपिक पोडियम पर हासिल किए। मैं हमेशा ये कहता हूँ इट्स जस्ट नॉट अबाउट द मेडल्स दैट एथलीट्स हैव वन, क्योंकि मैं हमेशा समझता हूँ मैं ये जैसे कि आप मेडल जीतते हैं तो लोग जानते हैं, लेकिन मेडल्स के पीछे कहानी क्या है, मेडल्स के पीछे मेहनत, हाउ मच वॉज दैट हार्ड वर्क, ये हम बताते हैं, आई मीन बहुत कम लोगों को बताना मतलब बता पाते हैं, लोग कम लोग जो है एक्सेप्ट करते हैं, लोग कहते हैं कि भाई आप उनके परफॉर्मेंस के बारे में बताओ, क्या क्या मेडल्स, क्या सेंचुरीज, क्या विकेट्स, लेकिन वो जो मेहनत है उसके पीछे जो स्ट्रगल रहा, वो स्ट्रगलिंग स्टोरी नोबडी वांट्स टू लिसन, लेकिन ये सुनना भी जरूरी है बिकॉज दैट गिव्स अस द मोटिवेशन, दैट गिव्स अस द एनकरेजमेंट फॉर द न्यू जनरेशन, और छोटे बच्चों के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है, उन पेरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इन तरह के स्पोर्ट्स स्टार्स को अगर आप लोग तो पढ़ते हैं और उनको देखते हैं, उनके परफॉर्मेंस पर अगर नजर डालते हैं तो पता चलता है कि हाँ हाउ मच स्ट्रगल हार्ड वर्क उनके पेरेंट्स ने किया। उनकी असल खासियत ये थी कि वो प्रेशर के वक्त भी अपने आप को कंट्रोल में रखना जानते थे। दैट वॉज कार्ल लुईस। 1984 से 1996 तक का ओलंपिक सफर देखें तो कार्ल लुईस ने हर ओलंपिक गेम्स में कम से कम एक गोल्ड मेडल जीता। ये कंसिस्टेंसी की बात है और ये कंसिस्टेंसी अपने आप में एक रिकॉर्ड है दोस्तों। अटलांटा 1996 ओलंपिक्स में जब वो 35 साल के थे तब भी उन्होंने लॉन्ग जंप में गोल्ड मेडल जीतकर सबको हैरान कर दिया। थोड़ा सोचिए एथलेटिक्स जैसे स्पोर्ट में जहां मिलीसेकंड्स और सेंटीमीटर्स फैसला करते हैं, वहां एक एथलीट का इतने अरसे तक दुनिया के टॉप लेवल पर रहना कितना मुश्किल होता होगा, जरा तसव्वुर करें आप इस चीज को, समझ में आ जाएगा। कार्ल लुईस 1996 यानी 1996 में जब कार्ल लुईस ने लॉन्ग जंप का फाइनल जीता तो वो ओलंपिक हिस्ट्री में सिर्फ एक और मेडल ऐड नहीं कर रहे थे, वो अपने करियर के एक ऐसे चैप्टर को मुकम्मल कर रहे थे जहां उन्होंने 4 कंसेक्यूटिव ओलंपिक्स में इसी इवेंट का गोल्ड मेडल जीता, इसी इवेंट का। 1984 का लॉस एंजलिस, 1988 का सोल, 1992 बार्सिलोना और 1996 अटलांटा। 4 ओलंपिक्स, 4 गोल्ड मेडल्स, एक ही इवेंट, और ये अचीवमेंट एथलेटिक्स की तारीख के सबसे मुश्किल रिकॉर्ड्स में से एक समझी जाती है अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स। और अगर आप कार्ल लुईस को सिर्फ एक स्प्रिंटर समझते हैं तो जरा रुक जाइए, उनका लॉन्ग जंप करियर भी उतना ही जबरदस्त था। 1991 में टोक्यो वर्ल्ड चैंपियनशिप के दौरान उन्होंने 8.91 मीटर का जंप रिकॉर्ड किया था, लेकिन हवा के रफ्तार परमिसेबल लिमिट से ज्यादा होने की वजह ये जंप ऑफिशियल वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बन सका। और इसी कॉम्पिटिशन में माइक पावल ने 8.95 मीटर का जंप लगाकर बॉब बीमन का 23 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। लुईस ने भी सी फाइनल में 8.87 मीटर जंप किया था। और यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है, लुईस ने उस दिन 8.80 मीटर से ज्यादा के 4 जंप्स किए, यानी एक ही कंपटीशन में उनकी कंसिस्टेंसी भी लाजवाब थी और उनका लेवल भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी। कार्ल लुईस की पर्सनैलिटी का एक और पहलू था उनका यकीन, वो अपनी एबिलिटी पर भरोसा करते थे और बड़े मोमेंट्स में प्रेशर को अपने फेवर में इस्तेमाल करते थे। इसीलिए जब एथलेटिक्स की दुनिया में स्पीड, पावर और एलिगेंस की बात होती है, कार्ल लुईस का नाम लाजमी तौर पर सामने आता है। उन्होंने एक पूरी जनरेशन को ये सिखाया कि चैंपियन होना सिर्फ जीतने का नाम नहीं, चैंपियन वो होता है जो सालों तक अपने स्टैंडर्ड को बरकरार रखे, हार के बाद वापस आए और जब दुनिया उसे देख रही हो तो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने का हौसला रखे। कार्ल लुईस ने ट्रैक पर मेडल जीते, रिकॉर्ड्स बनाए और हिस्ट्री लिखी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने एथलेटिक्स को एक नए अंदाज में दुनिया के सामने पेश किया। इसीलिए कार्ल लुईस सिर्फ एक ओलंपिक चैंपियन नहीं बल्कि एथलेटिक्स की

0: 107 पर हर गाना हिट,
1: हर गाना हिट,
0: हर दूसरा गाना सुपर हिट।
2: Gen Z की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है FOMO, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो फोमो एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 आरजे फजील के साथ, रहिए अपडेटेड हर ट्यूसडे रात 9 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर। दिल से देसी।
3: दोस्तों, हमारी ट्रैफिक सेफ्टी तभी बेहतर हो सकती है जब हम सब कानून का एहतराम करें। ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल 43 के मुताबिक अगर कोई व्हीकल ट्रेलर या सेमी ट्रेलर टो कर रही है तो उसे लेफ्ट लेन यूज करने की इजाजत नहीं होती। लेफ्ट लेन फास्ट मूवमेंट्स और ओवरटेकिंग के लिए होता है। जब कोई हैवी व्हीकल या टोइंग व्हीकल लेफ्ट लेन में आ जाती है तो ट्रैफिक स्लो हो जाता है, एक्सीडेंट का रिस्क बढ़ जाता है और इमरजेंसी व्हीकल्स को भी रास्ता नहीं मिलता। इसलिए कानून ये कहता है कि ट्रेलर टो करते वक्त हमेशा राइट हैंड साइड पर रहें, किसी भी व्हीकल को ओवरटेक ना करें, अपनी स्पीड और डिस्टेंस का ख्याल रखें, और याद रखें कि ये सिर्फ कानून ही नहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। वजारत दाखिला का कहना है कि अगर हम सब मिलकर लेन डिसिप्लिन मेंटेन करें तो हम अपनी और दूसरों की सेफ्टी को यकीनी बना सकते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
4: आप सुन रहे हैं FM 107,
1: FM 107,
0: दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं कल्चर मोमेंट। मैं हूं आपकी आरजे महावश। इस 5 मिनट के सफर में हम बात करेंगे कतर की खूबसूरत सकाफत, रिवायत और विरसे की। यहाँ हर रसम, हर लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है। आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस विरसे को अगली नस्लों तक पहुँचाने का अहद करें। कतरी मर्दों का रिवायती लिबास सकाफत, वकार और सादगी का खूबसूरत इजहार है। ये लिबास सिर्फ पहनने का नाम नहीं बल्कि मौसम, माशरती अदब और अपनी पहचान से भी जुड़ा हुआ है। कतर की मर्दों का सबसे मशहूर रिवायती लिबास थोप है। ये एक लंबा और ढीला लिबास होता है जो आमतौर पर सफेद रंग में देखा जाता है। सफेद रंग की पसंद गर्मी के मौसम में भी मुनासिब समझी जाती है क्योंकि ये रोशनी को मुनक्कस करता है और लिबास को सादा और पुरकशिश बनाता है। थोप की खूबसूरती उसकी सादगी में है। उसका अंदाज साफ सुथरा, पुरवकार और आरामदेह होता है। रोजमर्रा जिंदगी, दोस्तों से मुलाकात और खास तकरीबात के लिए लोग अपनी जरूरियात और पसंद के मुताबिक मुख्तलिफ अंदाज इख्तियार कर सकते हैं। अच्छे लिबास के साथ सफाई और सलीका भी बहुत अहम होता है। कतरी मर्द अक्सर थोप के साथ सर ढांपने का रिवायती लिबास भी पहनते हैं। उसे आम जमान में गुतरा कहा जाता है। गुतरा सर को धूप और गर्द से बचाने में मदद देता है और लिबास के हुसन में भी इजाफा करता है। गुतरा पहनने के मुख्तलिफ अंदाज हो सकते हैं। कुछ अफराद उसे सादा तरतीब में रखते हैं जबकि खास मौके पर उसे ज्यादा मुनज्जम अंदाज में पहना जाता है। इसके साथ अकाल इस्तेमाल की जाती है जो कुतरे को जगह पर कायम रखने में मदद देती है। अकाल एक सिया या गहरे रंग का गोल बंद होता है। इसकी सादा शक्ल के बावजूद ये कतरी मर्दों के रिवायती लिबास का जरूरी हिस्सा समझा जाता है। कुतरा और अकाल मिलकर लिबास को मुकम्मल करते हैं और इसमें नजाकत

मुकाबले के दरवाजे खुल चुके हैं, पॉइंट्स की दौड़ का आगाज हो चुका है, मुकाबले फिर सजेंगे और हर राउंड लेकर

0: आएगा एक नई कहानी, जतूर लीग सिर्फ और सिर्फ अलकास चैनल और शूफ प्लेटफॉर्म पर।
1: हर इंसान के पीछे एक कहानी है, एक जज्बा है, एक ख्वाब है, जहां उसके साथ सिर्फ जॉब टाइटल ही नहीं बल्कि जिंदगी के रंगों का सफर है। एक प्रोग्राम जहां आप जानेंगे वो बातें जो दिल को छू जाएंगी, जहां कामयाबी का मतलब सिर्फ आपकी कुर्सी या ओहदा ही नहीं बल्कि असर है जो आप दुनिया पे छोड़ते हैं। एक नई रूहानी मुलाकात, एक नया जज्बा, एक नई सोच के साथ सुनिए प्रोग्राम बियॉन्ड द जॉब टाइटल हर संडे रात 8 बजे से आरजे सरवर मिर्जा के साथ, ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बियॉन्ड द जॉब टाइटल, भाई जहां हम बात करते हैं जिंदगी के उन पहलुओं पर जो अक्सर हमारी नजर से छुप जाती है। भाई मैं हूं आपका दोस्त सरवर मिर्जा और आज का हमारा टॉपिक है द हिडन रोल्स वी प्ले एट वर्क। हर रोज दोस्तों जब हम अपनी नौकरी पर जाते हैं, हम सिर्फ अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन ही नहीं लेकर जाते, हम मेंटर भी होते हैं। भाई किसी ना किसी के तो मेंटर होते ही हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर भी होते हैं, इनोवेटर भी होते हैं और कभी कभी कल्चर बिल्डर भी बन जाते हैं। ये वो रोल्स हैं जो किसी आईडी कार्ड पर लिखे नहीं होते लेकिन हमारी असली पहचान बना देते हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे तीन अहम टॉपिक्स पर, और वो क्या हैं? हु आर वी बियॉन्ड वर्क, पर्पस एंड ग्रोथ, और आखिर में चलते चलते हम बात ऐसी कुछ करेंगे जो बातें हमें सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो तैयार हो जाइए एक मीनिंगफुल बातचीत के लिए। आइए दोस्तों अब इस एक बात पे बढ़ते हैं कि हु आर वी बियॉन्ड वर्क। अक्सर हम अपनी पहचान को अपनी नौकरी के साथ जोड़ देते हैं। भाई जैसे ही कोई पूछता है आप कौन हैं, हम फौरन ही जवाब देते हैं मैं इंजीनियर हूं, मैं टीचर हूं, मैं जर्नलिस्ट हूं। लेकिन क्या हम सिर्फ वही हैं जो हमारी जॉब का नाम है या हमें जो जॉब दी गई है? समझकर सेल्फ वर्थ को जॉब टाइटल्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं हम, यूजुअली ऐसा ही होता है। लेकिन अगर आपकी नौकरी अच्छी है तो आप सक्सेसफुल हैं, अगर नहीं तो आपको लगता है कि आप कमजोर हैं या दुनिया को ऐसा लगता है कि आप कमजोर हैं। ये मिसकंसेप्शन तोड़ना जरूरी है। आप अपनी फैमिली में कितनी वैल्यू क्रिएट करते हैं, अपनी कम्युनिटी में कितना फर्क लाते हैं, ये सब चीजें आपकी असली पहचान है। भाई छोटी छोटी एक्शंस जैसे कि मदद करना, मुस्कुरा देना किसी को देखकर, या अपने बच्चों को वक्त देना, अपनी फैमिली को वक्त देना, अपने दोस्तों को वक्त देना, ये सब आपकी वर्थ को डिफाइन करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मीनिंगफुल जिंदगी जीने के लिए आपको एक डिफाइंड टाइटल की जरूरत नहीं है। आप अपनी स्किल्स और जज्बात से दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। आप क्या सोचते हैं, अगर कल आपकी जॉब टाइटल खत्म हो जाए तो आप अपनी पहचान खो देंगे या किसी चीज से डिफाइन करेंगे? सोचिए और हमें अपने थॉट्स भेजिए। भाई सोच समझ के फैसले कीजिए, सोच समझ के अपने आप को प्रेजेंट कीजिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या हूं। क्या मैं वही हूं जो रोज सुबह ऑफिस जाता है और ऑफिस से वापस आता है और बस खत्म? नहीं, आप वो हैं दुनिया के लिए जो लोग देखते हैं। जिस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, आपकी शख्सियत वही है दरअसल में। दोस्तों लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप बियॉन्ड द जॉब टाइटल सरवर मिर्जा के साथ। कहीं भी मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिएगा और जानेंगे कि कैसे हम अपने टाइटल से बाहर निकलकर दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हैं।

0: हर इंसान के पीछे एक कहानी है, एक जज्बा है, एक ख्वाब है, जहां उसके साथ सिर्फ जॉब टाइटल ही नहीं बल्कि जिंदगी के रंगों का सफर है। एक प्रोग्राम जहां आप जानेंगे वो बातें जो दिल को छू जाएंगी, जहां कामयाबी का मतलब सिर्फ आपकी कुर्सी या ओहदा ही नहीं बल्कि असर है जो आप दुनिया पे छोड़ते हैं। एक नई रूहानी मुलाकात, एक नया जज्बा, एक नई सोच के साथ।
1: वेलकम बैक, अहलन व सहलन, खुश आमदीद दोस्तों। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप बियॉन्ड द जॉब टाइटल, जहां बात हो रही है आपके जॉब टाइटल से हटके। भाई आप जो हैं वही नजर आना जरूरी नहीं, आपकी जो शख्सियत है वो दुनिया भर में छलकनी चाहिए, चमकनी चाहिए, दिखनी चाहिए। तो आइए इसके ऊपर मजीद बात करते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि ग्रोथ और पर्पस क्या है या किस तरह होती है, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। तो हम सबके अंदर स्किल्स, टैलेंट्स और पैशन छुपे होते हैं जो अक्सर हमारी नौकरी से अलग होते हैं। भाई सवाल ये है, क्या हम उन्हें एक्सप्लोर करते हैं? सक्सेस को अक्सर पैशन और पोजीशन से मेजर किया जाता है, लेकिन असली सक्सेस क्या है? अपने अंदर कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीव डेवलप करना, यही मेन सक्सेस है। जब आप अपने आप को दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हैं और वो आपसे खुश हो जाते हैं और आपकी शख्सियत से मुतासर होते हैं, भाई यही तो असली चीज है जो हम चाहते भी हैं, तो फिर हम अपने जॉब टाइटल को ही सामने रखकर आगे क्यों बढ़ते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। भाई अपने अंदर कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीव डेवलप करें, अपने जज्बात को समझें और अपनी जिंदगी को बैलेंस करना सीखिए, यही है असली कामयाबी। आज के दौर में प्रेशर, कंपैरिजन और अनसर्टेनिटी हर जगह है। सोशल मीडिया पर दूसरों की अचीवमेंट्स देखकर हम अपने आप को कम समझने लगते हैं, लेकिन रेजिलियंस और सेल्फ अवेयरनेस से हम इस चैलेंज को टैकल कर सकते हैं। भाई हर वक्त दूसरों को देखकर ही अपने आप को मेजर नहीं करना चाहिए, हमें ये सोचने की

जरूरत है कि क्या कोई मुझे भी देखकर आगे बढ़ रहा है, और अगर हाँ जो कि वाकई हकीकत है, आपके बच्चे, आपकी फैमिली, आपके घर वाले, यहाँ तक कि कभी कभार आपके वालदैन भी आपसे सीखते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं क्या हूँ, मैं दूसरों को देखकर आगे बढ़ूंगा या मुझे जो देखकर आगे बढ़ने वाले हैं मैं उनका ख्याल करूंगा। इस बात का ख्याल रखना, इस बात पे काम करना आपको दरअसल एक बहुत अच्छी शख्सियत बना देता है, एक बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग बना देता है। इस बात का ख्याल करना बेहद ज्यादा जरूरी है और सबसे पहले जरूरी है। आप अपने जज्बात को लिख कर देखिए भाई, अपनी स्किल्स को एक्सप्लोर कीजिए और अपने लिए रियलिस्टिक गोल्स सेट कीजिए। ये छोटे स्टेप्स आपको एक पर्पसफुल जिंदगी की तरफ ले जाते हैं। और वो क्या है कि आपके चैलेंजेस आप देखने लगते हैं, वो क्लियर हो जाते हैं, उनको आप स्टेप बाय स्टेप हैंडल करने लगते हैं। यही जिंदगी है, यही इंपॉर्टेंट है। इस बात का जज्बा अपने दिल में हमेशा रखना हमें बहुत ही ज्यादा बेहतर शख्सियत बनाता है। आपके हिसाब से सक्सेस का मतलब क्या है, ये हमें हमेशा सोचना है। क्या वो पैसा है, क्या वो पोजीशन है, या फिर पीस ऑफ माइंड है, ज़हनी सुकून है? अपने जवाब हमें खुद सोचने हैं, खुद लिखने हैं और अपनी कहानी को इसी खूबसूरती से लिखते हुए दूसरों के लिए बेहतर जहां बनाना है और अपने आप को भी आगे बढ़ाना है। दोस्तों लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप बियॉन्ड द जॉब टाइटल सरवर मिर्जा के साथ। कहीं भी मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिएगा और जानेंगे कि कैसे हम अपने टाइटल से बाहर निकलकर दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हैं।

0: हर इंसान के पीछे एक कहानी है, एक जज्बा है, एक ख्वाब है, जहां उसके साथ सिर्फ जॉब टाइटल ही नहीं बल्कि जिंदगी के रंगों का सफर है। एक प्रोग्राम जहां आप जानेंगे वो बातें जो दिल को छू जाएंगी, जहां कामयाबी का मतलब सिर्फ आपकी कुर्सी या ओहदा ही नहीं बल्कि असर है जो आप दुनिया पे छोड़ते हैं। एक नई रूहानी मुलाकात, एक नया जज्बा, एक नई सोच के साथ।
1: वेलकम बैक, अहलन व सहलन, खुश आमदीद दोस्तों। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप बियॉन्ड द जॉब टाइटल, जहां बात हो रही है आपके जॉब टाइटल से हटके। भाई आप जो हैं वही नजर आना जरूरी नहीं, आपकी जो शख्सियत है वो दुनिया भर में छलकनी चाहिए, चमकनी चाहिए, दिखनी चाहिए। तो आइए इसके ऊपर मजीद बात करते हैं। आइए अब जानते हैं कुछ हिडन रोल्स जो हम अपने जगहों पे, अपने काम में प्ले करते हैं। आज के टॉपिक पर वापस आते हैं, द हिडन रोल्स वी प्ले एट वर्क। दोस्तों जब आप अपनी ऑफिस डेस्क पर बैठे होते हैं, आप सिर्फ अपनी जॉब ही नहीं कर रहे होते हैं, आप मेंटर होते हैं। जब आप किसी जूनियर को गाइड कर रहे होते हैं तो वो आपको अपना मेंटर बना लेता है। आप प्रॉब्लम सॉल्वर भी होते हैं जब कोई अर्जेंट इशू आपके पास आता है। आप इनोवेटर भी होते हैं जब आप नए आइडियाज प्रपोज करते हैं। और यूजुअली ये हम सबकी डेली लाइफ के हिस्से हैं जिन पे हम आज के जमाने की भागा दौड़ी पे नजर ही नहीं डालते हैं। दरअसल हकीकत और जिंदगी जीने का सबक हमें वहीं से मिलता है। और आप कल्चर बिल्डर होते हैं जब आप अपने कलीग्स के साथ पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। भाई कलीग्स के साथ हम एक जिंदगी गुजारते हैं, हमारा ऑफिस, हमारे कलीग्स हमारी सेकंड फैमिली होती है। जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट यहाँ दूसरे मुल्क में अपना सेकंड होम बनाते हैं, भाई इसी तरीके से तो ऑफिस भी हमारी सेकंड फैमिली ही हुई ना। तो हम इस बात को सोचें और जहन में रखें तो यकीन जानिए आप अपने काम की जगह का माहौल भी बेहद खूबसूरत बना सकते हैं। कोई भी बात है आई गई करना हमारी शख्सियत को दिखाता है। अगर हम छोटी सी बात पे रिएक्ट करना शुरू करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, वहीं हम दूसरों के लिए भी कहीं ना कहीं उस राह को रोकने लगते हैं। ये रोल्स किसी आईडी कार्ड पर लिखे नहीं होते, लेकिन ये ही आपकी असली कॉन्ट्रीब्यूशन है। इन रोल्स को समझना और अप्रिशिएट करना जरूरी है, क्योंकि यही आपको एक बेटर प्रोफेशनल और बेटर इंसान बनाने का रास्ता हमवार करते हैं। आप अपने काम पर कौन से हिडन रोल्स प्ले करते हैं, मेंटर, इनोवेटर या कल्चर बिल्डर, आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर बता सकते हैं 666-22-107। तो दोस्तों एक बात क्लियर है, हमारी पहचान सिर्फ हमारी नौकरी ही नहीं, हमारी वर्थ, हमारे जज्बात, हमारे एक्शंस और रिलेशनशिप से डिफाइन होती है। भाई किसी भी रिलेशन में एहतियात रखना, इज्जत करना और बदल करना बेहद जरूरी है, हाँ हमारी इस्तेदात को मद्देनजर रखते हुए। और यही चीज हमें दूसरे के सबब भी जाननी चाहिए। क्या आपके कलीग्स जो आपके साथ बदल कर रहे हैं, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, उनकी इस्तेदात क्या है? और इस्तेदात से मतलब यहाँ सिर्फ फाइनेंशियली ही मेरा इशारा नहीं है, उनकी इस्तेदात

मतलब उनका मिजाज कैसा है, उनका रहन सहन कैसा है, उनका बात करने का तरीका कैसा है, इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमें ऑफिस का एनवायरमेंट बेहतर भी बनाना चाहिए और इसका ख्याल भी बेइंतहा रखना चाहिए। फिर देखिए किस तरीके से आपके काम में भी आसानी होगी और हम इंशाल्लाह ताला एक साथ आगे बढ़ सकेंगे। एक बात हमेशा याद रखिए, इस बात पे हमेशा गौर कीजिए कि मैं अपनी जिंदगी को किस तरह मीनिंगफुल बना रहा हूँ। आप जितने भी रोल्स प्ले करते हैं घर पर, ऑफिस में, सोसाइटी में, सब ही बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, अपनी वैल्यू समझिए और अपनी ग्रोथ पर फोकस कीजिए। और हाँ, याद रखिए, आपकी ह्यूमन वर्थ किसी टाइटल से कम नहीं है, आपकी इंसानियत से कम नहीं है, इस बात को हमेशा याद रखिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम बियॉन्ड द जॉब टाइटल आपको पसंद आया होगा और आज का ये टॉपिक द हिडन रोल्स वी प्ले एट वर्क आपको समझने में आसानी हुई होगी। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। इसी के साथ प्रोग्राम साउंड डिजाइनर शकीब अहमद जी और सरवर मिर्जा को अगली मुलाकात तक के लिए इजाजत दीजिए। सुनते और देखते रहिए FM 107, दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: दोस्तों, फायरवर्क्स या फायर क्रैकर्स को लाइसेंस के बगैर यूज करना या अपनी कस्टडी में रखना कानूनन मना है, और ये एक जुर्म है जो आर्टिकल नंबर 18 ऑफ लॉ नंबर 7 ऑफ 2020 ऑन फायरवर्क्स के तहत पनिशेबल है। इस कानून के मुताबिक अगर कोई शख्स फायरवर्क्स को बिना इजाजत इस्तेमाल करता है तो उस पर जुर्माना हत्ता के जेल तक की सजा लग सकती है। आपकी अवेयरनेस और कानून की अंडरस्टैंडिंग सिर्फ आपकी नहीं बल्कि आसपास के लोगों की सेफ्टी के लिए भी बेहद अहम है। फायरवर्क्स जाहिरी तौर पर फन लगते हैं, लेकिन बिना कंट्रोल के वो पब्लिक सेफ्टी रिस्क भी बन सकते हैं, इसलिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से प्रॉपर लाइसेंस लेना लाजमी है। वजारत दाखिला का कहना है कि कानून का एहतराम करना हम सब की जिम्मेदारी है ताकि हम अपनी कम्युनिटी को सेफ और रिस्पॉन्सिबल बना सकें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
4: आप सुन रहे हैं FM 107।

0: मगर याद रखें इफ्तार से पहले हद से ज्यादा रफ्तार ट्रैफिक हादसात की अहम वजूहात में से एक है सिर्फ कुछ मिनट बचाने के लिए अपनी जिंदगी और दूसरों की जिंदगी को खतरे में मत डालिए तेज रफ्तार में एकदम से ब्रेक लगाने पड़ते हैं गाड़ी पर कंट्रोल कम होता है और एक छोटी सी गलती बड़ी ट्रेजेडी बन सकती है इसलिए हमेशा इफ्तार से पहले रफ्तार आहिस्ता रखें सेफ डिस्टेंस बरकरार रखें सिग्नल और लेन डिसिप्लिन की पाबंदी करें मोबाइल फोन इस्तेमाल ना करें और अगर आपको थकान महसूस हो रही है तो कहीं साइड पर प्रॉपर पार्किंग में गाड़ी लगाकर थोड़ी देर आराम कर लीजिए इफ्तार के वक्त आपको घर पहुंचना है मगर महफूज पहुंचना सबसे ज्यादा जरूरी है तो होशियार रहें एहतियात करें अपनी और दूसरों की जिंदगी बचाएं रफ्तार कम रखें सिग्नल फॉलो करें सेफ डिस्टेंस बरकरार रखें सिर्फ कुछ मिनट बचाने के लिए अपनी और दूसरों की जिंदगी को खतरे में मत डालिए वजारत दाखिला का कहना है कि आपकी हिफाजत हमारे लिए अहम है FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

श्योर मैं ये कह सकता हूँ। इस स्पोर्ट्स हाईलाइट में आज हम बात करेंगे इंडिया क्रिकेट के, इंडियन क्रिकेट के एक ऐसे लेजेंड की जिन्होंने स्पिन बॉलिंग को एक आर्ट नहीं बल्कि एक खूबसूरत फन बना दिया था। नाम है बिशन सिंह बेदी। जी हाँ, बिशन सिंह बेदी मार्वलस लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर एंड आज के डेट में क्या ही बताएं, एक ऐसा बॉलर जिनकी बॉलिंग में रफ्तार से ज्यादा रिदम थी, एग्रेशन से ज्यादा कंट्रोल था और हर डिलीवरी में एक कहानी होती थी एंड बड़ा कलरफुल कैरेक्टर ही वाज। 1940 में भारत के पंजाब सूबे के अमृतसर शहर में पैदा हुए बेदी नए आजाद भारत में पले बड़े। ठीक है, बेदी ने अपनी जो यंग जनरेशन की जो क्रिकेट है, उस जमाने की जो क्रिकेट है, वहां पर सब लोग क्रिकेट खेलते थे लेकिन बेदी साहब क्रिकेट नहीं पसंद करते थे। उनके लिए क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं था बल्कि एक दावत, एक एहसास, एक जिंदगी थी। ये बाद में जाके उनको थोड़ा सा एहसास हुआ कि क्रिकेट वॉज अ गेम जो कि उन्हें खेलना चाहिए, क्योंकि उस जमाने में हॉकी वॉज वेरी पॉपुलर, हॉकी वॉज जबरदस्त, यू नो, इंडिया वॉज ओलंपिक चैंपियंस इन दोज एरा। और बेदी साहब ने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू नॉर्दर्न पंजाब के लिए सिर्फ 15 साल की उम्र में जनवरी 1962 में किया और अपने तीसरे मैच में उसी साल दिसंबर में दिल्ली के खिलाफ 32 रन देकर 7 विकेट लिए और पूरे मैच में 11 विकेट हासिल किए। यह सिर्फ एक नौजवान क्रिकेटर की परफॉर्मेंस नहीं थी, ये एक ऐसे टैलेंट की पहली झलक थी जो आने वाले सालों में इंडियन क्रिकेट का नाम रोशन करने वाला था। 1966 के आखिर में जब वो पंजाबी यूनिवर्सिटी में लॉ पढ़ रहे थे, बेदी को पहली बार इंडियन यूनिवर्सिटीज टीम में वेस्ट इंडीज के खिलाफ सेलेक्ट कर लिया गया। सिर्फ 2 हफ्तों बाद वो प्राइम मिनिस्टर्स 11 स्क्वाड का हिस्सा भी बन गए और उस मैच में बेदी ने पहले इनिंग्स में 139 रन देकर 6 विकेट हासिल की और इस शानदार परफॉर्मेंस के बाद उन्हें कलकत्ता के ईडन गार्डन्स में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच के स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। That was how Bishan Singh Bedi made his entry into the Indian Test cricket squad. The rest, sab log kehte hai na, was history. Bishan Singh Bedi ne November 1966 mein West Indies ke khilaf apna test debut kiya aur agle chand saalon mein wo Indian bowling attack ka ek ahem hissa ban gaye. Aur jab unka bowling action dekhne mein itna smooth aur natural tha ki lagta tha jaise wo gend ko hawa mein tairne de rahe the. लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन उनकी पहचान थी लेकिन उनकी असल ताकत थी फ्लाइट, ड्रिफ्ट, एक्यूरेसी और पेशेंस, यानी सबर। बेदी बैट्समैन को सिर्फ आउट करने की कोशिश नहीं करते थे, वो बैट्समैन को सोचने पर मजबूर करते थे। कभी गेंद को हवा में जरा सा रोकना, कभी ड्रिफ्ट करवाना, कभी फिर पिच पर लैंडिंग के बाद टर्न हासिल करना, यह उनकी बॉलिंग का कमाल था। 1970 की दहाई में इंडिया के स्पिन क्वार्टेट दुनिया भर में मशहूर। बेदी के साथ एरापल्ली प्रसन्ना, भगवत, चंद्रशेखर और श्रीनिवास वेंकट राघवन ने इंडियन क्रिकेट को एक नया बोलिंग आइडेंटिटी दी और इन चार स्पिनर्स ने मिलकर ऑपोजिशन बैट्समैन के लिए मुश्किलात पैदा कर दी थी। दैट वॉज द डोमिनेंस ऑफ दीज फोर बोलर्स, मार्वलस। बेदी ने इंडिया के लिए 67 टेस्ट मैचेस खेले और 266 विकेट हासिल किए। बाद में कपिल देव इस रिकॉर्ड को तोड़ता है। उनका बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस 7 विकेट्स फॉर 98 रन रहा। ओडिया इंटरनेशनल्स में भी उन्होंने इंडिया की नुमाइंदगी की और 10 विकेट हासिल किए। और अब बात करते हैं 1976 की। 1976 में बेदी को इंडियन टेस्ट टीम का कप्तान भी बनाया गया और उनकी कप्तानी में इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज जीती और उनकी लीडरशिप ने उनकी पर्सनैलिटी का एक और पहलू सामने रखा। लेकिन बेदी की सबसे खास बात उनकी क्रिकेटिंग ऑनेस्टी थी, ईमानदारी। वो सिर्फ अपनी टीम के लिए नहीं बल्कि गेम के लिए खड़े होते थे। उन्होंने अपने करियर में स्पोर्ट्समैनशिप और फेयर प्ले को बहुत अहमियत दी। क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद भी बेदी ने गेम से रिश्ता नहीं तोड़ा। वो कोच, कमेंटेटर और मेंटोर के तौर पर क्रिकेट से जुड़े रहे और नए प्लेयर्स को स्पिन बॉलिंग के बारे में अपना इल्म जो है वो ट्रांसफर करते थे कि भाई सीखो, ऐसे ही बॉल करो, ऐसे गेंद फेंको। हरभजन सिंह वाज द बेस्ट एग्जांपल।
उनकी लेगेसी

सिर्फ उन 266 टेस्ट विकेट्स तक महदूद नहीं। बिशन सिंह बेदी ने इंडियन क्रिकेट को यह सिखाया कि बोलिंग सिर्फ पेस और पावर का नाम नहीं, कभी कभी एक धीमी हवा में तैरती हुई गेंद भी बैट्समैन की पूरी दुनिया हिला सकती है। और बेदी की जिंदगी क्रिकेट के लिए जुनून, डिसिप्लिन और इंडिविजुअलिटी की मिसाल है। एक ऐसा बॉलर जो बैट्समैन को डरा कर नहीं बल्कि उन्हें कंफ्यूज करके आउट करता था, दैट वाज बिशन सिंह बेदी। और इसीलिए बिशन सिंह बेदी का नाम इंडियन क्रिकेट की तारीख में हमेशा एक खूबसूरत स्पिन के साथ याद किया जाएगा। दोस्तों, बिशन सिंह बेदी की कहानी हमें ये बताती है कि क्रिकेट में कामयाबी सिर्फ टैलेंट से नहीं मिलती, उसके लिए सब्र चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए और अपने हुनर पर यकीन चाहिए। बेदी ने अपनी बॉलिंग से विकेट्स हासिल किए लेकिन अपनी पर्सनालिटी और स्पोर्ट्समैनशिप से क्रिकेट फैंस के दिल जीत लिए। उम्मीद है आपको हमारा आज का यह स्पोर्ट्स सेगमेंट पसंद आया होगा। अगली बार एक और नए स्पोर्ट्स लेजेंड की कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। खुश रहें, सेहतमंद रहें और हमेशा अपना जज्बा जिंदा रखें। फी अमानिल्लाह।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: FM 107 presents Tech Update.
3: Assalamualaikum, मैं दुआ वाला कबीर FM 107 पे एंड वेलकम टू अनदर टेक अपडेट। ये बोलने के लिए मैंने कितना वेट किया बता आपको, टेक अपडेट। तो शुरू करते हैं सबसे पहले वेबसाइट से, ऑफकोर्स कुछ बहुत ही जबरदस्त AI टूल्स एंड वेबसाइट जो आपके काम आएंगे, एंड देन टूवर्ड्स द न्यूज। तो नंबर वन ऑन द लिस्ट टुडे इज एन अमेजिंग वेबसाइट जहां पर आप अपना QR कोड बना सकते हैं। अब आप बोलेंगे ये तो कोई भी बता सकता है, पर QR कोड को और भी इंटरेस्टिंग बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपको टाइप करना है एड्रेस बार में tree.icqr.com, ट्री टी आर डबल ई पेड़ वाला ट्री .icqr.com और सी वो अल्फाबेट वाला सी। जब अभी टाइप करेंगे आपके सामने एक वेबसाइट आएगी जहां पर आप जो है खूबसूरत बारकोड बना सकते हैं, और इन बारकोड की खास बात यह है कि आप इनको एक ट्री की तरह मैनेज कर सकते हैं। लेट मी एक्सप्लेन, आप इसको 3D मॉडल जब स्पिन करेंगे तो उसमें कोई सा भी कलर दे सकते हैं, कैसा भी कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप कोई ऐसी जगह बारकोड ये पेस्ट करने वाले हैं जो आपका पैम्फलेट है, या फिर आप रेस्टोरेंट चलाते हैं, या फिर आप ऐसी फैंसी तरीके से अपने घर में कहीं पोस्ट करना चाहते हैं जहां से लोग वाईफाई आपका यूज कर सकें, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, पर यहां से बारकोड आप बहुत ही खूबसूरत तरीके से बना सकते हैं। इस तक में भाई कस्टमाइजेशन आ चुकी है। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू अनदर वन। अगली वेबसाइट है cleverhumanizer.ai। मैं बताता हूँ इसकी स्पेलिंग, क्लेवर वो चालाक वाला क्लेवर, सो CLEVER फिर ह्यूमनाइजर HUMANIZER cleverhumanizer.ai। जो इसका नाम है वही इसका काम है। बेसिकली आप किसी भी अगर AI से कुछ भी पूछते हैं आपको वो AI जनरेटेड टेक्स्ट देता है, जो कि पता लगता है और पकड़ा भी जाता है कि भाई हाँ ये पक्का AI से निकाला है। मगर उस टेक्स्ट को अगर आप इस वेबसाइट पे पेस्ट करेंगे तो ये एक ह्यूमनाइज्ड वर्जन ऑफ द सेम टेक्स्ट आपको देगा, तो ऐसा लगेगा कि भाई किसी इंसान ने ही लिखा है। तो बेहतरीन वेबसाइट है, आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। ये हालांकि जो कॉम्प्लेक्स चीज होती है उनको जिस तरीके से आसान करता है, दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। अगर कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो समझने में दिक्कत आ रही है, हालांकि AI ने आपको दिया है, उससे भी पूछ सकते हैं, लेकिन एक ह्यूमनाइज टेक्स्ट अगर आपको चाहिए, दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन गो ऑन टू। अब एक और वेबसाइट, अगली वेबसाइट का नाम है FMHY। ये अल्फाबेट्स हैं, FMHY.net। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको सब कुछ आपकी नजरों के सामने आ जाएगा। क्या क्या ये आपको बताता हूँ, सारे के सारे टूल्स, सारे के सारी वेबसाइट्स। आपको गेमिंग वेबसाइट चाहिए, गेमिंग वेबसाइट मिल जाएगी, स्ट्रीम करने के लिए स्ट्रीम करने के लिए मिल जाएगी, AI चाहिए AI मिल जाएंगे। आपको टूल्स चाहिए इमेज नॉट ओनली जनरेशन बट एडिट करने के

0: के लिए, वीडियो एडिट करने के लिए, कैसे भी, वो सारे के सारे लिस्ट बाय लिस्ट आपके सामने आते चले जाएंगे। बहुत बड़ा कलेक्शन है इस वेबसाइट पे, विच आई रियली रियली लव। आई थिंक ये बहुतों के काम आने वाली है, तो मैंने कहा ये तो मैं जरूर बताऊंगा। सो एफ लाइक अ फैन, एम लाइक इन मंकी, एच लाइक इन हॉर्स, एन वाई एज इन यंकी या वाई एज इन याक, fmhy.net। ओके, अब बढ़ते हैं जरा खबरों की तरफ। ऑलराइट, तो अभी बहुत सारी खबरें आ रही हैं ओपन एआई से जुड़ी हुई। तो ओपन एआई का जो नेक्स्ट मॉडल फेस है वो थोड़ा टफ बनाने की कोशिश की जा रही है। एक अनरिलीज्ड वर्जन है एस्ट्रा मॉडल, जो बहुत बहुत पावरफुल है, और बताया जा रहा है कि वो ऑटोनोमस आइडेंटिटी और पोटेंशियली साइबर सिक्योरिटीज की जो वल्नरेबिलिटीज है उनको भी थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बना सकता है। अभी डेवलपमेंट जारी है भाई, कोई बच के निकल को नहीं पाएगा। ये बहुत बढ़िया चीज बनने वाली है एंड दिस विल कम इन प्लेस। इसके अलावा टिम कुक की खबर आई है, जो कि एप्पल के लीडर हैं, और टिम कुक अब एप्पल के सीईओ नहीं रहे। आई नो ये खबर जिनको पता है बहुत बढ़िया, मगर उनके 15 साल के करियर के बाद लीडिंग एज द सीईओ ऑफ एप्पल, अब जॉन टर्निस टेक ओवर कर चुके हैं, और इमीडिएट चैलेंज उनके लिए यही होगा कि भाई कुछ बदले और ये जो गैप है ये आएगा वो तो मिटाएं, साथ में कुछ नया डिजाइन लेके आ जाओ मलिक। तो ये थी टेक अपडेट। मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर दिल से देसी टेक अपडेट। टेक अपडेट,
1: Qatar's most heard radio station FM 107, दिल से देसी।
2: स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और हर रोज आपसे मुखातिब होता हूँ इस वक्त जहाँ पर हम बात करते हैं नए जमाने के नए स्कैम के बारे में। वेल, फ्रॉड के बारे में आपको पता होना चाहिए। हर दिन एक नया फ्रॉड, और ये जो फ्रॉडस्टर्स हैं डिजिटल इस्तेमाल कर रहे हैं, कई बार ये फिजिकली भी लोगों को अब फ्रॉड करने लग गए हैं। लेकिन आज जिस फ्रॉड के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, ये फ्रॉड बहुत ही आसानी से कोई फ्रॉडस्टर्स आपके साथ कर सकता है और आपको यकीन भी नहीं होगा। कई बार आप इनके चंगुल में फंस जाते हैं और बहुत लेट पता चलता है। और ऐसा ही एक फ्रॉड है जो अगर आपके साथ हो गया तो आपको थोड़ा लेट पता चलता है। दिस स्कैम इज कॉल्ड ओवर पेमेंट स्कैम। दोस्तों, ये काम कैसे करता है इस पर जरा सबसे पहले नजर डालते हैं। ओवर पेमेंट स्कैम आम तौर पर ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर्स, होलसेलर्स और इंडिपेंडेंट सेलर्स को अपना शिकार बनाता है। इस फ्रॉड में एक फ्रॉड बायर आपकी शॉप या वेबसाइट पर आकर एक बहुत बड़ा ऑर्डर देता है या कोई बहुत महंगा आइटम ना खरीद लेता है, और बगैर आपसे मांडवली बोले तो नेगोशिएशन के आपसे, आपने जो भी अमाउंट बताया है अपने प्रोडक्ट का, वो आसानी से मान जाता है और वो आपसे खरीद लेता है। वो पेमेंट करने के लिए एक बिजनेस चेक भेजता है या फिर किसी चुराए हुए क्रेडिट कार्ड का यूज करता है। इस स्कैम का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये होता है कि वो जानबूझकर एक्चुअल प्राइस से बहुत ज्यादा पैसा भेज देता है। मिसाल के तौर पे मैंने आपको कॉल किया और कहा कि भाई आपका जो प्रोडक्ट है ना वो मुझे खरीदना। आपने कहा भाई 10 रियाल पर पीस पड़ेगा। मैं कहूंगा ठीक है, एक काम करिए, आप 3,000 पीस मुझे भेज दीजिए, जो भी पेमेंट बनता है मैं उससे आपको 10,000 रियाल या 10,000 रुपए, वट एवर द अमाउंट इज, मैं बढ़ाकर आपको पेमेंट भेजूंगा। और कैसे? चेक के जरिए। चेक बनाकर मैंने आपको भेज दिया, आपने प्रोडक्ट अभी भेजा नहीं है, लेकिन जब आपके पास चेक पहुंच गया तो मैं आपसे कहता हूं भाई आप जो है प्रोडक्ट भेज सकते हैं। लेकिन खेल यहीं शुरू होता है। होता यह है जब वो जानबूझकर ज्यादा पैसे भेज देते हैं तो वो करते ये हैं कि बिल का, जैसे अगर 10,000 का बिल है तो वो 1,000 एक्स्ट्रा कर देंगे, 11,000 कर देंगे, और वो कहेंगे अरे वो धोखे से मैंने आपको ज्यादा पेमेंट कर दिया है, तो जो ज्यादा पेमेंट आपको किया है आप वो मुझे वापस कर दें, और जब चेक आपका टूटेगा तो फिर आपको पैसा मिल ही जाएगा। पैसा भेजने के तुरंत बाद बायर सेलर को मैसेज या कॉल करता है और बहुत माफी भी मांगता है। तो कहता है सॉरी मेरे अकाउंट से जो है गलती हो गई है, अकाउंटेंट वाले से, और ज्यादा पैसे आपको दे दिए हैं। वो सब तरीके अपनाता है आपको फंसाने के लिए। आप 1,000 काट लीजिएगा और बाकी की जो 4,000 है ना वो मुझे तुरंत आप बैंक वायर ट्रांसफर कर दीजिए या डिजिटल वॉलेट के जरिए रिफंड कर दीजिए। सेलर को लगता है कि सामने वाला इंसान जेन्युइन है, पैसा तो उसके बैंक में आ ही चुका है, बस चेक जो है वो मुझे जमा करनी है बैंक में, मुझे पैसे मिल जाएंगे फिलहाल के लिए, अभी उसको ज्यादा जो बढ़ा हुआ पैसा है वो वापस कर देते हैं। इसलिए वो बिना सोचे समझे एक्स्ट्रा पैसे रिफंड कर भी देता है और सामान भी शिप कर देता है। कुछ दिनों बाद जब बैंक उस बायर के ओरिजिनल चेक या क्रेडिट कार्ड को प्रोसेस करता है तब जाकर पता चलता है कि

0: चेक फेक था या कार्ड जो है वो चुराया हुआ था, बैंक वो पूरा ट्रांजैक्शन कैंसिल कर देता है। अब सेलर के अकाउंट से वो पहले वाले पैसे भी चले गए, रिफंड किया हुआ पैसा भी गया और सामान भी चला गया। ये है सबसे बड़ा नुकसान, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी है। दोस्तों क्या सॉल्यूशन है इस तरह के स्कैम से बचने के लिए? सबसे पहला है पैसे क्लियर होने का वेट करें। जब आपको कोई क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करे या फिर आपके बैंक चेक के थ्रू आपको पेमेंट करे, जब तक कोई भी फैसला ना ले, पेमेंट आपके पास आना चाहिए, क्रेडिट कार्ड यानी कि आपके बैंक में क्रेडिट होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट अगर उसने किया है तो सेटल हो जाए, क्लियर हो जाए, तब तक सामान शिप भी ना करें और ना ही कोई रिफंड प्रोसेस करें। सिर्फ अकाउंट में पेंडिंग बैलेंस देखकर खुश ना हो और कभी भी कैश रिफंड नहीं कराएं। एक तो ये है कि आपने बैंक के थ्रू डायरेक्ट किसी बैंक को ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ पर थोड़ा एक बार को होता है कि आपके पास बैकअप प्लान है कि हाँ मैंने फला अकाउंट में ट्रांसफर किए, उसने मुझसे कहा था, तो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आसान हो जाएगा। लेकिन ऐसा फिर भी ना करें कि किसी के अकाउंट में पैसे आप ट्रांसफर कर दें, उसके अलावा कैश भी ना दें। किसी कस्टमर ने एक्स्ट्रा पेमेंट कर भी दिए तो उन्हें कैश या वायर ट्रांसफर के जरिए रिफंड कभी मत करें, उन्होंने बोला भी है अगर तब भी, कितने भी बड़े आपके वो लॉयल कस्टमर क्यों ना हो। उसके अलावा सिक्योर पेमेंट गेटवेज, अपनी वेबसाइट पर हमेशा उन्हीं पेमेंट गेटवेज का यूज करें जो फ्रॉड डिटेक्शन और चार्ज बैक प्रोटेक्शन टूल्स ऑफर करते हैं। उसके अलावा एक तरीका है अजीब ऑर्डर्स को पहचानना। ये आमतौर पर सब नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा होशियार होने से आप जबरदस्त तरीके से होने वाले स्कैम से बच सकते हैं। अगर कोई बायर अचानक बिना बार्गेनिंग किए बहुत बड़ा ऑर्डर देता है बगैर नेगोशिएशन के, तो पेमेंट के लिए अजीब तरीके अगर वो यूज कर रहा है, तो अभी आपको सोचने, देखने और समझने की जरूरत है। तो दोस्तों ये था आज का फ्रॉड अवेयरनेस का एपिसोड, और उम्मीद है कि इस तरह के नए स्कैम्स, नए जमाने के नए फ्रॉड से आपको बचाने के लिए मैं जितनी भी कोशिश कर रहा हूँ वो मुकम्मल हो रही होगी। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट, आप सुन रहे हैं FM 107, FM 107, दिल से देसी।
2: स्मार्ट मनी, स्मार्ट मनी।
3: हेलो एंड वेलकम टू अवर सेगमेंट कॉल्ड स्मार्ट मनी। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नासिया। आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं द साइकोलॉजी बिहाइंड इंपल्सिव बाइंग। हम सब ने ना कभी ऐसी शॉपिंग जरूर की होगी जहां हम किसी चीज को बिना प्लानिंग के खरीदते हैं और बाद में सोचते हैं आह मुझे तो इसकी जरूरत ही नहीं थी। और इसी बिहेवियर को इंपल्सिव बाइंग कहा जाता है। देखिए, इंपल्सिव बाइंग का मतलब है ऐसी चीजों को खरीदना जिनकी हमको जरूरत नहीं है। ये सिर्फ शॉपिंग का मसला नहीं है, ये साइकोलॉजी से इसका ताल्लुक बहुत ज्यादा डीप है। अब मैं आपको समझाती हूँ कैसे। देखिए, इंपल्सिव बाइंग तब होती है जब हम इमोशन की बुनियाद पर डिसीजंस लेते हैं, लॉजिक की बुनियाद पे नहीं। हम ब्रेन, हमारा जो ब्रेन है ना, या यूं कहें जो ह्यूमन ब्रेन है, वो दो सिस्टम्स पर काम करता है। एक इमोशनल सिस्टम जो इंस्टेंट हमें प्लेजर देता है, और दूसरा रेशनल सिस्टम जो सोच समझकर फैसला करता है। जब हम इंपल्सिव शॉपिंग करते हैं, इमोशनल सिस्टम जीत जाता है और कहीं ना कहीं रेशनल थिंकिंग पीछे रह जाती है। और इसका सबसे बड़ा जो ये शॉपिंग करने का जो सबसे बड़ा फायदा हमें समझ में आता है वो है फील गुड केमिकल, यानी डोपामाइन इफेक्ट। और ये हमारा ब्रेन जो है वो बताता है कि इसे करके तुम एक्साइटेड हो, तुम खुश हो, तुम हैप्पी फील कर रहे हो। तभी तो आप देखिए, जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या ऐप खोलते हैं, सेल देखते हैं या कोई नई चीज खरीदते हैं, ब्रेन ऑटोमेटिकली डोपामाइन रिलीज करता है और हमें एक तरह की टेम्परेरी खुशी मिलती है। और शायद इसी खुशी के लिए लोग बार बार शॉपिंग करते हैं। मिसाल के तौर पे, जैसे मेरे ऑफिस में अगर मैं कहूँ तो सारा ऑफिस में स्ट्रेस फील कर रही थी। लंच ब्रेक में वो ऑनलाइन शॉपिंग ऐप उसने ऑन किया और देखते देखते एक बहुत ही कमाल का एक ब्रांडेड हैंडबैग उसने परचेज कर लिया। हालांकि उस बैग की उसको बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उसके पास कुछ नहीं तो 8-10 बैग्स तो थी। लेकिन फौरन ऑर्डर कर देना, ले लेना और मूड अपना बेहतर कर लेना, ये एक इमोशनल, एक साइकोलॉजी है। कुछ घंटों के बाद वही चीज, वही एक्साइटमेंट जो है वो खत्म हो जाता है और फिर शायद हमें एहसास होता है कि हमने

पैसे अननेसेसरीली या यूं ही वेस्ट कर दिए। एक और चीज मैं आपको बताऊंगी, कहीं ना कहीं इमोशनल ट्रिगर भी इंपल्सिव बाइंग को बढ़ाता है। जैसे स्ट्रेस हुआ, शॉपिंग कर ली, सैडनेस है, शॉपिंग कर ली, बोर्डम है, शॉपिंग कर ली, लोनलीनेस का शिकार है, शॉपिंग कर ली, एंजाइटी के वक्त भी लोग शॉपिंग करते हैं और उसे बकायदा थेरेपी समझते हैं, और इसीलिए रिटेल थेरेपी भी उसे कहा जाता है। जी हाँ, लेकिन ये रिलीफ बहुत ही टेम्परेरी होता है, जबकि फाइनेंशियल बर्डन बड़ा परमानेंट। मार्केटिंग कंपनीज भी साइकोलॉजी को अच्छी तरह से समझ गई हैं, तभी तो आपने ये वर्ड सुन रखे हैं जैसे सेल, फ्लैश सेल, ओनली टू आइटम्स लेफ्ट, लिमिटेड ऑफर, 50% ऑफ, व्हाट टुडे। ये ऐसे ऐसे मैसेजेस हैं जो अर्जेंसी को क्रिएट करते हैं, और हमें लगता है कि अगर हमने अभी परचेज नहीं किया तो शायद इस अपॉर्चुनिटी को हम हमेशा के लिए खो देंगे, और शायद यही फिनोमेना फोमो कहलाता है, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। देखिए, सोशल मीडिया भी कहीं ना कहीं इंपल्सिव बाइंग का एक बड़ा फैक्टर है। जब हम इन्फ्लुएंसर्स को लेटेस्ट गैजेट्स, लक्जरी प्रोडक्ट्स और फैशनेबल आउटफिट यूज करता देखते हैं, तो हम कोई भी नॉन एसेंशियल आइटम खरीदने से पहले 24 आवर रूल जरूर फॉलो कीजिए। अपने आप से पूछिए, क्या मुझे वाकई इसकी जरूरत है? बजट बनाइए, शॉपिंग लिस्ट के बगैर शॉपिंग ना करें, और इमोशनल स्टेट में या फिर ऑनलाइन स्टोर से शॉपिंग करने से बचिए। आखिर में बस जाते जाते यही कहूंगी कि इंपल्सिव बाइंग सिर्फ पैसे का मसला नहीं है, ये इमोशन और बिहेवियर का मसला है। जब हम अपनी फीलिंग्स को समझना और कंट्रोल करना सीख लेते हैं, तो हम बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस ले पाते हैं। याद रखिए, टेम्परेरी हैप्पीनेस के लिए की गई इंपल्सिव शॉपिंग अक्सर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेस का सबब बन जाती है, बस खुद को इससे बचाना है। फिलहाल आज के लिए दोस्तों इतना ही, मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए, देखते हो सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।

0: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर
1: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
2: بس اگر تم نہیں جانتے تو اہلِ

0: मेरा नाम
1: अब्दुल लतीफ है
0: जी। अब्दुल लतीफ भाई
1: फारुक पाकिस्तान से है।
0: जी जी जी
1: अच्छा, मेरा सवाल शेख साहब से है कि जो कुरान मजीद पढ़ने में तो एक हरूफ का हर्फ का सवाब दस नहीं किया है,
0: जी जी
1: मगर ये सुनने में कितना है?
0: अच्छा, अगर पढ़ने पर एक हर्फ पर दस नहीं किया आती है, सुनने पर क्या सवाब मिलता है?
1: हाँ, दस नहीं किया मगर सुनने में कितना है? जब मैं गाड़ी चलाता हूँ कुरान सुनता हूँ, एक हर्फ में कितना सवाब मिलता है या नहीं है?
0: इंशाल्लाह जरूर इस पर बात करेंगे। आपका कोई और सवाल है भाई?
1: नहीं, मेरा गौर ने बस ये सुनना है।
0: अच्छा इंशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम, अस्सलाम वरहमतुल्लाह। एक अलग कॉल आ रही है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।
2: वालेकुम सलाम, मौलाना क्या हाल वाले?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है भाई। आपका नाम?
2: मेरा नाम कमरान है।
0: जी कमरान,
2: मैं बेसिकली पाकिस्तान से हूँ।
0: जी जी,
2: तो मेरा सवाल मौलाना साहब एक ये है
0: जी
2: कि 2019 में मेरे एक दोस्त ने किसी आदमी का मर्डर किया था।
0: अल्लाह अकबर।
2: मेरा दोस्त था, करीबी था, जैसे गांव में दोस्ती होती है, पड़ोसी और ऐसे करीबी दोस्त था
0: जी।
2: तो उसमें मैं बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं था, क्योंकि वो जो भी इंसान गुनाह या सवाब नेकी का काम करता है तो अल्लाह की रजा के लिए करता है, किसी को दिखाने के लिए तो नहीं करता है ना।
0: जी जी।
2: तो वो मेरा दोस्त था, हम साथ ही घूमते थे, तो उन्होंने मेरा भी वैसे ही समझा। वो कत्ल बाद में प्रूफ हुआ, यानी कि उसने मारा है। जब उसने मार दिया फिर भी मेरे साथ घूमता था, मुझे भी इस चीज का आइडिया नहीं था।
0: जी जी।
2: तो 3-4 दिन के बाद कुछ कॉल माल ट्रेस हुई तो फिर पता चला कि उसने किया है, तो मैं इसमें बिल्कुल बेगुनाह था
0: जी,
2: जिसकी वजह से मैं उसकी जद में आ गया।
0: अल्लाह अकबर। जी
2: ठीक है, तो मैंने उनसे माजरत भी की, सब कुछ किया, क्योंकि मेरा अल्लाह जानता है कि मेरा उसमें कसूर नहीं था।
0: जी जी।
2: माजरत करने के बाद भी उन लोगों ने मुझे माफ नहीं किया।
0: अच्छा,
2: काफी बार मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन
0: मक्तूल के लोगों ने, मक्तूल के घर वालों ने,
2: जी उनका जो पूरा कबीला है, एक घर नहीं पूरा कबीला,
0: जी जी,
2: तो काफी मर्तबा उन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन शायद मेरी गलती नहीं थी, मैं इस वजह से बच गया।
0: जी जी।
2: उसके बाद मैं कतर आ गया
0: जी
2: अपने काम के सिलसिले में।
0: जी।
2: तो इस बात को तकरीबन अभी 6-7 साल गुजर चुके हैं
0: जी।
2: तो मैं अभी छुट्टी पे जाता हूँ तो उनके दिल में वही नफरत, वही बोझ, लेकिन मैं सिर्फ यही देखकर, अभी तो मैं हैसियत में भी हूँ, शायद पहले पे कम था
0: जी,
2: लेकिन इसी वजह से चुप हो जाता हूँ कि यार इन गरीबों का पहले भी एक आदमी मर चुका है, आज जैसे मैं ऊपर से नई बातें या कुछ ऐसा करूँ इनका दिल जख्मी होगा, परेशान होंगे।
0: जी जी।
2: तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनसे बचता हूँ, और वो कोशिश करते हैं कि यानी कि टकराने की कोशिश करते हैं
0: जी।
2: तो मैं इसलिए बचता हूँ कि यार इनका पहले भी नुकसान हो गया है, और अल्लाह ना करे मतलब मेरा हो या उनका हो
0: जी,
2: लेकिन मैं अल्लाह की रजा के लिए सब कुछ छोड़ देता हूँ, वो जो भी ज्यादती करते हैं मैं माफ कर देता हूँ
0: जी जी।
2: तो उनके दिल में जो ख्याल या बोगस जो भी है ना, वो यही अभी तक यही समझते हैं कि ये भी मारने में इन्वॉल्व था
0: जी। अल्लाह उनको समझ अता फरमाए और जो सही सूरत हाल है उसको मानने की तौफीक नसीब फरमाए। आपका सवाल क्या है भाई इस ताल्लुक से?
2: मेरा सवाल ये है मौलाना साहब कि क्या इसमें मुझे गुनाह मिलता होगा, क्योंकि उन लोगों में फूल नफरत है
0: जी। इसमें अगर आप बेकसूर हैं और आप ये कोशिश भी कर रहे हैं कि जो उनको गलत फहमी है आप उसको ख़त्म करें, लेकिन वो नहीं ख़त्म हो रही है
2: जी,
0: तो इस पे आपको तो मेरे ख्याल से किसी चीज का गुनाह नहीं है
2: जी। अल्बत्ता मैं नफरत देखता हूं, मुझे डर लगता है, असल में नफरत बहुत है
0: जी जी, वो फितरी चीज है भाई। जब उनके दिल में एक गलत फहमी है और वो गलत फहमी खत्म नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एहतियात करें, सब्र से काम लें और हौसले रखें, और इस ताल्लुक से आप जो कर सकते हैं कि आप उनके दिल से ये चीज़ निकाल दें कि आप उस चीज़ में शामिल नहीं थे, तो फिर ये अच्छा रहेगा। नहीं निकाल सकते तो फिर सब्र से काम लीजिए, हिम्मत से काम लीजिए, इस पर आपको सवाब मिलेगा। अलबत्ता
2: मौलाना साहब मुझे बार बार वजाहत देने की जरूरत तो नहीं है ना, मतलब मैं एक दो बार वजाहत दे चुका हूँ, उससे ज्यादा मतलब वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो मैं बार बार तो मतलब इस्लाम एक अच्छी चीज की तरफ जाने के लिए वो करता है, लेकिन ایک آدمی نہیں مانتا ہے تو اس کی بار بار تو آدمی وضاحت نہیں دے سکتا.
0: جی جی بالکل بالکل. اس پر انشاءاللہ آپ صبر کریں گے, جو ان کی نفرت ہے اس کو آپ اگر برداشت کر رہے ہیں تو اس پر آپ کو ضرور ثواب ملے گا انشاءاللہ.
2: جی میرا یہ سوال تھا, انشاءاللہ میں ڈرتا تھا کہ یہ نفرت ہے, گناہ نہیں ملتا, میں نے قصور کیا بھی نہیں ہے.
0: نہیں انشاءاللہ. باقی اس تعلق سے ہم شیخ صاحب کے پاس بھی جائیں گے پروگرام کے آخر میں جب ہمارے جوابات کا سلسلہ

0: वह आँख खुलती है, उठता है और वो देखता है कि अपने तमाम हालात जो मामूल के मुताबिक हैं, देखने लगे, बोलने लगे। लेकिन हमने सोचा ही नहीं कि रात को कितने लोग ऐसे थे जो दोबारा सुबह ना देख सके। उन्हें क्या पता था कि दोबारा सुबह नहीं देख सकेंगे। हम घर से निकले, गाड़ी में बैठे, दफ्तर पहुंच गए। हमने सोचा नहीं कि कितने लोग बीमारी माजूरी की वजह से अपने पाँव पर चल नहीं सकते। हमने खाना खाया, हमने सोचा ही नहीं कि दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें एक वक्त का खाना भी मैसर नहीं। हम अपने बच्चों को देखते हैं, हमने कभी सोचा ही नहीं कि औलाद भी अल्लाह तबारक व तआला की मदद अता की नेमत है। यही वजह है कि इंसान के पास नेमतें बढ़ती रहती हैं मगर उसका एहसास नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त इंसान सोचे कि जब अल्लाह तबारक तआला इंसान को औलाद न दें या किसी को औलाद होती ही नहीं है, तो फिर उस वक्त उसकी क्या कैफियत होती है। लिहाजा जब ये नेमतें हमारे पास हैं तो उसको हम गौर करें, इस्तेहजार करें, फिर शुक्र अदा करें अल्लाह तबारक तआला का।
1: बेशक शेख मोहतरम बारकल्लाहु फीकुम। सामीन, हमारे पास बहुत ज़्यादा इस वक्त अगर हम बात करना चाहें तो बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं शुक्र के बाब में, जिस पर हम आइंदा गुफ्तगु करेंगे इंशाल्लाह। आइंदा हलके में अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी तो ज़रूर उस पर गुफ्तगु करेंगे। अब चूँकि हमारे पास वक्त कम है तो हम चाहते हैं कि हम जवाबात के सिलसिले की तरफ रुख करें, और हमारे पास सवालात भी आए हुए हैं और मुतअद्दिद सवालात हैं जिनके जवाबात हमारे मोहतरम मेहमान शेख मोहम्मद मुद्दसिर साहब इनायत फरमाएंगे। शेख मोहतरम, जाकिर भाई ने सवाल किया है
0: जी।
1: उनका पहला कॉल था, उन्होंने एक सवाल किया है, उनके दो सवाल थे
0: जी।
1: एक तो उन्होंने किया कि दो बीवी या तीन बीवी अगर किसी शख्स की है
0: जी।
1: और उनमें वो अदल नहीं कर पाया
0: जी,
1: तो फिर उस अदल ना करने की आखिरत में क्या सज़ा होगी। एक तो वो सवाल है उनका
0: जी।
1: और ये सवाल करते हुए उन्होंने दौरान गुफ्तगू ये बात भी कही थी कि सूरह नूर में गालिबन उन्होंने हवाला दिया था कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम चाह कर भी अदल नहीं कर सकते
0: जी।
1: तो फिर जब एक तरफ अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम चाह कर भी अदल नहीं कर सकते, फिर दूसरी तरफ आखिरत में उस पर सज़ा भी अल्लाह ताला ने दी है
0: जी।
1: तो फिर एक तो इसका ये जो गलत फहमी उन हमारे जहन में आ जाती है, इसका इजाला फरमा दीजिए। और दूसरा इसका जवाब दे दें कि आखिरत में ऐसे शख्स को क्या सज़ा मिलती है जब वो मुतअद्दिद बीवियों में अदल नहीं कर पाता
0: जी। अगर शौहर की एक से ज़्यादा बीवियाँ हों और वो उनके दरमियान वाजिब हुकूक़ में अदल ना करे तो उस पर सख्त वईदें आई हैं क़ुरान करीम में, हदीस नबविया में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन कानत लहू इमरातानी फमाल इला अहदिहिमा जा यौमल क़ियामति वशिक्कुहु माइल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स की दो बीवियां हों और वो एक की तरफ झुक जाए, दूसरे के हकूक में नाइंसाफी कर बैठे, वो क़यामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसका एक पहलू झुका हुआ होगा। ये हदीस शरीफ के अल्फाज हैं
1: जी।
0: और सुनन अबी दाऊद, सुनन तिरमीज़ी में, सुनन नसाई में, इबन माजा में किन चीज़ों में अदल ज़रूरी है उसका भी जिक्र किया गया है। मिसाल के तौर पर शौहर के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी इस्तेताअत के मुताबिक दोनों के दरमियान, इस्तेताअत अगर है तो दोनों के दरमियान जो है वो अदल करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल रातों की बारी हो या रिहाइश हो या नानो नफ़े की बात हो, लिबास और ज़रूरी अखराजात हो, तो इसमें जो है अदल करना है। लेकिन जैसा कि قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، کہ اگر انسان محبت یا یہ اندرونی چیز ہے تو اس میں انسان کا کنٹرول نہیں ہے، وہ اس سے باہر ہے، تو اس میں اللہ تبارک تعالی اپنا فضل فرما کر معاف کر سکتے ہیں۔ لیکن جو چیزیں ہماری استطاعت میں ہیں، ظاہری چیزیں، اس میں تو عدل کرنا چاہیے، ورنہ حدیث میں جو

का तो सिर्फ झुकाव मोहब्बत में होना चाहिए, यानी कि उसकी तरफ झुकाव है तो फिर वाजिब हुकूक में उसको ज़्यादा दे और दूसरी बीवी को कम दे, नहीं यहीं पर अदल मतलूब है। और जो आयत है वलन तस्ततियू अन तअदिलू बैनन निसाई वलो हरस्तुम, कि तुम औरतों के दरमियान अपनी यानी अपनी बीवियों के दरमियान अदल नहीं कर सकते अगर गरचे तुम चाहो, ये मोहब्बत के ताल्लुक से है यानी दिली मैलान के कल्बी, इसीलिए आगे कहा फला तमीलू कुल्लल मैली, ये इसी तरफ इशारा है फला तमीलू कुल्लल मैली फतज़रूहा कल मुअल्लका, कि अगर किसी के पास किसी की तरफ झुकाव ज़्यादा है तो इस तरह झुकाव ना हो जाए कि पूरा उसी की हो जाओ तुम और जो दूसरी है वो लटकी रहे, इस तरह इससे मना किया गया। दूसरा सवाल ये है कि वालदैन फौत हो गए उनको सवाब क्या पहुँचाया जा सकता है, बहुत सारे सवाब पहुँचाए जा सकते हैं, आप नेक आमाल करें और उनको इसाले सवाब करें, उनकी तरफ से उम्रे कर सकते हैं, मुतअद्दद उम्रे कर सकते हैं एक सफ़र में, मस्जिद आयशा से अहराम बांध कर आप जाकर उम्रे कर सकते हैं, 2, 3, 10, 8, 10 जितनी आपकी इस्तेताअत हो आप उम्रे कर लें, कोई हर्ज नहीं है इसमें। और एक सवाल हमारे पास आया कि कुरान करीम पढ़ने पर एक हर्फ पर 10 नेकियाँ मिलती हैं, जी 10 नेकियाँ मिलती हैं और सुनने पर भी मिलती है। एक हदीस है फ़ज़ाइल आमाल यानी आमाल की फ़ज़ा यानी जो फजीलत बयान करते हुए एक हदीस है, अगरचे इसकी सनद में थोड़ा सा मुहद्दिसीन ने कलाम किया है लेकिन फ़ज़ाइल के बाब में वो हदीस चल सकती है, मन इस्तमा इला आयति मिन किताबिल्लाह अज़्ज़ा वजल कतब लहू हसनतुन मुदाअफा वमन तलाहा कानत लहू नूरन यौम अल-क़ियामा, कि जिस शख्स ने कुरान करीम की कोई आयत सुनी तो उसके लिए एक बल्कि एक से ज़ायद नेकियाँ लिखी जाती हैं और इस पर आपको नेकी ज़रूर मिलेगी, सवाब ज़रूर मिलेगा। और बाकी अपने ताल्लुकात को अच्छे लोगों के साथ रखें, ऐसा ना हो कि आपके दोस्त ने कोई काम किया हो और आप पर बात आए, और मामलात में अपने आप को साफ रखें। अल्लाह ताला हम सबको जो कुछ हमने कहा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम प्रोग्राम के मौजू की तरफ अगर वापस लौटते हैं शुक्र के बाब की तरफ, तो शुक्र पर हमने आज गुफ्तगू की है और शुक्र पर बहुत सारी बातें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में शुक्र ही शुक्र था और उस पर हमारे लिए उनकी ज़िंदगी उसवाए हसना है, हम उस पर अमल करने की कोशिश करें। लेकिन जब हम अगर गौर करें कि जितनी नेमतें हमें दी गई हैं उसमें से सबसे बड़ी नेमत कौन सी है, ये सवाल होता है कि हमारे पास सबसे बड़ी नेमत कौन सी जिसका हम सबसे ज़्यादा शुक्र अदा करें, तो इस हवाले से मैं आपको बता दूं कि हमारी ज़िंदगी में नेमतों की एक फहरिस्त है बहुत बड़ी। हमारे पास माल है, मकान है, गाड़ी है, मुलाजमत है, कारोबार है, ख़ानदान है, सबसे ज़्यादा सेहत है, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन एक मुसलमान के लिए अगर सबसे बड़ी नेमत हम बताएं तो वो ईमान की नेमत है। दुनिया की हर नेमत महदूद है, माल आज है कल नहीं रहेगा आपके पास, सेहत आज है कल आप बीमार हो सकते हैं, जवानी है तो बुढ़ापा तो आना ही है, और ज़िंदगी है तो फिर कल तो मौत आनी ही है, मौत तो अटल है, कुल नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। लेकिन ईमान एक ऐसी नेमत है जो इंसान को दुनिया की आर्जी ज़िंदगी से निकाल कर आखिरत की दायमी कामयाबी तक पहुँचाती है। इसलिए जब हम अल्हम्दुलिल्लाह कहें तो सिर्फ़ दुनियावी नेमत को जहन में ना रखें बल्कि ये भी कहें कि अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने मुझे ईमान दिया है, अल्लाह ने इस्लाम की नेमत हमें अता फरमाई है, इस पर हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, कुरान करीम का शुक्र अदा करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हमें पैदा फरमाया गया है, इस पर हम शुक्र अदा करें। और ये शुक्र इंसान के दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा करता है जब हम ईमान वगैरह के ताल्लुक से शुक्र अदा करें। सामीन, आज हम और आप खुशी के लिए बहुत कुछ तलाश कर रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगी में सुकून तलाश कर रहे हैं, खुशी तलाश कर रहे हैं। हम में से कोई ये समझता है कि ज़्यादा पैसा मिल जाए तो खुशी मिलेगी, कोई ये समझता है कि बड़ा घर मिल जाए तो खुशी मिल जाएगी, कोई ये समझता है कि ज़्यादा शोहरत मिल जाए तो हमें खुशी मिल जाएगी। लेकिन हकीकत तो ये है कि नेमत और ख़ुशी में बहुत बड़ा फ़र्क है। एक नेमत एक अलग चीज़ है और ख़ुशी एक अलग चीज़ है। किसी इंसान के पास बहुत नेमतें हों लेकिन नाशुक्री की वजह से बेसुकून होता है, लेकिन अगर किसी के पास दुनियावी एतबार से तो चीज़ें कम हैं, नेमतें कम हैं, लेकिन वो शुक्र की वजह से उसका दिल मुतमईन होता है तो ये एक अलग ख़ुशी होती है। आखिर में हम तमाम सामीन, हमारी ज़िंदगी में शायद बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन ज़रा रुक कर ये भी हमें देखना चाहिए कि हमारे पास पहले से कितनी

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: हर घर की अपनी कहानी होती है, कभी पेरेंटिंग का चैलेंज, कभी बच्चों की तरबियत की फिक्र, कभी फैमिली रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाने की कोशिश। तो आइए मिलकर बात करते हैं उन मसाइल पर जो हर घर का हिस्सा हैं। एक्सपर्ट काउंसलिंग, प्रैक्टिकल पेरेंटिंग टिप्स और रियल लाइफ डिसीजन के साथ हम ढूंढेंगे बेहतर और मजबूत फैमिली रिलेशनशिप का रास्ता। सुनिए प्रोग्राम फैमिली मैटर्स विद आरजे नाजिया ओनली ऑन FM 107। फैमिली मैटर्स, क्योंकि हर फैमिली मैटर्स।
3: सलाम आदाब, मैं हूँ नासिया FM 107 से एंड वेलकम टू दिस शो कॉल्ड फैमिली मैटर्स। आप सुन रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जहाँ हम बात करते हैं फैमिली की, पेरेंटिंग की और बच्चों की अच्छी तरबियत की। और आज के इस एपिसोड में हमारा टॉपिक है पॉजिटिव पेरेंटिंग, यानी ऐसी पेरेंटिंग जो बच्चों को सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन नहीं सिखाती बल्कि उन्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस, इमोशनल स्ट्रेंथ और पर्सनालिटी को भी मजबूत बनाती है। हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए बेस्ट चाहते हैं, हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा कामयाब हो, अच्छे वैल्यूज सीखे, इज्जत करे, जिम्मेदार बने और जिंदगी में कामयाब हो। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ डांटना, पनिश करना, रूल्स बनाना काफी है, या फिर पेरेंटिंग का कोई और बेहतर तरीका भी है। आज हम जानेंगे कि पॉजिटिव पेरेंटिंग है क्या, ये क्यों आज के इस डिजिटल एरा में जरूरी है, इसके लिए कैसे हम खुद को तैयार कर सकते हैं एज अ पेरेंट। कुछ मैं आपको टिप्स भी दूंगी और हाँ, आखिर में हम और आप एक्सप्लोर करेंगे कि पॉजिटिव पेरेंटिंग क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट हो चुकी है। देखिए, पॉजिटिव पेरेंटिंग एक ऐसी पेरेंटिंग स्टाइल है जहाँ पेरेंट्स बच्चों को प्यार, रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग और गाइडेंस के साथ उनकी तरबियत करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों को हर चीज की इजाजत दी जाती है और ना ये है इसका मतलब कि डिसिप्लिन खत्म कर दिया जाता है, बल्कि पॉजिटिव पेरेंटिंग का मतलब है डिसिप्लिन विदाउट फियर, गाइडेंस विदाउट ह्यूमिलेशन, करेक्शन बट विद लव। जी हाँ, पॉजिटिव पेरेंटिंग बच्चों को ये एहसास दिलाती है कि मुझे समझा जाता है, मुझे सुना जाता है, मैं इम्पोर्टेंट हूँ, मैं गलती करके सीख रहा हूँ, और इसी वजह से बच्चे इमोशनल

इमोशनली तौर पर स्ट्रांग हो जाते हैं। आज का जमाना बहुत डिफरेंट है, बच्चों के पास इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, गेमिंग है, पीयर प्रेशर है, स्ट्रेस है, कॉम्पिटिशन है। ऐसे में सिर्फ अकेडमिक सक्सेस काफी नहीं है, बच्चों को इमोशनल स्ट्रेंथ भी चाहिए होती है और पॉजिटिव पेरेंटिंग उन्हें यही स्ट्रेंथ देती है। अब बात करते हैं पॉजिटिव पेरेंटिंग बच्चों को क्या देती है। पॉजिटिव पेरेंटिंग का असर ये होता है कि बच्चे में कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब पेरेंट्स बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं तो बच्चे अपनी एबिलिटीज पर यकीन करना सीखते हैं। वो सोचते हैं मैं जो कर रहा हूँ वो गलत या सही, लेकिन सीखने की राह पर हूँ, और ये कॉन्फिडेंस पूरी जिंदगी उनकी बदल देता है। ऐसा बच्चा जो घर में सिक्योर महसूस करता है वो बाहर के चैलेंजेस को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकता है। उसे पता होता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं। वहीं पर बात आती है बेटर कम्युनिकेशन की। जी हाँ, पॉजिटिव पेरेंटिंग में पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान कम्युनिकेशन स्ट्रांग होता है। बच्चे अपने फियर्स भी शेयर करते हैं, अपने सीक्रेट्स भी और अपनी मिस्टेक्स भी। ऐसे में आप देखेंगे कि बच्चों का और पेरेंट्स का रिश्ता स्ट्रांग होता है। चाइल्डहुड में जो रिश्ता पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान बनता है वो जिंदगी भर साथ रहता है। रिसर्च और एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि पॉजिटिव एनवायरनमेंट बच्चों की एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करते हैं। जब बच्चे अप्रिशिएट और अंडरस्टैंड किए जाएं तो उनकी इमोशनल वेलबींग बेहतर हो जाती है। अब पॉजिटिव पेरेंटिंग के कुछ उसूल भी हैं। देखिए, पॉजिटिव पेरेंटिंग कैसे की जाए, उसका सबसे पहला रूल है पहले सुने फिर बोले। अक्सर पेरेंट्स फौरन लेक्चर देना शुरू कर देते हैं, लेकिन पॉजिटिव पेरेंटिंग का पहला रूल है लिसन फर्स्ट। जब बच्चा बात करे तो पूरी तवज्जो से सुने, आंखों में आंखें डालकर, फोन साइड में रखकर, बिना किसी इंटरप्शन के। कई दफा बच्चों को सलूशन नहीं चाहिए होता, सिर्फ उन्हें आपका सपोर्ट और साथ चाहिए होता है। वहीं दूसरा रूल, जो इम्पोर्टेंट रूल है, वो है रिस्पेक्ट दीजिए। जिस तरह हम रिस्पेक्ट लेना पसंद करते हैं, वैसे ही बच्चों को भी रिस्पेक्ट चाहिए। अगर हम उनकी बेइज्जती करेंगे तो वो डर सकते हैं, लेकिन अगर रिस्पेक्ट की जाए तो वो बिना डर और खौफ के बात साफ कहते हैं। पॉजिटिव पेरेंटिंग कहती है कि बेटा, मुझे तुम्हारी बात समझ आ रही है, मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ सकता हूँ। ये सेंटेंस बच्चे के दिल में जगह बना देते हैं। वहीं तीसरा इम्पोर्टेंट रूल है एफर्ट्स की तारीफ करना। अक्सर हम सब का फोकस रिजल्ट्स पे होता है, जबकि जरूरत है कि हम और आप मिलके एफर्ट्स की भी तो तारीफ करें। बच्चे ने मेहनत की, शायद उस तरह के रिजल्ट्स नहीं आए, लेकिन मेहनत की। इस मेहनत को सेलिब्रेट कीजिए। ये कहना कि तुम फर्स्ट क्यों नहीं आए, ये गलत है। तुमने बहुत मेहनत की, तुम थर्ड आए, फर्स्ट आ सकते हो। ये है पॉजिटिव पेरेंटिंग। इससे बच्चा लर्निंग पर फोकस करता है, मार्क्स पर नहीं। और एक और चौथा रूल, क्लियर बाउंड्रीज रखना। जी हाँ, पॉजिटिव पेरेंटिंग का मतलब फ्री फॉर ऑल नहीं। रूल्स जरूर होने चाहिए, लेकिन रूल्स रिस्पेक्ट के साथ। जैसे स्क्रीन टाइम सिर्फ एक घंटा होगा, होमवर्क के बाद गेम्स, रूल्स एकदम क्लियर हों और पेरेंट्स खुद भी उन्हें फॉलो करें। पांचवा रूल है गलती को लर्निंग अपॉर्चुनिटी में तब्दील करना। गलतियों को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज में तब्दील करना एक स्किल है, एक आर्ट है, जिसे बाय द टाइम आप जो है वो स्टार्ट करें, इनिशिएट करें और धीरे धीरे बच्चा उसे फॉलो करता है। देखिए, गलती तो हर एक से होती है। अगर ग्लास टूट जाए, होमवर्क भूल गया, झूठ बोल दिया, तो फौरन चीखने चिल्लाने के बजाय पूछें, तुमने इसे क्या सीखा। ये सवाल कैरेक्टर बिल्ड करता है। कहने को तो इसका कोई खास रेलेवेंस नहीं है, लेकिन हाँ, ये बच्चे की शख्सियत बनाता है। छठा इम्पोर्टेंट रूल है कि टाइम, और वो भी बच्चे के साथ स्पेंड करना बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। आजकल देखा जाता है कि पेरेंट्स दोनों ही वर्किंग हैं, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, बच्चों के पास टाइम है, लेकिन फिर जब एक आदत बन जाती है पेरेंट्स से दूर रहने की, तो शायद पेरेंट्स की जो प्रेजेंस है वो खलने लगती है। कोशिश करें कि रोज 10-15 मिनट निकालें सिर्फ और सिर्फ उनके लिए, जहां ना मोबाइल हो, ना डिस्ट्रैक्शन हो, सिर्फ एक कनेक्शन हो। ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट जिंदगी भर का ट्रस्ट बनती है। देखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां हम और आप बेसाख्ते ही बोल जाते हैं। जैसे अगर बच्चे ने रूम मिस कर दिया तो हमारा जो एक ट्रेडिशनल रिएक्शन है, तुम बहुत केयरलेस हो। वही हमारा पॉजिटिव रिएक्शन हो सकता है, तुम जैसे भी हो, आज तुमने रूम अनटाइडी रखा, चलो मिलकर इसे ऑर्गेनाइज करते हैं। रिजल्ट

होगा, प्रॉब्लम सॉल्व होगी और चाइल्ड इंसल्टेड फील नहीं करेगा। ऐसे ही एग्जाम में अगर किसी बच्चे के मार्क्स कम आए तो हमारा एक बहुत ही ट्रेडिशनल सा रिएक्शन है, तुमने हमें सबके सामने जो है वो शर्मिंदा कर दिया। जबकि पॉजिटिव रिएक्शन होना चाहिए, मार्क्स कम आए हैं कोई बात नहीं, चलो देखते हैं किस सब्जेक्ट में तुम्हें ज्यादा मदद की जरूरत है और इसका रिजल्ट क्या होगा, बच्चा मोटिवेट रहता है। वहीं पर किसी बच्चे ने सच बोल दिया कि उससे ये फ्लावर पॉट टूट गया, पॉजिटिव पेरेंटिंग कहती है कि बेटे को शुक्रिया कह के गले लगाओ, पनिशमेंट से उसकी ऑनेस्टी या ऑनेस्ट होने वाली जो एबिलिटी है वो कम हो जाएगी। ऐसे में कभी भी पनिश ना करें, इस सच बोलने की आदत को जितना हो सके इनकरेज करें। देखिए वैसे मैं ये नहीं कहूंगी कि पॉजिटिव पेरेंटिंग हमेशा हर सिचुएशन हर सिनेरियो में पॉसिबल है, इसके अपने भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं और पॉजिटिव पेरेंटिंग की सबसे मुश्किल हिस्सा है एक्चुअल में बच्चे खुद। जी हाँ, कई बार कुछ बच्चे जो हैं वो आपकी ज़्यादा तवज्जो चाहते हैं, कई बार कुछ बच्चे जो हैं वो हो सकता है आपकी डांट भी चाहते हैं, कई बार कुछ बच्चे इस तरह के एडमेंट हो जाते हैं कि जहाँ आपको थोड़ा सा हल्का सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। लेकिन हाँ, पेरेंट्स जो हैं वो समझदार हैं, अपने आप को अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि जब सबसे ज़्यादा स्ट्रेस हो, जब आप सबसे ज़्यादा थके हो, जब सबसे ज़्यादा प्रेशर में हो, उस वक्त कोशिश करें कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल करें। याद रखिए, बच्चे हमारी बात कम और हमारा रवैया ज़्यादा देखते हैं और वहाँ से ज़्यादा सीखते हैं। आजकल बहुत कॉमन सी बात है कि हम चिल्ला देते हैं, चीख देते हैं, उल्टे सीधे वर्ड्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, इससे बच्चा क्या सीखेगा। चलिए एक और छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और ये स्टोरी है आयशा और उसकी अम्मी की। बच्चों अगर आप भी हमें सुन रहे हैं तो जरा गौर से सुनिएगा। आयशा जो आप ही की तरह 11 साल की बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा डरपोक थी। स्कूल में भी कम बोलती, घर में भी कम बोलती। उसकी अम्मी अक्सर कहती थी, तुम इतनी क्वाइट क्यों रहती हो? लेकिन आयशा जवाब नहीं देती थी। एक दिन स्कूल से फोन आया, टीचर ने बताया कि आयशा क्लास प्रेजेंटेशन के वक्त रो पड़ी। अम्मी उसकी काफी परेशान हो गई। रात को उन्होंने आयशा को पास बैठाया, डांटने की बजाय प्यार से कहा, बेटा मैं सिर्फ तुम्हारी बात सुनना चाहती हूँ। पहले 10 मिनट तक आयशा खामोश रही, फिर उसकी आंखों में आंसू। उसने रोते हुए भरे हुए गले से कहा, अम्मी मुझे लगता है कि मैं अच्छी नहीं हूं, मुझसे बार बार गलती हो जाती है, सब मुझे जज करते हैं। अम्मी शॉक में रह गई, उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बेटी कितनी प्रेशर में है। उस दिन के बाद उन्होंने एक नया सफर शुरू किया, रोज 10 से 15 मिनट सिर्फ और सिर्फ आयशा से बात करना, रोज एक पॉजिटिव बात शेयर करना, हर रोज उसे हग करना, हर रोज उसकी छोटी सी चीज की बड़ी तारीफ करना। और अगर आयशा गलती करती तो अम्मी पूछती, तुमने आज इस गलती से क्या सीखा? अगर मार्क्स कम आते तो कहती, तुम्हारी वैल्यू कहीं ज्यादा है इन मार्क्स से। धीरे धीरे आयशा बदलने लगी, उसे स्कूल में जवाब देना शुरू कर दिया, फिर प्रेजेंटेशंस, कॉम्पिटिशंस और एक साल बाद स्कूल असेंबली हुई। आयशा स्टेज पर खड़ी थी, कॉन्फिडेंस के साथ स्पीच दे रही थी, ऑडियंस क्लैप कर रही थी और आज आयशा की आंखों में आंसू नहीं बल्कि अम्मी की आंखों में आंसू थे। स्पीच के बाद आयशा ने स्टेज से नीचे उतर कर कहा, अम्मी अगर आप उस दिन मुझ पर यकीन करके मुझसे बात ना करती तो शायद मैं यहाँ इस स्टेज तक कभी ना पहुंच पाती। उस दिन अम्मी को और वहां बैठी जितनी मदर्स थीं, उन्हें समझ में आया कि बच्चे को बदलने के लिए डांट नहीं, कनेक्शन चाहिए, करेक्शन चाहिए लेकिन कनेक्शन के साथ, लव चाहिए, ट्रस्ट चाहिए और पॉजिटिव पेरेंटिंग की ये सारी चीजें असली रूह है। देखिए जो याद रखने वाली बात है वो ये कि पॉजिटिव पेरेंटिंग का मतलब है प्यार के साथ डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट के साथ गाइडेंस, लिसनिंग विदाउट एनी जजमेंट, करेक्शन विदाउट ह्यूमिलेशन एंड सपोर्ट विदाउट कंडीशंस।
दोस्तों, हम माने या ना माने, आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी हमारी

जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी है। स्मार्टफोन्स हैं, टैबलेट्स हैं, लैपटॉप्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन गेम्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने सिर्फ एडल्ट ही नहीं बच्चों की भी जिंदगी को पूरी तरह से तब्दील कर दिया है। आज का बच्चा डिजिटल वर्ल्ड में पैदा हुआ है, उसके लिए इंटरनेट और गैजेट्स उतने ही नॉर्मल हैं जितने हमारे लिए हमारे बचपन में आउटडोर गेम्स हुआ करते थे। लेकिन इस डिजिटल रेवोल्यूशन के साथ कई चैलेंजेस सामने आए हैं। पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि टेक्नोलॉजी के फायदे हासिल करते हुए बच्चों को उसके नुकसानात से कैसे बचाया जाए। इसीलिए पॉजिटिव चेंज लाना पॉजिटिव पेरेंटिंग का एक अहम हिस्सा बन चुका है। देखिए, पॉजिटिव पेरेंटिंग पर हमने बात की, ऐसी पेरेंटिंग जहाँ प्यार हो, रिस्पेक्ट हो, कम्युनिकेशन हो, अंडरस्टैंडिंग हो, ये सारी चीजें हमने बात की। इसका मतलब हमने ये भी कहा कि बच्चे को पूरी तरह से छोड़ देना नहीं है, एक कंट्रोल हो लेकिन एक गाइडेंस और डायरेक्शन के साथ। पॉजिटिव पेरेंटिंग में आप बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग करते हैं, रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होती है और आपका और उसका एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड होता है। देखिए, डिजिटल एरा में पॉजिटिव पेरेंटिंग का मतलब है टेक्नोलॉजी को दुश्मन समझने की बजाय उसे समझना और वाइजली यूज करना और करवाना। अब आज के बच्चे पहले के बच्चों से काफी डिफरेंट हैं। उनके पास अनलिमिटेड इंटरनेट एक्सेस है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, ऑनलाइन गेम्स हैं, लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स हैं, हर वक्त ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। ये सब अपॉर्चुनिटीज भी हैं और चैलेंजेस भी। पेरेंट्स के लिए मुश्किल ये है कि बच्चे ऑनलाइन दुनिया में क्या देख रहे हैं, किस बात से क्या सीख रहे हैं और किस चीज से उनका छोटा सा जहन मुतासिर हो रहा है। कई दफा बच्चे फिजिकल वर्ल्ड से ज्यादा डिजिटल वर्ल्ड में वक्त गुजारना पसंद करते हैं। कई बार क्यों ज्यादातर ऐसा है और शायद इसी वजह से पॉजिटिव पेरेंटिंग आज एक नेसेसिटी बन चुकी है। आपको शायद जान के थोड़ी सी हैरानी होगी लेकिन बहुत सारी कंट्रीज में बकायदा काउंसलिंग की जाती है पेरेंट्स की। घंटों घंटों बैठाया जाता है और बात की जाती है, समझाया जाता है कि आज के टाइम में किस तरह से पेरेंटिंग की जाए। आजकल के तो पेरेंट्स जो हैं वो बकायदा क्लासेस ले रहे होते हैं। देखिए, डिजिटल एरा में पॉजिटिव पेरेंटिंग इसलिए भी चैलेंजिंग है क्योंकि आज का दौर इन्फॉर्मेशन का दौर है, मिस इन्फॉर्मेशन का दौर है और शायद इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड है। आज का बच्चा हर रोज हजारों मैसेजेस और वीडियोस देखता है, हर इन्फॉर्मेशन सही नहीं होती। पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग सिखाएं, उन्हें बताएं कि हर चीज जो इंटरनेट पर नजर आए वो सच नहीं होती। सोशल मीडिया ने कंपैरिजन के कल्चर को भी क्रिएट किया है। बच्चे दूसरों की कामयाबी देखकर अपनी लाइफ से अनहैप्पी हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि दूसरे बच्चे पास तो सब कुछ है और मैं डिप्राइव्ड हूँ। पॉजिटिव पेरेंटिंग बच्चों को ये समझाती है कि हर इंसान की अपनी अलग जर्नी है। रियल लाइफ और सोशल मीडिया लाइफ में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, ऑनलाइन वर्ल्ड में सिर्फ एजुकेशनल कॉन्टेंट ही नहीं होता, साइबर बुलिंग है, स्कैम्स है, इनअप्रोप्रिएट कॉन्टेंट मौजूद है। ऐसे में सिर्फ अगर आप रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे तो शायद काफी नहीं होगा। यहाँ अवेयरनेस और ट्रस्ट बिल्ड करना जरूरी है। अक्सर देखा गया है कि घर में बैठे लोग अपने फोन्स में बिजी होते हैं, पेरेंट्स ऑफिस ईमेल्स देख रहे होते हैं, बच्चे वीडियोस देख रहे होते हैं, लेकिन दिलों का कनेक्शन कमजोर होता जा रहा है। पॉजिटिव पेरेंटिंग इस गैप को कम करती है। पॉजिटिव पेरेंटिंग को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पॉजिटिव होना भी जरूरी है। जैसे टेक्नोलॉजी की बात हो हम भड़क ना जाएं। सबसे पहले पेरेंट्स को टेक्नोलॉजी समझनी होगी। अगर बच्चा इंस्टा यूज करता है तो पेरेंट्स को बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर बच्चा गेमिंग करता है तो पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि वो गेम क्या है। अगर बच्चा AI टूल यूज करता है तो उनका पर्पस क्या है। नॉलेज के बगैर गाइडेंस मुश्किल हो सकती है। देखिए, पॉजिटिव पेरेंटिंग का मतलब कंप्लीट फ्रीडम भी नहीं है। हेल्दी बाउंड्रीज जरूर सेट कीजिए। डिनर टाइम पे नो फोन्स, सोने से पहले नो स्क्रीन्स, होमवर्क के बाद एंटरटेनमेंट, फैमिली टाइम में गैजेट साइट्स पर। रूल अप्लाई होने चाहिए और ये पेरेंट्स पर भी अप्लाई होते हैं। बच्चे सुनते कम हैं और देखकर ज्यादा सीखते हैं, इस पर तो हमने बात की। जब पेरेंट्स ही फुल टाइम फोन में लगे रहेंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे। एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है वो है ओपन कम्युनिकेशन। बहुत से घरों में बच्चे जो है वो डायरेक्टली अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पाते, यानी अपने फादर से इतना डरते हैं हत्ता कि वो अपनी बड़ी बहन को या बड़े भाई को भेजते हैं या अपनी मम्मी के थ्रू बात कहलवाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। हर बच्चे का एक कॉन्फिडेंस हो अपने पेरेंट्स को डायरेक्टली अप्रोच।

अप्रोच करने का, और जब ये कॉन्फिडेंस होता है तब आप बच्चे से उससे ओपनली कम्युनिकेट कर पाते हैं। आज उसने क्या इंटरेस्टिंग देखा, पूछ सकते हैं तुम कौन सा गेम खेल रहे हो, ला मुझे बताओ, कौन सी वेबसाइट से तुम पढ़ रहे हो, ला मुझे सिखाओ। जजमेंट के बगैर बात करने से बच्चे में ट्रस्ट डेवलप होता है, और एक ट्रस्ट जो है वो बहुत लास्टिंग होता है। देखिए, डिजिटल लिटरेसी सिखाना जरूरी है। फेक न्यूज क्या है ये बताएं, फ्रॉड क्या है ये सिखाएं, प्राइवेसी सेटिंग क्या होती है ये समझाएं, पासवर्ड सिक्योर कैसे किया जाता है ये बताइए, अननोन लिंक्स पर क्लिक क्यों नहीं करना चाहिए ये समझाइए। ये स्किल्स फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। ऑनलाइन और ऑफलाइन में बैलेंस हो, बच्चों को एनकरेज करें। आउटडोर गेम्स के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, रीडिंग के लिए, गार्डनिंग के लिए, फैमिली एक्टिविटीज और क्रिएटिव हॉबीज के लिए। देखिए, बच्चा पूरा दिन अगर गेम खेल रहा है और आपका रिस्पॉन्स है कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्या कर रहे हो, ये अप्रोच पॉजिटिव नहीं है। बल्कि ये होना चाहिए कि मुझे पता है कि तुम गेम एंजॉय करते हो, चलो इसका टाइम स्केड्यूल बना लेते हैं। हो सकता है बच्चा कहे नहीं, मैं तो रोज खेलूंगा, मैं तो हर टाइम खेलूंगा। फिर आप कहें कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ खेलता हूँ। हो सकता है कि बच्चा आपको ना खिलाए, लेकिन आपका उसके बगल में बैठ जाना ही काफी है। 5 दिन ये करके देखिए, छठे दिन बच्चा फोन साइड में रखेगा और आपसे बात करेगा। शुरुआत शायद वो नेगेटिव अंदाज में करे, लेकिन उसका एंड पॉजिटिव अंदाज में होगा, इतना मुझे हर पेरेंट पे यकीन है। देखिए, सोशल मीडिया आज के दौर में बहुत अट्रैक्टिव लगता है, और हम भी कई बार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बचने के लिए बच्चों के हाथ में फोन थमा देते हैं, और उसके बाद बच्चा क्या देख रहा है क्या नहीं हमें भी पता नहीं चलता। हमारी और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि थोड़ी मेहनत ज्यादा, लेकिन सिखाना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए हमें खुद बड़े पेशेंस के साथ, बड़े तहमुल के साथ वक्त देना पड़ता है। पॉजिटिव पेरेंटिंग और इमोशनल इंटेलिजेंस का बड़ा गहरा ताल्लुक है। डिजिटल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन तो दे सकता है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस पेरेंट्स ही सिखा सकते हैं। बच्चे को सिखाएं अपनी फीलिंग्स को आइडेंटिफाई करना, उससे को कंट्रोल करना, एम्पैथी डेवलप करना, रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन करना। ये स्किल्स एआई और टेक्नोलॉजी रिप्लेस नहीं कर सकती। चलिए आज मैं एक बात करती हूँ, एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ, हमजा की। हमजा 13 साल का बच्चा था। उसे ऑनलाइन गेमिंग का बहुत शौक था। स्कूल से आते ही गेम खेलना और सिर्फ खेलना, वीकेंड पर भी गेम। पेरेंट्स कहें या अम्मी कहें, बड़ी परेशान रहती थी, रोज उसे डांटती, फोन छीनती, छुपाती, आर्ग्यूमेंट्स होते, लेकिन बात कुछ भी तरह से नहीं बन रही थी। एक दिन टीचर ने कहा कि लड़का यानी हमजा बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन उसका फोकस पढ़ाई पर कम है। अम्मी घर आई और उन्होंने फैसला किया कि अब वो अपनी अप्रोच बदलेंगी। उस रात उन्होंने हमजा को प्यार से अपने पास बुलाया, उससे कहा, बेटा मुझे बताओ, गेम ऐसा क्या है जो तुम्हें इतना पसंद आता है, और ऐसा क्या है जो मुझे समझ में नहीं आता। हमजा ने झट से फोन निकाला, वो गेम निकाला और अपनी अम्मी को समझाने लगा। उसका एक्साइटमेंट अलग लेवल का था। अम्मी ने बातों बातों में एक चीज सीखी कि उसे गेम इसलिए भी पसंद आता है क्योंकि यहाँ उसे टीम मिलती है, और शायद उसे टीम बिल्डिंग पसंद है, उसे कॉम्पिटिशन भी पसंद है। अम्मी ने सब सुना, कोई लेक्चर नहीं दिया, कोई डांट नहीं लगाई। फिर उन्होंने कहा, गेम ठीक है मगर बैलेंस भी तो जरूरी है। इस लाइन को सुनकर हमजा ने बात आई गई की। एक दिन ये बात हुई, दूसरे दिन भी मम्मी ने बातों बातों में फिर बैलेंस की बात निकाली, तीसरे दिन और चौथे दिन आते आते अम्मी कहती है, उससे पहले हमजा खुद बोल पड़ा, होमवर्क करूंगा उसके बाद फिर मैं गेम खेलूंगा। यहाँ से होमवर्क के बाद गेम खेलने का एक स्केड्यूल सेट हुआ। फिर बात आई आउटडोर एक्टिविटीज की। यहाँ भी हमजा रिलक्टेंट था, लेकिन इस तरह की मेहनत करते करते उसने कहा, होमवर्क करूंगा, गेम खेलूंगा, फिर कुछ देर बाहर भी खेलने जाऊंगा। इस तरह से उसकी फिजिकल एक्टिविटी भी बढ़ गई, और सबसे अहम बात यह थी कि उसका और उसकी अम्मी का रिश्ता इस तरह से मजबूत होता जा रहा था। एक दिन हमजा ने खुद कहा, अम्मी आपने मुझे गेम से दूर किया है, लेकिन अब मैं जो बाहर गेम खेलने जाता हूँ उसे ज्यादा एंजॉय करता हूँ। और ये है असल पॉजिटिव पेरेंटिंग का मकसद, कंट्रोल नहीं करना, करेक्ट करना कनेक्शन के साथ।
देखिए बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई, एक क्विक रिमाइंडर फिर से मैं आपको देना चाहूंगी कि पॉजिटिव पेरेंटिंग के गोल्डन

वो सब याद रखिए, सुनिए ज्यादा, जज कम कीजिए, गाइड ज्यादा कीजिए, कंट्रोल कम कीजिए, ट्रस्ट ज्यादा हो, डर कम हो, सिखाइए ज्यादा, पनिशमेंट कम हो, कनेक्शन ज्यादा हो, करेक्शन जो है थोड़ा सा कम हो सकता है, अंडरस्टैंड बिफोर यू रिएक्ट ये बहुत जरूरी है, और हाँ बी प्रेजेंट नॉट जस्ट अवेलेबल, ये चीज गांठ बांधी है। अब जाते जाते मैं सभी पेरेंट्स से कहना यही चाहूंगी कि आप पेरेंट्स हैं, आप अपने बच्चों के लिए जो सोचेंगे वो सबसे बेस्ट है। हम में से कोई आपसे अच्छा नहीं सोच सकता, लेकिन आजकल अलग ही दौर है, अलग ही चैलेंजेस हैं। डिजिटल एरा को हम रोक नहीं सकते, टेक्नोलॉजी को हम रोक नहीं सकते, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस टूल्स और ज्यादा आगे पावरफुल होंगे, बच्चों की दुनिया और ज्यादा डिजिटल होगी, लेकिन एक चीज जो कभी रिप्लेस नहीं हो सकती और वो है पेरेंट्स की मोहब्बत, डायरेक्शन और इमोशनल कनेक्शन। टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन दे सकती है लेकिन वैल्यूज नहीं, इंटरनेट नॉलेज दे सकता है कैरेक्टर नहीं, सोशल मीडिया फॉलोअर्स दे सकते हैं फैमिली सपोर्ट नहीं। पॉजिटिव पेरेंटिंग का मतलब टेक्नोलॉजी के खिलाफ जाना नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर अपने बच्चों को एक बैलेंस्ड, हेल्दी और सक्सेसफुल इंसान बनाना है। याद रखिए, आज आपका बच्चा फोन की स्क्रीन को देख रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा वो आपका रवैया देख रहा है। आज आप उसे ऑनलाइन सेफ्टी सिखा रहे हैं, कल वो जिंदगी के फैसले इसी बुनियाद पर करेगा। आज आप उसे ट्रस्ट दे रहे हैं, कल वो सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ दुनिया का मुकाबला करेगा। पॉजिटिव पेरेंटिंग डिजिटल एरा की सबसे बड़ी सुपर पावर है। जो पेरेंट्स इस सुपर पावर को समझ लेते हैं वो सिर्फ सक्सेसफुल बच्चे नहीं बल्कि एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग, रिस्पॉन्सिबल, कंपैशनेट इंसान तैयार करते हैं। जी हाँ, डिजिटल दुनिया बच्चों को टेक्नोलॉजी सिखाती है, लेकिन जिंदगी जीना सिर्फ पॉजिटिव पेरेंटिंग से ही आता है। जब पेरेंट्स कनेक्शन को स्क्रीन पर तरजीह देते हैं तो बच्चे सिर्फ स्मार्ट नहीं बल्कि वाइज भी बनते हैं। जब भी पेरेंटिंग के बारे में बात हो तो आपकी तवज्जो ग्रेड्स पर नहीं होनी चाहिए, अचीवमेंट्स पर होनी चाहिए। आपकी तवज्जो इस बात पर होनी चाहिए कि बच्चे ने क्या सीखा। हम सोचते हैं कि अच्छी स्कूल, एजुकेशन, मॉडर्न फैसिलिटीज और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बच्चे को एक सक्सेसफुल इंसान बना देती है, लेकिन हकीकत ये है कि बच्चों की जिंदगी के सबसे कीमती इन्वेस्टमेंट ना गैजेट है, ना ऐप है, ना कोई एक्सपेंसिव स्कूल। सबसे कीमती इन्वेस्टमेंट है पेरेंट्स की प्रेजेंस, मोहब्बत और पॉजिटिव गाइडेंस। आज हमने डिजिटल एरा में पॉजिटिव पेरेंटिंग की बात की। हम डिजिटल एरा में जी रहे हैं। आज का बच्चा टेक्नोलॉजी के दरमियान ग्रो कर रहा है। उसके हाथ में स्मार्टफोन है, उसके सामने सोशल मीडिया है, उसके पास इंफॉर्मेशन का समंदर है, लेकिन इंफॉर्मेशन और विजडम में बड़ा फर्क होता है। इंफॉर्मेशन इंटरनेट से मिल सकती है, नॉलेज स्कूल से दी जा सकती है, लेकिन विजडम, वैल्यूज और कैरेक्टर सिर्फ घर से मिलता है, और इसीलिए पॉजिटिव पेरेंटिंग आज के जमाने की सबसे बड़ी जरूरत है। आज के बच्चों को सिर्फ ये नहीं चाहिए कि उनके पास लेटेस्ट टैबलेट हो, उसे ये भी चाहिए कि कोई उसे बात करे, उसकी फीलिंग्स को समझे, उसकी कामयाबी पर उसे अप्रिशिएट करे और उसकी फेलियर्स पर भी उसका हाथ थामे। कई पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चे को हर चीज प्रोवाइड कर देना ही असली पेरेंटिंग है, लेकिन बच्चे अक्सर टॉयज भूल जाएंगे, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भूल जाएंगे, लेकिन वो ये याद रखते हैं कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें किस तरह से महसूस करवाया। उन्हें याद रहता है कि वो जब उदास थे तो कोई था उनका हाथ थामने के लिए, जब वो गलत थे तो किसी ने प्यार से उन्हें समझाया, जब दुनिया ने मना किया तो उन्होंने उन पर यकीन किया। पॉजिटिव पेरेंटिंग इसी यकीन का नाम है। ये पेरेंटिंग हमें सिखाती है कि बच्चों को सिर्फ कंट्रोल नहीं करना है, उन्हें समझना है, सिर्फ रूल्स नहीं वैल्यूज सिखानी है, सिर्फ पनिशमेंट्स नहीं लर्निंग अपॉर्चुनिटीज देनी है। आज के इस दौर में सबसे बड़ा चैलेंज टेक्नोलॉजी है, उसे ही सबसे बड़ा हथियार बनाएं। पॉजिटिव पेरेंटिंग हमें याद दिलाती है कि फैमिली के दरमियान रिश्ते वाईफाई से नहीं, ट्रस्ट से जुड़ते हैं। बच्चे को हर रोज 10 से 15 मिनट का आपका प्यार भरा साथ चाहिए, उसे आपकी जरूरत थी, जरूरत है और जरूरत होगी। बस अब तो मैं यही कहूंगी कि बच्चे अपनी गलतियों से सीखे ना सीखे, लेकिन आपसे बहुत कुछ सीखते हैं, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि सोसाइटी को कैसा बनाना है। आज का बच्चा कल की सोसाइटी का हिस्सा है। आपका हर लफ्ज बच्चे के दिल में एक निशान छोड़ देता है, आपका हर एनकरेजमेंट उसकी हिम्मत

0: जाता है, आपकी हर तारीफ उसका कॉन्फिडेंस बनती है, आपकी हर मोहब्बत से कही हुई बात उसकी जिंदगी को बदल देती है। कभी कभी हम समझते हैं कि पेरेंटिंग सिर्फ और सिर्फ बच्चों को सिखाने का ही नाम है, जबकि पेरेंटिंग खुद भी सीखने का नाम है। और हमें क्या सीखना है? एज अ पेरेंट, सब्र करना, पेशेंटली सुनना, सीखना एम्पैथी सीखना, और प्यार को सही तरीके से एक्सप्रेस करना। जब पेरेंट्स पॉजिटिव खुद बन जाते हैं तो घर का माहौल यकीन मानिए पॉजिटिव हो जाता है, और इस पॉजिटिव माहौल में पर्सनालिटीज खिल जाती हैं, और जब बच्चों की पर्सनालिटी खिल उठती है तो दुनिया में भी रोशनी फैलाते हैं। आज से हम ये वादा करेंगे खुद से कि हम अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ कामयाब नहीं, एक अच्छा इंसान बनाएंगे, उन्हें एक कॉन्फिडेंट इंसान बनाएंगे, एक ऐसा इंसान जो कंपैशनेट हो, उन्हें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना है, और सबसे बढ़कर कि हम उन्हें ये एहसास दिलाएं कि घर उनके लिए दुनिया की सबसे महफूज जगह है। क्योंकि जब बच्चा ये महसूस करता है तो वो एक अलग तरह की हिम्मत और हौसला रखता है। आखिर में बस यही कहूंगी कि टेक्नोलॉजी बच्चों के साथ है और रहेगी और तेजी से बढ़ेगी, लेकिन पॉजिटिव पेरेंटिंग उनकी हमेशा रहनुमाई करेगी। डिजिटल दुनिया उन्हें स्मार्ट बनाएगी, लेकिन पॉजिटिव पेरेंटिंग उन्हें वाइज बनाएगी। और जब स्मार्टनेस और विस्डम दोनों साथ आ जाएं, तब एक ऐसा इंसान पैदा होता है जो सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी को बेहतर बनाता है। बच्चों को दुनिया की हर फैसिलिटी दें या ना दें, उन्हें सबसे पहले अपना वक्त दें, भरोसा और तवज्जो, क्योंकि यादगार बचपन गैजेट से नहीं मोहब्बत से बनता है, और मजबूत मुस्तकबिल ग्रेड से नहीं पॉजिटिव पेरेंटिंग से तैयार होता है। चलिए आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मुझे यानी नासिया और शहबाज अंसारी, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते और सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: फैमिली मैटर्स, क्योंकि हर फैमिली मैटर्स।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: दोस्तों, हमारी ट्रैफिक सेफ्टी तभी बेहतर हो सकती है जब हम सब कानून का एहतराम करें। ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल 43 के मुताबिक अगर कोई व्हीकल ट्रेलर या सेमी ट्रेलर टो कर रही है तो उसे लेफ्ट लेन यूज करने की इजाजत नहीं होती। लेफ्ट लेन फास्ट मूवमेंट्स और ओवरटेकिंग के लिए होता है। जब कोई हैवी व्हीकल या टोइंग व्हीकल लेफ्ट लेन में आ जाती है तो ट्रैफिक स्लो हो जाता है, एक्सीडेंट का रिस्क बढ़ जाता है और इमरजेंसी व्हीकल्स को भी रास्ता नहीं मिलता। इसलिए कानून ये कहता है कि ट्रेलर टो करते वक्त हमेशा राइट हैंड साइड पर रहें, किसी भी व्हीकल को ओवरटेक ना करें, अपनी स्पीड और डिस्टेंस का ख्याल रखें और याद रखें कि ये सिर्फ कानून ही नहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। वजारत दाखिला का कहना है कि अगर हम सब मिलकर लेन डिसिप्लिन मेंटेन करें तो हम अपनी और दूसरों की सेफ्टी को यकीनी बना सकते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम, मैं दुआ वाला कबीर FM 107 पे एंड वेलकम टू अनदर टेक अपडेट। ये बोलने के लिए मैंने कितना वेट किया बता आपको, टेक अपडेट। तो शुरू करते हैं सबसे पहले वेबसाइट से, ऑफकोर्स कुछ बहुत ही जबरदस्त AI टूल्स एंड वेबसाइट जो आपके काम आएंगे, एंड देन टूवर्ड्स द न्यूज। तो नंबर वन ऑन द लिस्ट टुडे इज एन अमेजिंग वेबसाइट जहां पर आप अपना QR कोड बना सकते हैं। अब आप बोलेंगे ये तो कोई भी बता सकता है, पर QR कोड को और भी इंटरेस्टिंग बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपको टाइप करना है एड्रेस बार में tree.icqr.com, ट्री TREE, पेड़ वाला ट्री, .icqr.com और सी वो अल्फाबेट वाला सी। जब अभी टाइप करेंगे आपके सामने एक वेबसाइट आएगी जहां पर आप जो है खूबसूरत बारकोड बना सकते हैं, और इन बारकोड की खास बात यह है कि आप इनको एक ट्री की तरह मैनेज कर सकते हैं। लेट मी एक्सप्लेन, आप इसको 3D मॉडल जब स्पिन करेंगे तो उसमें कोई सा भी कलर दे सकते हैं, कैसा भी कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप कोई ऐसी जगह बारकोड ये पेस्ट करने वाले हैं जो आपका पैम्फलेट है, या फिर आप रेस्टोरेंट चलाते हैं, या फिर आप ऐसी फैंसी तरीके से अपने घर में कहीं पोस्ट करना चाहते हैं जहां से लोग वाईफाई आपका यूज कर सकें, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, पर यहां से बारकोड आप बहुत ही खूबसूरत तरीके से बना सकते हैं। इस तक में भाई कस्टमाइजेशन आ चुकी है। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू अनदर वन। अगली वेबसाइट है cleverhumanizer.ai। मैं बताता हूँ इसकी स्पेलिंग, क्लेवर वो चालाक वाला क्लेवर, सो CLEVER, फिर ह्यूमनाइजर HUMANIZER, cleverhumanizer.ai। जो इसका नाम है वही इसका काम है। बेसिकली आप किसी भी अगर AI से कुछ भी पूछते हैं, आपको वो AI जनरेटेड टेक्स्ट देता है, जो कि पता लगता है और पकड़ा भी जाता है कि भाई हाँ ये पक्का AI से नहीं।

0: निकाला है, मगर उस टेक्स्ट को अगर आप इस वेबसाइट पे पेस्ट करेंगे तो ये एक ह्यूमनाइज्ड वर्जन ऑफ द सेम टेक्स्ट आपको देगा, तो ऐसा लगेगा कि भाई किसी इंसान ने ही लिखा है। तो बेहतरीन बेहतरीन वेबसाइट है, आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। ये हालांकि जो कॉम्प्लेक्स चीज होती है उनको जिस तरीके से आसान करता है, दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। अगर कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो समझने में दिक्कत आ रही है, हालांकि एआई ने आपको दिया है, उससे भी पूछ सकते हैं, लेकिन एक ह्यूमनाइज्ड टेक्स्ट अगर आपको चाहिए, दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन गो ऑन टू। अब एक और वेबसाइट, अगली वेबसाइट का नाम है FMHY, ये अल्फाबेट्स हैं FMHY.net। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको सब कुछ आपकी नजरों के सामने आ जाएगा। क्या क्या ये आपको बताता हूँ, सारे के सारे टूल्स, सारे के सारी वेबसाइट्स। आपको गेमिंग वेबसाइट चाहिए, गेमिंग वेबसाइट मिल जाएगी, स्ट्रीम करने के लिए, स्ट्रीम करने के लिए मिल जाएगी, एआई चाहिए, एआई मिल जाएंगे। आपको टूल्स चाहिए इमेज नॉट ओनली जनरेशन बट एडिट करने के लिए, वीडियो एडिट करने के लिए, कैसे भी, वो सारे के सारे लिस्ट बाय लिस्ट आपके सामने आते चले जाएंगे। बहुत बड़ा कलेक्शन है इस वेबसाइट पे, विच आई रियली रियली लव। आई थिंक ये बहुतों के काम आने वाली है, तो मैंने कहा ये तो मैं जरूर बताऊंगा। सो एफ लाइक अ फैन, एम लाइक इन मंकी, एच लाइक इन हॉर्स, एन वाई एज इन यंकी या वाई एज इन याक, FMHY.net। ओके, अब बढ़ते हैं जरा खबरों की तरफ। ऑलराइट, तो अभी बहुत सारी खबरें आ रही हैं ओपन एआई से जुड़ी हुई। तो ओपन एआई का जो नेक्स्ट मॉडल फेस है वो थोड़ा टफ बनाने की कोशिश की जा रही है। एक अनरिलीज्ड वर्जन है एस्ट्रा मॉडल, जो बहुत बहुत पावरफुल है, और बताया जा रहा है कि वो ऑटोनोमस आइडेंटिटी और पोटेंशियली साइबर सिक्योरिटीज की जो वल्नरेबिलिटीज है उनको भी थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बना सकता है। अभी डेवलपमेंट जारी है भाई, कोई बच के निकल को नहीं पाएगा। ये बहुत बढ़िया चीज बनने वाली है एंड दिस विल कम इन प्लेस। इसके अलावा टिम कुक की खबर आई है, जो कि एप्पल के लीडर हैं, और टिम कुक अब एप्पल के सीईओ नहीं रहे। आई नो ये खबर जिनको पता है बहुत बढ़िया, मगर उनके 15 साल के करियर के बाद लीडिंग एज द सीईओ ऑफ एप्पल, अब जॉन टर्निस टेक ओवर कर चुके हैं, और इमीडिएट चैलेंज उनके लिए यही होगा कि भाई कुछ बदले और ये जो गैप है ये आएगा वो तो मिटाएं, साथ में कुछ नया डिजाइन लेके आ जाओ मलिक। तो ये थी टेक अपडेट, मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर दिल से देसी टेक अपडेट।
1: आप सुन रहे हैं एफएम 107
2: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी
2: स्कैम अलर्ट।
3: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और हर रोज आपसे मुखातिब होता हूँ इस वक्त जहाँ पर हम बात करते हैं नए जमाने के नए स्कैम के बारे में। वेल, फ्रॉड के बारे में आपको पता होना चाहिए। हर दिन एक नया फ्रॉड, और ये जो फ्रॉडस्टर्स हैं डिजिटल इस्तेमाल कर रहे हैं, कई बार ये फिजिकली भी लोगों को अब फ्रॉड करने लग गए हैं। लेकिन आज जिस फ्रॉड के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, ये फ्रॉड बहुत ही आसानी से कोई फ्रॉडस्टर्स आपके साथ कर सकता है और आपको यकीन भी नहीं होगा। कई बार आप इनके चंगुल में फंस जाते हैं और बहुत लेट पता चलता है। और ऐसा ही एक फ्रॉड है जो अगर आपके साथ हो गया तो आपको थोड़ा लेट पता चलता है। दिस स्कैम इज कॉल्ड ओवर पेमेंट स्कैम। दोस्तों, ये काम कैसे करता है इस पर जरा सबसे पहले नजर डालते हैं। ओवर पेमेंट स्कैम आमतौर पर ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर्स, होलसेलर्स और इंडिपेंडेंट सेलर्स को अपना शिकार बनाता है। इस फ्रॉड में एक फ्रॉड बायर आपकी शॉप या वेबसाइट पर आकर एक बहुत बड़ा ऑर्डर देता है या कोई बहुत महंगा आइटम ना खरीद लेता है, और बगैर आपसे मांडवली बोले तो नेगोशिएशन के आपसे आपने जो भी अमाउंट बताया है अपने प्रोडक्ट का, वो आसानी से मान जाता है और वो आपसे खरीद लेता है। वो पेमेंट करने के लिए एक बिजनेस चेक भेजता है या फिर किसी चुराए हुए क्रेडिट कार्ड का यूज करता है। इस स्कैम का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये होता है कि वो जानबूझकर एक्चुअल प्राइस से बहुत ज्यादा पैसा भेज देता है। मिसाल के तौर पे मैंने आपको कॉल किया और कहा कि भाई आपका जो प्रोडक्ट है ना वो मुझे खरीदना। आपने कहा भाई 10 रियाल पर पीस पड़ेगा। मैं कहूंगा ठीक है, एक काम करिए, आप 3000 पीस मुझे भेज दीजिए। जो भी पेमेंट बनता है मैं उससे आपको 10000 रियाल या 10000 रुपए, वट एवर द अमाउंट इज, मैं बढ़ाकर आपको पेमेंट भेजूंगा। और कैसे? चेक के जरिए। चेक बनाकर मैंने आपको भेज दिया, आपने प्रोडक्ट अभी भेजा नहीं है। लेकिन जब आपके पास चेक पहुंच गया तो मैं आपसे कहता हूं भाई आप जो है प्रोडक्ट भेज सकते हैं। लेकिन खेल यहीं शुरू होता है। होता यह है जब वो जानबूझकर ज्यादा पैसे भेज देते हैं तो वो करते ये हैं कि बिल का, जैसे अगर 10000 का बिल है तो वो 1000 एक्स्ट्रा कर देंगे, 11000 कर देंगे, और वो कहेंगे अरे वो धोखे से मैंने आपको ज्यादा पेमेंट कर दिया है, तो जो ज्यादा पेमेंट आपको किया है आप वो मुझे वापस कर दें। और जब चेक आपका टूटेगा तो फिर आपको पैसा मिल ही जाएगा। पैसा भेजने के तुरंत बाद बायर सेलर को मैसेज या कॉल करता है और बहुत माफी भी मांगता है। तो कहता है सॉरी, मेरे अकाउंट से जो है गलती हो गई है, अकाउंटेंट वाले से, और ज्यादा पैसे आपको दे दिए हैं। वो सब तरीके अपनाता है आपको फंसाने के लिए। आप 1000 काट लीजिएगा और बाकी की जो 4000 है ना वो मुझे तुरंत आप बैंक वायर ट्रांसफर कर दीजिए या डिजिटल वॉलेट के जरिए रिफंड कर दीजिए। सेलर को लगता है कि सामने वाला इंसान जेन्युइन है, पैसा तो उसके बैंक में आ ही चुका है, बस चेक जो है वो मुझे जमा करनी है बैंक में, मुझे पैसे मिल जाएंगे। फिलहाल के लिए अभी उसको ज्यादा जो बढ़ा हुआ पैसा है वो वापस कर देते हैं। इसलिए वो बिना सोचे समझे

0: एक्स्ट्रा पैसे रिफंड कर भी देता है और सामान भी शिप कर देता है। कुछ दिनों बाद जब बैंक उस बायर के ओरिजिनल चेक या क्रेडिट कार्ड को प्रोसेस करता है, तब जाकर पता चलता है कि चेक फेक था या कार्ड जो है वो चुराया हुआ था। बैंक वो पूरा ट्रांजैक्शन कैंसिल कर देता है। अब सेलर के अकाउंट से वो पहले वाले पैसे भी चले गए, रिफंड किया हुआ पैसा भी गया और सामान भी चला गया। ये है सबसे बड़ा नुकसान, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी है। दोस्तों, क्या सॉल्यूशन है इस तरह के स्कैम से बचने के लिए? सबसे पहला है, पैसे क्लियर होने का वेट करें। जब आपको कोई क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करे या फिर आपके बैंक चेक के थ्रू आपको पेमेंट करे, जब तक कोई भी फैसला ना ले, पेमेंट आपके पास आना चाहिए। क्रेडिट कार्ड यानी कि आपके बैंक में क्रेडिट होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट अगर उसने किया है तो। सेटल हो जाए, क्लियर हो जाए, तब तक सामान शिप भी ना करें और ना ही कोई रिफंड प्रोसेस करें। सिर्फ अकाउंट में पेंडिंग बैलेंस देखकर खुश ना हो और कभी भी कैश रिफंड नहीं करना। एक तो ये है कि आपने बैंक के थ्रू डायरेक्ट किसी बैंक को ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ पर थोड़ा एक बार को होता है कि आपके पास बैकअप प्लान है कि हाँ, मैंने फला अकाउंट में ट्रांसफर किए, उसने मुझसे कहा था, तो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आसान हो जाएगा। लेकिन ऐसा फिर भी ना करें कि किसी के अकाउंट में पैसे आप ट्रांसफर कर दें, उसके अलावा कैश भी ना दें। किसी कस्टमर ने एक्स्ट्रा पेमेंट कर भी दिए तो उन्हें कैश या वायर ट्रांसफर के जरिए रिफंड कभी मत करें। उन्होंने बोला भी है अगर, तब भी, कितने भी बड़े आपके वो लॉयल कस्टमर क्यों ना हो। उसके अलावा सिक्योर पेमेंट गेटवेज, अपनी वेबसाइट पर हमेशा उन्हीं पेमेंट गेटवेज का यूज करें जो फ्रॉड डिटेक्शन और चार्ज बैक प्रोटेक्शन टूल्स ऑफर करते हैं। उसके अलावा एक तरीका है अजीब ऑर्डर्स को पहचानना। ये आमतौर पर सब नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा होशियार होने से आप जबरदस्त तरीके से होने वाले स्कैम से बच सकते हैं। अगर कोई बायर अचानक बिना बार्गेनिंग किए बहुत बड़ा ऑर्डर देता है बगैर नेगोशिएशन के, तो पेमेंट के लिए अजीब तरीके अगर वो यूज कर रहा है, तो अभी आपको सोचने, देखने और समझने की जरूरत है। तो दोस्तों, ये था आज का फ्रॉड अवेयरनेस का एपिसोड और उम्मीद है कि इस तरह के नए स्कैम्स, नए जमाने के नए फ्रॉड से आपको बचाने के लिए मैं जितनी भी कोशिश कर रहा हूँ वो मुकम्मल हो रही होगी। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट, आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।

he made his entry into the Indian Test cricket squad. The rest, sab log kehte hain na, was history. Vishwan Singh Bedi ne November 1966 mein West Indies ke khilaf apna test debut kiya aur agle chand saalon mein wo Indian bowling attack ka ek aham hissa ban gaye. अच्छा उनका बॉलिंग एक्शन देखने में इतना स्मूथ और नेचुरल था कि लगता था जैसे वो गेंद को हवा में तैरने दे रहे थे. लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन उनकी पहचान थी, लेकिन उनकी असल ताकत थी फ्लाइट, ड्रिफ्ट, एक्यूरेसी और पेशेंस यानी सबर. बेदी बैट्समैन को सिर्फ आउट करने की कोशिश नहीं करते थे, वो बैट्समैन को सोचने पर मजबूर करते थे. कभी गेंद को हवा में जरा सा रोकना, कभी ड्रिफ्ट करवाना, कभी फिर पिच पर लैंडिंग के बाद टर्न हासिल करना, ये उनकी बॉलिंग का कमाल था. 1970 की दहाई में इंडिया के स्पिन क्वार्टेट दुनिया भर में मशहूर हुए. बेदी के साथ एरापल्ली प्रसन्ना, भगवत, चंद्रशेखर और श्रीनिवास वेंकट राघवन ने इंडियन क्रिकेट को एक नया बॉलिंग आइडेंटिटी दी और इन चार स्पिनर्स ने मिलकर ऑपोजिशन बैट्समैन के लिए मुश्किलात पैदा कर दी थी. That was the dominance of these four bowlers. Marvelous. बेदी ने इंडिया के लिए 67 टेस्ट मैचेस खेले और 266 विकेट हासिल किए. बाद में कपिल देव इस रिकॉर्ड को तोड़ता है. उनका बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस 7 विकेट्स फॉर 98 रन रहा. ओडीआई इंटरनेशनल्स में भी उन्होंने इंडिया की नुमाइंदगी की और 10 विकेट हासिल किए. और अब बात करते हैं 1976 की. 1976 में बेदी को इंडियन टेस्ट टीम का कप्तान भी बनाया गया और उनकी कप्तानी में इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज जीती और उनकी लीडरशिप ने उनकी पर्सनालिटी का एक और पहलू सामने रखा. लेकिन बेदी की सबसे खास बात उनकी क्रिकेटिंग ऑनेस्टी थी, ईमानदारी. वो सिर्फ अपनी टीम के लिए नहीं बल्कि गेम के लिए खड़े होते थे. उन्होंने अपने करियर में स्पोर्ट्समैनशिप और फेयर प्ले को बहुत अहमियत दी. क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद भी बेदी ने गेम से रिश्ता नहीं तोड़ा. वो कोच, कमेंटेटर और मेंटोर के तौर पर क्रिकेट से जुड़े रहे और नए प्लेयर्स को स्पिन बॉलिंग के बारे में अपना इल्म जो है वो ट्रांसफर करते थे कि भाई सीखो, ऐसे ही बॉल करो, ऐसे गेंद फेंको. हरभजन सिंह वॉज द बेस्ट एग्जाम्पल. उनकी लेगेसी सिर्फ उन 266 टेस्ट विकेट्स तक महदूद थी. विशन सिंह बेदी ने इंडियन क्रिकेट को यह सिखाया कि बोलिंग सिर्फ पेस और पावर का नाम नहीं, कभी कभी एक धीमी हवा में तैरती हुई गेंद भी बैट्समैन की पूरी दुनिया हिला सकती है. और बेदी की जिंदगी क्रिकेट के लिए जुनून, डिसिप्लिन और इंडिविजुअलिटी की मिसाल है. एक ऐसा बॉलर जो बैट्समैन को डरा कर नहीं बल्कि उन्हें कंफ्यूज करके आउट करता था. दैट वाज बिशन सिंह बेदी. और इसीलिए बिशन सिंह बेदी का नाम इंडियन क्रिकेट की तारीख में हमेशा एक खूबसूरत स्पिन के साथ याद किया जाएगा. दोस्तों, बिशन सिंह बेदी की कहानी हमें ये बताती है कि क्रिकेट में कामयाबी सिर्फ टैलेंट से नहीं मिलती, उसके लिए सब्र चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए और अपने हुनर पर यकीन चाहिए. बेदी ने अपनी बॉलिंग से विकेट्स हासिल किए, लेकिन अपनी पर्सनालिटी और स्पोर्ट्समैनशिप से क्रिकेट फैंस के दिल जीत लिए. उम्मीद है आपको हमारा आज का यह स्पोर्ट्स सेगमेंट पसंद आया होगा. अगली बार एक और नए स्पोर्ट्स लेजेंड की कहानी के साथ वापस आएंगे. तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत. खुश रहें, सेहतमंद रहें और हमेशा अपना जज्बा जिंदा रखें. फी अमानिल्लाह.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं कल्चर मोमेंट। मैं हूं आपकी आरजे महावश। इस 5 मिनट के सफर में हम बात करेंगे कतर की खूबसूरत सकाफत, रिवायत और विरसे की। यहाँ हर रसम, हर लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है। आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस विरसे को अगली नस्लों तक पहुँचाने का अहद करें। कतरी खवातीन का रिवायती लिबास खूबसूरती, शराफत और सकाफती पहचान का हिस्सा है। इस लिबास में सादगी, सलीका और खूबसूरत तरतीब नजर आती है। मौका, घर के माहौल और जाती पसंद के मुताबिक इसके रंग, कपड़े और अंदाज मुख्तलिफ हो सकते हैं। कतरी खवातीन के रिवायती लिबास में अबाया को खास अहमियत हासिल है। एक लंबा और खुला लिबास होता है जो अक्सर दूसरे कपड़ों के ऊपर पहना जाता है। अबाया अपनी सादगी, वकार और आराम की वजह से मशहूर है। इसके कपड़े नक्श, सिलाई और सजावट में मुख्तलिफ अंदाज देखे जा सकते हैं। अबाया हमेशा एक ही शक्ल का नहीं होता। कुछ अबाए सादा और एक रंग के होते हैं, जबकि कुछ में मुख्तलिफ खूबसूरत कढ़ाई, बारीक नक्श या मुख्तलिफ कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है। आज के दौर में रिवायती अंदाज और जदीद डिजाइन एक साथ नजर आते हैं। अबाये के साथ शैला भी पहना जाता है। शैला एक लंबा दुपट्टा होता है जो सर को ढांपने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे पहनने के मुख्तलिफ अंदाज हो सकते हैं। कुछ खवातीन इसे सादा अंदाज में ओढ़ती हैं, जबकि कुछ मौके और लिबास के मुताबिक ज्यादा तरतीब से पहनती हैं। रिवायती लिबास का एक और खूबसूरत पहलू अंदर पहने जाने वाले कपड़े हैं। खास मौके पर खवातीन रंगीन और खूबसूरत लिबास का इंतखाब कर

0: सकते हैं। अबाया के नीचे पहने जाने वाले कपड़े अक्सर लिबास की मुकम्मल खूबसूरती का हिस्सा होते हैं। कतरी खवातीन का लिबास सिर्फ कपड़े का नाम नहीं बल्कि सलीके और मौके की समझ का भी इजहार है। शादी, ईद, घर की दावत या किसी रस्मी मुलाकात के लिए लिबास का इंतखाब मुख्तलिफ हो सकता है। हर मौके पर लिबास का अंदाज उसकी अहमियत और खुशी को जाहिर करता है। जेवर और एक्सेसरीज भी खवातीन के लिबास को मजीद दिलकश बनाते हैं। खास मौके पर सोने के जेवर, खूबसूरत कंगन, अंगूठियां या दूसरी सजावटी अशिया पहनी जा सकती हैं। ये चीजें सिर्फ सजावट नहीं बल्कि खानदानी याद और खास मौके की निशानी भी हो सकती हैं। कतरी लिबास में कढ़ाई और बारीक काम की अहमियत अपनी जगह। हुनरमंद कपड़े पर नफीस नक्श बनाकर उसकी खूबसूरती बढ़ाते हैं। ऐसे काम में वक्त, तवज्जो और महारत दरकार होती है। इसीलिए दस्तकारी से तैयार होने वाली चीजें कदर की निगाह से देखी जाती हैं। रिवायती लिबास पहनने के साथ उसके आदाब का ख्याल रखना भी जरूरी है। लिबास साफ सुथरा हो, मौके के मुताबिक हो और पहनने वाले की राहत का ख्याल रखे। खूबसूरती के साथ सादगी और आराम को भी अहमियत दी जाती है। कतरी सकाफत में लिबास का ताल्लुक खानदान और मवाकिस से भी होता है। खास तकरीबात पर खवातीन अपनी तैयारी और लिबास के जरिए खुशी का इजहार करती हैं। खानदानी महफिलों में मुख्तलिफ उम्रों की खवातीन एक दूसरे के साथ बैठती हैं, बातचीत करती हैं और लिबास, जेवर और हुनर के बारे में तजुर्बे शेयर करती हैं। नई नस्ल के लिए रिवायती लिबास सीखना अपनी सकाफत से जुड़ने का एक प्यारा तरीका है। माँ, नानी या दादी बच्चियों को लिबास पहनने, सजाने और संभालने के आदाब सिखाती हैं। इन लम्हों में सिर्फ एक हुनर नहीं बल्कि मोहब्बत और खानदानी राबता भी मुंतकिल होता है। आज की कतरी खवातीन तालीम, काम और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में अपना किरदार अदा कर रही हैं। वो जदीद तर्ज जिंदगी के साथ रिवायती लिबास को भी अपने अंदाज में अपना सकती हैं। इससे पता चलता है कि सकाफत रुक जाने वाली चीज नहीं बल्कि काम के साथ खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ने वाली रिवायत है। रिवायती लिबास का एहतराम सिर्फ उसे पहनने तक महदूद नहीं, किसी भी सकाफत के लिबास को समझना और इज्जत देना भी अच्छे तहम्मुल और हुस्न अखलाक की अलामत है। जब हम दूसरों की रिवायत को कदर की निगाह से देखते हैं तो एक बेहतर और पूरे एहतराम माहौल पैदा होता है। इसलिए कतरी खवातीन का रिवायती लिबास सिर्फ जाहिरी पहचान नहीं बल्कि एक सकाफती कहानी है। इस कहानी में खानदान की मोहब्बत, हुनरमंदी की कहानी, खास मौके की खुशियां और अपने विरसे की कदर शामिल है। यही वजह है कि ये लिबास आज भी फखर और अपनाइयत के साथ अपनाया जाता है। तो लिसनर्स, आज के कल्चर मोमेंट को यही मुकम्मल करते हैं। याद रखिए, सकाफत सिर्फ गुजरे हुए वक्त का नाम नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा है। मैं हूँ आपकी आरजे महाविश। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखिए और कतर की खूबसूरत सकाफत को हमेशा इज्जत और मोहब्बत के साथ याद रखिए। अल्लाह हाफिज।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: क्या आपने कभी सोचा है कि कल हमारा फ्यूचर, हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा? क्या AI सिर्फ एक मशीन है या एक ऐसी ताकत जो हमारी जिंदगी बदल रही है? डरिए नहीं, समझिए। RJA फॉर अमिता के साथ AI अनलॉक्ड पर, एक ऐसा सफर जहां हम रोबोटिक्स से लेकर मशीन लर्निंग तक हर मुश्किल बात को आसान बनाए। तो सुनिए AI अनलॉक्ड RJA फॉर अमिता के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी अमिता आपके साथ और आपके लिए लेकर आई हूं AI अनलॉक्ड का एक सुपर साइज्ड एडिशन। जनाब, अगर आप सोच रहे हैं कि दुनिया 100 माइल्स पर आर की रफ्तार से भाग रही है, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं है। हम AI के हाइप वाले दौर से बहुत आगे निकल चुके हैं। अब AI कोई खिलौना नहीं बल्कि हमारी जिंदगी का इंजन बन चुका है। आज के इस मास्टर क्लास में हम डिजिटल एज के तीन सबसे बड़े पिलर्स के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे AI एजेंट्स की, वो बॉट्स जो सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि काम भी करते हैं। हम उस स्कैरी साइड को भी देखेंगे जिसे हम कहते हैं डीप फेक्स, या यूं कहें सीइंग इज बिलीविंग का खात्मा। और आखिर में हमारा करियर इस बदलती दुनिया में AI के साथ कैसे ग्रो करें? फिर चाहे आप कतर में हो, दुबई में हो, रियाद में हो या दुनिया के किसी भी कोने में हो, दिल थाम कर बैठिए क्योंकि हम फ्यूचर को अनलॉक करने वाले हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 6622107 पर, 6622107, क्योंकि हम आपके सवालों के जवाब देंगे, उसे भी अपने शो पर जरूर शामिल करेंगे। तभी क्या करना है, बने रहना है हमारे साथ FM 107 पर। मैं हूँ आपकी अमिता आपके साथ और आपके लिए लेकर आई हूँ AI अनलॉक। चलिए अब बात करते हैं उस चेंज की, उस बदलाव की जिसने हमारी जिंदगी की रफ्तार बदल दी है। सबसे पहले थोड़ा पीछे मुड़कर देखते हैं। याद कीजिए 2023 या 2024 का वो वक्त, ज्यादा पुरानी बात नहीं है लेकिन टेक की दुनिया में ये स्टोन एज लगता है। अगर उस वक्त आपको सलाला घूमने जाना हो, उसका प्लान बनाना हो, तो प्रोसेस क्या था? आप ChatGPT या गूगल पर जाते थे, आइटनरी मांगते थे, वो आपको एक लिस्ट दे देता था, फिर आप मैन्युअली एक ट्रैवल साइट खोलते थे, फ्लाइट्स ढूंढते थे, फिर होटल्स के लिए दूसरी ऐप, कार रेंटल के लिए तीसरी, और हर जगह अपना क्रेडिट कार्ड डिटेल्स बार बार टाइप करते थे। That was the before era. Yes, AI सिर्फ एक डिजिटल लाइब्रेरियन था। आप सवाल पूछते थे, वो किताब निकालकर जानकारी दे देता था, काम खत्म हो जाता था, है कि नहीं? लेकिन अब इस साल 2026 की अगर हम बात करें तो AI अब एक एजेंट है। Yes, आज आप आइटनरी नहीं मांगते, आज आप सिर्फ अपने फोन या स्मार्ट ग्लासेस से कहते हैं कि AI, जो भी उसका नाम है, मेरे लिए चार लोगों का सलाला ट्रिप बुक करो, बजट है $2,000 और मेरे बचे हुए एयरलाइन माइल्स यूज करना, और ध्यान रखना कि होटल में अच्छा जिम और किड्स पूल हो, और बस। इसके बाद आप फोन पॉकेट में रखते हैं और अपनी कॉफी एंजॉय करते हैं। आपका AI एजेंट आपकी परमिशन से आपके एप्स में लॉग इन करता है, प्राइसेस कंपेयर करता है, सीट सिलेक्ट करता है और कंफर्मेशन सीधा आपके कैलेंडर में डाल देता है। अब लेमैन्स टर्म में समझाऊं तो इसे कहते हैं एजेंटिक वर्कफ्लो। सो 2026 के AI मॉडल्स के पास अब सिर्फ जुबान नहीं बल्कि डिजिटल हैंड्स भी हैं। वो इंटरनेट को बिल्कुल वैसे ही ऑपरेट कर सकते हैं जैसे आप माउस और कीबोर्ड से अपना काम करते हैं। हमारी अरब दुनिया में ये एक बड़ा इंकलाब, या यूं कहें रेवोल्यूशन लेकर आए हैं। रियाद या फिर किसी भी कंट्री की बात करें, हमारे कतर की कुछ जगहों की बात करें, एक छोटे बुटीक ओनर के बारे में अगर हम सोचें तो पहले उन्हें इन्वेंट्री, कस्टमर ईमेल्स और शिपिंग के लिए 4-5 लोग चाहिए होते थे, और आज उनका AI एजेंट खुद ईमेल्स का जवाब देता है, वेबसाइट्स पर नए डिजाइन अपलोड करता है और सप्लायर से मोल भाव, या यू कहें नेगोशिएशंस भी कर लेता है। सो नाउ द बिग क्वेश्चन इज कि अमिता, क्या ये मेरी नौकरी तो नहीं खा जाएगा या मेरी नौकरी तो नहीं ले लेगा? हाँ, वेल, ये सवाल हर घर में पूछा जा सकता है। इसका एक्सपर्ट जवाब ये है कि AI इंसानों को रिप्लेस नहीं कर रहा, बल्कि टास्क को रिप्लेस कर रहा है। AI के दो बड़े फायदे हैं जो स्पेशली 2026 में हम देख रहे हैं, दैट इज स्पीड, रफ्तार। पहले एक मार्केटिंग रिपोर्ट या डेटा क्रंचिंग में 3 दिन लगते थे और आज 3 सेकंड्स में काम हो जाता है। पर्सनलाइजेशन, पुराने सॉफ्टवेयर्स वन साइज फिट्स ऑल होते थे, मगर आज का AI आपके स्टाइल, आपकी आवाज और आपके बिजनेस गोल्स को पहचानता है। अब काम करने का तरीका बदल चुका है, आप अब वर्कर नहीं है, आप एक कंडक्टर बन चुके हैं। सोचिए एक म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा के बारे में, AI वो सारे साज, वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहा है, लेकिन धुन, ट्यून क्या होगी, कब रुकना है और कब तेज होना है, ये फैसला सिर्फ आपका है। आपकी वैल्यू अब इसमें है कि आप कितने बेहतरीन इंस्ट्रक्शंस देते हैं, है कि नहीं। अब आगे बात आती है द ट्रस्ट क्राइसिस की, यानी डीप फेक्स एंड सिक्योरिटी की। तो जनाब, जहां रोशनी होती है ना, वहां साया, यूं कहे शैडो भी होता है। सो AI की इस ताकत का एक दूसरा रुख भी है जिसे हम द ट्रस्ट क्राइसिस कहते हैं। 2026 में हम पहुंच गए हैं परफेक्ट पैरिटी के दौर में। इसका सीधा मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी इतनी बेहतरीन हो गई है कि एक AI जनरेटेड वीडियो और एक असली वीडियो में फर्क करना बड़ा मुश्किल हो गया है, या यूं कहे इट्स टोटली इम्पॉसिबल। ये डीप फेक एरा है। आजकल ऐसे स्कैम्स हो रहे हैं जो बड़े बड़े टेक सेवी लोगों को भी हैरान कर देते हैं। सोचिए एक माँ को कॉल आता है, फोन पर उनके बेटे की आवाज है, बिल्कुल वही टोन, वही बोलने का तरीका। वो कहता है, मॉम मैं थोड़ी मुश्किल में हूँ, इमरजेंसी है, जल्दी से इस लिंक पर ना कुछ पैसे ट्रांसफर कर दो। अब बेचारी माँ क्या सोचती है कि अरे बेटे को जरूरत है कि नहीं, और शक भी नहीं करती, और उसकी आवाज बिल्कुल सेम है तो वो समझ जाती है कि मेरा बेटा ही है। मगर वो उनका बेटा नहीं होता, एक वॉइस क्लोन होता है। अब इस धुरंधर टेक की दुनिया में हम खुद को और अपने घर वालों को कैसे महफूज रखें, चलिए कुछ एक्सपर्ट सॉल्यूशंस के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले द सेफ वर्ड स्ट्रेटजी, ये सबसे पुराना और सबसे कारगर नुस्खा है। यूं कहे तो अपने परिवार के साथ एक सीक्रेट सेफ वर्ड रखिए, जैसे ब्लू बिरयानी या डेजर्ट फॉक्स। अगर कभी भी कोई अजीब कॉल आए, चाहे आवाज कितनी भी असली क्यों ना हो, उनसे वो सीक्रेट वर्ड पूछिए। अगर वो नहीं बता पाए तो समझ लीजिए वो AI है। सेकेंड स्टेप इज डिजिटल वाटर मार्किंग। वेल, अरब वर्ल्ड में UAE और सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट्स ने कुछ बहुत सख्त कानून बनाए हैं। अब हर AI कंपनी के लिए लाजमी है, मैंडेटरी है कि वो हर AI वीडियो या फोटो में एक डिजिटल सिग्नेचर छुपाएं। यस, सो हमेशा वेरीफाई करें कि कंटेंट AI सर्टिफाइड है या नहीं। उसके बाद वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इज इन पर्सन वेरिफिकेशन। बिजनेस की दुनिया में हम वापस ओल्ड स्कूल जा रहे हैं। यस, बड़े डील्स या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के लिए अब ईमेल या वीडियो कॉल काफी नहीं है। लोग अब फेस टू फेस मिलना पसंद कर रहे हैं या फिर फिजिकल हार्डवेयर कीज का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हैक नहीं की जा सकती। वल जनाब, टेक्नोलॉजी से डरने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी होशियारी दिखानी है। जैसे 2000s में हमने सीखा था कि किसी अनजान ईमेल लिंक पर क्लिक नहीं करना है, वैसे ही 2026 में हमें सीखना है कि हर वीडियो और हर वॉइस पर आंख मूंद कर यकीन नहीं करना है। टेक का लिहाज, या यूं कहे टेक की रिस्पेक्ट करिए, लेकिन कंट्रोल अपने हाथ में रखिए, क्योंकि आखिर में मशीन के पास डेटा हो सकता है पर इंसान के पास इंट्यूशंस, विजडम होती है। पर दुनिया भर में AI को लेकर क्या चल रहा है, कभी सोचा है इस बारे में? जरा सोचिए, क्या हर कंट्री में AI एक ही तरह से काम करता है? बिल्कुल नहीं। आज हम दुनिया के एक डिजिटल टूर करेंगे और देखेंगे कि कैसे अलग अलग मुल्क में, अलग अलग कंट्रीज में इस टेक्नोलॉजी को अपनी जरूरत के हिसाब से मोल्ड किया जा रहा है। सबसे पहले अगर हम अरबिक वर्ल्ड की बात करें तो यहाँ क्या हो रहा है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी जंग चल रही है, यू कहें तो एक रेवोल्यूशन चल रहा है, जिसे हम कहते हैं द ग्रेट अरबिक मॉडल रेस। यस, आपको याद होगा कि 2023 में हम सब चैट जीपीटी की तारीफ करते थकते नहीं थे कि वाह भाई क्या कमाल की चीजें हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, वो अमेरिकन था, उसका जो मिजाज था, पर्सनालिटी थी, वो अमेरिकन अंदाज की थी, लेकिन जब हमने उससे अरबिक में बात करना शुरू की तो वो थोड़ा सा रोबोटिक लगने लगा। लेकिन आज सितंबर 2026 में तस्वीर बदल चुकी है। सो मिडल ईस्ट ने सोवरेन एआई यानी एक ऐसा एआई बना लिया है जिससे हर चीज इजी हो गई है। हमारा अपना मॉडल जायस जो अबू धाबी के TII और G42 ने बनाया है, अब अपने नए अवतार में है। यस, ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है, ये हमारी तहजीब कल्चर का हिस्सा बन चुका है। जरा सोचिए, पहले एआई सिर्फ किताबी या यूं कहे अरबिक समझता था, बुकिश अरबिक समझता था, लेकिन आज का जायस 20 से ज्यादा अलग अलग डायलेक्ट समझता है, वो भी 99% एक्यूरेसी के साथ। फिर चाहे आप रियाद की कोई पोएट्री सुन रहे हैं, उसका मजा ले रहे हैं, या फिर आप मोरक्को की गलियों में कैजुअल बातें कर रहे हैं, या यूं कहते हैं ना कि वहां के स्लैंग्स को यूज कर रहे हैं, या फिर आप हमारे कतर में हैं, एआई अब हर लहजे को पहचान रहा है। इसका मतलब ये है कि मिडल ईस्ट में चाहे वो एक छोटा सा बिजनेसमैन हो या फिर कोई फार्मर हो, वो अपनी मदर टंग में एआई से अपनी डिफिकल्टीज के बारे में बात कर सकता है। दैट्स रियली अमेजिंग, है कि नहीं? वेल, हमने एआई को सिर्फ अकल नहीं दी, लेकिन उसे हमारी जुबान भी दी है ताकि वो हमारी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। अब बात करते हैं जापान की। यस, तो यहाँ पर एआई एज अ कंपेनियन यूज किया जा रहा है। तो जापान की तरफ जब हम जाते हैं तो वहाँ की एक प्रॉब्लम हमेशा देखने को मिलती है कि वहाँ बुजुर्गों की ना तादाद बहुत ज्यादा है और उनकी देखभाल करने वालों की बहुत कमी है। यस, सो 2026 में जापान ने दुनिया का पहला एआई इंटीग्रेटेड एल्डरली केयर सिस्टम लॉन्च किया है। लेकिन ये सिर्फ रोबोट्स नहीं है जो घर साफ करते हैं, इनकी फितरत बिल्कुल अलग है। ये रोबोट्स कंपेनियन यानी साथी की तरह आपके साथ रहते हैं, आपका काम करते हैं। इनमें लगा एआई इंसानी आवाज के टोन को डिटेक्ट करता है। अगर किसी बुजुर्ग की आवाज में थोड़ी सी भी उदासी है, तबीयत में नरमी है और वो ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं, तो एआई तुरंत समझ जाता है, ये उनसे बातें करता है, उन्हें पुरानी यादें याद दिलाता है और उनका अकेलापन दूर करता है। जापान ने हमें सिखाया है कि एआई सिर्फ लॉजिक के लिए नहीं, इमोशंस और हमदर्दी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। वहाँ एआई मशीन नहीं, परिवार का एक हिस्सा बनते जा रहा है। इसके बाद बात करें अगर हम यूरोप की, सो द रेफरीज ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड। हाँ जनाब, ये भी एक बड़ी कमाल की चीज है जो हमने फीफा वर्ल्ड कप के टाइम पर सुनी थी, है कि नहीं? अब रुख करते हैं हम सीधा यूरोप की तरफ, और अगर हम यूएस और मिडल ईस्ट के खिलाड़ी है, प्लेयर्स है जो एआई बना रहे हैं, तो यूरोप के इस खेल के रेफरी हम ही है। वेल, 2026 में यूरोप का एआई एक्ट पूरी तरह से लागू हो चुका है। यूरोप का मानना है कि टेक्नोलॉजी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो इंसानी ह्यूमन राइट से ऊपर नहीं हो सकती। वहाँ के हॉस्पिटल्स और कोर्ट्स में अगर एआई कोई फैसला लेता है तो उसे ट्रांसपेरेंट होना पड़ता है, यानी डॉक्टर या जज हो या फिर कोई भी हो, एआई ने

0: वो फैसला क्यों लिया उसे बताना पड़ता है. वहाँ ब्लैक बॉक्स AI नहीं चलता. यूरोप हमें ये याद दिलाता है कि भाई प्रोग्रेस जरूरी है लेकिन असूलों के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ. Well, AI around the world में मैं ये कहना चाहूंगी कि टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी बने या कितनी भी बढ़े, उसका मकसद इंसानी जिंदगी को बेहतर बनाना ही होना चाहिए, है कि नहीं? आपको क्या लगता है इस बारे में? तो जरूर हमसे शेयर करें 6622107 पर, 6622107 पर अपने नाम के साथ. Well, now it's time for tool of the week. और वो tool of the week क्या है, आइए जरा इसके बारे में बात करते हैं. वेल, अब पुराने चैटबॉट्स को हमें भूलना होगा, क्योंकि 2026 में हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, हम काम भी चाहते हैं. और आज का टूल है मल्टीऑन. ये एक वेब एजेंट है. चैट GPT एक बॉक्स के अंदर रहता है, लेकिन मल्टीऑन के पास एक डिजिटल पासपोर्ट है. वो खुद वेबसाइट्स पर जाता है, लॉग इन करता है और बटन्स क्लिक करता है. मान लीजिए कि आप किसी ब्यूटीफुल जगह में जाना चाहते हैं, वीकेंड बिताना चाहते हैं, तो आपको अलग अलग टैब्स खोलने की जरूरत नहीं है. बस मल्टीऑन से कहिए कि मेरे लिए एक लग्जरी टेंट बुक करो, मेरे होटल पॉइंट्स यूज करो और कन्फर्मेशन मेरे घर वालों को या फिर मेरे हस्बैंड को या मेरी वाइफ को भेज दो. आप स्क्रीन पर देखेंगे कि कर्सर खुद ब खुद घूम रहा है और वो कैसे बुकिंग खत्म कर रहा है. वैसे इसे कहते हैं लेजी टैक और मुझे ये एक्चुअली बहुत पसंद है. वेल, मल्टीऑन अगर आप यूज करेंगे तो आपको कुछ चीजों का ख्याल रखने की बहुत जरूरत है. एंड दैट इज कि मल्टीऑन जैसे एजेंट्स को अगर आप यूज कर रहे हैं तो ये तीन चीजों का बना हुआ फॉर्मूला याद रखें, एक्शन प्लस कंस्ट्रेंट्स प्लस कंफर्मेशन. ठीक है, कैसे? चलिए मैं आपको बताती हूँ एक एग्जाम्पल के जरिए. सो एक्शन क्या होगा कि मेरे लिए सो एंड सो जगह की सबसे सस्ती फ्लाइट बुक करो. कंस्ट्रेंट्स क्या होंगे कि फ्लाइट शाम 6 बजे के बाद की होनी चाहिए, सिर्फ सो एंड सो एयरलाइंस ही बुक करना. कंफर्मेशन में क्या होगा कि फाइनल पेमेंट स्क्रीन पर रुक जाना और मेरे फिंगरप्रिंट का इंतजार करना. एक चीज का आपको हमेशा ख्याल रखना होगा कि अगर आप AI एजेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, देन हमेशा कंट्रोल अपने हाथ में ही रखना होगा. वेल, इसी के साथ जनाब हमारा जो आज का AI अनलॉक्ड, इसका पहला, इस सीजन का पहला एपिसोड अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच गया है. वेल, आज हमने देखा कि कैसे AI एजेंट हमारे रोजमर्रा के काम कर रहे हैं, कैसे डीप फेक से हमें बचना है और क्यों आपका करियर बिल्कुल महफूज है अगर आप लीड करना सीख जाए. वेल, याद रखिए टेक्नोलॉजी एक औजार है, ठीक है, लेकिन असली कारीगर या यूं कहे असली क्राफ्ट्समैन आप हैं. फ्यूचर से हमें बिल्कुल नहीं डरना है, बल्कि उसे बनाने में मदद करना है. वेल, अगले हफ्ते हम कुछ और भी नई चीजें आपके लिए लेकर आने वाले हैं AI अनलॉक्ड में. हो सकता है कि हम ढूंढे सेकेंड अर्थ. यस, सो समथिंग रियली इंटरेस्टिंग एंड रियली टेक सेवी. तो क्या करना है, कहीं नहीं जाना है, बस बने रहना है हमारे साथ. अगले हफ्ते आपकी मेरी मुलाकात फिर होगी AI अनलॉक्ड के इस ब्रांड न्यू एपिसोड में, तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा. और अभी जुड़ जाना है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स FM 107 के और आपकी अमिता भी आपको वहीं मिल जाएगी. तो अपना ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाजत. स्टे ट्यून्ड टू FM 107. दिल से देसी.
1: AI अनलॉक्ड RJ A फॉर अमिता के साथ सिर्फ FM 107 पर. दिल से देसी.
2: आप सुन रहे हैं FM 107.
3: दिल से देसी.

0: दूसरा गाना सुपर हिट
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: हर प्रोफेशनल शख्स इतना मसरूफ है जिंदगी में कि अगर उसे वक्त मिले और कोई उससे पूछे कि बैठिए जरा बताइए क्या चल रहा है, कहानी सुनने को मिलेगी जो सीधा आपके दिल पे जा लगेगी। इसलिए हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे कैफे में, जहां आप में से ही एक शख्स हमारे साथ होगा कैफे 107 पर
3: हर फ्राइडे शाम 7:15 बजे से FM 107 पर दो हवाले कबीर के साथ।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
4: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही रابطہ करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
5: साइंस कैन बी फन? ना, साइंस विल बी फन, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स होंगे तभी तो थ्योरीज फैक्ट्स बनेंगी, है ना? तो बस दुनिया बदलते देखिए हमारे साथ, क्योंकि हम करेंगे फन साइंस एक्सपेरिमेंट दोहा वाले कबीर के साथ, एक इजी एंड सेफ एनवायरनमेंट में। सुनिए और देखिए हमारे साथ ये खास शो जूनियर साइंटिस्ट, सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे और आपका नया जूनियर साइंटिस्ट। वेलकम टू दिस न्यू शो जिसका नाम है जूनियर साइंटिस्ट, और मैं सीनियर साइंटिस्ट दोहा वाला कबीर आपके साथ रहूंगा। आई नो ये मिक्सअप आपको समझाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, मगर दीजिएगा ये टाइम क्योंकि बड़ा मजा आने वाला है। तो साइंस की दुनिया बड़ी कमाल की है, साइंस इज फन, हमें बचपन से हमेशा बताया गया। कुछ बच्चों की बड़ी इच्छा होती है साइंस को लेकर, बड़ी क्यूरियोसिटी होती है, और कुछ बड़े भी होते हैं जो साइंस को जानना पहचानना चाहते हैं लेकिन उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के चलते कहते हैं ना भाई बहुत हिसाब किताब है इसमें, तो केमिकल होया करें, फिजिक्स वगैरह मेरे समझ

के बाहर है, इसीलिए ये शो है फॉर जूनियर्स, जो सीनियर्स को इंस्पायर करेगा। जूनियर साइंटिस्ट में हम जूनियर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, वो एक्सपेरिमेंट्स जो बड़े सिंपल हैं, बड़े इजी हैं और स्कूल लैब्स में भी कराए जाते हैं माशाल्लाह आजकल तो, और उन एक्सपेरिमेंट्स को जानकर आप समझ जाएंगे कि नॉर्मल चीजें दुनिया में कैसे काम करती है। तो हर चीज में, हर जगह पे साइंस है और उसे कैसे अप्लाई करना है, कैसे समझना है, वो शो में आपको पता लगेगा। डोंट वरी, मैं कोई थ्योरम, कोई फॉर्मूला ये सब नहीं देने वाला हूँ, दिमाग पे इतना बोझ नहीं देना, वैसे ही बहुत सारा बोझ चल रहा है हर किसी के दिमाग पे, तो जरा चिल पिल। बहुत इजी एक्सपेरिमेंट्स दैट यू कैन डू इन फ्रंट ऑफ योर किड्स इन अ सेफ एनवायरनमेंट ऑफ कोर्स, तो आप घर पे भी कर सकते हैं और बच्चों को भी चीजें समझा सकते हैं। यू नेवर नो, बच्चों के दिमाग में, उनके छोटे से दिमाग में अगर ये साइंस की थ्योरीज घर कर गई, एक क्यूरियोसिटी पैदा कर गई, यू नेवर नो, आपके घर से एक फ्यूचर साइंटिस्ट निकले। एंड नॉट किडिंग, मैंने बहुत सारे घरों में देखा है जहाँ पे एनवायरनमेंट ऐसा होता है जो दीनी तालीम के साथ साथ एक साइंस की नॉलेज भी उन्हें देता है, तो माइंड खुलता है, वो हर चीज में एक थ्योरी, एक फॉर्मूला सोचता है और उससे क्यूरियोसिटी बढ़ती है और फिर दुनिया को बदलने की जो ताकत कहते हैं वो आती है। तो ये क्यूरियोसिटी के लिए, जूनियर्स के लिए और जूनियर के जरिए सीनियर्स को इंस्पायर करने की कोशिश है इस शो की। नाम रट लीजिएगा, पहला एपिसोड है आज का जूनियर साइंटिस्ट और मैं दोहा वाला कबीर। तो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करेंगे। आज का जो एक्सपेरिमेंट है बड़ा सिंपल है, आपने बहुत जगह पे देखा होगा, मगर इसकी जो थ्योरी है आज ऑडियो फॉर्मेट में आपको सुनाने की कोशिश है और इंशाल्लाह हम इसको वीडियो में भी तब्दील करेंगे आने वाले वक्त में। फिलहाल ऑडियो फॉर्मेट में जिस चीज के बारे में, जिस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करने वाला हूं, वो है फ्लोटिंग एग एक्सपेरिमेंट या फ्लोटिंग एग डेंसिटी के लीजिए। अब नाम भारी है, डोंट वरी, मैं भाई साहब कति देसी आदमी हूँ, आपको देसी तरीके से समझाऊंगा और आपको साइंस जो है एकदम बढ़िया समझ में आएगी और बच्चों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। एंड आई नो बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे, हाँ हमें पता है एग फ्लोटिंग वाला, अच्छी बात है, बट दोज डोंट नो उनके लिए ये बहुत खास हो सकता है। देखिए 10 में से 2 बातें, एक बात भी अगर काम कर गई तो कुछ तो बदलेगा गुरु। तो जूनियर साइंटिस्ट में मैं दोहा वाला कबीर आपके साथ, एंड जब अभी ब्रेक से लौटेंगे तो जरा उस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। एंड डोंट वरी, आई विल मेक इट सो इजी कि आप बोलेंगे हाँ यार ये तो मतलब बहुत आसान कर दिया, नया टीचर मिल गया आपको, मुबारक हो। मैं दोहा वाला कबीर, FM 107 पे जूनियर साइंटिस्ट, स्टे ट्यून्ड।

को, अब इस थ्योरी को लेट इट सिंक इन, आपके दिमाग में इस थ्योरी को जाने दीजिए. एंड इफ यू अबाउट टू ट्राई सच एक्सपेरिमेंट्स, ये वाला स्पेशली बच्चों के लिए, उन्हें समझाने के लिए, तो जरूर जरूर ट्राई कीजिएगा. मगर लेट मी नो इफ यू अबाउट टू ट्राई. सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar है, FM107 Qatar, और आगे थोड़ी और इस बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपका भाई अब साइंटिस्ट बन चुका है. जूनियर साइंटिस्ट की शो पहला एपिसोड आपके साथ चलिए. मैं तो

वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं दुहा वाला कबीर एफएम 107 पे, एंड एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम। मैं बन चुका हूं जूनियर साइंटिस्ट के साथ एक अच्छा खासा साइंटिस्ट, जाने वाली कई सारी थ्योरीज बताएगा, एंड इट्स रियली अ प्राउड मोमेंट क्योंकि मौका मिलता है इन चीजों के बारे में बात करने का। सो जूनियर साइंटिस्ट जो शो हमने बनाया है, आज इसका पहला एपिसोड है, इसलिए बार बार नाम लेना जरूरी है। ये इसका मकसद ये है कि आपको नॉर्मल थ्योरीज के जरिए, नॉर्मल एग्जांपल देके बताया जाए कि साइंस कहाँ कहाँ कैसे, कुछ चीजें आप सोचते हैं ये होता तो ये कैसे हो जाता है, समझ में नहीं आया, पर जहां पर आप साइंस लगाने की कोशिश करेंगे और उसे लॉजिकली बता पाएंगे तो बच्चों की क्यूरियोसिटी वाले माइंड में भी हलचल होना शुरू हो जाएगी। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, माइंड से आपके घर से कोई साइंटिस्ट बनना चाहे, पर वो ट्रिगर पॉइंट हमें देने की कोशिश है और ये शो इसीलिए खास बनाया गया है। तो आज हमने बात करी है एग फ्लोटिंग एक्सपेरिमेंट की। ये वो एक्सपेरिमेंट है जो सालों से लोग करते चले आ रहे हैं और स्कूल्स में भी होता है, लेकिन अभी तक अगर आपकी आंखों के सामने अपने बच्चों को करते हुए नहीं देखा तो उन्हें भी करा सकते हैं या आप भी कर सकते हैं। इसमें कोई ज्यादा सेफ्टी नहीं चाहिए, सिंपल आपको एग को ड्रॉप करना है प्लेन वाटर में, अंडे को, और अंडा आपको नीचे सिंक होता हुआ नजर आ जाएगा कि भाई तो डूब गया अंडा, अब कौन बचाएगा। उस अंडे को बचाने के लिए पानी में जब आप

सॉल्ट डालेंगे तो अंडा वापस ऊपर आके फ्लोट करने लग जाता है. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग और यही हमारा एक्सपेरिमेंट है. ऐसे कई सारे एग्जांपल मैंने दिए. एक एग्जांपल सबसे बड़ा है जहाजों का. समुद्री जहाज पानी पे फ्लोट कर रहे हैं. हर जहाज तो नहीं डूब रहा ना. वो क्यों नहीं डूब रहा? क्योंकि आसपास के लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है. या बिल्कुल देसी भाषा में कहें तो पानी थोड़ा सा भारी है भाई साहब. इसके अलावा देखा होगा अपने आइस क्यूब्स फ्लोट करते हैं. आइसबर्ग्स इनफैक्ट फ्लोट करते हुए नजर आते हैं आप. एंड जो डेड सी है उसे डेड सी क्यों कहते हैं? बिकॉज एवरीथिंग फ्लोट्स. कुछ भी जा नहीं सकता. उसकी जो सॉल्ट का कॉन्टेंट है, नमक की जो तादाद है, वो बहुत ज़्यादा है. वो कॉन्टेंट इतना ज़्यादा है सॉल्ट का कि वाटर को हद से ज़्यादा डेंस बना चुका है. और इसीलिए एक वर्ड साइंस का आपको कई मरतबा सुनने में मिला होगा, जिसका मतलब, जिसका जो नाम है वो है बॉयंट फोर्स. अच्छा, एक और एग्जाम्पल लाइफ जैकेट और स्विमिंग का, लेकिन ये हम बाद में इंशाल्लाह अच्छे तरीके से कवर करेंगे. तो बॉयंसी जो है, बॉयंसी फोर्स, ये फोर्स जो है, मैंने भी रिसेंटली इसके बारे में अच्छे से पढ़ा. ऐसा नहीं कि मैं आ जाके समझदार बन रहा हूँ एकदम से. मैंने भी इसके बारे में पढ़ा कि ये एक फोर्स है. ये तब लगती है जब लिक्विड डेंसर हो ऑब्जेक्ट से. इस केस में जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, पानी जो है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, अंडे की कम है, इसलिए बॉयंट फोर्स जो है वो नीचे से लगती है और अपवर्ड फोर्स उसे ऊपर की तरफ धकेलती है, इसलिए अंडा फ्लोट होने लगता है. सबमरीन्स जो हैं वो बॉयंसी को यूज़ करती हैं और इसीलिए सबमरीन्स का फ्लोट होना, पानी के अंदर जाना, ये उस फंक्शन को एक्सप्लेन करता है. एक और एग्जाम्पल है हॉट एयर बलून्स का. जो हीटेड एयर है बलून के अंदर वो कम डेंसिटी वाली होती है सराउंडिंग एयर से. सराउंडिंग जो हवा है उसकी, उससे ज़्यादा, मतलब कम डेंसिटी होती है, इसीलिए वो अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाता है. एक और एग्जाम्पल है ये बॉयंट फोर्स का. नया शब्द है ना, सीखने में टाइम लगेगा. तो बॉयंट फोर्स मैं स्पेल आउट कर देता हूँ जो सीखना चाहते हैं उनके लिए, बाकी जो समझदार हैं वेरी गुड. सो जो बॉयंसी है उसकी वजह से हॉट एयर बलून भी काम करता है. इसके आपको स्पेलिंग दे देता हूँ मैं, ताकि आप अपने अपने आप ही इसके बारे में पढ़ पाएं. तो BUOYANCY बॉयंसी, ये वाली फोर्स लगती है इन तमाम एग्जांपल्स में जो मैंने आपको बताया. अब बायोलॉजी और नेचर की तरफ अगर आप बढ़ेंगे तो फिशिंग, स्विमिंग, इन तमाम जगहों पे ये चीज़ काम करती है. मच्छी हमने देखी होंगी, उनके तैरने का अंदाज अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है. अब ऑयल का भी एग्जाम्पल लें आप, तो ऑयल भी पानी पे फ्लोट कर रहा होता है. पर क्यों? क्योंकि ऑयल जो है वो लेस डेंसिटी रखता है पानी से, वो ऊपर तैरता रहता है. अब एयर बबल्स के साथ भी यही सीन है, वो राइज करके ऊपर की तरफ आ रहे हैं क्योंकि बॉयंसी फोर्स जो है वो उन्हें ऊपर की तरफ धकेल रही है और धीरे धीरे वो रैपिडली ऊपर की तरफ आने लगते हैं. ऐसे बहुत बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे. तो एक सवाल इसमें उठता है कि यार ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ नमक के साथ ही कर सकते हैं? बिल्कुल, आप चीनी भी नहीं डालिए, जैसे मैंने कहा आप नींबू भी डाल दीजिए और पी जाइए. लेकिन यस, ये एक्सपेरिमेंट आप शुगर के साथ भी कर सकते हैं, मगर उसमें देखिए फर्क आपको पता लगेगा. कोई भी ऐसा सॉल्यूबल सब्सटेंस, मतलब जो पानी में घुल जाने वाली चीज़ है, वो ऑफकोर्स पानी की डेंसिटी को बढ़ाएगा, लेकिन अलग अलग तरीके से बढ़ाएगा. क्योंकि कुछ चीज़ें उनका मास जो है, जो मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका पानी से ज़्यादा मास कितना है, कितना ज़्यादा है, उस पर डिपेंड करता है. अब सॉल्ट का ज़्यादा है, शुगर का थोड़ा सा कम है, दोनों ही पानी को भारी कर रहे हैं लेकिन अलग अलग डेंसिटी दे रहे हैं. और इसलिए इस डेंसिटी की मात्रा, मतलब कितनी डेंसिटी है, उसके हिसाब से बॉयंट फोर्स लगती है. नीचे से जो पानी है, जो पानी का आप देसी भाषा में समझिए, नीचे से जी प्रेशर दे रहा है ऊपर की तरफ जाने के लिए, तो वो जो फोर्स है बॉयंट फोर्स, वो इसी मास पे डिपेंड करती है कौन सा सब्जेक्ट आप उसमें मिलाने की कोशिश कर रहे हैं. इसी में एक चीज़ जोड़ देते हैं कि भाई ये सॉल्ट क्यों यूज़ हो रहा है, हर एक्सपेरिमेंट में सॉल्ट क्यों बताया जाता है. ये मैं सोच रहा था, मैंने अच्छे से पढ़ा भी इसके बारे में, मैंने क्यों नहीं पूछ लिया मेरे अराउंड साइंटिस्ट बच्चों से. और बहुत सारे बच्चों ने इस बारे में बात भी करी है. एक हमारे जानने वाले उस बच्चे ने बड़े अच्छे से बताया. और बहुत ही एक ही लाइन में बताऊँगा आपको, सॉल्ट जो है सिंपल, सबसे जल्दी मिल जाता है पानी के साथ, बहुत गहरी दोस्ती है. और शुगर जो है वो इसलिए एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं यूज़ करते क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे डिसॉल्व होता है और कई मरतबा सेटल हो जाता है बिल्कुल पानी की सतह. इसलिए हमेशा शुगर से एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता, सॉल्ट से किया जाता है. तो अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे थोड़ा सा रिकैप, और उसके बाद फिर आप जो भी कहना चाहें, सोशल मीडिया हैंडल्स FM 107 Qatar, FM 107 Qatar. लेकिन फिलहाल आपने जाना नहीं है.

वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम। मैं दोहावाला कबीर एफएम 107 पे, एंड आज के शो का पहला एपिसोड आगाज आज पर्दा उठा है और इस शो का नाम है जूनियर साइंटिस्ट। तो मैं भी साइंटिस्ट बन गया हूँ। देखिए, इस शो का मकसद बड़ा सिंपल है, आप और मैं साथ में साइंस सीख सकते हैं। जिनको आती है बहुत बढ़िया भाई, आप भी सिखाइए लोगों को, और हम और आप सिंपल सिंपल एक्सपेरिमेंट करेंगे जो मेरे लिए बताने में आसानी हो, आप कर भी लें और हम और आप मिलके कुछ समझ भी लें। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, लेकिन इस प्रोसेस में हम और आप टीचर जरूर बन जाएंगे। तो ये सिर्फ बड़ों के लिए नहीं है, ये मेनली बच्चों के लिए है। वो बच्चे जिनका माइंड क्यूरियोसिटी को तलाशता है, वो जानना चाहते हैं। जैसे आज के लिए हमने जो टॉपिक चुना है वो ये है कि समुद्री जहाज कैसे पानी में फ्लोट कर रहे हैं, ये डूबते क्यों नहीं है, टाइटैनिक मंदिर डूबते क्यों नहीं है। अब इसके बारे में हमने बात करी और हमने जाना कि क्यों ऐसा होता है, और सिंपल एक्सपेरिमेंट के जरिए कि दो ग्लास आप पानी लीजिए और दोनों ग्लासेस में अंडा डालने की कोशिश कीजिए, एग डालने की, एक में, लेकिन एक ग्लास में आपको सॉल्ट मिला देना है, जिससे पानी की डेंसिटी बढ़ जाएगी, पानी भारी हो जाएगा और अंडा फ्लोट होने लग जाएगा। और यही फिनोमेना ओशंस में, समुद्र में चलता है। एक और प्रिंसिपल है जो इससे जुड़ा हुआ है, जाने से पहले बताना चाहूंगा, जिसे कहते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। एक ऑब्जेक्ट होली मतलब पूरा या पार्शली अगर आधा मिला दिया जाए फ्लूइड में, तो वो एक्सपीरियंस करता है एक अपवर्ड फोर्स, नीचे से फोर्स आती है ऊपर की तरफ, और जो वेट ऑफ द फ्लूइड होता है, जो जैसे पानी का केस है, भारी हो जाता है, इसलिए ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करता है और एक फोर्स आती है। इसका नाम क्या है, आज हमने सीखा है, बॉयंस या बॉयंट फोर्स, जो ऊपर की तरफ धकेल

0: सकती है ऑब्जेक्ट को. एंड काफी सारे एग्जांपल्स आज हमने पढ़े. जैसे सब मरीन्स का अलग कॉन्सेप्ट है, शिप्स का बड़े बड़े जहाज हैं, इसके अलावा हॉट एयर बलून्स हैं, और कौन सा एग्जांपल सीखा हमने आज? एग का तो सबसे पहले ही सीखा है. और इसके अलावा हमने ये जाना और कोई एक्सपेरिमेंट, हाँ आइसबर्ग, कैसे भूल गया मैं, वही सोचा था मैंने कहा टाइटैनिक की बात करी, आइसबर्ग की कैसे नहीं करी. तो आइसबर्ग इज एन अदर एग्जाम्पल कि वो कैसे पानी की सतह पर फ्लोट करे. तो ये था आज का एक्सपेरिमेंट. एंड ऑफकोर्स जैसे मैंने कहा, कोशिश करेंगे हम इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ना सिर्फ आपको एक ऑडियो फॉर्मेट में सब बताया जाएगा, बल्कि एक वीडियो फॉर्मेट में भी एक्सपेरिमेंट करने की हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह. बट ये पहला एपिसोड था, आने वाले वक्त में बहुत कुछ होगा. अगर आपका साथ रहा, आपकी दुआ रही. सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, FM107 Qatar. एंड फॉर नाउ दिस इज दोहा वाला कभी साइनिंग ऑफ. आपसे इजाजत चाहूंगा, अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी है. माशाल्लाह.
1: जूनियर साइंटिस्ट सिर्फ FM 107 पर. दिल से देसी. आप सुन रहे हैं FM 107.
2: दिल से देसी.
3: What's up, Ellie?

सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना

0: अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दोस्तों, मेरे यानी सरवर मिर्ज़ा के साथ आइए जानते हैं वज़ारत दाखला से वीकली अपडेट।
1: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट लेकर आ रहे हैं आरजे सरवर एमओआई वीकली अपडेट प्रोग्राम में। एमओआई वीकली अपडेट प्रोग्राम में वज़ारत दाखला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ,
2: कुछ मिलेगा यहाँ।
1: और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। एमओआई वीकली अपडेट,
2: एमओआई वीकली अपडेट,
1: आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर विद आरजे सरवर,
2: विद आरजे सरवर।
0: दोहा में जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी ने सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट कोर्स का इख्तिताम कर दिया है, जिसमें वजारत दाखला के कई अहलकारों के साथ साथ ब्रदर मुल्क सीरिया की वजारत दाखला के अफसरान ने भी शिरकत की। कोर्स में सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट के तसव्वुर और सिक्योरिटी खतरों की पहचान, जाँच और तजज़िये करने के तरीकों पर तफसीली ट्रेनिंग दी गई। इसका मकसद शिरकत करने वालों की सलाहियतों को मजीद बेहतर बनाना, उनकी तैयारी को मजबूत करना और सिक्योरिटी परफॉर्मेंस की कारकर्दगी में इजाफा करना था। कोर्स के अख्तिताम पर ब्रिगेडियर राशिद मोहम्मद अल हाजरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी ने शिरकत करने वालों को सनदें पेश की और उनकी कोशिशों को सराहा। समीन, मैत्राज ऐप के जरिए एम्प्लॉयर पर्सनल स्पॉन्सरशिप तब्दील करने की दरख्वास्त आसान और सहूलत भरे तरीके से जमा करवाई जा सकती है। अगर आप पर्सनल एम्प्लॉयमेंट के लिए एम्प्लॉयर तब्दील करने की दरख्वास्त देना चाहते हैं तो पहले पिछले स्पॉन्सर की मंजूरी हासिल करें, इसके बाद मैत्राज ऐप के जरिए आसानी से प्रोसेस मुकम्मल किया जा सकता है। होम पेज से रेसिडेंसी को सिलेक्ट करें, फिर चेंज एम्प्लॉयर पर क्लिक करें। इसके बाद चेंज एम्प्लॉयर सर्विस को सिलेक्ट करके अप्लाई पर टैप करें। एक्सपेट्रिएट के QID नंबर दर्ज करें, रिश्ते की नौयत या रिलेशनशिप टाइप मुंतखब करें, दरकार दस्तावेज अपलोड करें और तमाम मालूमात की दुरुस्ती की तस्दीक कर लें। वजारत दाखला आपकी खिदमत के लिए हमेशा तैयार है। वालदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों को स्कूल आने और वापस घर जाने के दौरान हिफाजती हिदायत की पाबंदी की अहमियत समझाएं। तलबा की सलामती वालदैन, स्कूल और मुआशरे की मुश्तरका जिम्मेदारी है। बच्चों को हिदायत दें कि स्कूल बस में अपनी मुकर्रर सीट पर बैठें। यकीनी बनाएं कि वो सफर के दौरान सीट बेल्ट बांधा करें। बच्चों को समझाएं कि बस के मुकम्मल तौर पर रुकने से पहले ना सवार हों और ना ही उससे उतरें। सड़क पार करते वक्त गाड़ियों पर पूरी तवज्जो देने की तालीम दें। बस का इंतजार करते वक्त सड़क के किनारे से महफूज फासले पर खड़े रहने की भी तरकीब देनी चाहिए। वजारत दाखला का कहना है कि आपका तआवुन हमारे बच्चों के लिए महफूज और पुरअमन सफर को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा करता है। नए तालीमी साल के आगाज के साथ जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रैफिक ने स्कूलों के गिर्द अपनी फील्ड कोशिशों में इजाफा कर दिया है, ताकि तलबा की सलामती और ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाया जा सके। नए एकेडमिक ईयर के शुरू होते ही सड़कों पर ट्रैफिक में इजाफा हो जाता है और हमारी जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है कि हम अपने बच्चों की हिफाजत और ट्रैफिक की बेहतर रवानी को यकीनी बनाएं। रोड सेफ्टी हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की पहली सीढ़ी है, इसलिए स्कूल की वापसी के मौके पर जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रैफिक ने एक मुकम्मल प्लान तैयार किया है, ताकि तैयारी और रेडीनेस के मेयार को मजीद बेहतर बनाया जा सके। इस प्लान के तहत अहम सड़कों और स्कूलों के करीब ट्रैफिक की मौजूदगी को मजबूत बनाया गया है, जिससे ट्रैफिक की रवानी बेहतर होगी, रश कम होगा और तलबा महफूज तरीके से स्कूल पहुंचकर घर वापस लौट सकेंगे। जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रैफिक ने वालदैन और तमाम ड्राइवर से भी तआवुन की दरख्वास्त की है और कहा है कि बराहे करम ट्रैफिक कानून की पाबंदी करें, स्कूलों के करीब रफ्तार कम रखें, तलबा और पैदल चलने वालों पर खास तवज्जो दें और गैर कानूनी पार्किंग या ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल से गुरेज करें। वजारत दाखला का कहना है कि आइए हम सब मिलकर बच्चों के लिए स्कूलों की वापसी को एक महफूज और कामयाब तालीमी साल का आगाज बनाएं। हमारे बच्चों की सलामती हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। वजारत दाखला के जनरल डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने वजारत सेहत आम्मा के मुतालिका इदारों के तआवुन से एक यूरोपियन कौमियत से ताल्लुक रखने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जो मुल्क की मुतालिका अथॉरिटीज से दरकार लाइसेंस हासिल किए बगैर

मेडिकल और कॉस्मेटिक सरगर्मियों में मसरूफ थे। ये गिरफ्तारी उन इत्तलात की बुनियाद पर अमल में आई जिनमें बताया गया था कि एक गैर लाइसेंस्ड मरकज में मेडिकल और कॉस्मेटिक खिदमात फराहम की जा रही हैं। तहकीकात और मालूमात की तस्दीक और पब्लिक प्रोसिक्यूशन से दरकार इजाजत हासिल करने के बाद मुलजमीन को इन सरगर्मियों के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया, जिन्होंने अपने खिलाफ लगाए गए इल्जामात का एतराफ भी कर लिया है। तलाशी की कार्रवाई के दौरान कई डिवाइसेस, औजार और मेडिकल सप्लाईज भी बरामद की गई जो इन सरगर्मियों में इस्तेमाल हो रही थी। अब मुलजमीन और जब्त शुदा अशिया को कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के लिए मुतालिका पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। विदारत दाखला और विदारत सेहत आमा ने आवाम से अपील की है कि किसी भी मेडिकल या कॉस्मेटिक सर्विस से फायदा उठाते वक्त पहले प्राइवेट मेडिकल फैसिलिटीज और क्लिनिक्स के लाइसेंस की तस्दीक कर लें और यकीन कर लें कि वहां काम करने वाले हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स के पास मुतालिका अथॉरिटीज से जारीशुदा लाइसेंस मौजूद हैं या नहीं, ताकि अवामी सलामती को बरकरार रखा जा सके और ऐसे अफराद या इदारों के मामलात से बचा जा सके। वजारत दाखिला और इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स लखविया के कमांडर शेख खलीफा बिन हमद बिन खलीफा अल्थानी ने अपने फ्रांस के दौरे के दौरान फ्रेंच रिपब्लिक के वजीर अदल गिराल्ड डरमेनिन से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों दोस्त ममालिक के दरमियान दो तरफा तआवुन और उसे मजीद मजबूत और फरोग देने के तरीकों पर बातचीत की गई। खासतौर पर कानून और सिक्योरिटी के शोबों में तआवुन को बढ़ाने पर जोर दिया गया और दोनों ही जानिब से बाहमी दिलचस्पी के कई दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रैफिक ने अपनी बैक टू स्कूल अवेयरनेस कैंपेन के तहत अल अंदलुस एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स में वाकई अल अंदलुस प्रिपेरेटरी स्कूल फॉर बॉयज का फील्ड दौरा मुनज्जम किया। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रैफिक ब्रिगेडियर जबर अली अल कुबैसी और डायरेक्टोरेट के कई अफसरान भी मौजूद थे। दौरे के दौरान स्कूल का फील्ड टूर कराया गया और असातिज़ा, इंतजामी अमले और तलबा से मुलाकात की गई। इसके साथ एक इंटरेक्टिव अवेयरनेस लेक्चर भी पेश किया गया जिसमें ट्रैफिक सेफ्टी के कवायद, स्कूल बस के इस्तेमाल के उसूल, साइकिल इस्तेमाल करने वालों के लिए हिफाजती हिदायत, फुटपाथ पर चलने और महफूज तौर पर सड़क पार करने के तरीकों पर रोशनी डाली गई। डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रैफिक ब्रिगेडियर जाबर अली अल कुबैसी ने कहा कि इस दौरे का मकसद तलबा में ट्रैफिक सेफ्टी का शऊर बढ़ाना और महफूज रवैयों को फरोग देना है। उन्होंने तलबा को स्कूल के अंदर और बाहर हिफाजती कवायद की पाबंदी की तरगीब दी ताकि एक महफूज तालीमी माहौल को यकीनी बनाया जा सके। सिविल डिफेंस के मैदान में मुश्तरका तआवुन और हम आहंगी को मजबूत बनाने के सिलसिले में रियासत कतर और ब्रदर मुल्क ममलकत सऊदी अरबिया की हुकूमतों के दरमियान सिविल डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट को फ़ाल बनाने के लिए कायम कमेटी का पहला इजलास रियाद में मुनक़द हुआ। कतरी वफ्द की क़यादत डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल डिफेंस मेजर जनरल हमद उस्मान अल दुहेमी ने की, जबकि सऊदी वफ्द की क़यादत डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल डिफेंस मेजर जनरल डॉक्टर हमूद बिन सुलेमान अल फरज ने की। इजलास में एजेंडे में शामिल मौजूदात पर बहस की गई और उनके हवाले से मुनासिब सिफारिशात मंजूर की गईं। इन सिफारिशात का मकसद तैयारी और रेडीनेस की सतह को बुलंद करना, फील्ड ऑपरेशंस की कारकर्दगी को बेहतर बनाना, तजुर्बात के तबादले को फरोग देना और हंगामी सूरत हाल से निमटने के मैकेनिज्म को मजीद तरक्की देना था। पुलिस एकेडमी के जेर इंतजाम रास अल अफ़ान कॉलेज फॉर इमरजेंसी एंड सेफ्टी ने जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ सिविल डिफेंस के ऑफिसर्स क्लब में कॉलेज के एकेडमिक और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के हवाले से एक तारुफी नशिस्त का एहतमाम किया। नशिस्त में प्रेसिडेंट पुलिस एकेडमी मेजर जनरल अब्दुलरहमान माजिद अल सुलैथी, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल सिविल डिफेंस कर्नल मोहम्मद अहमद अल मारिफी और मुतालिका इदारों के अफसरान और नुमाइंदगान ने शिरकत की। इस नशिस्त का मकसद कॉलेज की जानिब से यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ऑफ लैंकशायर के तआवुन से पेश किए जाने वाले एकेडमिक और ट्रेनिंग प्रोग्राम का तारुफ करवाना और इमरजेंसीज, क्राइसिस और फायर सेफ्टी के शोबों में महारत याफ्ता कौमी अफराद की तैयारी और तरबियत में कॉलेज के किरदार को उजागर करना था। ये प्रोग्राम जदीद तरीन बैनुल अक्वामी मेयारों और बेहतरीन अमल के मुताबिक तैयार किए गए हैं। ये प्रोग्राम्स तलबा की एकेडमिक और पेशावराना सलाहियतों को फरोग देने, रिस्क मैनेजमेंट और वाकयात और हंगामी सूरत हाल से मौसर तौर पर निपटने की सलाहियतों को बेहतर बनाने और प्रिपेयर्डनेस, प्रिवेंशन और सेफ्टी की सतह को बुलंद

0: करने में मदद देते हैं। इन प्रोग्राम्स का मकसद मुतालिका इदारों की मैदानी जरूरियात को पूरा करना, सिक्योरिटी और सेफ्टी सिस्टम की हिमायत करना और मुख्तलिफ हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए कौमी सलाहियतों को मजबूत बनाना है। रियासत कतर ने रियाद में गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के जनरल सेक्रेटरीट के मरकज पर मुनक्किद गल्फ सिक्योरिटी स्ट्रेटजी टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग 2026-2030 के नाफिज की पैरवी करने वाली कमेटी के दूसरे इजलास में शिरकत की। वजारत दाखिला के वफद की क्यादत स्टाफ कर्नल मोहम्मद बिन मुबारक अल्फानी, असिस्टेंट डायरेक्टर इकोनॉमिक एंड साइबर क्राइम डिपार्टमेंट जनरल डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ने की। इजलास में स्ट्रेटजी के अहदाफ पर अमल दरामद के प्लान का जायजा लिया गया, खासतौर पर कानून और सिक्योरिटी पॉलिसीज, मुश्तरका सिक्योरिटी ऑपरेशंस, तआवुन और हम आहंगी और ट्रेनिंग और सलाहियतों को बढ़ाने के शोबों पर बहस की गई। इजलास का मकसद मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने के लिए GCC ममालिक के दरमियान मुश्तरका कोशिशों को मजबूत बनाना और सिक्योरिटी तआवुन को फरोग देना था। वजीर मुमलिकत बराए उमूर दाखला शेख अब्दुल अजीज बिन फैसल बिन मोहम्मद अल सानी ने जमहूरिया इस्लामिया पाकिस्तान के वजीर बराए ओवरसीज पाकिस्तानीज और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट चौधरी सालिक हुसैन से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के ताबुन के शोबों और उन्हें मजीद मजबूत और फरोग देने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा दोनों जानिब से मुश्तरका तआवुन को बढ़ाने और बाहमी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के हवाले से कई उमूर पर भी बातचीत की गई। रियासत कतर ने रियाद में गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के जनरल सेक्रेटरीट के मरकज पर मुनक्किद कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स जनरल ऑफ सिविल डिफेंस ऑफ द GCC स्टेट्स के 35वें इजलास में शिरकत की। वजारत दाखिला के वफद की क्यादत मेजर जनरल हमद उस्मान अल दुहैमी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल डिफेंस ने की। इजलास में एजेंडा में शामिल कई अहम मौजूद पर बहस की गई और उनके हवाले से मुनासिब सिफारिशात मंजूर की गई। ये सिफारिशात GCC ममालिक के दरमियान सिविल डिफेंस के शोबे में तआवुन और हम आहंगी को मजबूत बनाने के लिए तैयार की गई हैं। वजीर दाखला और इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स लखविया के कमांडर शेख खलीफा बिन हमद बिन खलीफा अलसानी ने जमहूरिया सूडान के वजीर दाखला लेफ्टिनेंट जनरल बेबिकर सामरा मुस्तफा अली से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों ब्रदर ममालिक के दरमियान तआवुन के ताल्लुकात और उन्हें मजीद मजबूत और फरोग देने के तरीकों पर बातचीत की गई, खासतौर पर सिक्योरिटी के शोबों में मुश्तरका तआवुन को बढ़ाने पर जोर दिया गया। इसके अलावा दोनों जानिब से बाहमी दिलचस्पी कई अहम उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। सामईन, इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वीकली अपडेट का सिलसिला अपने अख्तिताम को पहुंचा। अगली मुलाकात तक के लिए प्रोग्राम डिजाइनर शहबाज अंसारी और सरवर मिर्जा को इजाजत दीजिए और याद रखिए, कानून की पासदारी और एहतराम कीजिए, कानून आपकी हिफाजत करेगा।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: दोस्तों, आजकल के डिजिटल दौर में वीडियो गेम्स बच्चों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन इन गेम्स का मुनासिब इंतखाब और उनकी देखभाल बहुत जरूरी है। अपने बच्चों के करीब रहिए, उन्हें गेम्स के इंतखाब में शामिल कीजिए, उन गेम्स का चुनाव कीजिए जो उनकी एज और ज़हनी तरक्की के मुताबिक हों। गेम्स के जरिए सिर्फ तफरी नहीं बल्कि तालीम और स्किल्स भी हासिल की जा सकती हैं, अगर सही इंतखाब किया जाए। आपकी रहनुमाई और तवज्जो उनकी डिजिटल दुनिया को महफूज और फायदेमंद बना सकती हैं। वजारत दाखला का कहना है कि अपने बच्चों के साथ मिलकर उनकी गेमिंग दुनिया को सेफ और प्रोडक्टिव बनाइए। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: खुद अपने आप से पूछें लोग मेरे लफ्ज पर कितना एतमाद करते हैं। अगर मैं कहूं कि मैं आऊंगा, क्या लोग यकीन कर लेते हैं? अगर मैं कहूं मैंने ये काम कर दिया है, क्या ये बात काफ़ी समझी जाती है? अगर मैं कोई ख़बर सुनाऊं, क्या लोग इस बात की यकीन कर लेते हैं कि हाँ भाई इसकी बात काफ़ी सच्ची होगी, ये ख़बर यकीनी है? तो दरअसल ये एतमाद बहुत बड़ी दौलत होती है और उसे हासिल करने का रास्ता एक ही दिन में तय नहीं होता। सामिन कराम, इसी तरह आज की रूह परवर सुन्नत हमें एक बहुत बड़ी हकीकत समझा गई कि इंसान वही बनता जाता है जो वो बार बार करता है। बार बार सच तो सच्चाई के तार बन जाती है, बार बार झूठ तो झूठ शख्सियत में उतरने लगता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने दोनों रास्तों की मंजिल वाज़े कर दी। फ़इन्नस सिद्क़ यहदी इलल बिर वइन्नल बिर्र यहदी इलल जन्ना, सच नेकी की तरफ ले जाता है और नेकी जन्नत की तरफ। तो आज से ये अहद कीजिए कि सच्चाई को हर वक्त तलाश करूँगा, इसका अहतमाम करूँगा और उसे अपने किरदार की पहचान बनाऊँगा। अल्लाह ताला हमें सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर करने, उसे समझने और मोहब्बत के साथ अपनी ज़िंदगियों में उन्हें नाफिज करने की तौफीक अता फरमाएं। इसी दुआ के साथ प्रोग्राम रूह परवर सुन्नत के आज के हलके से तकनीक की मुआविन शकील अहमद और मुझे तलहा अशरफ जमान को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए, सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते रहिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

लेजेंड की, जिन्होंने स्पिन बॉलिंग को एक आर्ट नहीं बल्कि एक खूबसूरत फन बना दिया था। नाम है बिशन सिंह बेदी। जी हाँ, बिशन सिंह बेदी मार्वलस लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर। एंड आज के डेट में क्या ही बताएं, एक ऐसा बॉलर जिनकी बॉलिंग में रफ्तार से ज्यादा रिदम थी, एग्रेशन से ज्यादा कंट्रोल था और हर डिलीवरी में एक कहानी होती थी। एंड बड़ा कलरफुल कैरेक्टर ही वाज। 1940 में भारत के पंजाब सूबे के अमृतसर शहर में पैदा हुए बेदी नए आजाद भारत में पले बड़े। ठीक है, बेदी ने अपनी जो यंग जनरेशन की जो क्रिकेट है, उस जमाने की जो क्रिकेट है, वहां पर सब लोग क्रिकेट खेलते थे, लेकिन बेदी साहब क्रिकेट नहीं पसंद करते थे। उनके लिए क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं था बल्कि एक दावत, एक एहसास, एक जिंदगी थी। ये बाद में जाके उनको थोड़ा सा एहसास हुआ कि क्रिकेट वॉज अ गेम जो कि उन्हें खेलना चाहिए, क्योंकि उस जमाने में हॉकी वॉज वेरी पॉपुलर, हॉकी वॉज जबरदस्त, यू नो, इंडिया वॉज ओलंपिक चैंपियंस इन दोज एरा। और बेदी साहब ने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू नॉर्दर्न पंजाब के लिए सिर्फ 15 साल की उम्र में जनवरी 1962 में किया और अपने तीसरे मैच में उसी साल दिसंबर में दिल्ली के खिलाफ 32 रन देकर 7 विकेट दिए और पूरे मैच में 11 विकेट हासिल किए। यह सिर्फ एक नौजवान क्रिकेटर की परफॉर्मेंस नहीं थी, ये एक ऐसे टैलेंट की पहली झलक थी जो आने वाले सालों में इंडियन क्रिकेट का नाम रोशन करने वाला था। 1966 के आखिर में जब वो पंजाबी यूनिवर्सिटी में लॉ पढ़ रहे थे, बेदी को पहली बार इंडियन यूनिवर्सिटीज टीम में वेस्ट इंडीज के खिलाफ सेलेक्ट कर लिया गया। सिर्फ 2 हफ्तों बाद वो प्राइम मिनिस्टर्स 11 स्क्वाड का हिस्सा भी बन गए और उस मैच में बेदी ने पहले इनिंग्स में 139 रन देकर 6 विकेट हासिल किए और इस शानदार परफॉर्मेंस के बाद उन्हें कलकत्ता के ईडन गार्डन्स में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच के स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। दैट वाज हाउ बिशन सिंह बेदी मेड हिज एंट्री इनटू द इंडियन टेस्ट क्रिकेट स्क्वाड। द रेस्ट सब लोग कहते हैं ना, वाज हिस्ट्री। बिशन सिंह बेदी ने नवंबर 1966 में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया और अगले चंद सालों में वो इंडियन बॉलिंग अटैक का एक अहम हिस्सा बन गए। अच्छा, उनका बॉलिंग एक्शन देखने में इतना स्मूथ और नेचुरल था कि लगता था जैसे वो गेंद को हवा में तैरने दे रहे थे। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन उनकी पहचान थी, लेकिन उनकी असल ताकत थी फ्लाइट, ड्रिफ्ट, एक्यूरेसी और पेशेंस, यानी सबर। बेदी बैट्समैन को सिर्फ आउट करने की कोशिश नहीं करते थे, वो बैट्समैन को सोचने पर मजबूर करते थे। कभी गेंद को हवा में जरा सा रोकना, कभी ड्रिफ्ट करवाना, कभी फिर पिच पर लैंडिंग के बाद टर्न हासिल करना, ये उनकी बॉलिंग का कमाल था। 1970 की दहाई में इंडिया के स्पिन क्वार्टेट दुनिया भर में मशहूर हुए। बेदी के साथ एरापल्ली प्रसन्ना, भगवत, चंद्रशेखर और श्रीनिवास वेंकट राघवन ने इंडियन क्रिकेट को एक नया बोलिंग आइडेंटिटी दी और इन चार स्पिनर्स ने मिलकर ऑपोजिशन बैट्समैन के लिए मुश्किलात पैदा कर दी थी। दैट वाज द डोमिनेंस ऑफ दीज फोर बोलर्स, मार्वलस। बेदी ने इंडिया के लिए 67 टेस्ट मैचेस खेले और 266 विकेट हासिल किए। बाद में कपिल देव इस रिकॉर्ड को

एक और पहलू सामने रखा। लेकिन बेदी की सबसे खास बात उनकी क्रिकेटिंग ऑनेस्टी थी, ईमानदारी। वो सिर्फ अपनी टीम के लिए नहीं बल्कि गेम के लिए खड़े होते थे। उन्होंने अपने करियर में स्पोर्ट्समैनशिप और फेयर प्ले को बहुत अहमियत दी। क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद भी बेदी ने गेम से रिश्ता नहीं तोड़ा। वो कोच, कमेंटेटर और मेंटोर के तौर पर क्रिकेट से जुड़े रहे और नए प्लेयर्स को स्पिन बॉलिंग के बारे में अपना इल्म जो है वो ट्रांसफर करते थे कि भाई सीखो, ऐसे ही बॉल करो, ऐसे गेंद फेंको। हरभजन सिंह वाज द बेस्ट एग्जांपल। उनकी लेगेसी सिर्फ उन 266 टेस्ट विकेट्स तक महदूद नहीं। बिशन सिंह बेदी ने इंडियन क्रिकेट को यह सिखाया कि बॉलिंग सिर्फ पेस और पावर का नाम नहीं, कभी कभी एक धीमी हवा में तैरती हुई गेंद भी बैट्समैन की पूरी दुनिया हिला सकती है। और बेदी की जिंदगी क्रिकेट के लिए जुनून, डिसिप्लिन और इंडिविजुअलिटी की मिसाल है। एक ऐसा बॉलर जो बैट्समैन को डरा कर नहीं बल्कि उन्हें कंफ्यूज करके आउट करता था, दैट वाज बिशन सिंह बेदी। और इसीलिए बिशन सिंह बेदी का नाम इंडियन क्रिकेट की तारीख में हमेशा एक खूबसूरत स्पिन के साथ याद किया जाएगा। दोस्तों, बिशन सिंह बेदी की कहानी हमें ये बताती है कि क्रिकेट में कामयाबी सिर्फ टैलेंट से नहीं मिलती, उसके लिए सब्र चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए और अपने हुनर पर यकीन चाहिए। बेदी ने अपनी बॉलिंग से विकेट्स हासिल किए लेकिन अपनी पर्सनालिटी और स्पोर्ट्समैनशिप से क्रिकेट फैंस के दिल जीत लिए। उम्मीद है आपको हमारा आज का यह स्पोर्ट्स सेगमेंट पसंद आया होगा। अगली बार एक और नए स्पोर्ट्स लेजेंड की कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। खुश रहें, सेहतमंद रहें और हमेशा अपना जज्बा जिंदा रखें। फी अमानिल्लाह।

अस्सलामुअलैकुम, मैं दुआ वाला कबीर एफएम 107 पे एंड वेलकम टू अनदर टेक अपडेट। ये बोलने के लिए मैंने कितना वेट किया बता आपको, टेक अपडेट। तो शुरू करते हैं सबसे पहले वेबसाइट से, ऑफकोर्स कुछ बहुत ही जबरदस्त एआई टूल्स एंड वेबसाइट जो आपके काम आएंगे, एंड देन टुवर्ड्स द न्यूज। तो नंबर वन ऑन द लिस्ट टुडे इज एन अमेजिंग वेबसाइट जहां पर आप अपना क्यूआर कोड बना सकते हैं। अब आप बोलेंगे ये तो कोई भी बता सकता है, पर क्यूआर कोड को और भी इंटरेस्टिंग बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपको टाइप करना है एड्रेस बार में tree.icqr.com, tree TREE, पेड़ वाला tree, .icqr.com, और सी वो अल्फाबेट वाला सी। जब आप टाइप करेंगे आपके सामने एक वेबसाइट आएगी जहां पर आप जो है खूबसूरत बारकोड बना सकते हैं, और इन बारकोड की खास बात यह है कि आप इनको एक ट्री की तरह मैनेज कर सकते हैं। लेट मी एक्सप्लेन, आप इसको 3D मॉडल जब स्पिन करेंगे तो उसमें कोई सा भी कलर दे सकते हैं, कैसा भी कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप कोई ऐसी जगह बारकोड ये पेस्ट करने वाले हैं जो आपका पैम्फलेट है, या फिर आप रेस्टोरेंट चलाते हैं, या फिर आप ऐसी फैंसी तरीके से अपने घर में कहीं पोस्ट करना चाहते हैं जहां से लोग वाईफाई आपका यूज कर सकें, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, पर यहां से बारकोड आप बहुत ही खूबसूरत तरीके से बना सकते हैं। इस तक में भाई कस्टमाइजेशन आ चुकी है। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू अनदर वन। अगली वेबसाइट है cleverhumanizer.ai। मैं बताता हूँ इसकी स्पेलिंग, क्लेवर वो चालाक वाला क्लेवर, सो CLEVER, फिर ह्यूमनाइजर HUMANIZER, cleverhumanizer.ai। जो इसका नाम है वही इसका काम है। बेसिकली आप किसी भी अगर AI से कुछ भी पूछते हैं, आपको वो AI जनरेटेड टेक्स्ट देता है जो कि पता लगता है और पकड़ा भी जाता है कि भाई हाँ ये पक्का AI से निकाला है। मगर उस टेक्स्ट को अगर आप इस वेबसाइट पे पेस्ट करेंगे तो ये एक ह्यूमनाइज्ड वर्जन ऑफ द सेम टेक्स्ट आपको देगा, तो ऐसा लगेगा कि भाई किसी इंसान ने ही लिखा है। तो बेहतरीन बेहतरीन वेबसाइट है, आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। ये हालांकि जो कॉम्प्लेक्स चीज होती है उनको जिस तरीके से आसान करता है, दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। अगर कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो समझने में दिक्कत आ रही है, हालांकि AI ने ही आपको दिया है, उससे भी पूछ सकते हैं। लेकिन

0: एक ह्यूमनाइज टेक्स्ट अगर आपको चाहिए, दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन गो ऑन टू. अब एक और वेबसाइट, अगली वेबसाइट का नाम है FMHY. ये अल्फाबेट्स हैं, FMHY.net. जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको सब कुछ आपकी नजरों के सामने आ जाएगा. क्या क्या ये आपको बताता हूँ, सारे के सारे टूल्स, सारे के सारी वेबसाइट्स. आपको गेमिंग वेबसाइट चाहिए, गेमिंग वेबसाइट मिल जाएगी. स्ट्रीम करने के लिए, स्ट्रीम करने के लिए मिल जाएगी. AI चाहिए, AI मिल जाएंगे. आपको टूल्स चाहिए इमेज नॉट ओनली जनरेशन बट एडिट करने के लिए, वीडियो एडिट करने के लिए, कैसे भी, वो सारे के सारे लिस्ट बाय लिस्ट आपके सामने आते चले जाएंगे. बहुत बड़ा कलेक्शन है इस वेबसाइट पे, विच आई रियली रियली लव. आई थिंक ये बहुतों के काम आने वाली है, तो मैंने कहा ये तो मैं जरूर बताऊंगा. सो F like a fan, M like a monkey, H like a horse, N Y as in Yankee या Y as in yak. FMHY.net. ओके, अब बढ़ते हैं जरा खबरों की तरफ. ऑलराइट, तो अभी बहुत सारी खबरें आ रही हैं ओपन AI से जुड़ी हुई. तो ओपन AI का जो नेक्स्ट मॉडल फेस है वो थोड़ा टफ बनाने की कोशिश की जा रही है. एक अनरिलीज्ड वर्जन है एस्ट्रा मॉडल, जो बहुत बहुत पावरफुल है, और बताया जा रहा है कि वो ऑटोनोमस आइडेंटिटी और पोटेंशियली साइबर सिक्योरिटीज की जो वल्नरेबिलिटीज है उनको भी थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बना सकता है. अभी डेवलपमेंट जारी है भाई, कोई बच के निकल को नहीं पाएगा. ये बहुत बढ़िया चीज बनने वाली है एंड दिस विल कम इन प्लेस. इसके अलावा टिम कुक की खबर आई है, जो कि एप्पल के लीडर हैं, और टिम कुक अब एप्पल के CEO नहीं रहे. आई नो ये खबर जिनको पता है बहुत बढ़िया, मगर उनके 15 साल के करियर के बाद लीडिंग एज द CEO ऑफ एप्पल, अब जॉन टर्निस टेक ओवर कर चुके हैं. और इमीडिएट चैलेंज उनके लिए यही होगा कि भाई कुछ बदले और ये जो गैप है ये आएगा वो तो मिटाएं, साथ में कुछ नया डिजाइन लेके आ जाओ मलिक. तो ये थी टेक अपडेट. मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर दिल से देसी टेक अपडेट. टेक अपडेट.
1: आप सुन रहे हैं एफएम 107. एफएम 107 दिल से देसी.
2: स्कैम अलर्ट. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. एफएम 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का. मेरा नाम है फजील और हर रोज आपसे मुखातिब होता हूँ इस वक्त जहां पर हम बात करते हैं नए जमाने के नए स्कैम के बारे में. वेल, फ्रॉड के बारे में आपको पता होना चाहिए. हर दिन एक नया फ्रॉड, और ये जो फ्रॉडस्टर्स हैं डिजिटल इस्तेमाल कर रहे हैं, कई बार ये फिजिकली भी लोगों को अब फ्रॉड करने लग गए हैं. लेकिन आज जिस फ्रॉड के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, ये फ्रॉड बहुत ही आसानी से कोई फ्रॉडस्टर्स आपके साथ कर सकता है और आपको यकीन भी नहीं होगा. कई बार आप इनके चंगुल में फंस जाते हैं और बहुत लेट पता चलता है. और ऐसा ही एक फ्रॉड है जो अगर आपके साथ हो गया तो आपको थोड़ा लेट पता चलता है. दिस स्कैम इज कॉल्ड ओवर पेमेंट स्कैम. दोस्तों ये काम कैसे करता है इस पर जरा सबसे पहले नजर डालते हैं. ओवर पेमेंट स्कैम आम तौर पर ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर्स, होलसेलर्स और इंडिपेंडेंट सेलर्स को अपना शिकार बनाता है. इस फ्रॉड में एक फ्रॉड बायर आपकी शॉप या वेबसाइट पर आकर एक बहुत बड़ा ऑर्डर देता है या कोई बहुत महंगा आइटम ना खरीद लेता है, और बगैर आपसे मांडवली बोले तो नेगोशिएशन के आपसे, आपने जो भी अमाउंट बताया है अपने प्रोडक्ट का, वो आसानी से मान जाता है और वो आपसे खरीद लेता है. वो पेमेंट करने के लिए एक बिजनेस चेक भेजता है या फिर किसी चुराए हुए क्रेडिट कार्ड का यूज करता है. इस स्कैम का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये होता है कि वो जानबूझकर एक्चुअल प्राइस से बहुत ज्यादा पैसा भेज देता है. मिसाल के तौर पे मैंने आपको कॉल किया और कहा कि भाई आपका जो प्रोडक्ट है ना वो मुझे खरीदना. आपने कहा भाई 10 रियाल पर पीस पड़ेगा. मैं कहूंगा ठीक है, एक काम करिए आप 3,000 पीस मुझे भेज दीजिए. जो भी पेमेंट बनता है मैं उससे आपको 10,000 रियाल या 10,000 रुपए व्हाटएवर द अमाउंट इज मैं बढ़ाकर आपको पेमेंट भेजूंगा. और कैसे? चेक के जरिए. चेक बनाकर मैंने आपको भेज दिया, आपने प्रोडक्ट अभी भेजा नहीं है. लेकिन जब आपके पास चेक पहुंच गया तो मैं आपसे कहता हूं भाई आप जो है प्रोडक्ट भेज सकते हैं. लेकिन खेल यहीं शुरू होता है. होता यह है जब वो जानबूझकर ज्यादा पैसे भेज देते हैं तो वो करते ये हैं कि बिल का, जैसे अगर 10,000 का बिल है तो वो 1,000 एक्स्ट्रा कर देंगे, 11,000 कर देंगे. और वो कहेंगे अरे वो धोखे से मैंने आपको ज्यादा पेमेंट कर दिया है, तो जो ज्यादा पेमेंट आपको किया आप वो मुझे वापस कर दें. और जब चेक आपका टूटेगा तो फिर आपको पैसा मिल ही जाएगा. पैसा भेजने के तुरंत बाद बायर सेलर को मैसेज या कॉल करता है और बहुत माफी भी मांगता है. तो कहता है सॉरी मेरे अकाउंट से जो है

0: गलती हो गई है अकाउंटेंट वाले से और ज्यादा पैसे आपको दे दिए हैं, वो सब तरीके अपनाता है आपको फंसाने के लिए। आप 1000 काट लीजिएगा और बाकी की जो 4000 है ना, वो मुझे तुरंत आप बैंक वायर ट्रांसफर कर दीजिए या डिजिटल वॉलेट के जरिए रिफंड कर दीजिए। सेलर को लगता है कि सामने वाला इंसान जेन्युइन है, पैसा तो उसके बैंक में आ ही चुका है, बस चेक जो है वो मुझे जमा करनी है बैंक में, मुझे पैसे मिल जाएंगे फिलहाल के लिए, अभी उसको ज्यादा जो बढ़ा हुआ पैसा है वो वापस कर देते हैं, इसलिए वो बिना सोचे समझे एक्स्ट्रा पैसे रिफंड कर भी देता है और सामान भी शिप कर देता है। कुछ दिनों बाद जब बैंक उस बायर के ओरिजिनल चेक या क्रेडिट कार्ड को प्रोसेस करता है, तब जाकर पता चलता है कि चेक फेक था या कार्ड जो है वो चुराया हुआ था। बैंक वो पूरा ट्रांजेक्शन कैंसिल कर देता है। अब सेलर के अकाउंट से वो पहले वाले पैसे भी चले गए, रिफंड किया हुआ पैसा भी गया और सामान भी चला गया। ये है सबसे बड़ा नुकसान, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी है। दोस्तों क्या सॉल्यूशन है इस तरह के स्कैम से बचने के लिए? सबसे पहला है पैसे क्लियर होने का वेट करें। जब आपको कोई क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करे या फिर आपके बैंक चेक के थ्रू आपको पेमेंट करे, जब तक कोई भी फैसला ना ले, पेमेंट आपके पास आना चाहिए, क्रेडिट कार्ड यानी कि आपके बैंक में क्रेडिट होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट अगर उसने किया है तो सेटल हो जाए, क्लियर हो जाए, तब तक सामान शिप भी ना करें और ना ही कोई रिफंड प्रोसेस करें, सिर्फ अकाउंट में पेंडिंग बैलेंस देखकर खुश ना हो और कभी भी कैश रिफंड नहीं करें। एक तो ये है कि आपने बैंक के थ्रू डायरेक्ट किसी बैंक को ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ पर थोड़ा एक बार को होता है कि आपके पास बैकअप प्लान है कि हाँ मैंने फला अकाउंट में ट्रांसफर किए, उसने मुझसे कहा था, तो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आसान हो जाएगा। लेकिन ऐसा फिर भी ना करें कि किसी के अकाउंट में पैसे आप ट्रांसफर कर दें, उसके अलावा कैश भी ना दें। किसी कस्टमर ने एक्स्ट्रा पेमेंट कर भी दिए तो उन्हें कैश या वायर ट्रांसफर के जरिए रिफंड कभी मत करें, उन्होंने बोला भी है अगर तब भी, कितने भी बड़े आपके वो लॉयल कस्टमर क्यों ना हो। उसके अलावा सिक्योर पेमेंट गेटवेज, अपनी वेबसाइट पर हमेशा उन्हीं पेमेंट गेटवेज का यूज करें जो फ्रॉड डिटेक्शन और चार्ज बैक प्रोटेक्शन टूल्स ऑफर करते हैं। उसके अलावा एक तरीका है अजीब ऑर्डर्स को पहचानना। ये आमतौर पर सब नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा होशियार होने से आप जबरदस्त तरीके से होने वाले स्कैम से बच सकते हैं। अगर कोई बायर अचानक बिना बार्गेनिंग किए बहुत बड़ा ऑर्डर देता है बगैर नेगोशिएशन के, तो पेमेंट के लिए अजीब तरीके अगर वो यूज कर रहा है तो अभी आपको सोचने, देखने और समझने की जरूरत है। तो दोस्तों ये था आज का फ्रॉड अवेयरनेस का एपिसोड और उम्मीद है कि इस तरह के नए स्कैम्स, नए जमाने के नए फ्रॉड से आपको बचाने के लिए मैं जितनी भी कोशिश कर रहा हूँ वो मुकम्मल हो रही होगी। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट, आप सुन रहे हैं FM 107, FM 107, दिल से देसी।
2: स्मार्ट मनी, स्मार्ट मनी।
3: हेलो एंड वेलकम टू अवर सेगमेंट कॉल्ड स्मार्ट मनी। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नासिया। आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं द साइकोलॉजी बिहाइंड इंपल्सिव बाइंग। हम सब ने ना कभी ऐसी शॉपिंग जरूर की होगी जहां हम किसी चीज को बिना प्लानिंग के खरीदते हैं और बाद में सोचते हैं आह मुझे तो इसकी जरूरत ही नहीं थी। और इसी बिहेवियर को इंपल्सिव बाइंग कहा जाता है। देखिए इंपल्सिव बाइंग का मतलब है ऐसी चीजों को खरीदना जिनकी हमको जरूरत नहीं है। ये सिर्फ शॉपिंग का मसला नहीं है, ये साइकोलॉजी से इसका ताल्लुक बहुत ज्यादा डीप है। अब मैं आपको समझाती हूँ कैसे। देखिए इंपल्सिव बाइंग तब होती है जब हम इमोशन की बुनियाद पर डिसीजंस लेते हैं, लॉजिक की बुनियाद पे नहीं। हमारा जो ब्रेन है ना, या यूं कहें जो ह्यूमन ब्रेन है, वो दो सिस्टम्स पर काम करता है। एक इमोशनल सिस्टम जो इंस्टेंट हमें प्लेजर देता है और दूसरा रेशनल सिस्टम जो सोच समझकर फैसला करता है। जब हम इंपल्सिव शॉपिंग करते हैं इमोशनल सिस्टम जीत जाता है और कहीं ना कहीं रेशनल थिंकिंग पीछे रह जाती है। और इसका सबसे बड़ा जो ये शॉपिंग करने का जो सबसे बड़ा फायदा हमें समझ में आता है वो है फील गुड केमिकल यानी डोपामाइन इफेक्ट। और ये हमारा ब्रेन जो है वो बताता है कि इसे करके तुम एक्साइटेड हो, तुम खुश हो, तुम हैप्पी फील कर रहे हो। तभी तो आप देखिए जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या ऐप खोलते हैं, सेल देखते हैं या कोई नई चीज खरीदते हैं, ब्रेन ऑटोमेटिकली डोपामाइन रिलीज करता है और हमें एक तरह की टेम्परेरी खुशी मिलती है। और शायद इसी खुशी के लिए लोग बार बार शॉपिंग करते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे मेरे

सारा ऑफिस में स्ट्रेस फील कर रही थी। लंच ब्रेक में वो ऑनलाइन शॉपिंग ऐप उसने ऑन किया और देखते देखते एक बहुत ही कमाल का एक ब्रांडेड हैंडबैग उसने परचेज कर लिया। हालांकि उस बैग की उसको बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उसके पास कुछ नहीं तो 8-10 बैग्स तो थी। लेकिन फौरन ऑर्डर कर देना, ले लेना और मूड अपना बेहतर कर लेना, ये एक इमोशनल एक साइकोलॉजी है। कुछ घंटों के बाद वही चीज, वही एक्साइटमेंट जो है वो खत्म हो जाता है और फिर शायद हमें एहसास होता है कि हमने पैसे अननेसेसरीली या यूं ही वेस्ट कर दिए। एक और चीज मैं आपको बताऊंगी, कहीं ना कहीं इमोशनल ट्रिगर भी इम्पल्सिव बाइंग को बढ़ाता है। जैसे स्ट्रेस हुआ, शॉपिंग कर ली, सैडनेस है, शॉपिंग कर ली, बोर्डम है, शॉपिंग कर ली, लोनलीनेस का शिकार है, शॉपिंग कर ली, एंग्जाइटी के वक्त भी लोग शॉपिंग करते हैं और उसे बकायदा थेरेपी समझते हैं और इसीलिए रिटेल थेरेपी भी उसे कहा जाता है। जी हाँ, लेकिन ये रिलीफ बहुत ही टेम्परेरी होता है, जबकि फाइनेंशियल बर्डन बड़ा परमानेंट। मार्केटिंग कंपनीज भी साइकोलॉजी को अच्छी तरह से समझ गई हैं। तभी तो आपने ये वर्ड सुन रखे हैं जैसे सेल, फ्लैश सेल, ओनली 2 आइटम्स लेफ्ट, लिमिटेड ऑफर, 50% ऑफ फॉर टुडे। ये ऐसे ऐसे मैसेजेस हैं जो अर्जेंसी को क्रिएट करते हैं और हमें लगता है कि अगर हमने अभी परचेज नहीं किया तो शायद इस अपॉर्चुनिटी को हम हमेशा के लिए खो देंगे। और शायद यही फिनोमेना फोमो कहलाता है, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। देखिए, सोशल मीडिया भी कहीं ना कहीं इंपल्सिव बाइंग का एक बड़ा फैक्टर है। जब हम इन्फ्लुएंसर्स को लेटेस्ट गैजेट्स, लक्जरी प्रोडक्ट्स और फैशनेबल आउटफिट यूज करता देखते हैं तो हम कोई भी नॉन एसेंशियल आइटम खरीदने से पहले 24-hour रूल जरूर फॉलो कीजिए। अपने आप से पूछिए, क्या मुझे वाकई इसकी जरूरत है? बजट बनाइए, शॉपिंग लिस्ट के बगैर शॉपिंग ना करें और इमोशनल स्टेट में या फिर ऑनलाइन स्टोर से शॉपिंग करने से बचिए। आखिर में बस जाते जाते यही कहूंगी कि इंपल्सिव बाइंग सिर्फ पैसे का मसला नहीं है, ये इमोशन और बिहेवियर का मसला है। जब हम अपनी फीलिंग्स को समझना और कंट्रोल करना सीख लेते हैं तो हम बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस ले पाते हैं। याद रखिए, टेम्परेरी हैप्पीनेस के लिए की गई इंपल्सिव शॉपिंग अक्सर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेस का सबब बन जाती है। बस खुद को इससे बचाना है। फिलहाल आज के लिए दोस्तों इतना ही। मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।

एक सबक है, एक रोशनी जो हमें राह दिखाती है। उनकी कुर्बानियां, सब्र और अल्लाह पर यकीन हमें सिखाता है कि मुश्किलें आती हैं।

0: मगर ईमान हमेशा जीतता है. Stories of Prophets. Stories of Prophets. जिसमें आप सुनेंगे नबियों की दिलचस्प कहानियाँ, उनकी मेहनत, उनके इम्तिहान और उनके पैगामात जो दिल को छू लेते हैं. आप भी इस सफर में शामिल हों और इन पाक कहानियों से अपने दिल को रोशन करें.
1: सुनिए शो आरजे महविश खान के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी. अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं एफएम 107 कतर. मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे महविश खान और शो सुन रहे हैं आप स्टोरीज फ्रॉम प्रॉफिट्स. और इसकी एक और एपिसोड लेके मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ. ये वो सिलसिला है जहाँ हम अल्लाह ताला के बरगजीदा अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की जिंदगियों से जुड़े वाकयात और उनकी तालिमात को याद करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि सदियों पहले दी जाने वाली ये हिदायत आज हमारी जिंदगियों में किस तरह रोशनी पैदा कर सकती हैं. हमारी पिछली एपिसोड में हमने इंसानी तारीख का जो आगाज था वो देखा था. हमने हजरत आदम अलैहि सलाम के बारे में बात की. हमने देखा कि अल्लाह ताला ने उन्हें किस तरह इज्जत अता फरमाई, उन्हें इल्म दिया, फरिश्तों के सामने उनका मकाम जाहिर किया और फिर हमने ये भी सीखा कि तकब्बुर किस तरह से अल्लाह की नाफरमानी तक ले जा सकता है. हमने शैतान के वसवसे के बारे में भी बात की और ये समझा कि इंसान से गलती हो सकती है लेकिन अल्लाह ताला की रहमत का दरवाजा कभी बंद नहीं होता. जब इंसान अपनी गलती को तस्लीम करता है, अपने रब की तरफ वापस आता है और सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसे अपनी रहमत से महरूम नहीं करता. और आज हम उसी इंसानी तारीख के एक और अजीम नबी की तरफ बढ़ते हैं, एक ऐसे नबी की तरफ जिनका जिक्र कुरान मजीद में बहुत मुख्तसर अंदाज में आया है लेकिन उनके बारे में अल्लाह ताला ने जो चंद अल्फाज फरमाए उनमें भी हमारे लिए बहुत गहरी रहनुमाई मौजूद है. आज हम बात करेंगे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में. हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में मुख्तसर है. हमें उनकी जिंदगी के हर दौर, हर वाकये या हर गुफ्तगू की तफसील कुरान में नहीं मिलती और यही वजह है कि आज हम उनके बारे में बात करते हुए एक अहम उसूल को भी सामने रखेंगे. हम वही बात यकीन के साथ बयान करेंगे जो कुरान या काबिल एतमाद इस्लामी रिवायात से साबित हों, क्योंकि अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के वाकयात बयान करना कहानी सुनाना नहीं है, ये दीन का हिस्सा है. और जब बात अल्लाह के नबी के बारे में हो तो हमें अल्फाज के इंतखाब में भी एहतियात करनी चाहिए. कुरान मजीद हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का तारुफ इंतहाई खूबसूरत अल्फाज में करवाता है. अल्लाह ताला फरमाते हैं और किताब में इदरीस का जिक्र कीजिए, बेशक वो बहुत सच्चे नबी थे. सिर्फ एक आयत लेकिन इस आयत में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की शख्सियत की एक बुनियादी खूबी हमारे सामने आ जाती है, सच्चाई. अल्लाह ताला ने उनका तारुफ किसी बादशाहत से नहीं करवाया, किसी दौलत से नहीं करवाया, किसी दुनियावी ताकत से नहीं करवाया, बल्कि फरमाया वो सच्चे थे और फिर फरमाया वो नबी थे. ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा सबक है और आज हम कामयाबी को बहुत सी चीजों से नापते हैं, अच्छी मुलाजमत, ज्यादा आमदनी, बड़ा घर, सोशल मीडिया पर ज्यादा फॉलोअर्स, लोगों में शोहरत, एक खास मकाम. लेकिन कुरान हमें कामयाबी का एक और मयार दिखाता है. इंसान की असल अजमत उसके किरदार में है और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के जिक्र में सबसे पहले जिस खूबी को नुमाया किया गया वो है सच्चाई. तो सवाल ये है, सच्चाई आखिर है क्या, या क्या सिर्फ झूठ ना बोलना ही सच्चाई है, या सच्चाई इससे कई ज्यादा वसी चीज है? क्या हम उस वक्त भी सच्चे रहते हैं जब सच बोलने से हमें नुकसान हो सकता हो? क्या हम अपनी गलती उस वक्त भी तस्लीम करते हैं जब उसे छुपाना हमारे लिए आसान हो? क्या हम दूसरों

के बारे में बात करते हुए भी इंसाफ और सच्चाई से काम लेते हैं? और आज के इस दौर में जहां एक गैर मुसद्दक का पैगाम चंद सेकंड्स में हजारों लोगों तक पहुंच सकता है, क्या हम अपने अल्फाज की जिम्मेदारी समझते हैं? यही वो सवालात हैं जिन पर आज हम गौर करेंगे। आइए हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के मुख्तसर मगर सबक आमोज जिक्र से अपनी आज की गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अल्लाह ताला सूरह मरियम में फरमाते हैं, और किताब में इदरीस का जिक्र कीजिए, बेशक वो सच्चे नबी थे। गौर कीजिए, अल्लाह ताला ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के लिए सिर्फ ये नहीं फरमाया कि वो नबी थे, बल्कि उनके साथ एक ऐसी सिफ्त बयान फरमाई जो उनकी शख्सियत की बुनियाद को जाहिर करती है, वो सच्चे थे। अरबी जबान में इसके लिए सिद्दीक का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। सिद्दीक सिर्फ उस शख्स को नहीं कहते जो कभी झूठ ना बोले, बल्कि ये लफ्ज ऐसी मजबूत और मुसलसल सच्चाई की तरफ इशारा करता है जो इंसान के किरदार का हिस्सा बन जाए, यानी इंसान की बात और उसका अमल एक दूसरे से जुदा ना हो। वो जो कहता है उसे निभाने की कोशिश भी करता है, वो गलती करे तो उसे तस्लीम करता है, वो वादा करे तो उसे पूरा करने की कोशिश करता है, वो किसी बात को ना जानता हो तो ये कहने में शर्म महसूस नहीं करता, मुझे मालूम नहीं। ये भी सच्चाई है, और अंबिया कराम अलैहि सलाम के लिए सच्चाई की अहमियत और भी ज्यादा है, क्योंकि नबी अल्लाह ताला का पैगाम इंसानों तक पहुंचाते हैं। वो अपनी तरफ से दीन में कोई बात शामिल नहीं करते, वो लोगों को खुश करने के लिए अल्लाह ताला के हुक्म को तब्दील नहीं करते, वो अपनी मकबूलियत बढ़ाने के लिए हक को नहीं छुपाते, और ना ही लोगों के दबाव में आके अल्लाह ताला की हिदायत को बदलते हैं। इसलिए जब अल्लाह ताला हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को सिद्दीक करार देते हैं तो ये एक मामूली तारीफ नहीं, ये उनके किरदार और उनके मनसब दोनों के बारे में एक अजीम गवाही है। हम अक्सर सच्चाई को सिर्फ झूठ बोलने या ना बोलने से जोड़ते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा गौर करें तो मालूम होगा कि सच्चाई हमारी पूरी जिंदगी से ताल्लुक रखती है। मसलन एक तालिब इल्म इम्तिहान में नकल नहीं करता, ये सच्चाई है। एक मुलाजिम अपने काम के औकात और कारकर्दगी के बारे में गलत मालूमात नहीं देता, ये सच्चाई है। एक शख्स किसी से वादा करता है तो उसे पूरा करने की कोशिश करता है, ये सच्चाई है। एक इंसान से गलती हो जाए तो वो दूसरों पर इल्जाम डालने के बजाय कहता है, हाँ मुझसे गलती हुई है, ये भी सच्चाई है। और एक शख्स को किसी बात का जवाब मालूम ना हो तो वो अपनी लाइल्मी छुपाने के लिए कोई मनगढ़ंत जवाब नहीं देता, वो कहता है मुझे इस बारे में मालूम नहीं, ये भी सच्चाई है। आज मालूमात हासिल करना पहले के मुकाबले में बहुत आसान हो गया है, हमारे हाथ में मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, हर वक्त खबरें, वीडियोस, पैगामात और दावे हमारे सामने आते रहते हैं। लेकिन मालूमात की कसरत का मतलब ये नहीं कि हर मालूमात दुरुस्त भी हो। कभी कोई पैगाम हमें जज्बाती कर देता है, हम उसे पढ़ते हैं और फौरन आगे भेज देते हैं। कभी किसी वीडियो के साथ एक दावा लिखा होता है, हम वीडियो देखते हैं और दावा भी सच समझ लेते हैं। कभी कोई शख्स किसी के बारे में ऐसी बात बताता है जो हमें दिलचस्प लगती है और हम उसे दूसरों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन एक सच्चे इंसान की जिम्मेदारी है कि वो खुद से पूछे, क्या ये वाकई दुरुस्त है? मैं जो बात आगे पहुंचा रहा हूं, क्या मैं उसके बारे में मुतमईन हूं? ये सवाल आज के दौर में सच्चाई का एक अहम हिस्सा बन गया है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की जिंदगी की जो बुनियादी सिफ्त कुरान हमारे सामने रखता है, वो हमें यही याद दिलाती है कि सच्चाई सिर्फ एक खूबसूरत लफ्ज नहीं, ये एक जिम्मेदारी है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में हम क्या जानते हैं? अब यहाँ पे ये बात समझना बहुत अहम हो जाता है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत सी रिवायात और तारीखी बातें मुख्तलिफ किताबों में बयान हुई हैं।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का एहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अजगार FM 107 पर।

الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: ऐ बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो? दुआ को हकीर समझते हो? हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते। अलबत्त उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। तो दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। सामिन किराम, आज हम आपके साथ है जो दुआ शेयर करने वाले हैं, इस दुआ को हम तीन बड़े हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक तो दुआ का

0: इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अपने अकाउंट्स और फिनांस स्टाफ को रेगुलर इंटरवल्स पे सिक्योरिटी ट्रेनिंग आपको देनी भी चाहिए, और अगर आपने नहीं भी दी है तो आपको एक बार एटलीस्ट ट्रेनिंग होनी चाहिए, या फिर डिजिटल पूरा प्रॉपर पीडीएफ के जरिए कुछ कुछ वक्त में, हर 6 महीने, हर 3 महीने में एक बार अपने अकाउंटेंट, अपने एचआर को, या जो सेल्स या प्रोडक्शन वाले हैं उनको बताते रहना चाहिए थ्रू पीडीएफ, थ्रू ईमेल, कि किसी भी इस तरह के अनजान ईमेल पर या फिर पैसे ट्रांसफर करने वाली बात पर भरोसा ना करें, और सारे प्रोटोकॉल के जरिए ही पेमेंट जरूर करें। तो दोस्तों, ये था सीईओ इंपर्सोनेशन स्कैम। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी आपसे कल एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में बात करते हुए। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट, आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।
3: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में मगरिब की अजान का वक्त हो गया है। अल्लाहु

0: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर
1: जब नई सोच और नए जज्बात टकराते हैं तो बनता है एक नया नजरिया द डिबेटेबल टेबल एक ऐसा शो जहां यंग डिबेटर्स अपने पर्सपेक्टिव से इंस्पायर करते हैं और हर डिस्कशन बन जाता है एक थॉट प्रोवोकिंग जर्नी द डिबेटेबल टेबल आरजे फजील और आरजे कबीर के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी
2: तो अस्सलाम वालेकुम मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे और आज मुझे मौका मिला है दो मेरे साथ बच्चे हैं जो आज डिबेट करने वाले हैं देखो बहसबाजी का नतीजा में तब मजा आता है बहस में जब बहस जो है वो थोड़ी अकलमंदी की हो कुछ उससे निकल के भी सामने आए एंड आई हैव दिस अपॉर्चुनिटी कि इन दोनों के साथ बैठ के आज मैं बहुत सारी बातें करने वाला हूँ एक बहुत मेजर टॉपिक है आज का वो टॉपिक ये है कि क्या पढ़ाई करते करते पार्ट टाइम जॉब करने देना चाहिए या नहीं सो हु इज अगेंस्ट एंड हु इज फॉर
3: I'm for studying alone.
2: Okay. And
4: group study.
2: Group study के साथ हैं आप. Okay, ठीक है. तो आपने मेरा नाम बता दो एक बार.
3: मेरा नाम हना है.
4: मेरा नाम जागरूक गुप्ता.
2: और दोनों बिरला पब्लिक स्कूल से हैं, right? ओके सो शाउट आउट टू बिरला पब्लिक स्कूल एक दो दफा जाने का मौका मिला है माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बनाया भाई साहब बहुत बढ़िया बच्चे एंड मैं तुम दोनों को बताना चाहूंगा मैं पता शॉकिंग मोमेंट क्या था मेरे लिए मैं बिरला पब्लिक स्कूल में तुम्हारे स्कूल में गया था और वहां पे एक 8 साल का कोई बच्चा था और मैंने उससे पूछा कि क्या बनना चाहते हो एंड ही सेड माइक्रोबायोलॉजिस्ट मुझे गूगल करना पड़ा था होता क्या है So that's kind of a shock to me. But today, let's discuss. सबसे पहले कौन शुरू करने वाला है तुम दोनों में से? Who's going first?
4: मैं शुरू करता हूँ.
2: Okay, बताओ.
4: तो मेरा पहला point है group study के अंदर कि group study में अलग-अलग perspective से concepts बहुत जल्दी clear हो सकते हैं और deeply हो सकते हैं क्योंकि बहुत सारे ideas जो होते हैं उनको combine करके बहुत अच्छे ideas बन सकते हैं.
2: Okay.
4: Strong वाले.
2: Okay, okay. क्या कहना चाहोगे हना इस पे?
3: तो अगर वो बोल रहा है कि अलग अलग पर्सपेक्टिव से होता है हर पर्सपेक्टिव सही नहीं हो सकता है कंफ्यूजन बहुत होता है यूजुअली मेरे साथ भी होता है जब हम लोग ग्रुप स्टडी करते हैं स्कूल पे तो फिर बहुत सारे सजेशंस आते हैं एक टॉपिक के लिए कि ये सब चीजें एकदम इम्पोर्टेंट है लेकिन हर चीज सही नहीं होता है
2: ठीक है ओके तो हर चीज सही नहीं होती इनका कहने का पर्सपेक्टिव जितने होंगे जितने चेहरे उतनी कहानियां निकलेंगी और दिक्कत हो जाएगी सो व्हाट इज योर काउंटर टू इट
4: मेरा काउंटर है कि ग्रुप हमें अपने हिसाब से सेलेक्ट करना चाहिए जो अच्छे तुम्हें लगते हैं और जो सही करते हैं उनको हमें रहना उनके साथ रहना चाहिए और उनके साथ ही ग्रुप स्टडी करना चाहिए तो फिर हमारा भी पर्सपेक्टिव बदलेगा और फिर सारे पर्सपेक्टिव्स अच्छे हो जाएंगे
2: अच्छा ओके तो कितने तुम मानते हो ग्रुप में दोस्त होने चाहिए एक ग्रुप स्टडीज के लिए
4: एक ग्रुप स्टडी के अंदर अराउंड 4-6 पीपल सही
2: इज इनफ
4: हां
2: ओके व्हाट इज योर काउंटर हना क्या क्या कहना चाहोगे तो कह रहे हैं कि ऐसे लोग ढूंढो
3: So, I prefer to study alone, usually at home, because like you have a private space.
2: Okay.
3: ठीक है तो फिर even if you like जब कोई friends लोग रहते तो फिर there's mostly a distraction. मतलब पढ़ाई से ज़्यादा बातचीत होती है.
2: Okay.
3: तो फिर उसमें भी distraction होता है when you study alone ज़्यादा distraction भी नहीं होता है और फिर like you can focus fully on the topic which you are.
2: Okay. So do you think अगर तुम्हारी मान लो कि 3-4 friends आ चुकी हैं at your place and You're trying to study, and what if they are very good students? For example, they are
3: top. They're good students. Yeah, group study is good. I'm not saying it's not good. Huh. It's good, but like I prefer to study alone. Yeah, focus.
2: The focus is the main topic, bhai. इनका कहना है कि इधर तो चले जाएंगे. चलो थोड़ा break लेते हैं, कुछ कर लेते हैं. क्या कहना चाहोगे इसपे?
4: तो focus एक ऐसी चीज है जो अगर तुम चाहते हो तो फिर तभी मिलेगा. तो जो ग्रुप जैसे मैंने पहले बोला था कि ग्रुप हमें सेलेक्ट करना चाहिए अपने हिसाब से
2: okay.
4: जो बच्चे जो होते हैं वो फोकस से थोड़े डिविएट हो सकते हैं पर अगर तुम सारे एक साथ पढ़ रहे हो तो एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट होता है कि सारे पढ़ने लग जाते हैं
2: पर आर यू अलाउड टू हैव ग्रुप स्टडीज एट होम ये पर्सनल क्वेश्चन है
4: अलाउड है हां
2: तो करते हो ट्राई
4: हां करता हूं मैं रेगुलरली होता है
2: रेगुलरली होता
4: हां
2: पढ़ाई होती है उसमें
4: पढ़ाई तो बहुत होती है
2: अच्छा ठीक है तो है ना have you tried
3: no कभी before at school usually हम लोग के teachers हम लोग एक period देते हैं कि ये period पे तुम लोग स्टडी कर सकते हो तभी हाँ ठीक है चलता है क्योंकि टीचर रहते हैं और फिर बातचीत होती है तो ऑब्वियसली लोगों को पता चल जाता है तो स्कूल में बेटर है घर पे कभी करी नहीं है
2: तो घर पे कभी
3: हाँ घर पे हमेशा मेरी भाई बहन लोग के साथ ही मैं पढ़ाई करती
2: हूँ हाउ डज दैट वर्क हो जाता है भाई बहन
3: या क्योंकि भाई बहन बड़े है एंड देन दे नो व्हाट इज लाइक इंपॉर्टेंट तो I listen to them mostly.
2: वहाँ पे वो एज के हिसाब से विजडम हो जाता है ना, then you kind of एक अंडर प्रेशर के अब तो पढ़ाई करनी पड़ेगी. अच्छा ओके पर एक बात बताओ क्योंकि तुमने बताया इतनी सारी ग्रुप स्टडीज करी हैं हाँ उसमें जो मेजर एक एक बात आती है जैसे हान ने बोला कि लोग जो है उसमें ब्रेक लेते हैं तो फिर वो ब्रेक ही चलता रहता है अभी देखते हैं यार पढ़ेंगे यार एक घंटे बाद देखेंगे जाना रहना है तो डू यू गेट दोस डिस्ट्रैक्शंस आई एम सो श्योर यू डू बट हाउ डू यू
4: टैकल हमने उसको टैकल करने का बहुत बढ़िया तरीका निकाला
2: है. क्या तरीका निकाला
4: है? तो एक चीज होती है पोमोडोरो टाइमर जिसको हम कहते हैं टमेटो टाइमर या फिर पोमोडोरो टाइमर जो भी वो
2: एक्सप्लेन कर दो.
4: तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि पहले उसके अंदर कुछ टाइम सेट कर लेते हैं हम 25 मिनट हम पढ़ेंगे फिर 10 मिनट ब्रेक लेंगे तो फिर वो उसमें रहता है कुछ
2: अच्छा
4: तो फिर वो रिपीट होता है
2: ब्रेन इज ट्रिक्ड इनटू बिलीविंग कि ये काम कर जाएगा दैट्स व्हाई हाँ ओके ओके सो हाँ क्योंकि मेजरली जब लोग अकेले पढ़ते हैं और पढ़ाई करने का शौक होता है तो फोकस रहता है वहाँ पे बट अगर तुम्हें कहूँ कि तीन चार टॉपर्स तुम्हारी दोस्त हैं ऑल ऑफ देम आर टॉपर्स डू यू थिंक कि अगर सीरियस लोग तुम्हारे आसपास हो गए तो यू विल बी एबल टू फोकस या
3: यस इफ यू हैव अ प्रॉपर ग्रुप स्टडी हाँ होएगा लेकिन फिर प्रॉब्लम है कि हर कोई सेम टाइम पे फ्री नहीं हो सकता है ग्रुप स्टडी करने एवरीबॉडीज टाइम वेरीज
2: ओके
3: और फिर इफ यू स्टडी अलोन यू विल बी फ्लेक्सिबल
2: Okay.
3: You can study at what time you want, keep a timer, then take a break for 5 minutes, then study again.
2: Okay. So, वैसे क्या timing था तुम्हारी पढ़ाई करने का घर पे कुछ timing set है? Do you set your alarms and is time से इस time तक?
3: I don't set alarms usually. I just start studying and when I end, I'll usually like take a break and then I'll start to study again.
2: But like, do you study for 1 hour, 2 hours? What is that time limit that? तक कम रहता मैं मेरा अब दिमाग थक गया है मुझसे.
3: Like 1 hour. I don't study much actually.
2: लग नहीं रहा तुम्हें देख के लग रहा है कि पढ़ाई वढ़ाई बहुत जम के करती हो है माशाल्लाह.
3: 1 hour is usually मैं दम like एकदम cut to cut like I don't get any distractions.
2: Okay.
3: 1 hour फिर जो भी है फिर भाई बहन लोग के साथ खेलती हूँ फिर वापस मतलब आधा घंटा जैसा revision next दिन के लिए जो सब homeworks है वो सब complete कर
2: लेती हूँ. Okay, so डेढ़ घंटा usually घर पे. तुम्हारा क्या सीन रहता भाई? अगर ग्रुप स्टडीज का सीन है हम देखो लड़कों का थोड़ा सा मामला अलग हो जाता है बिकॉज़ देन यू हैव थिंग्स इन योर हेड कि आपको लगता है ये भी कर लूं वो भी कर लूं. हाउ डू यू मैनेज? कितने घंटे पढ़ाई हो पाती है?
4: मेरी ग्रुप स्टडी के अंदर एटलीस्ट 2.5 hours नॉर्मली हो पाता है बिना डिस्ट्रैक्शन के. बिना डिस्ट्रैक्शन के थोड़ी तो क्लास भी थोड़ी बढ़ गई है 9th में हूँ तो फिर वो फिर भी थोड़ा सा रहता है उस पर इन्फ्लुएंस पर जनरली तो सारे सीरियस है हमारे में अभी तो
2: सारे सीरियस तो सब पर है. क्या बात कर रहे लग रही तुम ही सीरियस नहीं होगे
4: थोड़ा तो कम है
2: अच्छा ओके
4: फिर भी
2: अच्छा
4: रहता है हमारा 2.5 hours रहता है वो पोमोडोरो टाइमर है ना वो उससे बहुत बढ़िया होता है.
2: या पता नहीं तुम्हारे लिए कैसे काम कर रहा है because I think that's such a difficult thing. Do you understand this whole concept?
3: It's a good concept.
2: It's a good concept. Yeah. But do you have anything to say against it? Because
3: no, it's a good concept. It's good to follow a timer and attend it. Like it's good.
2: Okay. So, अगर जो group discussions हैं, उसमें कभी जाने का मौका मिला है, जैसे usually लोग रखते हैं group discussions में seniors भी होते हैं, juniors भी होते हैं. उस dynamic के बारे में क्या होगा? Do you agree ये dynamic काम करता है या फिर same age, same class का dynamic हो तो ज़्यादा बेहतर है?
4: सेम एज सेम क्लास के अंदर सिलेबस सेम होता है तो फिर उसके ज्यादा हम बात कर पाते हैं तो फिर उससे बल्कि ज्यादा बेटर रहता है.
2: अच्छा बट व्हाट इफ द डायनामिक इज डिफरेंट देन यू हैव योर सीनियर्स.
4: डायनामिक डिफरेंट है तो फिर सीनियर्स रहना ज्यादा बेटर रहते हैं क्योंकि उनको वो पहले से ही सिलेबस कवर कर चुके हैं तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रहती है उनके अंदर.
2: ओके
4: तो फिर वो तुम्हारी हेल्प भी कर सकते हैं और लाइक माइनर डाउट जैसे होता है सीनियर के पास वो तो फिर तभी तो गूगल करना पड़ता है.
2: अब तो खैर मामला गूगल तक जा चुका बट जैसे हाना ने बोला कि जो पढ़ाई है अभी डेढ़ घंटे की उसकी हो रही is it fruitful for you?
3: Yes, it is. Normal days में 1.5 hours, but like on exam days मैं usually ज़्यादा करती हूँ. Usually हम लोग को exams के बीच में holidays भी मिलती है, तो उसमें ज़्यादा पढ़ाई करती हूँ. Exams के पहले भी एक हफ्ता पहले I study more than my average.
2: ओके बट जैसे अभी बताया इन्होंने बोला कि 2.5 घंटे पढ़ लेते हैं, तो इनका तो ग्रुप स्टडी से मामला इंक्रीज हो रहा है. नंबर ऑफ आवर्स बढ़ रहे हैं तो क्या कहोगे तुम इस पे
3: इट्स एक्चुअली कॉन्सेप्ट अच्छा है बट लाइक आई डोंट मैं यूजुअली भाई बहन लोग के साथ ऐसी ग्रुप स्टडी जैसा हम लोग करते हैं तो आई हैव माय सीनियर्स जैसा तो फिर आई टेक पॉइंट्स फ्रॉम देम एंड इट्स गुड
2: सवाल जवाब पूछने में तुम्हें इंटरनेट का सहारा लगता है फिर भाई बहन से हो जाता
3: है नहीं इंटरनेट का कभी कभार क्योंकि ये साल हम लोग के टेक्स्ट बुक्स चेंज हो गए हैं तो सेम कॉन्सेप्ट है बट लाइक डिफरेंट टॉपिक्स है तो कभी कभार इंटरनेट में जाना पड़ता है
2: अच्छा एंड डू यू कंसीडर योरसेल्फ एज एन एवरेज स्टूडेंट या फिर थोड़ा बहुत देखो मैं एवरेज हूं तो मेरे सामने तुम बोल सकते हो कोई टेंशन नहीं
4: सारे ए वन से सारे ही तक
2: अरे क्या बात कर रहे हो माशाल्लाह वेरी नाइस एंड हाउ डू यू
3: या मैथ और साइंस में थोड़ा सा ए टू जैसा लेकिन फिर बाकी सब में ए वन ही
2: ओके और जो तुम्हारे ग्रुप में लोग हैं उनसे कितने ख्यालात मिलते हैं अगर पढ़ाई से अलग बात करूँ
4: हाँ
2: तो ख्यालात कितने मिलते हैं थॉट्स मैच होते हैं सिर्फ पढ़ाई के मामले में मैच होते हैं
4: पढ़ाई के मामले में मैच होते हैं क्योंकि हमारे में सबको पढ़ना है लाइक उनके पहले लो मार्क्स आ चुके हैं तो फिर वो थोड़ा और ज्यादा अचीव करना चाहते हैं क्योंकि पेरेंट्स को प्राउड करना है और थोड़ा उसमें रहते हैं तो फिर उससे मार्क्स की वो वैल्यू ज्यादा आती है तो फिर वो पढ़ने के अंदर भी आती है
2: तो कोई ऐसा है जो तुम्हारे ग्रुप में तुम्हें लगता है कि थोड़ी शरारत कर जाता है तो हाउ डू यू कंट्रोल दैट
4: शरारत करता है तो फिर पोमोडोरो टाइमर जैसे है उसके अंदर थोड़ा सा एक बार के लिए ब्रेक डाल दो
2: अच्छा
4: वो थोड़ा सा कंसिस्टेंसी वो जनरली होता नहीं है बहुत रेयर केसेस होता है हमारे के अंदर
2: बट डू यू थिंक दैट्स द प्रॉब्लम विद ग्रुप स्टडीज के
3: या मोस्टली आई थिंक दैट्स द प्रॉब्लम क्योंकि मेरे साथ होता है डिस्ट्रैक्शन बहुत इजीली हो जाता है लाइक यू स्टार्ट ऑन वन टॉपिक अबाउट स्टडीइंग देन स्लोली स्लोली यू गो ऑन अबाउट द यूजुअल लाइफ एंड एवरीथिंग टॉकिंग सो दैट्स वन ऑफ द मेन थिंग्स व्हाई आई डोंट लाइक
2: बट वुड यू लाइक टू सजेस्ट एनीथिंग फॉर दोस हु आर ग्रुप स्टडीइंग उनको भी बताना चाहेंगे भाई ये कर लो तो तुम्हारे उसमें आसानी रहेगी या फिर
3: के वो टाइमर इज अ वेरी गुड आइडिया स्टडीइंग बाय कीपिंग अ टाइमर और फोकसिंग ऑन वन टॉपिक इज अ गुड आइडिया बट आई इफ यू आस्क माय चॉइस आई प्रेफर टू स्टडी अलोन
2: ओके तो ये अलोन स्टडी की वकालत कर रही हैं इतनी देर से तुम्हें अगर कल को कहते जाए तो मैं क्या दिक्कत है भाई अलोन स्टडी से
4: अलोन स्टडी के अंदर
2: हां
4: मन बहुत डिवीएट होता है
2: कैसे डिवीएट होता है
4: लाइक देखो पेरेंट्स जो है
2: हाँ.
4: वो देखते हैं कि ग्रुप स्टडी कर रहे हैं बच्चे
2: ठीक है
4: तो फिर उनको पढ़ने दो लाइक बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे डिस्ट्रैक्ट करने में ऐसे थोड़ा हिसाब
2: हाँ.
4: नहीं रह पाता
2: ठीक है
4: तो फिर जब वो स्टडी अलोन करता है ना तो फिर देखते हैं कि अकेला ही तो है उसको जल्दी से बुला लेते हैं एक मिनट का काम है
2: हाँ, अच्छा
4: ऐसे उसमें रह वो थोड़ा माइंडसेट चेंज हो जाता है स्टडी अलोन करने में तो फिर डिस्ट्रैक्शन बल्कि ज्यादा बढ़ता है और पोमोडोरो टाइमर फिर एडजस्ट हो नहीं पाता और फिर कंसिस्टेंसी
2: टाइमर का नाम तो टी शर्ट में छपाना पड़ेगा इतना सेल कर दिया इन्होंने तो व्हाट डू यू से अबाउट दिस ये कह रहे हैं कि सिंगल स्टडीज में ये प्रॉब्लम है
3: मेरे पास तो ये प्रॉब्लम नहीं है जब
2: डू थिंक इट इज अ प्रॉब्लम डू यू थिंक
3: या इट इज अ प्रॉब्लम यूजुअली मेरे जो दोस्त लोग हैं लोग बोलते हैं कि इस लोग के साथ ये सब होता है लेकिन फिर मेरे साथ मेरे पेरेंट्स लोग बोलते हैं कि जब पढ़ाई करते हो तो एकदम पढ़ाई में ध्यान दो टेल अस व्हेन यू स्टार्टिंग वी विल नॉट डिस्ट्रैक्ट यू
2: ओके
3: तो फिर आई हैव लाइक माय ओन स्पेस आई स्टार्ट एंड देन व्हेन आई एंड आई टेल देम एंड देन दे कैन लाइक
2: Do you like do things before getting into this zone of studying ke mere desk pe hona chahiye hona chahiye
3: thoda sa organize karti hu main box jaisa hai whichever subject I want to study I'll start usually main math or science hi karti hu maths mein mere paas ek box hai to ek practice book textbook aur wo sab usme
2: Do you guys prepare anything? मुझे लगता तो नहीं है लड़के करते
4: नहीं फिर भी हमारी कबर्ड रहती है
2: अच्छा ठीक है
4: तो उसमें मैथ साइंस अलग अलग करके रखा हुआ है
2: जैसे
4: तो फिर उसमें पढ़ाई शुरू की लियो अपना जो पढ़ना है लाइक मैथ्स जनरली पढ़ते हैं हम और मैथ्स में वो मार्क्स भी इस बार पेपर जो नाइन्थ ग्रेड में मिला था उसमें बहुत हार्ड पेपर मिला था तो फिर जो भी बच्चे मेरे साथ ग्रुप स्टडीज जैसे हमने ग्रुप जो बना रखा था उसमें A1s निकले सबके और बाकी के 11 फेलियर निकले हमारे
2: 11 फेलियर निकले तुम्हारे खुद के कितने नंबर आए थे
4: 20 आउट ऑफ 20
2: अच्छा क्या बात है भाई मैं 100 में से 20 ला चुका हूँ कोशिश मत करना डोंट ट्राई दिस एट होम और how good are you at maths? मतलब तुमने बताया तुम्हें maths सोचा
3: है? Maths मेरा थोड़ा सा weak point है. Usually मैं पढ़ाई में अच्छा करती हूँ, but I don't know, this usually happens with me in exam. I get confused.
2: तो अकेले studies तुम्हें लगता है कि अगर कोई group में हो तो मैं बता सके, apart from your sisters and sister and brother, like a friend who could help you probably.
3: हाँ, हम लोग usually exam के time पे मेरे friends लोग, हम लोग एक group बनाते हैं. तो फिर उसमें से we can ask doubt. We don't say anything else except about studies.
2: Okay.
3: So I'll ask a doubt there ke iska answer kya yahi hai, to fir then they'll answer that.
2: But you don't prefer group studies, you rather make a group?
3: Yeah.
2: But isn't that too tough for you? Because group studies are not like sab aamne saamne hi hai to kaam chal jata hai, usme kya hai ki koi kuch bhi le sakta.
3: Hum log ekdam regular wo nahi karte, usually hum log ke sab doubts clear ho jate kyunki hum log ko teachers hum log pooch lete hain log ko, un log ko.
2: But that requires lot of discipline, you know.
3: Yeah.
2: क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप बनाना और उसमें एक्टिवनेस दिखाना और इतने अच्छे से पार्टिसिपेशन करना इज अ वेरी वेरी वेरी हार्ड टास्क, यू नो, डोंट यू थिंक सो? तुम लोगों के भी ग्रुप है भाई?
4: एक ग्रुप बना था, रहा नहीं पा.
2: पढ़ाई की तो बात नहीं होती थी उस पर, नहीं?
4: पहले पढ़ाई की बात होती थी, फर्स्ट मैसेज पढ़ाई का था, फिर उसके बाद सारा बदल गया.
2: तो ग्रुप का नाम क्या रखा वैसे आना तुमने?
3: ग्रुप का नाम हम लोग बस मैथ या साइंस डाउट्स जैसा रखते
2: हैं.
3: एक एग्जाम के एक दिन पहले जैसा हम लोग डिस्कस करते, वी सेंड अ वर्कशीट चलते ना हम लोग को, तो जो जिसमें जिस क्वेश्चन में डाउट है वी सेंड अ पिक ऑफ दैट एंड वी टेल देम कि इसका आंसर क्या है, तो फिर एवरीबॉडी गिव्स द सेम आंसर.
2: और तुम्हारे ग्रुप का नाम क्या? Don't say maths and science.
4: नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं होगा.
2: क्या नाम है?
4: रीनेम हो गया वो तो. हाँ. अब वो BPS कोड बन गया था.
2: हाँ, वैसे कोड देख रहे तुम. अच्छा तो देखो, हाँ ना, क्योंकि इस क्लास में कई मर्तबा होता है, जैसे मैं खुद मैथ्स में बहुत बुरा रहा हूँ, सो यू काइंड ऑफ नीड पीपल अराउंड यू.
3: Yeah.
2: टेल यू विद ऑल डू स्टूडेंट्स सेम एज के होते हैं.

0: थोड़ा आसानी रहती है, उस केस में ग्रुप स्टडीज बिकम अ लिटिल necessary, necessity yeah. बन जाती है. So उस पे क्या है तुम्हारा रोल?
1: Studying alone में usually you feel very isolated, वो तो है.
2: हाँ.
1: लेकिन groups में भी study करते तो I feel better. क्योंकि मेरे फ्रेंड्स लोग अच्छे हैं एंड देन दे गिव मी करेक्ट पॉइंट्स. समटाइम्स गलत हो जाता है लेकिन फिर मैं घर पे जाके चेक कर लेती हूँ.
0: बट यू थिंक इट क्रिएट्स कंफ्यूजन काइंड ऑफ ग्रुप?
1: या कंफ्यूजन, कंफ्यूजन बहुत होता है,
0: बहुत ज्यादा होती है.
1: हां
0: ओके, पर ये तो कह रही कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है, क्या कुछ यू हैव अ काउंटर टू इट?
3: कंफ्यूजन तो तभी बनेगा जब आइडियाज क्लियर नहीं होंगे ना, पर हमारे आइडियाज जो है वो सारे कंबाइन करते हैं हम, तो फिर उनसे बेटर आइडिया बनता है, तो फिर हमारे कंफ्यूजन बनते ही नहीं है.
0: ओके,
3: जैसे मैंने पहले बोला था वो आइडियाज वाला पॉइंट.
0: हाँ हाँ हाँ ओके, तो ये कुछ कहना चाहोगे तुम इस पे? यार
1: नहीं,
0: इस पे कुछ नहीं कहना चाहोगे. बट व्हाट डू यू विश टू ग्रो, वांट टू बिकम व्हेन यू ग्रो अप?
1: कार्डियोलॉजिस्ट.
0: कार्डियोलॉजिस्ट?
1: या
0: भाई साहब, बट यू हैव टू लव साइंस देन, राइट?
1: या आई लाइक साइंस, आई लाइक, बट दिस ईयर इट वाज लाइक काइंड ऑफ ट्रिगर. इट्स लाइक मुझे यूजुअली ह्यूमन बॉडी के बारे में पसंद है, बट लाइक वी हैड एसिड एंड बेसिस एंड एवरीथिंग, सो फार्मूलाज आर वो सब में.
0: आह, नाउ आई नो व्हाट. तुम क्या बनना चाहते हो मेरे भाई, बताओ?
3: कंप्यूटर साइंटिस्ट.
0: कंप्यूटर साइंटिस्ट, बिकॉज़ नाउ देयर आर नंबर ऑफ ब्रांचेस.
3: ओके, तो ब्रांचेस के अंदर साइबर सिक्योरिटी सबसे इंटरेस्ट जगा है अभी तक तो.
0: अच्छा, ओके,
3: तो फिर उसी में ही
0: ये इंटरेस्ट कहां से जगा? हैव यू सीन समबडी लाइक?
3: तो क्या था कि बेसिकली एक फोटो से, बिल्कुल एक अंदर से फोटो के अंदर से फाइल निकाल डाली एक.
0: ओके,
3: और ऐसे बहुत सारे हिडन चीजें जो होती है वो साइबर सिक्योरिटी से ही निकलती है, लाइक अटैकर्स प्रिवेंट कर रहे हैं, ये सब चीजें कर रहे हैं. उसमें थोड़ा हाइड एंड सीक जैसा गेम भी हो गया, तो फिर उसमें भी इंटरेस्ट जगा हुआ है, तो फिर ऐसे वो बनते रहते हैं.
0: एंड इज देयर एनीवन यू लुक अप टू सिंस यू वांट टू बिकम अ कार्डियोलॉजिस्ट? कोई ऐसा है?
1: सर, मैं, मेरी बहन को बनने का था, और फिर बट लाइक नो, बट आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग द हार्ट, मुझे एकदम इंटरेस्टिंग लगता है उसका स्ट्रक्चर और वो सब, तो फिर आई वांट टू स्टडी इट मोर एंड देन यू नो ट्रीट.
0: बेचारे ब्रेन को क्यों अकेला छोड़ दिया तुम? ब्रेन इतनी बुरी चीज थोड़ी है. Why not brain then? You never make...
1: Brain मुझे पसंद है, but not as much as I like the heart.
0: Just the shape of it, or is there some...
1: No. I just like the studies of it. Like usually heart तो ही main part करता है, उसे pumping blood continuously.
0: Yeah.
1: और वो सब तो I find it very interesting.
0: बेचारा देखो, brain की कोई इज्जत नहीं है. देखो हमारी actually पता, गाने भी नहीं बनते brain पे. Problem ये भी है. There are no songs as such. And is there any other field you're interested in? Not in terms of career choice, but is there any other field that you see?
1: Yeah, I'm interested in running. In sports, usually I'm very interested.
0: Okay.
1: Swimming, तो अभी मैं classes कर रही हूँ. But running has always been a favorite sport of mine.
0: Oh, nice. So, sports में कोई specifically कोई sport है?
1: मैं को टीम्स रहते हैं हम लोग के स्कूल में, तो कोको के टीम में मैं हूँ.
0: ओह नाइस.
1: हाँ, और फिर स्पोर्ट्स डे भी होता है हम लोग के स्कूल में, तो रनिंग में मैं यूजुअली 100 मीटर 50 मीटर जैसा पार्ट
0: लेती हूँ. वेरी नाइस, वेरी नाइस. तुम्हारे किसी ने साइबर सिक्योरिटी लव, डू यू सी एनीथिंग एल्स? कुछ ऐसे स्किल है जो अच्छे लगते हैं?
3: फुटबॉल में बहुत इम्प्रूव हुआ हूँ मैं.
0: अच्छा, इम्प्रूव हो?
3: इम्प्रूव हुआ हूँ, और इंटरेस्ट भी रहता है.
0: अच्छा, इंटरेस्ट
3: की लाइक घर पे भी लाइक कुछ काम नहीं है तो फिर बॉल दिखी शुरू हो गया.
0: अच्छा, वैसा
3: लाइक इंटरेस्ट खुद ही आ जाता है अंदर से.
0: क्रिकेट की तरफ नहीं गए कभी?
3: हाँ,
0: क्रिकेट की तरफ नहीं गए कभी?
3: क्रिकेट की तरफ एक बार गया था, फिर उसके बाद हार्ट टूटने का इंसिडेंट हो गया.
0: अच्छा, ओके ओके. सो जितना मुझे लगता है ना, तुम ग्रुप स्टडीज के आज तुम्हें अगेंस्ट बोलना है, उतने ही ज्यादा तुम्हें लगता है कि जरूरत पड़ेगी ना ग्रुप की? जरूरत चाहिए,
1: ग्रुप की चाहिए रहती है, लेकिन फिर मुझे तो पसंद है ग्रुप स्टडीज.
0: डू यू थिंक ग्रुप स्टडीज में एक को सॉर्ट ऑफ लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए?
1: हम लोग के पास है, लड़की है जो बहुत अच्छा करती है. शी ऑर्गेनाइजेस एवरीथिंग. शी इज लाइक, ये पर्सन ये पढ़ के लेके आएगा और फिर हम लोग कल इसको डिस्कस करेंगे, तो फिर वो अच्छा है वो.
0: एंड दिस रियली वर्क्स फॉर यू? ओके, बट कोई है ऐसा ग्रुप?
3: इक्वल सा रहता है, पर फिर भी थोड़ा सा पावर थोड़ी सी रहती है
0: किसी मेरी तरफ. अच्छा, तुम्हारे तरफ?
3: मेरे घर पे आते हैं वो लोग, तो फिर
0: हां. ऐसा क्यों, तुम्हारे घर पे क्यों आ रहे?
3: वो जनरली वो क्लोज
0: प्रॉक्सिमिटी में सारे क्यों
3: मैं सेंटर की तरफ पढ़ता हूँ तो
0: तुम्हें लीडर होने
3: हैं ऑलमोस्ट हाँ
0: क्या बात है भाई नेतागिरी है ये तो क्या बात है माशाल्लाह एंड एनी शॉट आउट टू योर फ्रेंड्स जो जो खास हैं अभी सुनेंगे तुम्हें रेडियो पर एफएम 107 पर इस डिबेट के जरिए यू वांट टू शॉट आउट देयर नेम योर बेस्ट फ्रेंड्स प्रोबब्ली
1: लोग यूजुअली दे डोंट स्पीक हिंदी
0: दे डोंट स्पीक हिंदी
1: नो
0: बट मेक देम लिसन टू योर वॉइस एट लीस्ट लेट देम नो दैट यू हियर ओके नेम्स अगेन
1: Ivana,
0: okay.
1: Megan,
0: okay.
1: Janvi,
0: okay.
1: and Alia.
0: Janvi sounds a bit Indian, so she yeah. doesn't speak.
1: No, it looks like हम लोग की school एक तो usually मतलब जो लोग केरला से मलयाली लोग हैं, लेकिन Megan जो है वो मुंबई में रहती है.
0: Okay, Megan doesn't sound Mumbai at all, by the way. Okay.
1: Yeah, she stays in Mumbai and उसको हिंदी आती है. He's the only one who understands Hindi.
0: Thank God. So you both should listen to this. तुम तो बोल ही रही
1: हो.
0: उसको बोलना बाकी में फैला दे ये. तेरे जो दे. और तुम्हारे किस में क्या सीन है भाई?
3: Okay.
0: हाँ.
3: सबको हिंदी आती है एक थोड़ा सा कम आती है.
0: Okay.
3: पर है.
0: तो वो कहाँ से है?
3: तो फिर एक नाम है वर्षांत.
0: Okay.
3: वो पुणे से है.
0: अच्छा. Okay.
3: तो फिर वो उसको ज्यादा हिंदी नहीं आती.
0: हाँ.
3: पर फिर भी आती है थोड़ी बहुत.
0: अच्छा. Okay.
3: और एक रोहन है मध्य प्रदेश से भोपाल से और एक सोम्या है वो गुजरात से तो फिर लाइक सारा एक
0: पूरा इंडियन है चलो और तुम खुद कहाँ से हो
3: राजस्थान
0: राजस्थान में कहाँ से
3: जयपुर
0: जयपुर ओके मेरा करियर जोधपुर से शुरू हुआ इसलिए आई फोर तुम जोधपुर बोलने वाले आप कहाँ से आ रहे
1: मुंबई
0: मुंबई में कहाँ से
1: नेरल
0: अरे क्या बात है यार बहुत जबरदस्त दो पर कभी ऐसा हुआ कि कोई रिक्वेस्ट दी कि मुझे कहीं और भी घूमना घूमने को मिला इंडिया में
1: नहीं हम लोग कब से इंडिया गए नहीं है क्योंकि
0: टाइम हो गया
1: बता नहीं 5-6 साल जैसा
0: अरे यू शुड गो मतलब तुम
1: आई नीड लेकिन फिर हम लोग के अभी जो मेरी बड़ी बहन है उसके एग्जाम बोर्ड्स और वो सब थे वो टाइम पे अभी मेरे बड़े भाई का भी हो गया था तो वी डिडंट यूजुअली गेट मच टाइम क्योंकि जब हम लोग के हॉलीडेज होते थे उन लोग के एग्जाम्स होते थे तो
0: हां ओके एंड हैव यू बीन ट्रैवलिंग कुछ
3: पिछले महीने ही हम अभी जस्ट गंगा घूम के आए थे
0: अरे वेरी नाइस भाई ये सही है मामला बट आई शुड रियली टेल यू बोथ कि अपने अपने आई नो यहाँ पे आके ऐसा लगता है कि जाने का मनी नहीं होगा प्लान नहीं बनेगा आई डोंट नो कि तुम साल में कितनी मरतबा जाते हो नहीं जाते
1: हम लोग सऊदी जाते थे जब मल्टीपल वीजा था
0: मल्टीपल वीजा थे
1: तब लाइक बॉर्डर के बाहर मतलब ऐसा आते जाते थे और फिर मजा आती थी हम लोग एक आभा करके एक जगह एकदम अच्छी जगह
0: ब्यूटीफुल
1: हां एकदम माउंटेन जगह है और फिर हम लोग फैमिली के साथ गए थे वो लास्ट ईयर था बहुत मजा आई थी
0: बट यू शुड ट्रैवल टू इंडिया हमारे इंडिया में हर जगह है अवेलेबल है एंड स्पेशली क्या होता है ना कि ये देखो तुम्हारे सामने नॉर्थ से बैठे हुए हैं हम नॉर्थ वालों की शिकायत रहती है मुंबई वालों से वो ये शिकायत रहती है कि कभी मुंबई वाले नॉर्थ में आ ही नहीं पाते मतलब आई डोंट नो कभी जाते नहीं है कभी आते नहीं है
1: मेरे मम्मी और मेरे मम्मी के भाई लोग महाबलेश्वर और दे हैव ट्रैवल टू द नॉर्थ दैट
0: महाबलेश्वर इज ब्यूटीफुल
1: आई वांट टू गो देयर क्योंकि उधर लोग ने बोले कि आभा से जैसा है लेकिन वे बेटर
0: वहां जाके डिबेट करना अच्छा ऑन दैट नोट ये लास्ट में अगर तुम कुछ कहना चाहो अपने इस पॉइंट को रखना चाहो यू हैव योर मोनोलॉग देयर व्हाई डू यू बिलीव ग्रुप स्टडीज इज द ओनली आंसर
3: ग्रुप स्टडी के अंदर हम नॉलेज को शेयर कर पाते हैं तो शेयर करने से नॉलेज बढ़ेगी सबकी लाइक एक के पास नॉलेज हुई एक चीज के बारे में तो फिर उसके पास ही रहेगी पर अगर उसको शेयर करेंगे तो फिर अपनी भी नहीं घटेगी और दूसरे की भी बढ़ेगी तो उसमें बल्कि ज्यादा एडवांटेज हुआ
0: ओके एनीथिंग एल्स
3: और कि जैसे हम बोलते हैं कि क्लासरूम डिस्कशंस हो गए स्कूल के ग्रुप प्रोजेक्ट्स हो गए और कोविड के टाइम भी जैसे ऑनलाइन क्लासरूम्स कर रहे थे हम वो ग्रुप स्टडीज बेटर हो पाए क्योंकि लाइक पेरेंट्स बोल कंप्लेन जैसे कर रहे थे कि सेल्फ स्टडी घर पे हो नहीं पा रही कोविड के टाइम क्योंकि लाइक ऑनलाइन से बेटर हुआ है ग्रुप स्टडी बल्कि बेटर हुई है
0: हैव यू डू यू प्रेफर ऑनलाइन स्टडीज या नहीं
3: ऑनलाइन स्टडीज के अंदर थोड़ा सा नोटिफिकेशन का रहता है पर फिर भी उस
0: नोटिफिकेशन का क्या रहता है
3: नोटिफिकेशन आता है गेम्स जैसे मान लिए तो फिर उसको बंद करके करोगे तो फिर आराम से हो जाता है वरना फिर उसके बिना नहीं होता
0: ओके एंड व्हाट इज योर पॉइंट लास्ट पॉइंट्स दैट यू वांट टू कीप
1: के टू स्टडी इन ग्रुप्स इज ऑब्वियसली वेरी गुड टू टेक अदर्स ओपिनियंस इज गुड बट हर कोई का ओपिनियन सही नहीं होएगा
0: ओके यू माइट गेट डिस्ट्रैक्टेड इन
1: बिटवीन कंफ्यूजन भी बहुत होता है मेरे साथ बहुत होता है और तो इसके लिए दैट्स व्हाई स्टडीइंग अलोन इज बेटर बिकॉज़ यू फोकस ऑन वन टॉपिक एंड यू कंप्लीट और फिर स्टडी आई फॉरगॉट टू टेल दैट ग्रुप स्टडी में एवरीबॉडी हैज डिफरेंट वीक पॉइंट्स तो स्टडीइंग अलोन में यू कैन फोकस ऑन योर वीक पॉइंट नॉट ऑन अदर्स एंड यू नो इम्प्रूव ऑन दैट
0: ओके एंड डू यू प्रेफर ऑनलाइन क्लासेस
1: नो आई प्रेफर ऑफलाइन
0: ओके ऑनलाइन में क्या मसला है
1: ऑनलाइन में आई डोंट यूजुअली लाइक इट मतलब वीडियो ऑन रखना और फिर दम बोर होता है ऑनलाइन क्लास
0: में ओके सो ठीक है दोनों ने अपने अपने पॉइंट्स रखे हैं दोनों ने बहुत अच्छे से बात करी आई रियली लव्ड हैविंग दिस कन्वर्सेशन टू बोथ विद बोथ ऑफ यू थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स हमारे FM 107 कतर है एंड व्हाट्सएप है 666-22107 जब भी आपको लगे किसकी साइड है किसकी साइड नहीं है जरूर जरूर बताइएगा आई एक्चुअली एंजॉयड इट मेरे यही सलाह है कि मुंबई वालों गोवा के प्लान के अलावा कुछ और प्लान बनाओ एंड नॉर्थ वालों हमें भी कहीं ना कहीं जाना चाहिए ना बट वी शुड ट्रैवल क्योंकि हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है क्योंकि हम लोग बाहर जाते रहते ना तो हमें लगता है कि हम भूल जाते हैं इंडिया में घूमने के लिए बहुत कुछ है सो वी शुड बी ट्रैवलिंग देयर एज़ वेल सो ऑफ कोर्स एंड प्लीज जाना मुंबई है जिद करके जाना इस बार इतने टाइम से नहीं गए अब जाना पड़ेगा एंड यू टू ब्रदर थैंक यू सो मच जयपुर के अलावा कुछ और देखा बिफोर यू लेट यू गो
3: जयपुर के अलावा हम साउथ के अंदर भी गए
0: अरे वाह बेहतरीन
3: केरला की तरफ गए
0: वायनाड गए किधर गए यूजुअली लोग वायनाड जाते इसलिए पूछा मैंने
3: वो कैपिटल में रहे तिरुवनंतपुरम में उसके बोट राइड वगैरह और वो सब
0: वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी गुड तो
3: और पौंडेचेरी में भी गए हम वो आई ट्रीटमेंट कराने के लिए एक बार थोड़ा सा
0: मतलब आई ट्रीटमेंट के लिए अभी सब सही है सर
3: हाँ आप सही है
0: चलो वेरी नाइस तो दोनों वैसे लास्ट क्वेश्चन है दोनों के लिए क्या मतलब आर यू अ नॉटी स्टूडेंट कैसा रहता है शरारती हो कम शरारती हो
1: मिक्स एक्चुअली
0: डिपेंड्स राइट
1: या इट डिपेंड्स मतलब जब क्लासेस चलती है तो हम लोग मतलब ध्यान देते हैं लेकिन फिर जब ब्रेक्स होती है रिसेस जैसा तो फिर तभी हम लोग बातचीत करते हैं
0: एंड व्हाट अबाउट यू ब्रो
3: क्लास के अंदर थोड़ा सा शरारती होता है पर घर पे आके फिर क्योंकि पढ़ना तो है कभी ना कभी तो फिर सीरियस हो जाता है
0: मुखौटा पहन के चलते हो तो बट जोक्स अपार्ट थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू बीइंग हियर एंड आई होप यू एंजॉयड योर टाइम हियर और अभी लोग सुन भी रहे हैं तो उनको यही है कि उनका अपना पॉइंट रखें किस साइड में है क्योंकि घर पर जिनके बच्चे मुझे जरूर बताएं 666-22107 पर एंड दिस इज V3 साइनिंग ऑफ अपना ख्याल रखें अस्सलाम वालेकुम बहुत बहुत शुक्रिया
3: FM 107 दिल से देसी
0: अरे मेरा भाई टैकाई
2: Anytime, anywhere.
4: Yes, anytime, anywhere.
2: Kabhi bhi aur kahin bhi, aap sun sakte hain. FM 107.
5: FM 107.
2: Log into our website, urduradio.qa or download the app, QMC Now.
6: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa
7: स्ट्रेस या टेंशन फील कर रहे हैं चाहते हैं लाइफ में बैलेंस और ग्रोथ तो सुनिए यू मैटर आपके लिए प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रेटजीज ताकि आप खुश हेल्दी और फुलफिल्ड लाइफ जी सके क्योंकि आप मैटर करते हैं
8: सुनिए हर संडे टू थर्सडे सुबह 10 से 11 बजे यू मैटर आरजे सफा और आरजे महविश के साथ जहां वो शेयर करेंगी प्रैक्टिकल टिप्स इमोशनल इंटेलिजेंस टेक्निक्स और पर्सनल ग्रोथ हैक्स जो आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्पफुल हो सकता है Tune into FM 107 दिल से देसी दिल से देसी
9: कहते हैं जिंदगी एक रेस है लेकिन क्या आप इस रेस में भागने के लिए तैयार हैं
8: आपका करियर सिर्फ एक जॉब नहीं आपके फ्यूचर की डायरेक्शन है तो फिर सवाल ये है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं
9: नए करियर्स फ्यूचर स्किल्स चेंजिंग जॉब मार्केट और वो अपॉर्चुनिटीज जो आपके मुस्तकबिल को नई राह दे सकती हैं सुनिए प्रोग्राम फ्यूचर करियर आरजे महविश खान के साथ हर मंडे शाम 7:15 बजे से ओनली ऑन FM 107 अपने करियर का अगला कदम सोच समझ कर उठाइए
2: आप सुन रहे हैं FM 107
5: FM 107
4: दिल से देसी

ट्यूशन से दरकार इजाजत हासिल करने के बाद मुलजिमीन को इन सरगर्मियों के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया, जिन्होंने अपने खिलाफ लगाए गए इल्जामात का एतराफ भी कर लिया है। तलाशी की कार्रवाई के दौरान कई डिवाइसेस, औजार और मेडिकल सप्लाईज भी बरामद की गई जो इन सरगर्मियों में इस्तेमाल हो रही थी। अब मुलजिमीन और जब्त शुदा अशिया को कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के लिए मुतालिका पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। वजारत दाखिला और वजारत सेहत आमा ने आवाम से अपील की है कि किसी भी मेडिकल या कॉस्मेटिक सर्विस से फायदा उठाते वक्त पहले प्राइवेट मेडिकल फैसिलिटीज और क्लिनिक्स के लाइसेंस की तस्दीक कर लें और यकीन कर लें कि वहां काम करने वाले हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स के पास मुतालिका अथॉरिटीज से जारीशुदा लाइसेंस मौजूद हैं या नहीं, ताकि अवामी सलामती को बरकरार रखा जा सके और ऐसे अफराद या इदारों के मामलात से बचा जा सके। वजारत दाखिला और इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स लखविया के कमांडर शेख खलीफा बिन हमद बिन खलीफा अल्थानी ने अपने फ्रांस के दौरे के दौरान फ्रेंच रिपब्लिक के वजीर अदल गिराल्ड डर्मेनिन से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों दोस्त ममालिक के दरमियान दो तरफा तआवुन और उसे मजीद मजबूत और फरोग देने के तरीकों पर बातचीत की गई। खासतौर पर कानून और सिक्योरिटी के शोबों में तआवुन को बढ़ाने पर जोर दिया गया और दोनों ही जानिब से बाहमी दिलचस्पी के कई दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रैफिक ने अपनी बैक टू स्कूल अवेयरनेस कैंपेन के तहत अल अंदलुस एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स में वाकई अल अंदलुस प्रिपेरेटरी स्कूल फॉर बॉयज का फील्ड दौरा मुनज्जम किया। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रैफिक ब्रिगेडियर जबर अली अल कुबैसी और डायरेक्टोरेट के कई अफसरान भी मौजूद थे। दौरे के दौरान स्कूल का फील्ड टूर कराया गया और असातिज़ा, इंतजामी अमले और तलबा से मुलाकात की गई। इसके साथ एक इंटरेक्टिव अवेयरनेस लेक्चर भी पेश किया गया जिसमें ट्रैफिक सेफ्टी के कवायद, स्कूल बस के इस्तेमाल के उसूल, साइकिल इस्तेमाल करने वालों के लिए हिफाजती हिदायत, फुटपाथ पर चलने और महफूज तौर पर सड़क पार करने के तरीकों पर रोशनी डाली गई। डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रैफिक ब्रिगेडियर जाबर अली अल कुबैसी ने कहा कि इस दौरे का मकसद तलबा में ट्रैफिक सेफ्टी का शऊर बढ़ाना और महफूज रवैयों को फरोग देना है। उन्होंने तलबा को स्कूल के अंदर और बाहर हिफाजती कवायद की पाबंदी की तरगीब दी ताकि एक महफूज तालीमी माहौल को यकीनी बनाया जा सके। सिविल डिफेंस के मैदान में मुश्तरका तआवुन और हम आहंगी को मजबूत बनाने के सिलसिले में रियासत कतर और ब्रदर मुल्क ममलकत सऊदी अरबिया की हुकूमतों के दरमियान सिविल डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट को फ़ाल बनाने के लिए कायम कमेटी का पहला इजलास रियाद में मुनक़द हुआ। कतरी वफ्द की क़यादत डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल डिफेंस मेजर जनरल हमद उस्मान अल ज़ुहैमी ने की, जबकि सऊदी वफ्द की क़यादत डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल डिफेंस मेजर जनरल डॉक्टर हमूद बिन सुलेमान अल फरज ने की। इजलास में एजेंडे में शामिल मौजूदात पर बहस की गई और उनके हवाले से मुनासिब सिफारिशात मंजूर की गई। इन सिफारिशात का मकसद तैयारी और रेडीनेस की सतह को बुलंद करना, फील्ड ऑपरेशंस की कारकर्दगी को बेहतर बनाना, तजुर्बात के तबादले को फरोग देना और हंगामी सूरत हाल से निमटने के मैकेनिज्म को मजीद तरक्की देना था। पुलिस एकेडमी के जेर इंतजाम रासल अफान कॉलेज फॉर इमरजेंसी एंड सेफ्टी ने जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ सिविल डिफेंस के ऑफिसर्स क्लब में कॉलेज के एकेडमिक और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के हवाले से एक तारुफी नशिस्त का एहतमाम किया। नशिस्त में प्रेसिडेंट पुलिस एकेडमी मेजर जनरल अब्दुलरहमान माजिद अल सुलैथी, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल सिविल डिफेंस कर्नल मोहम्मद अहमद अल मारिफी और मुतालिका इदारों के अफसरान और नुमाइंदगान ने शिरकत की। इस नशिस्त का मकसद कॉलेज की जानिब से यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ऑफ लैंकशायर के तआवुन से पेश किए जाने वाले एकेडमिक और ट्रेनिंग प्रोग्राम का तारुफ करवाना और इमरजेंसीज, क्राइसिस और फायर सेफ्टी के शोबों में महारत याफ्ता कौमी अफराद की तैयारी और तरबियत में कॉलेज के किरदार को उजागर करना था। ये प्रोग्राम जदीद तरीन बैनुल अक्वामी मेयारों और बेहतरीन अमल के मुताबिक तैयार किए गए हैं। ये प्रोग्राम्स तलबा की एकेडमिक और पेशावराना सलाहियतों को फरोग देने, रिस्क मैनेजमेंट और वाकयात और हंगामी सूरत हाल से मौसर तौर पर निपटने की सलाहियतों को बेहतर बनाने और प्रिपेयरनेस, प्रिवेंशन और सेफ्टी की सतह को बुलंद करने में मदद देते हैं। इन प्रोग्राम्स का मकसद मुतालिका इदारों की मैदानी जरूरियात को पूरा करना, सिक्योरिटी और सेफ्टी सिस्टम की हिमायत करना और मुख्तलिफ हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए कौमी सलाहियतों को मजबूत बनाना है।
ریاست قطر نے ریاض میں گلف کوپریشن

0: काउंसिल के जनरल सेक्रेटरीट के मरकज पर मुनक्किद गल्फ सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग 2026-2030 के नाफिज की पैरवी करने वाली कमेटी के दूसरे इजलास में शिरकत की। वजारत दाखिला के वफद की क्यादत स्टाफ कर्नल मोहम्मद बिन मुबारक अल्फानी, असिस्टेंट डायरेक्टर इकोनॉमिक एंड साइबर क्राइम डिपार्टमेंट जनरल डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ने की। इजलास में स्ट्रेटेजी के अहदाफ पर अमल दरामद के प्लान का जायजा लिया गया, खासतौर पर कानून और सिक्योरिटी पॉलिसीज, मुश्तरका सिक्योरिटी ऑपरेशंस, तआवुन और हम आहंगी और ट्रेनिंग और सलाहियतों को बढ़ाने के शोबों पर बहस की गई। इजलास का मकसद मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने के लिए GCC ममालिक के दरमियान मुश्तरका कोशिशों को मजबूत बनाना और सिक्योरिटी तआवुन को फरोग देना था। वजीर मुमलिकत बराए उमूर दाखिला शेख अब्दुल अजीज बिन फैसल बिन मोहम्मद अल सानी ने जमहूरिया इस्लामिया पाकिस्तान के वजीर बराए ओवरसीज पाकिस्तानीज और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट चौधरी सालिक हुसैन से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के ताबुन के शोबों और उन्हें मजीद मजबूत और फरोग देने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा दोनों जानिब से मुश्तरका तआवुन को बढ़ाने और बाहमी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के हवाले से कई उमूर पर भी बातचीत की गई। रियासत कतर ने रियाद में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जनरल सेक्रेटरीट के मरकज पर मुनक्किद कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स जनरल ऑफ सिविल डिफेंस ऑफ द GCC स्टेट्स के 35वें इजलास में शिरकत की। वजारत दाखिला के वफद की क्यादत मेजर जनरल हमद उस्मान अल दुहैमी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल डिफेंस ने की। इजलास में एजेंडा में शामिल कई अहम मौजूद पर बहस की गई और उनके हवाले से मुनासिब सिफारिशात मंजूर की गई। ये सिफारिशात GCC ममालिक के दरमियान सिविल डिफेंस के शोबे में तआवुन और हम आहंगी को मजबूत बनाने के लिए तैयार की गई हैं। वजीर दाखिला और इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स लखविया के कमांडर शेख खलीफा बिन हमद बिन खलीफा अलसानी ने जमहूरिया सूडान के वजीर दाखिला लेफ्टिनेंट जनरल बेबिकर सामरा मुस्तफा अली से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों ब्रदर ममालिक के दरमियान तआवुन के ताल्लुकात और उन्हें मजीद मजबूत और फरोग देने के तरीकों पर बातचीत की गई, खासतौर पर सिक्योरिटी के शोबों में मुश्तरका तआवुन को बढ़ाने पर जोर दिया गया। इसके अलावा दोनों जानिब से बाहमी दिलचस्पी के कई अहम उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। सामईन, इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वीकली अपडेट का सिलसिला अपने अख्तिताम को पहुंचा। अगली मुलाकात तक के लिए प्रोग्राम डिजाइनर शहबाज अंसारी और सरवर मिर्जा को इजाजत दीजिए और याद रखिए, कानून की पासदारी और एहतराम कीजिए, कानून आपकी हिफाजत करेगा।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: हेलो,
3: क्या आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं? क्या हो रहा है कतर की बिजनेस में? क्या हलचल है स्टॉक मार्केट में? बिजनेस की स्ट्रेटेजी, मार्केट का हाल, करेंसी अपडेट,
2: सुनिए कतर बिजनेस न्यूज विद RJ सरवर मिर्जा डेली लाइव विद मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
4: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM 107 कतर। दिल से देसी।

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Smart money.
2: Welcome to our segment called Smart Money. मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नासिया. आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं द साइकोलॉजी बिहाइंड इंपल्सिव बाइंग. हम सब ने ना कभी ऐसी शॉपिंग जरूर की होगी जहाँ हम किसी चीज को बिना प्लानिंग के खरीदते हैं और बाद में सोचते हैं, आह मुझे तो इसकी जरूरत ही नहीं थी. और इसी बिहेवियर को इम्पल्सिव बाइंग कहा जाता है. देखिए, इम्पल्सिव बाइंग का मतलब है ऐसी चीजों को खरीदना जिनकी हमको जरूरत नहीं. ये सिर्फ शॉपिंग का मसला नहीं है, ये साइकोलॉजी से इसका ताल्लुक बहुत ज्यादा डीप है. अब मैं आपको समझाती हूँ कैसे. देखिए, इम्पल्सिव बाइंग तब होती है जब हम इमोशन की बुनियाद पर डिसीशंस लेते हैं, लॉजिक की बुनियाद पर नहीं. हमारा जो ब्रेन है ना, या यूं कहें जो ह्यूमन ब्रेन है, वो दो सिस्टम्स पर काम करता है. एक इमोशनल सिस्टम जो इंस्टेंट हमें प्लेजर देता है, और दूसरा रेशनल सिस्टम जो सोच समझकर फैसला करता है. जब हम इम्पल्सिव शॉपिंग करते हैं, इमोशनल सिस्टम जीत जाता है और कहीं ना कहीं रेशनल थिंकिंग पीछे रह जाती है. और इसका सबसे बड़ा जो ये शॉपिंग करने का जो सबसे बड़ा फायदा हमें समझ में आता है वो है फील गुड केमिकल, यानी डोपामाइन इफेक्ट. और ये हमारा ब्रेन जो है वो बताता है कि इसे करके तुम एक्साइटेड हो, तुम खुश हो, तुम हैप्पी फील कर रहे हो. तभी तो आप देखिए, जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या ऐप खोलते हैं, सेल देखते हैं या कोई नई चीज खरीदते हैं, ब्रेन ऑटोमेटिकली डोपामाइन रिलीज करता है और हमें एक तरह की टेम्परेरी खुशी मिलती है. और शायद इसी खुशी के लिए लोग बार बार शॉपिंग करते हैं. मिसाल के तौर पे, जैसे मेरे ऑफिस में अगर मैं कहूँ तो सारा ऑफिस में स्ट्रेस फील कर रही थी. लंच ब्रेक में वो ऑनलाइन शॉपिंग ऐप उसने ऑन किया और देखते देखते एक बहुत ही कमाल का एक ब्रांडेड हैंडबैग उसने परचेज कर लिया.

की उसको बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उसके पास कुछ नहीं तो 8-10 बैग्स तो थे। लेकिन फौरन ऑर्डर कर देना, ले लेना और मूड अपना बेहतर कर लेना, ये एक इमोशनल, एक साइकोलॉजी है। कुछ घंटों के बाद वही चीज, वही एक्साइटमेंट जो है वो खत्म हो जाता है और फिर शायद हमें एहसास होता है कि हमने पैसे अननेसेसरीली या यूं ही वेस्ट कर दिए। एक और चीज मैं आपको बताऊंगी, कहीं ना कहीं इमोशनल ट्रिगर भी इम्पल्सिव बाइंग को बढ़ाता है। जैसे स्ट्रेस हुआ, शॉपिंग कर ली, सैडनेस है, शॉपिंग कर ली, बोर्डम है, शॉपिंग कर ली, लोनलीनेस का शिकार है, शॉपिंग कर ली, एंजाइटी के वक्त भी लोग शॉपिंग करते हैं और उसे बकायदा थेरेपी समझते हैं और इसीलिए रिटेल थेरेपी भी उसे कहा जाता है। जी हाँ, लेकिन ये रिलीफ बहुत ही टेम्परेरी होता है, जबकि फाइनेंशियल बर्डन बड़ा परमानेंट। मार्केटिंग कंपनीज भी साइकोलॉजी को अच्छी तरह से समझ गई हैं, तभी तो आपने ये वर्ड सुन रखे हैं जैसे सेल, फ्लैश सेल, ओनली 2 आइटम्स लेफ्ट, लिमिटेड ऑफर, 50% ऑफ फॉर टुडे। ये ऐसे मैसेजेस हैं जो अर्जेंसी को क्रिएट करते हैं और हमें लगता है कि अगर हमने अभी परचेज नहीं किया तो शायद इस अपॉर्चुनिटी को हम हमेशा के लिए खो देंगे। और शायद यही फिनोमेना फोमो कहलाता है, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। देखिए, सोशल मीडिया भी कहीं ना कहीं इंपल्सिव बाइंग का एक बड़ा फैक्टर है। जब हम इन्फ्लुएंसर्स को लेटेस्ट गैजेट्स, लक्जरी प्रोडक्ट्स और फैशनेबल आउटफिट यूज करता देखते हैं तो हम कोई भी नॉन एसेंशियल आइटम खरीदने से पहले 24-hour रूल जरूर फॉलो कीजिए। अपने आप से पूछिए, क्या मुझे वाकई इसकी जरूरत है? बजट बनाइए, शॉपिंग लिस्ट के बगैर शॉपिंग ना करें और इमोशनल स्टेट में या फिर ऑनलाइन स्टोर से शॉपिंग करने से बचिए। आखिर में बस जाते जाते यही कहूंगी कि इंपल्सिव बाइंग सिर्फ पैसे का मसला नहीं है, ये इमोशन और बिहेवियर का मसला है। जब हम अपनी फीलिंग्स को समझना और कंट्रोल करना सीख लेते हैं तो हम बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस ले पाते हैं। याद रखिए, टेम्परेरी हैप्पीनेस के लिए की गई इंपल्सिव शॉपिंग अक्सर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेस का सबब बन जाती है। बस खुद को इससे बचाना है। फिलहाल आज के लिए दोस्तों इतना ही। मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।

0: अस्सलाम वालेकुम, मैं दुआ वाला कबीर एफएम 107 पे एंड वेलकम टू अनदर टेक अपडेट। ये बोलने के लिए मैंने कितना वेट किया बता आपको, टेक अपडेट। तो शुरू करते हैं सबसे पहले वेबसाइट्स, ऑफ कोर्स कुछ बहुत ही जबरदस्त एआई टूल्स एंड वेबसाइट्स जो आपके काम आएंगे, एंड देन टुवर्ड्स द न्यूज। तो नंबर वन ऑन द लिस्ट टुडे इज एन अमेजिंग वेबसाइट जहां पर आप अपना क्यूआर कोड बना सकते हैं। अब आप बोलेंगे तो कोई भी बता सकता है, पर क्यूआर कोड को और भी इंटरेस्टिंग बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपको टाइप करना है एड्रेस बार में tree.icqr.com, ट्री टी आर डबल ई पेड़ वाला ट्री .icqr.com और सी वो अल्फाबेट वाला सी। जब भी टाइप करेंगे आपके सामने एक वेबसाइट आएगी जहां पर आप जो है खूबसूरत बारकोड बना सकते हैं, और इन बारकोड की खास बात यह है कि आप इनको एक ट्री की तरह मैनेज कर सकते हैं। लेट मी एक्सप्लेन, आप इसको 3D मॉडल जब स्पिन करेंगे तो उसमें कोई सा भी कलर दे सकते हैं, कैसा भी कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप कोई ऐसी जगह बारकोड ये पेस्ट करने वाले हैं जो आपका पैम्फलेट है, या फिर आप रेस्टोरेंट चलाते हैं, या फिर आप ऐसी फैंसी तरीके से अपने घर में कहीं पोस्ट करना चाहते हैं जहां से लोग वाईफाई आपका यूज कर सकें, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, पर यहां से बारकोड आप बहुत ही खूबसूरत तरीके से बना सकते हैं। इस तक में भाई कस्टमाइजेशन आ चुकी है। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू अनदर वन। अगली वेबसाइट है cleverhumanizer.ai। मैं बताता हूँ इसकी स्पेलिंग, क्लेवर वो चालाक वाला क्लेवर, सो CLEVER, फिर ह्यूमनाइजर HUMANIZER, cleverhumanizer.ai। जो इसका नाम है वही इसका काम है। बेसिकली आप किसी भी अगर AI से कुछ भी पूछते हैं, आपको वो AI जनरेटेड टेक्स्ट देता है, जो कि पता लगता है और पकड़ा भी जाता है कि भाई हाँ ये पक्का AI से निकाला है। मगर उस टेक्स्ट को अगर आप इस वेबसाइट पे पेस्ट करेंगे तो ये एक ह्यूमनाइज्ड वर्जन ऑफ द सेम टेक्स्ट आपको देगा, तो ऐसा लगेगा कि भाई किसी इंसान ने ही लिखा है। तो बेहतरीन बेहतरीन वेबसाइट है, आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। ये हालांकि जो कॉम्प्लेक्स चीज होती है उनको जिस तरीके से आसान करता है, दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। अगर कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो समझने में दिक्कत आ रही है, हालांकि AI ने ही आपको दिया है, उससे भी पूछ सकते हैं, लेकिन एक ह्यूमनाइज टेक्स्ट अगर आपको चाहिए, दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन गो ऑन टू। अब एक और वेबसाइट, अगली वेबसाइट का नाम है FMHY, ये अल्फाबेट्स हैं FMHY.net। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको सब कुछ आपकी नजरों के सामने आ जाएगा। क्या क्या ये आपको बताता हूँ, सारे के सारे टूल्स, सारे के सारी वेबसाइट्स। आपको गेमिंग वेबसाइट चाहिए, गेमिंग वेबसाइट मिल जाएगी, स्ट्रीम करने के लिए, स्ट्रीम करने के लिए मिल जाएगी। AI चाहिए, AI मिल जाएंगे। आपको टूल्स चाहिए इमेज नॉट ओनली जनरेशन बट एडिट करने के लिए, वीडियो एडिट करने के लिए, कैसे भी, वो सारे के सारे लिस्ट बाय लिस्ट आपके सामने आते चले जाएंगे। बहुत बड़ा कलेक्शन है इस वेबसाइट पे, विच आई रियली रियली लव। आई थिंक ये बहुतों के काम आने वाली है, तो मैंने कहा ये तो मैं जरूर बताऊंगा। सो F like a fan, M like in monkey, H like in horse, N Y as in Yankee या Y as in yak, FMHY.net। ओके, अब बढ़ते हैं जरा खबरों की तरफ। ऑलराइट, तो अभी बहुत सारी खबरें आ रही हैं ओपन AI से जुड़ी हुई। तो ओपन AI का जो नेक्स्ट मॉडल फेस है वो थोड़ा टफ बनाने की कोशिश की जा रही है। एक अनरिलीज्ड वर्जन है एस्ट्रा मॉडल, जो बहुत बहुत पावरफुल है, और बताया जा रहा है कि वो ऑटोनोमस आइडेंटिटी और पोटेंशियली साइबर सिक्योरिटीज की जो वल्नरेबिलिटीज है उनको भी थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बना सकता है। अभी डेवलपमेंट जारी है भाई, कोई बच के निकल को नहीं पाएगा। ये बहुत बढ़िया चीज बनने वाली है एंड दिस विल कम इन प्लेस। इसके अलावा टिम कुक की खबर आई है, जो कि एप्पल के लीडर हैं, और टिम कुक अब एप्पल के CEO नहीं रहे। आई नो ये खबर जिनको पता है बहुत बढ़िया, मगर उनके 15 साल के करियर के बाद लीडिंग एज द CEO ऑफ एप्पल, अब जॉन टर्निस टेक ओवर कर चुके हैं, और इमीडिएट चैलेंज उनके लिए यही होगा कि भाई कुछ बदले और ये जो गैप है आएगा वो तो मिटाएं, साथ में कुछ नया डिजाइन लेके आ जाओ मलिक। तो ये थी ट्रैक अपडेट, मैं दुहा वाला कबीर एफएम 107 पे। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर दिल से देसी ट्रैक अपडेट।
1: मैक्सिमम म्यूजिक, मैक्सिमम फन ऑन FM 107, दिल से देसी।

0: Scam Alert.
1: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. एफ एम 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का. मेरा नाम है फजील और हर रोज आपसे मुखातिब होता हूँ इस वक्त जहाँ पर हम बात करते हैं नए जमाने के नए स्कैम के बारे में. वेल, फ्रॉड के बारे में आपको पता होना चाहिए. हर दिन एक नया फ्रॉड, और ये जो फ्रॉडस्टर्स हैं डिजिटल इस्तेमाल कर रहे हैं, कई बार ये फिजिकली भी लोगों को अब फ्रॉड करने लग गए हैं. लेकिन आज जिस फ्रॉड के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, ये फ्रॉड बहुत ही आसानी से कोई फ्रॉडस्टर्स आपके साथ कर सकता है और आपको यकीन भी नहीं होगा. कई बार आप इनके चंगुल में फंस जाते हैं और बहुत लेट पता चलता है. और ऐसा ही एक फ्रॉड है जो अगर आपके साथ हो गया तो आपको थोड़ा लेट पता चलता है. दिस स्कैम इज कॉल्ड ओवर पेमेंट स्कैम. दोस्तों, ये काम कैसे करता है इस पर जरा सबसे पहले नजर डालते हैं. ओवर पेमेंट स्कैम आम तौर पर ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर्स, होलसेलर्स और इंडिपेंडेंट सेलर्स को अपना शिकार बनाता है. इस फ्रॉड में एक फ्रॉड बायर आपकी शॉप या वेबसाइट पर आकर एक बहुत बड़ा ऑर्डर देता है या कोई बहुत महंगा आइटम ना खरीद लेता है, और बगैर आपसे मांडवली बोले तो नेगोशिएशन के आपसे आपने जो भी अमाउंट बताया है अपने प्रोडक्ट का, वो आसानी से मान जाता है और वो आपसे खरीद लेता है. वो पेमेंट करने के लिए एक बिजनेस चेक भेजता है या फिर किसी चुराए हुए क्रेडिट कार्ड का यूज करता है. इस स्कैम का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये होता है कि वो जानबूझकर एक्चुअल प्राइस से बहुत ज्यादा पैसा भेज देता है. मिसाल के तौर पे मैंने आपको कॉल किया और कहा कि भाई आपका जो प्रोडक्ट है ना वो मुझे खरीदना. आपने कहा भाई 10 रियाल पर पीस पड़ेगा. मैं कहूंगा ठीक है, एक काम करिए आप 3000 पीस मुझे भेज दीजिए. जो भी पेमेंट बनता है मैं उससे आपको 10000 रियाल या 10000 रुपए व्हाटएवर द अमाउंट इज मैं बढ़ाकर आपको पेमेंट भेजूंगा. और कैसे? चेक के जरिए. चेक बनाकर मैंने आपको भेज दिया, आपने प्रोडक्ट अभी भेजा नहीं है. लेकिन जब आपके पास चेक पहुंच गया तो मैं आपसे कहता हूं भाई आप जो है प्रोडक्ट भेज सकते हैं. लेकिन खेल यहीं शुरू होता है. होता यह है जब वो जानबूझकर ज्यादा पैसे भेज देते हैं तो वो करते ये हैं कि बिल का, जैसे अगर 10000 का बिल है तो वो 1000 एक्स्ट्रा कर देंगे, 11000 कर देंगे. और वो कहेंगे अरे वो धोखे से मैंने आपको ज्यादा पेमेंट कर दिया है, तो जो ज्यादा पेमेंट आपको किया आप वो मुझे वापस कर दें. और जब चेक आपका टूटेगा तो फिर आपको पैसा मिल ही जाएगा. पैसा भेजने के तुरंत बाद बायर सेलर को मैसेज या कॉल करता है और बहुत माफी भी मांगता है. तो कहता है सॉरी मेरे अकाउंट से जो है गलती हो गई है अकाउंटेंट वाले से और ज्यादा पैसे आपको दे दिए हैं. वो सब तरीके अपनाता है आपको फंसाने के लिए. आप 1000 काट लीजिएगा और बाकी की जो 4000 है ना वो मुझे तुरंत आप बैंक वायर ट्रांसफर कर दीजिए या डिजिटल वॉलेट के जरिए रिफंड कर दीजिए. सेलर को लगता है कि सामने वाला इंसान जेन्युइन है, पैसा तो उसके बैंक में आ ही चुका है, बस चेक जो है वो मुझे जमा करनी है बैंक में, मुझे पैसे मिल जाएंगे फिलहाल के लिए. अभी उसको ज्यादा जो बढ़ा हुआ पैसा है वो वापस कर देते हैं, इसलिए वो बिना सोचे समझे एक्स्ट्रा पैसे रिफंड कर भी देता है और सामान भी शिप कर देता है. कुछ दिनों बाद जब बैंक उस बायर के ओरिजिनल चेक या क्रेडिट कार्ड को प्रोसेस करता है तब जाकर पता चलता है कि चेक फेक था या कार्ड जो है वो चुराया हुआ था. बैंक वो पूरा ट्रांजेक्शन कैंसिल कर देता है. अब सेलर के अकाउंट से वो पहले वाले पैसे भी चले गए, रिफंड किया हुआ पैसा भी गया और सामान भी चला गया. ये है सबसे बड़ा नुकसान. लेकिन इसका सॉल्यूशन भी है दोस्तों. क्या सॉल्यूशन है इस तरह के स्कैम से बचने के लिए? सबसे पहला है पैसे क्लियर होने का वेट करें. जब आपको कोई क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करे या फिर आपके बैंक चेक के थ्रू आपको पेमेंट करे, जब तक कोई भी फैसला ना ले, पेमेंट आपके पास आना चाहिए. क्रेडिट कार्ड यानी कि आपके बैंक में क्रेडिट होना चाहिए. क्रेडिट कार्ड का पेमेंट अगर उसने किया है तो सेटल हो जाए, क्लियर हो जाए, तब तक सामान शिप भी ना करें और ना ही कोई रिफंड प्रोसेस करें. सिर्फ अकाउंट में पेंडिंग बैलेंस देखकर खुश ना हो और कभी भी कैश रिफंड नहीं करना. एक तो ये है कि आपने बैंक के थ्रू डायरेक्ट किसी बैंक को ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ पर थोड़ा एक बार को होता है कि आपके पास बैकअप प्लान है कि हाँ मैंने फला अकाउंट में ट्रांसफर किए, उसने मुझसे कहा था, तो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आसान हो जाएगा. लेकिन ऐसा फिर भी ना करें कि किसी के अकाउंट में पैसे आप ट्रांसफर कर दें, उसके अलावा कैश भी ना दें. किसी कस्टमर ने एक्स्ट्रा पेमेंट कर भी दिए तो उन्हें कैश या वायर ट्रांसफर के जरिए रिफंड कभी मत करें. उन्होंने बोला भी है अगर, तब भी, कितने भी बड़े आपके वो लॉयल कस्टमर क्यों ना हो. उसके अलावा सिक्योर

पेमेंट गेटवेज। अपनी वेबसाइट पर हमेशा उन्हीं पेमेंट गेटवेज का यूज करें जो फ्रॉड डिटेक्शन और चार्ज बैक प्रोटेक्शन टूल्स ऑफर करते हैं। उसके अलावा एक तरीका है अजीब ऑर्डर्स को पहचानना, ये आमतौर पर सब नहीं कर सकते हैं।

0: जितनी भी कोशिश कर रहा हूँ वो मुकम्मल हो रही होगी. इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में. तब तक सुनते रहे FM 107, दिल से देसी.
1: स्कैम अलर्ट. FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
2: एक खास शो जहां बात होगी खातीन की सेहत, अवेयरनेस और कंप्लीट वेलबींग की.
3: वेलनेस इज फाइंडिंग योरसेल्फ, फाइंडिंग व्हाट ब्रिंग्स यू जॉय एंड व्हाट कीप्स यू होल.
2: एक ऐसा प्रोग्राम जो सिर्फ हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही नहीं देगा बल्कि हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने के लिए मोटिवेट भी करेगा. हर एपिसोड में हमारे साथ होंगे डॉक्टर्स, डिस्कस करेंगे उन टॉपिक्स को जो आपकी जिंदगी को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. तो दोस्तों सुनना न भूले शो वेमेन वेलनेस हर मंडे शाम 5 बजे से आरजे नाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107. दिल से दी.

0: Gen Z, Gen X, Gen Alpha, Millennials. ये सब महज टर्म्स नहीं हैं, ये अलग अलग ख्याल आदतें, इन सब को अगर एक दूसरे से मुखातिब कराया जाए तो क्या होगा?
1: तो ये जानने के लिए सुनिएगा जनरेशन टॉक्स। जनरेशन टॉक्स
2: अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे एंड वेलकम टू जनरेशन टॉक। यहाँ पर जनरेशन के गैप के बारे में बात नहीं होती, वो तो क्लीशे है, हर कोई कर लेता है, लेकिन हम जो है उन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि दोनों ही जनरेशन को, इनफैक्ट तीनों चारों जनरेशन को, जेन एक्स, जेन अल्फा, जेन जी, मिलेनियल, सबको एक साथ जोड़े रखती है या फिर अलग करती है। तो मेरे साथ आज एक बहुत ही खास गेस्ट है, मेरे बड़े भाई, इनसे बड़ी मोहब्बत है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कतर में जिनसे हम मिलते हैं, उनके साथ आप हंसी मजाक कर सकते हैं, यू कैन बी कंफर्टेबल अराउंड देम, जो एक तो जज नहीं करते और सीरियस नहीं होते, ऐसे लोग मुझे बहुत पसंद है। लाइन पर है मेरे साथ फवाद भाई। फवाद भाई, वेलकम अगेन।
3: बहुत शुक्रिया तालियों की गूंज में, बहुत शुक्रिया।
2: तो तालियों की गूंज के बाद मुझे ये बता दे कि आप जो है कौन सी जनरेशन से आजकल रिलेट कर पा रहे हैं, बिकॉज यू आर अ फादर एज वेल, सो कौन सी जनरेशन ज्यादा रिलेटेबल है आप आजकल?
3: जेन जी।
2: क्या बात कर रहे हो, जेन जी से कैसे रिलेट कर पा रहे हो भाई?
3: तो इसलिए कि कहते हैं अब हमें उनके हिसाब से सोचना पड़ेगा ना, ताकि उनके लेवल पे आ सके।
2: ओके, तो आप उनके लेवल पे आने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, कुछ मेहनत करी है आप?
3: सर मैंने अपना वजन 25 केजी कम किया है और कहते हैं उसके बाद टेक्नोलॉजी की तरफ आगे हैं, उनकी तरह यो डूड बनने की कोशिश कर रहे हैं।
2: अरे वेरी नाइस, यो डूड बनने के बाद मैं सच में बहुत टाइम से देखा नहीं मैंने आपको, बट आई वुड लव टू सी दैट। मुझे ये भी बताइए कि जो इनके टर्म्स हैं वो भी सीख लिए आपने यो डूड के अलावा, जो इनकी नई नई डिक्शनरी है उसमें कौन कौन से वर्ड्स आपने सीख लिए अभी तक?
3: सर नहीं सर,
2: स्कीबिडी स्कीबिडी स्कीबिडी नहीं सीखा आपने?
3: सर ओनली 6-7 के अलावा और कुछ नहीं पता।
2: अभी दिल्ली दूर है मेरे दोस्त, दिल्ली अभी दूर है। तो फवाद भाई, ये जो जनरेशन गैप है, अभी तक हम जेन जी के बारे में बात कर रहे थे, अभी जेन अल्फाज के बारे में बात होती है, जेन एक्स भी हैं, बहुत कुछ है, बट लुकिंग बैक एट योर जनरेशन, कौन कौन सी चीजें आप मिस करते हैं और कौन सी आपको लगता है कि यार ठीक है, नहीं है, चलेगा, कोई टेंशन नहीं?
3: शायद मैं मिलेनियम में आता हूं ना सर, शायद 44 में।
2: हां ठीक है, उसी के हिसाब से बता दो यार, क्या मिस करते हो?
3: सर मिस क्या क्या करते हैं मिस? सर हमने जिंदगी में कभी कुछ मिस करना सीखा ही नहीं, ये हम लोग मोबाइलों की जनरेशन से आए नहीं हैं, तो हम लोग जितनी एक्टिविटीज और चीज़ें कर सकते थे हमने की हैं, यही हमारी लाइफ का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है जो कि जेन जी, जेन अल्फा कभी नहीं दे सकेंगे।
2: ओके ठीक है, और कौन सी चीज़ आपको लगता है कि ठीक है यार अभी नहीं है, तो आपको कुछ ज़्यादा खास रिग्रेट नहीं है कि नहीं है कोई बात नहीं है?
3: जैसा आप समझ लें कि AI टेक्नोलॉजीज या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि अब हम लोगों को जारी पता है कि दोबारा बुक्स खोल के कुछ चीज़ें पढ़नी पड़े तो हमें टाइम लगता है, तो हम उसको किसी तरह कवर कर लेते हैं, तो अगर वो नहीं भी आई तो हम थोड़ा बहुत उसका 10-20% सीख के भी गुजारा कर लेते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। बाकी अगर मोबाइल एक दिन गुम भी हो जाए तो कई दफ़ा नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन आजकल इतनी ज़रूरत के हिसाब से वो ज़रूरी हो गया है कि आपको ज़रूरत इस्तेमाल करना पड़ जाता है।
2: ओके और फवाद भाई, आप ऑब्वियसली इतने सालों से काम कर रहे हैं, यू हैव वर्कड आउटसाइड एज वेल, आपका यहाँ पे कॉन्वर्सेशन है, मतलब यू गेट टू नो जेन ज़ आपकी कंपनी में है, मुलाकात होती है, मिलना जुलना होता है?
3: मैं अपनी कंपनी में जेन ज़ को हायर करता हूँ एज अ इंटर्न और बहुत सारे जेन ज़ के साथ काम भी कर रहा हूँ, उनका फास्ट डिसीजन मेकिंग कुछ चीज़ों में अच्छा भी होता है लेकिन कुछ चीज़ों में बहुत डेंजरस होता है वर्क एक्टिविटी के हिसाब से, और एकदम से किसी के खिलाफ या किसी के बारे में एकदम से डिसीजन लेना भी उनके लिए अच्छा नहीं होता है, तो उन लोगों को अभी ऑफिस डेवलपमेंट या कॉर्पोरेट लेवल या कोई काम के हिसाब से यहाँ पे उस तरह की ट्रेनिंग होती नहीं है हमारे कतर में, तो वो सीखने में इन जेन ज़ या जेन अल्फा को बहुत टाइम लगेगा।
2: ओके तो ये आपने मेन नोटिस किया कि इनका मतलब जो काम करने का जो तरफ उसकी तरफ रवैया है वो ऐसा है कि बड़ी फास्ट पेस थिंकिंग है, यू नो दे थिंक एवरीथिंग ऑन द गो, क्या अभी बस समझ में आ गया कर लिया, पर ये चीज़ आपने जैसे आपने कहा कि तारीफ काबिल तारीफ भी है कि भाई ये बड़ी अच्छी बात भी होती है और ये ऐसा भी होता है कई मरतबा के पैनिक मोड भी ऑन हो जाता है, बट डू यू थिंक दे आर आर हार्ड वर्किंग और डू यू थिंक नहीं अभी भी वो हार्ड वर्किंग के स्ट्रेचर पे तो नहीं रखूंगा मैं आप किस तरह से देखते हैं इनके वर्किंग कल्चर को?
3: बहुत अभी तक मैंने काफी सारों को देखा है, एटलीस्ट 20 से 30 इंटर्न्स जो उनके साथ काम किया है, उनमें से 1% जो है ना सीखना चाहते हैं, 1 से 2%, तो बाकी जो है मुझे पता है नहीं, मैंने किया हुआ है कहीं पे नहीं, ये मुझे ये अच्छा अच्छा यूं ही होता है ना बस, ठीक है तो ये जो इनका तरीका कार है ना, इसमें मैं 1 or 2% देखे हैं जो कहते हैं हाँ जी आप बताएं सर मैं ये सीखा चाहता हूँ या मैंने ये सीखा है उस तरह गलती नहीं करूंगा, उस तरह के बहुत कम लोग मिलते
2: हैं। ओके, तो हाँ ये चीज मुझे भी लगती है, बट आप इनके इतने सारे इंटरव्यूज और इंटर्नशिप के बारे में मैं कल किसी से बात ही कर रहा था, तो इंटर्नशिप को लेकर क्या आपको फर्क नजर आता है? हैव यू बीन एन इंटर्न इन योर लाइफ एवर?
3: I've been intern, yes. I started my first job, मैंने की थी रिसेप्शन पे खड़ा हुआ था और क्या कहते हैं होटल में काम किया था मैंने अपने पॉकेट मनी के लिए, ठीक है, जब तक मोबाइल लिया था उस जमाने में इतना महंगा था तो लेके उसके बाद ख़त्म की थी। लेकिन ये कि इंटर्नशिप, यस, हमारे ज़माने में इंटर्नशिप में काम करना पड़ता था वरना सर्टिफिकेट नहीं मिलता था और हमसे काम कराया जाता था और हम सीखने की कोशिश करते थे, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और ये लोग इतनी जल्दी, इनको इतनी क्या कहते हैं आप, दिक्कतें मुसीबतें इन्हें झेली नहीं है, या तो इन्होंने जिन्होंने झेली होती है उनको पता होता है कि ये हार्ड टाइम्स के साथ गुड टाइम्स कैसे आएंगे।
2: ओके, अच्छा पहले ये कहा जाता था कि बच्चे को ना थोड़ा सा उसमें डालो, मुश्किल में, डिस्कम्फर्ट में डालो, नॉट एक्जैक्टली मुश्किल पर थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट में डालो ताकि सीख सके। जैसे हमारे बाप ने कहा बेटा तुम यहाँ जा रहे हो तो एक काम करो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाओ, इवन इफ यू हैव अ बाइक यू हैव अ कार कोई मतलब नहीं भाई, तू ऐसी जाएगा, तो वो एक रवैया रहता था। अभी आई थिंक दो तीन मेरे भी दोस्त हैं और आप खुद एक पेरेंट है, तो लोग मुझसे कहते हैं कि यार अभी थोड़ा मुश्किल है उन्हें डिस्कम्फर्ट में डालना, बड़ा मुश्किल है, वो खुद आ गए तो बात दूसरी है। व्हाट इज योर ओपिनियन फॉर भाई?
3: जो मेरा लेटेस्ट प्रोडक्शन है ना वो 2022 वाला, वो जो है उसको दिक्कत में डालना बहुत मुश्किल है, लेकिन उससे पुराने वाले जितने हैं उनको अगर मैं कहता हूँ ये तुम लोग का बजट है, इसी में खाज की आउटिंग है, यही खाना है, अपना हिसाब लगा लो मोबाइल पे खाना है और ये गुजारा करना है, तो वो एडजस्टमेंट कर लेते हैं। और उनको मैंने इस तरह सिखाया है कि लाइफ में कभी भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, आपके पास कभी 1,000 रियाल भी होंगे कभी 10 रियाल भी होंगे, तो आपको पता होना चाहिए इतने पैसों में कहाँ पे बैठ के खाना है और किस सर्टिफिकेट से खाना है, और 10 रियाल वाले में ही बैठ के खाना है तो किस तरह खाना है।
2: ओके, और ये तो मतलब आपने काफ़ी मैनेज कर लिया भाई, वरना लोगों का तो तड़का उधर जाता है मामला। लेकिन बहुत भाई मैं एक हमारी बहन ने आसरा उनके साथ मैंने इंटरव्यू किया था, मैंने उनसे पूछा महीने के कितनी मतलब आपको लगता है कि ये क्या कहते हैं पॉकेट मनी जो है आपने कितनी बांधी हुई है, क्या सिस्टम है घर का?
3: 71 में तो मैंने अभी एक का अकाउंट खुलवा दिया है, बाकी के आईपे कार्ड बना दिए हैं उनके, ठीक है, तब मैं छोटे बेटे के अकाउंट सबसे छोटा जो है उसके 20 रियाल डालता हूँ क्योंकि वो उससे तो इस तरह की चीज़ें खानी है, बाकी सेविंग रहेगी उसकी, और बड़ा जो मिडिल वाला है उसके 100 और जो बेटी है उसके 200।
2: अच्छा, तो इसमें बढ़ोतरी हुई है, प्रमोशन हुआ है या कितने साल से चल रहा है?
3: नहीं, ये प्रमोशन उनका इस हर 6 महीने बाद 100 रियाल बढ़ जाता है हम सबका, इतना हमारा नहीं बढ़ता।
2: अच्छा, तो फवाद भाई लुकिंग एट द कल्चर, क्योंकि देसी कल्चर ऐसा रहा है, हमें भी हमारे माँ बाप ने बताया कि देखो बड़ा दिलीप कुमार ये पिक्चर देखो, देखो बड़ा गुरुदत्त ये है, इनको देखो, तो हमें ऐसे ही हम पले बढ़े क्योंकि हमें नॉलेज जो है मूवीज़ की भी सिनेमा की भी ऐसी आई है। आपने कितना जोर लगाया और कितना आसान रहा है आपके लिए? आर दे अवेयर ऑफ ऑल द थिंग्स दैट यू हैव सीन, जो आपने देखी हैं सिनेमा हो चाहे म्यूजिक हो?
3: बेसिकली एक चीज़ तो सबसे बड़े हमारे पेरेंट्स के अंदर ये है कि हम लोगों को अपने बच्चों के साथ कंफर्टेबिलिटी पैदा करनी है बस, कि भाई वो जो बात है आपसे कर सकें, अगर हम हर बात पे उनको चिल्ला देंगे या उनको हर चीज़ पे ना कर देंगे उसका कोई ना कोई जस्टिफिकेशन देना है। इसी तरह मूवीज़ का भी यही सिस्टम है, अगर आजकल आपको पता है मीडिया किस तरह चल रहा है, आपको कोई चीज़ एक भी गलत आप खोलते हैं तो बच्चों के लिए कोई ना कोई गलत होता है, तो आप उसको किस तरह उसको कहना है कि भाई ये देखो इसको इस वक्त के हिसाब से आपके लिए गलत है, तो वो चीज़ें मैंने मूवीज़ बच्चों के साथ बैठ के देखी भी हैं, हॉरर भी देखी हैं, एक्शन भी देखी हैं, रोमांस वाली भी देखी हैं, बच्चों के साथ बैठ के देखी हैं।
2: ओके, तो इस अप्रोच पे आपका क्या कहना है? ऐसे लोग कहते हैं ना कि अपने बच्चों को बताते बेटा ये होता है VCR, ठीक है, तुमने नहीं देखा होगा ये, तो ये एक अप्रोच होती है जो शायद खत्म हो गई या है, आई डोंट नो, बट डू यू ऑल्सो डू दिस कि बेटा VCR होता था हमारे जमाने में तो ये होता था हमारे जमाने में वो, ऐसा करते हैं आप?
3: सर मेरे पास VCR घर में पड़ा हुआ है, DVD रिकॉर्ड प्लेयर भी पड़ा हुआ है, CD प्लेयर, और मेरा रैक जो मैंने जवानी से अपनी किस्तें 96, 87, 78 दिलीप कुमार, किशोर कुमार, प्रीत सिंह, सारों के जो गाने और वॉल्यूम्स हैं ना, मेरे पास पूरा रैक है, 200 या 300 जो किस्तें रह गई हैं, 500-600 CDs हैं, उसमें रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास 15-20 रह गए हैं सिर्फ उसमें से, वो सब मेरे पास अभी घर में है पाकिस्तान में, और मैं वो बच्चों को पिछली बार गए थे पूरी चीज़ें दिखाई थी, और मैंने अपनी स्टैम्प्स कलेक्शन भी दिखाई थी, बेटा ये देखो मैंने उस ज़माने में स्टैम्प्स कलेक्ट किए थे और हम लोग यूँ ही रखते थे।
2: ओके यार बहुत बढ़िया यार, मुझे लग रहा है गलत आदमी को कॉल लगा ली, कोई फ्लो ही नहीं है इसमें, तो माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, अल्लाह ताला आपको ऐसी रखे, वेरी वेरी वेल मैनेज्ड। और फवाद भाई एक हम यहाँ पे देखते हैं कतर में एक मेजर, नॉट एग्जैक्टली एन इशू मगर इट इज़ समथिंग जो जिस पे काम करना पड़ता है, जैसे बच्चे जो होते हैं अपने अपने मुल्क में होते हैं तो इट इज़ ईजी, जब वो बाहर जाते हैं तो मिलना जुलना सेम भाषा सेम कल्चर सेम सब कुछ, बट जब वो यहाँ पे होते हैं और उनका उनका एक्सपोजर जो होता है वो काफ़ी लिमिटेड होता है, स्पेशली जेंजीज जो अपने ही एक एक बबल में रहते हैं, दे हैव देयर फोन्स एंड विच इज़ नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट ब्लेमिंग द टेक्नोलॉजी, ज़रूरत है आज के ज़माने की, बट उसके लिए क्या किया जाए, वो एक्सपोजर देना ना देना कैसे करते हैं आप या कैसे करना चाहिए?
3: कोशिश तो मैं करता हूँ कि जहाँ जाऊँ साथ लेके जाऊँ, जहाँ जहाँ लेके जा सकता हूँ, जिस तरह आप कभी मैं ट्रैफिक ऑफिस में किसी काम से जा रहा हूँ तो बेटे को साथ लेके जाता हूँ ताकि उसे पता हो कि क्या किस तरह टोकन लिया है, क्या बात की है अरबिक में, क्या बात की है इंग्लिश में, क्यों इस्तेमाल किया है, किसको किस तरीके से बात की है, आपके एटिकेट्स और आपके बच्चों के टेबल पे बैठने, क्योंकि आजकल मेरा नहीं क्या स्कूलों में उस तरह सिखाया जाता है जिस तरह हमारे ज़माने में कुछ चैप्टर्स होते थे, बल्कि बताया जाता था कि ग्लास में इतना ड्रिंक छोड़ते हैं तो ये मकसद है, प्लेट में अगर खाना छोड़ते तो यूँ होता है, स्पूंस को इस तरह छोड़ते हैं, तो हम लोग मैं भी वाइफ भी और मैं भी हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को देखें, आपके पढ़ाई और इल्म तो बंदे सीखते ही रहते हैं सारी ज़िंदगी, लेकिन एटिकेट्स और ये आदतें और ये आपकी चीज़ें जो है ना अगर एक बार पक्की हो जाएं तो ख़त्म नहीं होती हैं।
2: ओके ओके वेरी वेरी वेरी सॉर्टेड आंसर, और ये तो बहुत बढ़िया था। अच्छा एक जो बात मैंने कहीं पढ़ी भी थी, आई थिंक रेडिट की किसी पोस्ट से पढ़ी थी कि लोग कहते हैं कि पहले के बच्चे ना थोड़े से बदमाशी में ज़्यादा होते थे, आजकल क्या है कि बदमाशी चलो है, वो ये नहीं कह रहा कि अच्छी वाली बदमाशी कह रहा हूँ जिसमें थोड़ा होता है कि शरारती होते हैं, आजकल जो वो शरारत है वो उस किस्म की नहीं है, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है, क्या कहेंगे इस पर आप?
3: तो शरारतें तो अभी भी हैं लेकिन हाँ उस

0: इनको पता है कि सिक्योरिटी कैमराज लगे हुए हैं, कानून सख्त है, किसी को बगैर वजह के तंग नहीं कर सकते। हमारे मुल्क में होंगे तो पानी का गुब्बारा भी फेंक देंगे किसी की तरफ कुछ भी कर देंगे, टायरों में हवा निकाल के भाग देंगे। वैसे तो यहाँ भी हो जाता है ऐसा, लेकिन वो चीज़ें या ऑफकोर्स यहाँ पे कम है, लेकिन बदमाशियाँ यहाँ पे करते हैं बच्चे, थोड़े बहुत तो करते ही।
1: ओके ओके।
2: Gen Z, Gen X, Gen Alpha, Millennials. ये सब महज टर्म्स नहीं है, ये अलग अलग ख्याल आदतें, इन सब को अगर एक दूसरे से मुखातिब कराया जाए तो क्या होगा?
3: तो ये जानने के लिए सुनिएगा Generation Talks.
1: इस जनरेशन से काफ़ी कुछ सीखने को तो है, और हम क्लियरली मुझे नज़र आ रहा है कि आपने काफ़ी कुछ सीख भी लिया है। अपनी जनरेशन से आजकल क्या चेंज है, मतलब आप देखते हैं अपने इर्द गिर्द जो आपके हम उम्र हैं, आपने देखा मुझे काफ़ी एक स्टबर्ननेस भी है कि मैं क्यों बदलूँ भाई, ये लोग बदलेंगे, हम क्यों बदलेंगे, हम तो ऐसे हैं, ये देखा है आपने इस पे, इस एटीट्यूड पे क्या कहना है आपका?
0: बिल्कुल है सर, ये सबसे बड़ा मसला है यहाँ पे कि उसने कर दिया मैं क्यों करूँ, उसने भी तो कूड़ा नीचे फेंक दिया तो मैंने फेंकी तो क्या हो गया। ठीक है, आप इस सोच से बाहर निकले। हमारे जमाने में जो आपने कहा ना लड़ाई की, हम लोग अगर लड़ाई होती थी तो पूरा ग्रुप लड़ता था और ये नहीं पूछता था कि हुआ क्या है। ठीक है, दोस्त लड़ने गया है तो लड़ने चले गए सारे। ठीक है, वो बाद में बताता था कि वो सही था कि गलत था। ठीक है, और हम अभी तक दोस्त हैं 23 लोग जो हमारे हम लोग 8-10 तक पढ़े थे, हम लोग अभी तक 23 लोग एक ही ग्रुप में और सारे मिलते जुलते हैं, जब भी मिलते हैं खाते होते हैं। ठीक है, लेकिन ये कि वो जो ग्रुप है ना, वो आजकल की दोस्तियां उस तरह नहीं है। हर का जंजीर या जलपा ये मुफाद प्रस्त भी हैं, थोड़े बहुत कुछ हैं अच्छे दोस्त भी, लेकिन ये लोग एक दूसरे से फायदा मिल जाए तो अच्छा है, चलते रहेंगे।
1: ओके, और आपकी जैसे हमारी और आपकी जनरेशन है, कहीं ना कहीं एक स्टबर्ननेस है कि हमेशा मैं देखता आता हूँ कि हमेशा क्रिटिसिज्म मिलता है जेंजीज को, जो कि नहीं मिलना चाहिए। अभी मुझे भी ऐसा लगता है कि बहुत सारे क्रिटिक्स आ जाते हैं, ये जेंजीज, ये जेंजीज ने ये नहीं देखा, वो नहीं देखा, बट आई लॉट टू लर्न फ्रॉम देम। तो आप अपनी जनरेशन को क्या मैसेज देंगे फवाद भाई, जो आपके हम उम्र हैं उनको क्या कहेंगे?
0: मैं यही कहूँगा कि हमें अपनी स्किल्स, अगर कोई प्लेटफॉर्म हो तो हमें अपनी स्किल्स उन जो बच्चे सीखना चाहते हैं ना उनको देनी चाहिए, ताकि उनकी एक्टिविटीज़ में इजाफा हो उनके, क्योंकि आजकल की जनरेशन के दिमाग हमसे ज़्यादा तेज़ हैं, क्योंकि जिस तरह आइडिया डेवलपमेंट है, चीज़ें हैं बहुत तेज़ हो चुकी हैं टेक्नोलॉजी की वजह से। तो हम लोगों के पास जो स्किल्स हैं, किसी के पास अगर AI है, किसी के पास IT है, तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि कोई आए ट्रेनिंग दे उनको, वो अपनी वेस्ट टाइम को कहीं यूज़ कर सकें। हर कोई अपना मवाद बेचने पे लगा हुआ है, हर कोई बेच रहा है। ठीक है, लेकिन ये नहीं सोच रहा कि किसी को फ़ायदा भी दे दे किसी मकसद में।
1: या ओके, हाँ फेयर इनफ, बिल्कुल सही कहा आपने। और स्पेशली जो अभी टाइम है, आई थिंक इस टाइम पे वो जो ब्रिज है वो कम करना पड़ेगा, क्योंकि बैक इन द डे जो जनरेशन थी 70s, 80s, 90s, इनमें जो गैप था वो चल रहा था, वो किसी ने नोटिस नहीं किया था, मगर जो एक बड़ा गैप आया वो इंटरनेट की बूम के बाद, तब जाके लोगों ने समझा अरे ये तो बहुत ही बड़ा गैप है, एंड देन अभी नज़र आ रहा है कि वो भी छोटा होता नज़र आ रहा है। डू यू ऑल्सो फील दिस वे? क्योंकि आपने भी देखा होगा आपके फादर के बीच में जो वो जनरेशन गैप होगा वो कभी नोटिसेबल नहीं था, इट्स लाइक कि हाँ यार मेरे पापा हैं, उन्होंने ये देखा है वो देखा, पर वो गैप के बारे में मेंशन नहीं होता जितना अब होता है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अब वो जो इस जनरेशन है वो कहती है कि आपको तो पता ही नहीं है, असल में वो समझते हैं कि हमें पता ही नहीं है, जबकि हम लोगों ने इसकी ग्रोथ 0 से 100 तक देखी है।

0: 8810 था मेरा ख्याल, वो छोटा सा आया था 8300, ठीक है, उस नोकिया तक का देखा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ये लोग समझते हैं कि हमने नहीं देखा हुआ, लेकिन हमने ऐसी ऐसी चीजें देखी हुई हैं, हमने सैंड गेम इतनी खेली है, वो क्या स्नेक वाली जितनी किसने नहीं खेली होगी, ठीक है। तो ये वाकई बात है कि ये लोग समझते हैं कि हमें इनसे ज्यादा नहीं पता, ठीक है। तो हम अपने माँ बाप से ये समझते थे, उन्हें नहीं पता, ठीक है। तो ये तो एक जनरेशन की चीज है जो हर कोई समझता है कि हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये शो करना है कि हाँ जी ठीक है तुम लोग सब सब कुछ जानते हो, लेकिन कौन सी चीजें सही रास्ते पे हैं, कौन सी गलत हैं, ये बताना चाहिए बस।
1: और आज के जमाने में बिकॉज माशाल्लाह आपके बच्चे हैं, तो हाउ इजी और डिफिकल्ट इट इज, क्या जेन जी से दोस्ती करने के लिए क्या टिप्स देंगे आप लोगों, अगर कोई मिलेनियल जेन जी से दोस्ती करना चाह रहा है आपका क्या मशवरा है?
0: सर 100% दोस्ती हुआ तो बहुत मुश्किल है, ठीक है, लेकिन उनको अपने साथ कंफर्टेबल जोन में लाने के लिए कि आपको उनके साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करना पड़ता है, जो कि हमारे पास बहुत कम होता है। कई लोगों के पास जॉब के साथ, लोग एक्स्ट्रा जॉब करते हैं, लोगों की शिफ्ट्स में होती हैं, ठीक है, थके हारे ज़्यादा आते हैं, लेकिन टाइम जितना आप स्पेंड कर सकें, क्योंकि आपको पता है कि मैं बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ, बीचेस पर जाना, पार्क्स में जाना। मैं ये पहली दफ़ा यूरोप अकेला गया हूँ, वरना मैं कभी अकेला नहीं गया इनके बगैर, ठीक है, ठीक है। लेकिन कहते हैं आज हम सऊदीया बॉर्डर तक ड्राइव पे गए, इस तरह यानी आपको टाइम स्पेंड करना पड़ता है उनके साथ, उनकी बातें सुननी पड़ती हैं, उनकी तरह के गाने सुनने पड़ते हैं जो कि समझ भी ना आए, लेकिन कुछ ना कुछ करना पड़ता है।
1: कुल मिला के इस दोस्ती में हमेशा एक छोटा सा वो रहेगा, गैप रहेगा, वो मेरे ख्याल में रहना भी चाहिए। एंड आप बच्चों में से कौन आपका बेस्ट फ्रेंड है?
0: देखें कहते ऐसे हैं कि जो पहली बेटी होती है अगर ना, वो बाप की कॉपी होती है, माँ की उसके अंदर खुशियात होती हैं, लेकिन गुस्सा और चीज़ें बाप की होती हैं, वो मुझे नज़र आता है। जो बेटा है मेरा, वो कहते हैं काफ़ी उसने यानी मेरे साथ टाइम स्पेंड करना शुरू किया है, हम लोग क्रिकेट भी खेल लेते हैं, फुटबॉल भी खेल लेते हैं, जाहिर बात है मेरे नी इशू की वजह से कुछ चीज़ें नहीं खेलता मैं, लेकिन फिर भी जहाँ तक हो सकता है वहाँ पर टाइम स्पेंड करते हैं। सबसे छोटे के साथ अभी तक कोई ख़ास नहीं है, लेकिन वो कोशिश बहुत करता है अपनी तरफ लाने के लिए, ठीक है, लेकिन उसके साथ माँ का ज़्यादा है या भाई का ज़्यादा है उसके, तो लेकिन ये कि बेटे के साथ और बेटी के साथ ज़्यादा है बड़े वाले।
1: ओके, तो अब काफ़ी डिप्लोमेट लेकिन काफ़ी आर्टिस्टिक वे में आपने जवाब दिया, कि जवाब भी दे दिया और नहीं भी दिया। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा तो मैं पूछना चाहूँगा, भाभी बेहतर हैं आपसे इस मामले में डीलिंग विद द जेन ज़ी, और आर यू बेटर देन हर?
0: नो ऑफ कोर्स शी इज़ बेटर, क्योंकि हमसे भी इतने साल से रह रही हैं, हमारे साथ 20 साल से हम बर्दाश्त कर रही हैं, तो ये सारी बात है बहुत बेहतर है सबसे, ठीक है, तभी वो उन्हें ही बर्दाश्त कर रही हैं, हमें ही बर्दाश्त कर रही हैं, हमारी पसंद का भी खाना बन जाता है, उनकी पसंद का भी खाना बन जाता है, इसका मतलब वो हमसे ज़्यादा समझदार हो गई हैं इस मामले में।
1: एंड आपने कौन से अतरंगी सतरंगी खाने वाने ट्राई किए, माचा वाचा ट्राई किया है, जेन ज़ी का क्या कुछ खाया आपने ऐसा जो बहुत बढ़िया लगा हो या फिर गुस्सा आ गया?
0: सबसे बहुत बुरा था वो क्रीम किस्म का, बड़ा ही बुरा था, शुक्र करे खाना बाहर नहीं आ गया। उन्होंने कहा, सबने कहा जेन ज़ी साथ गए कैसे सर माचा ट्राई करें, सर माचा माचा माचा लग रहे थे, हमारा ही माचा बन गया। मैं मेरे दोस्त सामने बैठे जो दोनों सीनियर थे, एक दूसरे की शक्ल देखते, आखिरी दफा है भाई।
1: ओके, और कुछ ट्राई किया आपने? बिकॉज बहुत सारे थीम रेस्टोरेंट्स पता नहीं क्या क्या आ गया मार्केट में, या फिर हिम्मत नहीं हो रही?
0: रेस्टोरेंट्स तो बहुत है, रेस्टोरेंट्स तो मैं सारी ट्राई करता हूँ, कोई ना कोई कैफे या किसी जगह मैं और मेरा भाई मेरी वाइफ जो है हम लोग निकल जाते हैं, तो हम लोग सैटरडे को अपना टाइम स्पेंड करते हैं बाहर जाके, तो कोई ना कोई नया कैफे या कोई चीज़ ट्राई कर लेते हैं, तो बच्चों के साथ भी जहाँ खाना अच्छा मिलता है वहाँ हम पहुँच जाते हैं।
1: ओके चलो ये बढ़िया, ये थोड़ा मैनेजेबल लग रहा है, यहाँ मामला ठीक है। एंड यूके एक वर्क कल्चर में काफ़ी सारी चीज़ देखने को मिली है, अभी प्रोफेशनल फील्ड की अगर बात करूँ तो मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ कि हर किसी का अपना अपना पर्सपेक्टिव है। आजकल जो एक चीज़ बहुत बढ़िया की है जेन ज़ी ने, वो है मेकिंग देयर ओन करियर इन अ डिफरेंट वे। हम लोग इतना फ्रीलांसर के बारे में सोचते भी नहीं थे, रूह कांप जाती थी, बट अब फ्रीलांसिंग और ओपन ये स्टार्टअप्स वगैरह काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। आपका इस पर क्या ओपिनियन है, इज इट द राइट वे टू डू इट, और आप क्या सोचते हैं इन जनरल?
0: बहुत अच्छी चीज़ है, बेहतरीन काम है, मैं अपने बेटे को भी कह रहा हूँ कि सीखे, कोई प्लेटफॉर्म ऐसा हो तो मैं ज़रूर उसे डाल के किसी के साथ सिखाऊंगा। उसको राइट वे में हम अगर इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन उसको डी ट्रैक ना होने दें, यही एक चीजें हैं जो गवर्नमेंट और दूसरे लोगों को सीखनी चाहिए कि भाई उनको डी ट्रैक ना होने दें, बाकी उसके साथ काम करना, उनके अंदर बिजनेस की अपनी चीजों को डेवलप करना बहुत जरूरी है। लेकिन ये कि जॉब करना उस लिहाज से जरूरी है कि उनके अंदर एक पंक्चुअलिटी आ जाती है।
1: एंड इन जनरल जैसे बहुत सारी जगहों पे अभी कूल कर दिया गया है कि इफ यू आर वर्किंग 9 to 5 देन इट्स अ वेरी बोरिंग थिंग, मतलब 9 to 5 कर रहे हैं तो बोर आदमी है आप। तो ये इसमें आपका क्या कहना है, बिकॉज आपने भी कहीं ना कहीं ये सब सुना ही होगा।
0: बिल्कुल सही कहते हैं, 9 to 5 में आपकी बोरिंग रूटीन हो जाती है, लेकिन आपने उस काम को अगर आपको पसंद है और आप उसके अंदर किस टेक्नोलॉजी और चीज़ों को लाते हैं तो सारी बातें उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। लेकिन अगर आप उस शिकंजे या हॉल से बाहर नहीं निकलेंगे, यानी सिर्फ उसको उसी तरह लेंगे, अपनी लर्निंग और डेवलपमेंट और ग्रोथ नहीं करेंगे, तो ऑफकोर्स इट्स 9 o'clock पहुँचेंगे, पंच इन करेंगे।

0: 5 बजे आउट करेंगे और बोलेंगे बस सैलरी आ रही है, बस चलने दो। वो पुराने जमाने में ऐसे ही चलता था, ठीक है। लेकिन अगर आपने ग्रोथ करनी है अपनी लाइफ में और आगे बढ़ना है तो आप जरूर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट तो करनी पड़ेगी। आपको पता है
1: एक पार्ट आता है मैच्योरिटी का, जहाँ पे मैं खुद लोगों से कहता हूँ कि भाई अपनी ना उम्र के हिसाब से रहो तो थोड़ा अच्छा है। दिस इज द ओनली कंप्लेंट दैट आई हैव, क्योंकि क्या है मैच्योरिटी अभी थोड़ी बूम कर रही है। आप बता ही नहीं पाएंगे कि सामने जो आपके खड़ा है वो 16-17 साल का है कि 25-26 साल का है। व्हाट डू यू हैव टू से इस पे, क्या बोलेंगे वो भाई? आपको भी दिखता होगा ऐसा।
0: चल मेरे अभी तक बेगम को मेरी अम्मी कहती है चारों बच्चे कैसे हैं, 3+1। तो मैंने अपनी लाइफ को हमेशा हंसते खेलते रखा है। वो ऑफिस वाले भी कहते हैं तुम बड़ा हंसते खेलते रहते हो। मैंने कहा देखो अगर रोते ही जिंदगी गुजारनी है तो वैसे ही बड़ी टेंशन है जिंदगी में। हर किसी को पैसे की टेंशन है, हर किसी को किसी के आगे जाने की टेंशन है, उसकी प्रमोशन क्यों हो गई है टेंशन है, ठीक है। लेकिन हम लोगों को अगर हम लोग अगर आपस में खुश रहेंगे ना तो हम कुछ ना कुछ डेवलप कर लेंगे। तो लेकिन ये कि अगर आप सोचें कि हम लोगों के अंदर वो जो पुराने और नए का डिफरेंस हम लेके चलते रहेंगे तो कभी भी नहीं बदल सकेंगे हम लोग।
1: ओके, तो ये जो दोस्ती होती है अभी आपको लगता है कि आज के ज़माने में मैटर करता है कि आपके दोस्त कितनी एज के हैं या सेम एज के दोस्त बनाना ही ज़रूरी है? ये इसका आपकी क्या सोच है इस बात पे?
0: मैटर तो नहीं करता, जहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग और डेवलप पैदा हो जाए तो चल जाता है। लेकिन ये होता है कि आप जेंजीज के साथ दोस्ती इसलिए ज्यादा नहीं कर सकेंगे क्योंकि अगर आप यहाँ पे बैचलर हैं तो शायद आपकी नौकरी चल उनके साथ काम चल जाए क्योंकि या फैमिली ना हो। अगर आपकी फैमिली यहाँ है और जेंजी से दोस्ती कर ली वो तो रात को 12 बजे ही बाहर निकल जाएगा, आप कैसे निकलेंगे, ठीक है। तो वो आपका बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। अगर आपको फ्राइडे को मैं कॉल कर दूं गेम से उठ के आ जाएं तो कैसे चलेगा, नहीं चलेगा। तो वो ये कई लोगों का चलता रहता है ऐसा ही।
1: ओके, एंड लास्टली मैं जानना चाहूंगा ऑनलाइन फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा है, राइट? हमारे टाइम पे हमें एक ज्यादा डर नहीं रहता था कि ठीक है, हमें वो पता था कि ठीक है मोर कुट शोर कुट था तो चल जाता था काम। अभी ऑनलाइन फ्रेंडशिप हैज कम टू अ लेवल जहाँ पे इट इज इक्वली रियलिस्टिक। इनफैक्ट मिलना अभी बहुत आसान है। इनफैक्ट पहले वहां मिल रहे होते हैं लोग, फिर यहाँ मिल रहे होते हैं, या आप असल जिंदगी में मिलते हैं तो आपको वहां पे मिलना ही पड़ेगा कि कैसे ऐड नहीं किया मुझे। तो ये जो गैप है ये आपके अराउंड भी है या आपने मैनेज करके रखा है? हाउ डू यू मैनेज दिस? कोई नजर रखते हैं क्या करते हैं?
0: वैसे तो मैनेज करते हैं, कोशिश करते हैं कि बच्चों को लोगों को मिलना ज्यादा जरूरी है ना कि ऑनलाइन, बिकॉज ऑनलाइन 70-80% लोग फेक ही होते हैं। जारी बात है आपको कोई ना कोई बनावट बनाई होती है। तो बच्चों को इस बात का बिल्कुल बताना चाहिए कि भाई ये चीज़ जो आप देख रहे हो सब कुछ रियलिस्टिक नहीं होता है, रियल लाइफ में बहुत चीज़ें डिफरेंट होती हैं। तो अगर आप किसी को मिल रहे हो फिजिकली या ऑनलाइन बात कर रहे हो, वो कह रहे हैं ना अगर मैं यूके गया हुआ हूँ तो यूके गया हुआ नहीं गया हुआ ये आपको नहीं पता, चैट जीपीटी से फोटो भी आ जाएगी यूके की, ठीक है, लेकिन वो यूके में नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको हर चीज़ किसी के मुकाबले में जाने की ज़रूरत नहीं है, अपनी मेहनत पर अपने आपको इम्प्रूव करोगे तो खुद ही सब कुछ हासिल हो जाएगा और लोग आपको खुद ही फॉलो करेंगे, खुद ही बात करेंगे, आपके आगे पीछे खुद ही लोग होंगे।
1: और फवाद भाई आपके लिए ज़रूरी है क्या कि आपसे अगर कोई मिला है तो आपके इंस्टाग्राम पे भी होना ज़रूरी है? मतलब आपका बहुत ही खास मुखास दोस्त, ऐसा नहीं कोई रैंडम, आप कोई दोस्त है तो क्या ज़रूरी है कि सोशल मीडिया पे हो आपके साथ या फिर आपको चलता है?
0: नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो इंस्टाग्राम जैसे आपने कहा ना चैट ग्रुप्स, आप ऑर्कड के ज़माने के हैं, हम MIRC के ज़माने के, ठीक है। तो और तो इसलिए वो जो हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं, मैं इंस्टाग्राम में मेरे ख्याल बहुत लिमिटेड लोग हैं, इसी तरह टिकटॉक मेरे दोस्त ने डाल के दिया था वो भी बहुत लिमिटेड लोग हैं। मेरे फेसबुक पे मैं कभी कभार ही ऑनलाइन जाता हूँ, देखता हूँ कौन रिक्वेस्ट आई है कौन नहीं आई है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बंदा अच्छा है, जेन्युइन है, ऑनेस्ट है, आपके साथ सिंसियर है, ठीक है, सिर्फ आपके लिए किसी मकसद से नहीं जुड़ा हुआ ना, तो बस That's it. He is good enough.
1: आँखों का डर है घर पे आपका किसी का भी या फिर हट चुका है वो एकदम, मतलब it doesn't exist?
0: किसका सर?
1: आपके आँखों का डर बच्चों में कभी रहा है या भाभी का, हमारी बहन का, किसी का डर रहा है कभी?
0: वो मेरा है।
1: और क्या बात कर रहे
0: हो? अरे वो भी मेरा छोटा बेटा, बड़ा बेटा, बेटी, उनको पता है कि बाबा अगर कहीं महफिल में बैठे आँख दिखा दी है तो उसका मतलब हमने कोई गलत चीज कही है, तो हम नोटिस करें।

0: और फहद भाई, मैं ये तो सीधा सीधा कॉम्प्लीमेंट है, मुंह पे तारीफ नहीं करनी चाहिए, मगर जिस तरीके से आप बहुत ही आर्टिकुलेट वे में बात करते हैं, बहुत ही काबिल तारीफ है। इट शोज के आपके अंदर एक बहुत ही शानदार ओरेटर है। अपने थॉट्स और व्यूज आगे रखना एक बहुत बड़ी बात होती है और ये बहुत कम लोगों में होती है, सो कुडोस टू दैट। और बाकी आप जो अकेले शादी के बाद बैचलर जिंदगी जीने यूरोप गए थे, उसके लिए मैं अभी भी चलता हूँ आपसे, तो उसका कुछ कर नहीं सकते। तीसरी चीज यही है कि थैंक यू सो मच कि आपने वक्त निकाला। आई एम प्रीटी श्योर कि जो आपका वक्त मैंने लिया है इस वक्त, आप बहुत कुछ कर लेते हैं अभी घर पे, बट मेरी तरफ से सबको सलाम और प्यार दीजिएगा भाई।
1: मुझे ड्रामे किस तरह रह गए, बस वही जाकर
0: ओके अपने ड्रामा देखिए, एंजॉय योरसेल्फ, सबको सलाम कहिएगा मेरे भाई, बहुत प्यार आपको हमेशा की तरह।
1: वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया सर,
0: बहुत शुक्रिया भाई, आप सब अपना ख्याल रखिए क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
4: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी,
5: मिले मिले दिल मिले, तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले, जब दिल मिले तब गुल खिले, जब दिल खिले तब दिल मिले, मिले मिले मिले मिले दिल मिले,

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: Assalamualaikum, आप सुन रहे हैं कल्चर मोमेंट। मैं हूं आपकी आरजे महावश। इस 5 मिनट के सफर में हम बात करेंगे कतर की खूबसूरत सकाफत, रिवायत और विरसे की। यहाँ हर रसम, हर लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है। आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस विरसे को अगली नस्लों तक पहुँचाने का अहद करें। कतरी खवातीन का रिवायती लिबास खूबसूरती, शराफत और सकाफती पहचान का हिस्सा है। इस लिबास में सादगी, सलीका और खूबसूरत तरतीब नजर आती है। मौका, घर के माहौल और जाती पसंद के मुताबिक इसके रंग, कपड़े और अंदाज मुख्तलिफ हो सकते हैं। कतरी खवातीन के रिवायती लिबास में अबाया को खास अहमियत हासिल है। एक लंबा और खुला लिबास होता है जो अक्सर दूसरे कपड़ों के ऊपर पहना जाता है। अबाया अपनी सादगी, वकार और आराम की वजह से मशहूर है। इसके कपड़े नक्श, सिलाई और सजावट में मुख्तलिफ अंदाज देखे जा सकते हैं। अबाया हमेशा एक ही शक्ल का नहीं होता। कुछ अबाए सादा और एक रंग के होते हैं, जबकि कुछ में मुख्तलिफ खूबसूरत कढ़ाई, बारीक नक्श या मुख्तलिफ कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है। आज के दौर में रिवायती अंदाज और जदीद डिजाइन एक साथ नजर आते हैं। अबाये के साथ शैला भी पहना जाता है। शैला एक लंबा दुपट्टा होता है जो सर को ढांपने

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: क्रिकेट हो
2: and he's hooked that away. That's four runs.
1: फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में।
3: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
1: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप विद अवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन एवरी ट्यूसडे एट 1 PM।
3: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स की।
4: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है, इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी, यह हबले मतीन है कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दें। हर हफ्ते इतवार से जुमेरात सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर।
5: वक्त रुका नहीं है, वो तो नए रास्ते बना रहा है। क्या आप तैयार हैं उस कल के लिए जो आज शुरू हो चुका है? पेश करते हैं नेक्स्ट जेन आरजे सफा और आरजे अमिता के साथ एक ऐसा सफर जो है आपकी क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर का नया ब्लूप्रिंट। सिंपल स्टाइल, बिग इंपैक्ट, पर्सनल ग्रोथ हो या टेक रेवोल्यूशन, अपने आइडियाज को दीजिए एक नई पहचान, बनिए कल का चेहरा आज ही। सुनिए नेक्स्ट जेन आरजे सफा और आरजे अमिता के साथ हर संडे शाम 5 बजे से FM 107 पर। दिल से देसी।
0: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
6: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। सामीने किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। सामीने किराम, कभी आपने एक मरतबा अचानक से सच बात कह दी तो ये आसान है, लेकिन हर हाल में सच का साथ देना, जब सच बोलने से अपना नुकसान नजर आ रहा हो, जब गलती मानने से अपनी कमजोरी जाहिर हो रही हो, जब झूठ बोलकर

0: किसी मुश्किल से आसानी से निकला जा सकता हो, जब कारोबार में हकीकत छुपाने से ज्यादा मुनाफा मिल सकता हो, तब सच बोलना ये किरदार का इम्तिहान बन जाता है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चाई को लाजिम पकड़ो, अलैकुम बिस्सिद्क फइन सिद्क यहदी इलल बिर, क्योंकि सच्चाई नेकी की तरफ ले जाती है, वइन अल बिर यहदी इलल जन्ना, और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है, वइन अर्रजुल ला यसदुक व यतहर्रस सिद्क हत्ता युक्तब इंदल्लाह सिद्दीका, इंसान मुसलसल सच बोलता है और सच्चाई की जस्तजू करता रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह के यहाँ उसे सिद्दीक लिख दिया जाता है। वयाकुम अल-कذب, और झूठ से बचो, فإن الكذب يهدي إلى الفجور, क्योंकि झूठ गुनाह और बदकारी की तरफ ले जाता है, وإن الفجور يهدي إلى النار, और गुनाह जहन्नम की तरफ ले जाता है, وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا, इंसान मुसलसल झूठ बोलता और झूठ ही को इख्तियार करता रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह के यहाँ उसे झूठा लिख दिया जाता है। समझ के नाम जरा हदीस की तरतीब देखिए, सच नेकी फिर जन्नत, और दूसरी तरफ झूठ फजूर तो जहन्नम, यानी एक एक लफ्ज आपको एक एक सिमत में ले जा रहा है। अगर हम बच्चे को इस तरह कहें कि भाई कह दो अब्बू घर पर नहीं, हालांकि आप उनके सामने बैठे हैं, तो हमने शायद चंद सेकंड की आसानी हासिल कर ली, लेकिन बच्चे को क्या सबक दिया कि मुश्किल से निकलने के लिए हकीकत बदली जा सकती है। फिर अगर कल वो अपने किसी मामले में यही उसूल इस्तेमाल करे तो हमें हैरान नहीं होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की जबान सच्ची हो, उन्हें अपने बड़ों की जिंदगी में सच्चाई नजर आनी चाहिए। सच्चाई सिर्फ ज़ाती गुफ्तगु तक महदूद नहीं, खरीदो फरोख्त में, इश्तिहार में, अपनी काबिलियत बयान करने में, रिपोर्ट में, काम के औकात में भी सच। किसी चीज़ में ऐब हो तो उसे छुपाना नहीं, जो काम नहीं किया उसे क्या हुआ जाहिर न करना, जो इल्म नहीं उसका दावा न करना। मोमिन की सच्चाई मस्जिद के दरवाजे पर ख़त्म नहीं होती, ये उसके साथ बाजार, दफ्तर और घर तक जाती है। इस बात को जहन नशी कर लीजिए। सामने किराम, आज एक लम्हे के लिए हम खुद अपने आप से पूछें, लोग मेरे लफ्ज़ पर कितना एतमाद करते हैं। अगर मैं कहूं कि मैं आऊंगा, क्या लोग यकीन कर लेते हैं? अगर मैं कहूं मैंने ये काम कर दिया है, क्या ये बात काफ़ी समझी जाती है? अगर मैं कोई ख़बर सुनाऊं, क्या लोग इस बात की यकीन कर लेते हैं कि हाँ भाई इसकी बात काफ़ी सच्ची होगी, ये ख़बर यकीनी है? तो दरअसल ये एतमाद बहुत बड़ी दौलत होती है, और उसे हासिल करने का रास्ता एक ही दिन में तय नहीं होता। सामिन किराम, इसी तरह आज की रूह परवर सुन्नत हमें एक बहुत बड़ी हकीकत समझा गई कि इंसान वही बनता जाता है जो वो बार बार करता है। बार बार सच तो सच्चाई के तार बन जाती है, बार बार झूठ तो झूठ शख्सियत में उतरने लगता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने दोनों रास्तों की मंजिल वाज़ह कर दी, फ़इन्न सिद्क़ यहदी इलल बिर वइन्नल बिर्र यहदी इलल जन्ना, सच नेकी की तरफ ले जाता है और नेकी जन्नत की तरफ। तो आज से ये अहद कीजिए कि सच्चाई को हर वक्त तलाश करूंगा, इसका अहतमाम करूंगा और उसे अपने किरदार की पहचान बनाऊंगा। अल्लाह ताला हमें सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर करने, उसे समझने और मोहब्बत के साथ अपनी जिंदगियों में उन्हें नाफिज करने की तौफीक अता फरमाएं। इसी दुआ के साथ प्रोग्राम रूह परवर सुन्नत के आज के हलके से तकनीकी मुआविन शकील अहमद और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए, सुन्नतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते रहिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
1: कतर्स मोस्ट हर्ड रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम, मैं दुआ वाला कबीर एफएम 107 पे एंड वेलकम टू अनदर टेक अपडेट। ये बोलने के लिए मैंने कितना वेट किया बता आपको, टेक अपडेट। तो शुरू करते हैं सबसे पहले वेबसाइट से, ऑफ कोर्स कुछ बहुत ही जबरदस्त एआई टूल्स एंड वेबसाइट जो आपके काम आएंगे, एंड देन टुवर्ड्स द न्यूज। तो नंबर वन ऑन द लिस्ट टुडे इज एन अमेजिंग वेबसाइट जहां पर आप अपना क्यूआर कोड बना सकते हैं। अब आप बोलेंगे ये तो कोई भी बता सकता है, पर क्यूआर कोड को और भी इंटरेस्टिंग बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपको टाइप करना है एड्रेस बार में tree.icqr.com, tree TREE, पेड़ वाला tree, .icqr.com, और सी वो अल्फाबेट वाला सी। जब अभी टाइप करेंगे आपके सामने एक वेबसाइट आएगी जहां पर आप जो है खूबसूरत बारकोड बना सकते हैं, और इन बारकोड की खास बात यह है कि आप इनको एक ट्री की तरह मैनेज कर सकते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। आप इसको 3D मॉडल जब स्पिन करेंगे तो उसमें कोई सा भी कलर दे सकते हैं, कैसा भी कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप कोई ऐसी जगह बारकोड ये पेस्ट करने वाले हैं जो आपका पैम्फलेट है, या फिर आप रेस्टोरेंट चलाते हैं, या फिर आप ऐसी फैंसी तरीके से अपने घर में कहीं पोस्ट करना चाहते हैं जहां से लोग वाईफाई आपका यूज कर सकें, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। पर यहां से बारकोड आप बहुत ही खूबसूरत तरीके से बना सकते हैं। इस तक में भाई कस्टमाइजेशन आ चुकी है। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू अनदर वन। अगली वेबसाइट है cleverhumanizer.ai। मैं बताता हूँ इसकी स्पेलिंग, क्लेवर वो चालाक वाला क्लेवर, सो CLEVER, फिर ह्यूमनाइजर HUMANIZER, cleverhumanizer.ai। जो इसका नाम है वही इसका काम है। बेसिकली आप किसी भी अगर AI से कुछ भी पूछते हैं, आपको वो AI जनरेटेड टेक्स्ट देता है, जो कि

पता लगता है और पकड़ा भी जाता है कि भाई हाँ ये पक्का AI से निकाला है, मगर उस टेक्स्ट को अगर आप इस वेबसाइट पे पेस्ट करेंगे तो ये एक ह्यूमनाइज्ड वर्जन ऑफ द सेम टेक्स्ट आपको देगा, तो ऐसा लगेगा कि भाई किसी

अगली वेबसाइट का नाम है एफ एम एच वाई, ये अल्फाबेट्स हैं fmhy.net. जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको सब कुछ आपकी नजरों के सामने आ जाएगा. क्या क्या ये आपको बताता हूँ, सारे के सारे टूल्स, सारे के सारी वेबसाइट्स. आपको गेमिंग वेबसाइट चाहिए, गेमिंग वेबसाइट मिल जाएगी. स्ट्रीम करने के लिए, स्ट्रीम करने के लिए मिल जाएगी. AI चाहिए, AI मिल जाएंगे. आपको टूल्स चाहिए इमेज नॉट ओनली जनरेशन बट एडिट करने के लिए, वीडियो एडिट करने के लिए, कैसे भी, वो सारे के सारे लिस्ट बाय लिस्ट आपके सामने आते चले जाएंगे. बहुत बड़ा कलेक्शन है इस वेबसाइट पे, विच आई रियली रियली लव. आई थिंक ये बहुतों के काम आने वाली, तो मैंने कहा ये तो मैं जरूर बताऊंगा. सो एफ लाइक अ फैन, एम लाइक इन मंकी, एच लाइक इन हॉर्स, एन वाई एज इन यंकी या वाई एज इन याक, fmhy.net. ओके, अब बढ़ते हैं जरा खबरों की तरफ. ऑलराइट, तो अभी बहुत सारी खबरें आ रही हैं ओपन AI से जुड़ी हुई. तो ओपन AI का जो नेक्स्ट मॉडल फेस है वो थोड़ा टफ बनाने की कोशिश की जा रही है. एक अनरिलीज्ड वर्जन है एस्ट्रा मॉडल, जो बहुत बहुत पावरफुल है, और बताया जा रहा है कि वो ऑटोनोमस आइडेंटिटी और पोटेंशियली साइबर सिक्योरिटीज की जो वल्नरेबिलिटीज है उनको भी थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बना सकता है. अभी डेवलपमेंट जारी है भाई, कोई बच के निकल को नहीं पाएगा. ये बहुत बढ़िया चीज बनने वाली है एंड दिस विल कम इन प्लेस. इसके अलावा टिम कुक की खबर आई है, जो कि एप्पल के लीडर हैं, और टिम कुक अब एप्पल के सीईओ नहीं रहे. आई नो ये खबर जिनको पता है बहुत बढ़िया, मगर उनके 15 साल के करियर के बाद लीडिंग एज द सीईओ ऑफ एप्पल, अब जॉन टर्निस टेक ओवर कर चुके हैं. और इमीडिएट चैलेंज उनके लिए यही होगा कि भाई कुछ बदले और ये जो गैप है ये आएगा वो तो मिटाएं, साथ में कुछ नया डिजाइन लेके आ जाओ मलिक. तो ये थी टेक अपडेट. मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर दिल से देसी.

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।
1: दोस्तों, साइकिल चलाते वक्त ट्रैफिक रूल्स पर अमल करना हर साइकिलिस्ट की जिम्मेदारी है। जब हम ट्रैफिक लॉज को फॉलो करते हैं तो हम अपनी और दूसरों की जान की हिफाजत करते हैं। साइकिल चलाना एक सेहतमंद और एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटी है, लेकिन अगर ट्रैफिक रूल्स को नजरअंदाज किया जाए तो ये काफी खतरनाक भी हो सकती है। पहले तो ट्रैफिक सिग्नल्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब आप रेड लाइट देखते हैं तो रुकना और ग्रीन लाइट पर चलना जरूरी है। अगर साइकिलिस्ट रेड लाइट के रूल को इग्नोर करते हैं तो ये उन्हें एक्सीडेंट के लिए एक्सपोज कर सकता है, खास तौर पर जब व्हीकल्स तेज रफ्तार से आ रहे हों। इसके अलावा साइकिल को हमेशा लेन के अंदर चलाना चाहिए। अक्सर साइकिलिस्ट फुटपाथ या गलत लेन में साइकिल चलाने लगते हैं, जो ना सिर्फ उनके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खतरा होता है। हेलमेट्स का इस्तेमाल भी जरूरी है। हेलमेट्स सिर्फ साइकिलिस्ट की सेफ्टी के लिए नहीं बल्कि उनकी जिंदगी को भी बचाने में मददगार होते हैं। अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो हेलमेट सर पर लगने वाली चोट से बचाता है। इसके अलावा हैंड सिग्नल्स का इस्तेमाल करके हम अपने इरादे दूसरों तक आसानी से पहुंचाते हैं, जो काफी जरूरी है, खास तौर पर जब टर्निंग या लेन चेंज करते हैं। साइकिलिस्ट को हमेशा अपने सराउंडिंग्स का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर आप एक बिजी रोड पर साइकिल चला रहे हैं तो आपको दूसरे व्हीकल्स, पेडेस्ट्रियंस और रोड कंडीशन का भी बारीकी से अंदाजा लगाना चाहिए। इससे ना सिर्फ आप अपनी सेफ्टी इंश्योर कर सकते हैं बल्कि दूसरों को भी सेफ रख सकते हैं। अगर हम सब ट्रैफिक रूल्स का ध्यान रखें तो हम अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को काफी सेफ रख सकते हैं और रोड सेफ्टी को प्रमोट कर सकते हैं। FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है।
2: ए बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो? दुआ को हकीर समझते हो? हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते। अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामीन किराम, हमारी आज की दुआ है पहले वालिद इंसानियत के जद्द अमजद आदम अलैहिस्सलाम की दुआ, जब उन्होंने खता के बाद अपने रब के हुजूर तौबा की थी। ये दुआ आदम अलैहिस्सलाम और उनकी जोजा हव्वा की है, जब उन्होंने शैतान के वसवसे में आकर अल्लाह सुबहानहु ताला के हुक्म की खिलाफ वर्जी की तो फौरन नादिम होकर आजिजी के साथ अल्लाह के हुजूर झुक गए और कहा,

0: FM 107 presents Your Health Matters. Your Health Matter with RJ Shruti.
1: कभी नोटिस किया है हम बर्थडे रिमाइंडर सेट करते हैं, ईएमआई रिमाइंडर सेट करते हैं, मोबाइल रिचार्ज रिमाइंडर भी सेट करते हैं, पर अपनी बॉडी के लिए बस अज्यूम कर लेते हैं सब ठीक ही तो लग रहा है और यहीं से कंफ्यूजन स्टार्ट होती है। आज हम बात कर रहे हैं रूटीन हेल्थ चेकअप्स की और मैं आपसे एक सिंपल सी बात शेयर करना चाहती हूँ। हेल्थ चेकअप्स का मतलब प्रॉब्लम ढूंढना नहीं होता, हेल्थ चेकअप्स का मतलब

0: ऑफ माइंड. सोचिए जब आप फ्लाइट में बैठे हो और पायलट कहता है एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, कितना रिलैक्स फील करते हैं ना आप. बस वही वाली जो फीलिंग है वो हेल्थ चेकअप समय देती है. अक्सर लोग बोलते हैं मुझे कुछ दर्द नहीं है, कुछ अनयूजुअल फील नहीं हो रहा है, पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि बॉडी हमेशा पेन के थ्रू बात नहीं करती. कभी वो सिर्फ नंबर्स के थ्रू बात करती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये सब इंडिकेटर्स होते हैं जो अर्ली स्टेज में सिर्फ रिपोर्ट में ही दिखते हैं और उसके बाद डे टू डे लाइफ में दिखना स्टार्ट होते हैं. रूटीन चेकअप्स का फायदा ये होता है कि आप सरप्राइजेस से बच जाते हो. आप सडनली ओह नो इस स्टेज तक पहुंच गए ये नौबत नहीं आने देते हो. और सबसे अच्छी बात, जब चीज टाइम पर पकड़ में आ जाती है तो सॉल्यूशंस भी बड़े सिंपल होते हैं. थोड़ा सा बस अपने खान पीन में चेंज कर लो, मूवमेंट्स कर लो, रूटीन एडजस्टमेंट कर लो, कोई पैनिक नहीं, कोई हैवी ट्रीटमेंट नहीं और सब कुछ अलाइन हो जाता है. और ये सब फिजिकल हेल्थ तक के लिमिटेड नहीं है. आजकल के चेकअप्स में डॉक्टर स्लीप, स्ट्रेस और लाइफस्टाइल्स के बारे में भी आपसे पूछते हैं. मतलब आप अपनी बॉडी के साथ एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हो. ये आइडिया भी गलत है कि चेकअप सिर्फ एल्डर्स के लिए होते हैं. आज की फास्ट लाइफ में जहाँ पे लेट नाइट्स हो रही है, स्क्रीन टाइमिंग इतना बढ़ चुका है, इररेगुलर मील्स हो रहे हैं, यंग बॉडीज भी काफी ओवरलोड हो रही है, तो हम जैसे लोगों को भी, आपको और मुझे भी रूटीन चेकअप्स कराते रहना चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके का सेल्फ चेक इन होता है. जैसे आप किसी क्लोज फ्रेंड से पूछते हो ना सब ठीक चल रहा है, बस वही सवाल आपको अपनी बॉडी से पूछना है. और जब आंसर हाँ आता है तो दिल हल्का हो जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और हेल्थ को लेके अननेसेसरी टेंशन कम होती है. तो नेक्स्ट टाइम जब आप कैलेंडर देखें तो एक छोटा सा स्लॉट अपनी हेल्थ के नाम भी रखिए, क्योंकि रूटीन हेल्थ चेकअप्स फेयर का साइन नहीं, केयर का साइन होता है. और जब आप केयर करते हो ना तो बॉडी भी आपका साथ देती है, एनर्जी के साथ, क्लैरिटी के साथ और एक प्यारा सा सुकून के साथ. इसलिए याद रखिए, रूटीन हेल्थ चेकअप्स मतलब अपनी बॉडी को ये कहना आई हैव गॉट यू एंड योर हेल्थ मैटर.
1: FM 107 presents Your Health Matter with RJ Shruti.

करते हैं 1976 की। 1976 में बेदी को इंडियन टेस्ट टीम का कप्तान भी बनाया गया और उनकी कप्तानी में इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज जीती और उनकी लीडरशिप ने उनकी पर्सनालिटी का एक और पहलू सामने रखा। लेकिन बेदी की सबसे खास बात उनकी क्रिकेटिंग ऑनेस्टी थी, ईमानदारी। वो सिर्फ अपनी टीम के लिए नहीं बल्कि गेम के लिए खड़े होते थे। उन्होंने अपने करियर में स्पोर्ट्समैनशिप और फेयर प्ले को बहुत अहमियत दी। क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद भी बेदी ने गेम से रिश्ता नहीं तोड़ा। वो कोच, कमेंटेटर और मेंटोर के तौर पर क्रिकेट से जुड़े रहे और नए प्लेयर्स को स्पिन बॉलिंग के बारे में अपना इल्म जो है वो ट्रांसफर करते थे कि भाई सीखो, ऐसे ही बॉल करो, ऐसे गेंद फेंको। हरभजन सिंह वाज द बेस्ट एग्जांपल। उनकी लेगेसी सिर्फ उन 266 टेस्ट विकेट्स तक महदूद नहीं। बिशन सिंह बेदी ने इंडियन क्रिकेट को यह सिखाया कि बॉलिंग सिर्फ पेस और पावर का नाम नहीं, कभी कभी एक धीमी हवा में तैरती हुई गेंद भी बैट्समैन की पूरी दुनिया हिला सकती है। और बेदी की जिंदगी क्रिकेट के लिए जुनून, डिसिप्लिन और इंडिविजुअलिटी की मिसाल है। एक ऐसा बॉलर जो बैट्समैन को डरा कर नहीं बल्कि उन्हें कंफ्यूज करके आउट करता था, दैट वाज बिशन सिंह बेदी। और इसीलिए बिशन सिंह बेदी का नाम इंडियन क्रिकेट की तारीख में हमेशा एक खूबसूरत स्पिन के साथ याद किया जाएगा। दोस्तों, बिशन सिंह बेदी की कहानी हमें ये बताती है कि क्रिकेट में कामयाबी सिर्फ टैलेंट से नहीं मिलती, उसके लिए सब्र चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए और अपने हुनर पर यकीन चाहिए। बेदी ने अपनी बॉलिंग से विकेट्स हासिल किए लेकिन अपनी पर्सनालिटी और स्पोर्ट्समैनशिप से क्रिकेट फैंस के दिल जीत लिए। उम्मीद है आपको हमारा आज का यह स्पोर्ट्स सेगमेंट पसंद आया होगा। अगली बार एक और नए स्पोर्ट्स लेजेंड की कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। खुश रहें, सेहतमंद रहें और हमेशा अपना जज्बा जिंदा रखें। फी अमानिल्लाह।

वेलकम टू अवर सेगमेंट कॉल स्मार्ट मनी. मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट नासिया. आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं द साइकोलॉजी बिहाइंड इंपल्सिव बाइंग. हम सब ने ना कभी ऐसी शॉपिंग जरूर की होगी जहां हम किसी चीज को बिना प्लानिंग के खरीदते हैं और बाद में सोचते हैं आह मुझे तो इसकी जरूरत ही नहीं थी. और इसी बिहेवियर को इंपल्सिव बाइंग कहा जाता है. देखिए इंपल्सिव बाइंग का मतलब है ऐसी चीजों को खरीदना जिनकी हमको जरूरत नहीं है. ये सिर्फ शॉपिंग का मसला नहीं है, ये साइकोलॉजी से इसका ताल्लुक बहुत ज्यादा डीप है. अब मैं आपको समझाती हूँ कैसे. देखिए इंपल्सिव बाइंग तब होती है जब हम इमोशन की बुनियाद पर डिसीशंस लेते हैं, लॉजिक की बुनियाद पे नहीं. हमारा जो ब्रेन है ना, या यूं कहें जो ह्यूमन ब्रेन है, वो दो सिस्टम्स पर काम करता है. एक इमोशनल सिस्टम जो इंस्टेंट हमें प्लेजर देता है और दूसरा रेशनल सिस्टम जो सोच समझकर फैसला करता है. जब हम इंपल्सिव शॉपिंग करते हैं इमोशनल सिस्टम जीत जाता है और कहीं ना कहीं रेशनल थिंकिंग पीछे रह जाती है. और इसका सबसे बड़ा जो ये शॉपिंग करने का जो सबसे बड़ा फायदा हमें समझ में आता है वो है फील गुड केमिकल यानी डोपामाइन इफेक्ट. और ये हमारा ब्रेन जो है वो बताता है कि इसे करके तुम एक्साइटेड हो, तुम खुश हो, तुम हैप्पी फील कर रहे हो. तभी तो आप देखिए जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या ऐप खोलते हैं, सेल देखते हैं या कोई नई चीज खरीदते हैं, ब्रेन ऑटोमेटिकली डोपामाइन रिलीज करता है और हमें एक तरह की टेम्परेरी खुशी मिलती है. और शायद इसी खुशी के लिए लोग बार बार शॉपिंग करते हैं. मिसाल के तौर पे जैसे मेरे ऑफिस में अगर मैं कहूँ तो सारा ऑफिस में स्ट्रेस फील कर रही थी. लंच ब्रेक में वो ऑनलाइन शॉपिंग ऐप उसने ऑन किया और देखते देखते एक बहुत ही कमाल का एक ब्रांडेड हैंडबैग उसने परचेज कर लिया. हालांकि उस बैग की उसको बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी क्योंकि मैं जानती हूँ कि उसके पास कुछ नहीं तो 8-10 बैग्स तो थी. लेकिन फौरन ऑर्डर कर देना, ले लेना और मूड अपना बेहतर कर लेना, ये एक इमोशनल एक साइकोलॉजी है. कुछ घंटों के बाद वही चीज, वही एक्साइटमेंट जो है वो खत्म हो जाता है और फिर शायद हमें एहसास होता है कि हमने पैसे अननेसेसरीली या यूं ही वेस्ट कर दिए. एक और चीज मैं आपको बताऊंगी, कहीं ना कहीं इमोशनल ट्रिगर भी इम्पल्सिव बाइंग को बढ़ाता है. जैसे स्ट्रेस हुआ शॉपिंग कर ली, सैडनेस है शॉपिंग कर ली, बोर्डम है शॉपिंग कर ली, लोनलीनेस का शिकार है शॉपिंग कर ली, एंजाइटी के वक्त भी लोग शॉपिंग करते हैं और उसे बकायदा थेरेपी समझते हैं और इसीलिए रिटेल थेरेपी भी उसे कहा जाता है. जी हाँ, लेकिन ये रिलीफ बहुत ही टेम्परेरी होता है जबकि फाइनेंशियल बर्डन बड़ा परमानेंट. मार्केटिंग कंपनीज भी साइकोलॉजी को अच्छी तरह से समझ गई हैं. तभी तो आपने ये वर्ड सुन रखे हैं जैसे सेल, फ्लैश सेल, ओनली 2 आइटम्स लेफ्ट, लिमिटेड ऑफर, 50% ऑफ फॉर टुडे. ये ऐसे ऐसे मैसेजेस हैं जो अर्जेंसी को क्रिएट करते हैं और हमें लगता है कि अगर हमने अभी परचेज नहीं किया तो शायद इस अपॉर्चुनिटी को हम हमेशा के लिए खो देंगे. और शायद यही फिनोमेना फोमो कहलाता है यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट. देखिए सोशल मीडिया भी कहीं ना कहीं इंपल्सिव बाइंग का एक बड़ा फैक्टर है. जब हम इन्फ्लुएंसर्स को लेटेस्ट गैजेट्स, लक्जरी प्रोडक्ट्स और फैशनेबल आउटफिट यूज करता देखते हैं तो हम कोई भी नॉन एसेंशियल आइटम खरीदने से पहले 24 आवर रूल जरूर फॉलो कीजिए. अपने आप से पूछिए क्या मुझे वाकई इसकी जरूरत है. बजट बनाइए, शॉपिंग लिस्ट के बगैर शॉपिंग ना करें और इमोशनल स्टेट में या फिर ऑनलाइन स्टोर से शॉपिंग करने से बचिए. आखिर में बस जाते जाते यही कहूंगी कि इंपल्सिव बाइंग सिर्फ पैसे का मसला नहीं है, ये इमोशन और बिहेवियर का मसला है. जब हम अपनी फीलिंग्स को समझना और कंट्रोल करना सीख लेते हैं तो हम बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस ले पाते हैं. याद रखिए टेम्परेरी हैप्पीनेस के लिए की गई इंपल्सिव शॉपिंग अक्सर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेस का सबब बन जाती है. बस खुद को इससे बचाना.

0: फिलहाल आज के लिए दोस्तों इतना ही. मुझे यानी नासिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए. देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी.
1: Maximum music, maximum fun.
2: On FM 107, Dil Se Desi.

0: FM 107 से अब पेश खिदमत है तिलावत कलाम पाक। मतलूआ आयात का उर्दू तर्जुमा तिलावत के फौरन बाद पेश किया जाएगा।
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

लोग अल्लाह की पैदा की हुई किसी चीज को भी नहीं देखते कि उसका साया किस तरह अल्लाह के हुजूर सजदा करते हुए दाएं और बाएं गिरता है। सब के सब इस तरह इजहार इज्ज कर रहे हैं। जमीन और आसमानों में जिस कदर जानदार मखलूकात हैं और जितने मलाइका, सब अल्लाह के आगे सरबसुजूद हैं। वो हरगिज सरकशी नहीं करते, अपने रब से जो उनके ऊपर है डरते हैं और जो कुछ हुक्म दिया जाता है उसी के मुताबिक काम करते हैं। अल्लाह का फरमान है कि दो खुदा न बना लो, खुदा तो बस एक ही है, लिहाजा तुम मुझी से डरो, उसी का है वो सब कुछ जो आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, और खालिसन उसी का दीन सारी कायनात में चल रहा है। फिर क्या अल्लाह को छोड़कर तुम किसी और से तकवा करोगे? तुमको जो नेमत भी हासिल है अल्लाह ही की तरफ से है। फिर जब कोई सख्त वक्त तुम पर आता है तो तुम लोग खुद अपनी फरियादें लेकर उसी की तरफ दौड़ते हो, मगर जब अल्लाह उस वक्त को टाल देता है तो यकायक तुम में से एक ग्रोह अपने रब के साथ दूसरों को इस मेहरबानी के शुक्रिये में शरीक करने लगता है ताकि अल्लाह के एहसान की नाशुक्री करे। अच्छा मजे कर लो, अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा। ये लोग जिनकी हकीकत से वाकिफ नहीं हैं, उनके हिस्से हमारे दिए हुए रिस्क में से मुकर्रर करते हैं। खुदा की कसम, जरूर तुमसे पूछा जाएगा कि ये झूठ तुमने कैसे घड़ लिए थे। ये खुदा के लिए बेटियां तजवीज करते हैं, सुबहान अल्लाह, और इनके लिए वो जो ये खुद चाहें। जब इनमें से किसी को बेटी के पैदा होने की खुशखबरी दी जाती है तो उसके चेहरे पर क्लोनस छा जाती है और वो बस खून का सा घूंट पी के रह जाता है। लोगों से छुपता फिरता है कि इस बुरी खबर के बाद क्या किसी को मुंह दिखाए। सोचता है कि जिल्लत के साथ बेटी को लिए रहे या मट्टी में दबा दे। देखो कैसे बुरे हुक्म हैं जो ये खुदा के बारे में लगाते हैं। बुरी सिफात से मुत्तसिफ किए जाने के लायक तो वो लोग हैं जो आखिरत का यकीन नहीं रखते। रहा अल्लाह, तो उसके लिए सबसे बरतर सिफात है, वही तो सब पर गालिब और हिकमत में कामिल है।

चलती रहे। इस मक्खी के अंदर से रंग बरंग का एक शरबत निकलता है जिसमें शिफा है लोगों के लिए। यकीनन इसमें भी एक निशानी है उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। और देखो अल्लाह ने तुमको पैदा किया, फिर वो तुमको मौत देता है और तुम में से कोई बदतरीन उम्र को पहुंचा दिया जाता है ताकि सब कुछ जानने के बाद फिर कुछ न जाने। हक ये है कि अल्लाह ही इल्म में भी कामिल है और कुदरत में भी। और देखो अल्लाह ने तुम में से बास को बास पर रिस्क में फजीलत अता की है, फिर जिन लोगों को ये फजीलत दी गई है वो ऐसे नहीं हैं कि अपना रिस्क अपने गुलामों की तरफ फेर दिया करते हों ताकि दोनों इस रिस्क में बराबर के हिस्सेदार बन जाएं। तो क्या अल्लाह ही का एहसान मानने से इन लोगों को इनकार है? और वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए तुम्हारी हम जिन्स बीवियां बनाई और उसी ने इन बीवियों से तुम्हें बेटे पोते अता किए और अच्छी अच्छी चीजें तुम्हें खाने को दी। फिर क्या ये लोग ये सब कुछ देखते और जानते हुए भी बातिल को मानते हैं और अल्लाह के एहसान का इनकार करते हैं और अल्लाह को छोड़कर उनको पूछते हैं जिनके हाथों में ना आसमानों से इन्हें कुछ भी रिस्क देना है ना जमीन से और न ये काम वो कर ही सकते हैं। बस अल्लाह के लिए मिसालें न घड़ो, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते।